0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
2: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
1: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए। AKCC.NABARD.ORG।
2: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
1: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
2: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज बिना लाइन
1: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
2: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
1: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान
2: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
1: EKCC साख से समृद्धि।
2: नियम और शर्तें लागू।

0: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
2: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
1: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए। AKCC.NABARD.ORG।
2: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
1: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
2: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज, बिना लाइन
1: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
2: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
1: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
2: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
1: EKCC साख से समृद्धि।
2: नियम और शर्तें लागू।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

0: का लोकार्पण किया गया है। जब आप यहां जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अम्बाला रेल सेवा और अमृतसर छेहरटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नागरिक देवो भवः के मंत्र के साथ कार्य कर रही है।
0: हम नागरिक देवो भवः इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है। और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को रवाना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर दूसरी राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। सभी मंत्रालयों और विभागों के नोडल अधिकारी और सलाहकार कार्यशाला में भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वे राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म मृत्यु पंजीकरण से जुड़े मामलों की भी समीक्षा करेंगे। शाम को वे कोलकाता रवाना होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। इन 3 परियोजनाओं में खराड़ी जंक्शन और शिरूर बाईपास के बीच 53 किलोमीटर से अधिक लंबी 6 लेन की सड़क शामिल है, जो 246 किलोमीटर लंबे पुणे संभाजीनगर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का पहला चरण है। इसके अलावा हटपसर और यवत के बीच करीब 32 किलोमीटर की सड़क और तालेगांव चाकन शिकरापुर के बीच करीब 54 किलोमीटर की सड़क का भी

0: शिलान्यास किया जाएगा। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार, यात्रा समय में कमी और यातायात जाम में कमी आने के साथ साथ पुणे क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। श्री तुर्क ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और हिंसा की घटनाओं के लिए जवाबदेही तय करने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच शांति बनाए रखने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पिछले महीने से चुनावों से पहले जारी प्रदर्शनों के दौरान कई लोगों की मौत हुई है। उच्चायुक्त ने सभी मौतों की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजनाओं को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सोशल मीडिया पर की गई कुछ टिप्पणियां व्यक्तिगत राय पर आधारित हैं और तथ्यों से मेल नहीं खाती। उन्होंने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड वर्ष 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। चाबहार बंदरगाह के संबंध में विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीका की ओर से दी गई छूट कुछ समय पहले समाप्त हो गई थी और इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित पक्षों के साथ बातचीत जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा हैं।
2: मैं यह कहना चाहूंगा और हम लोगों ने हमेशा से यह कहते आए हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी जो पूरा क्षेत्र है, ये भारत का अंग है, भारत का अंग था, भारत का अंग रहेगा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गत स्काकना से राजधानी टालिन में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता के सफल समापन के बाद नए अवसरों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। भारत एस्टोनेशिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि क्षमता और बड़े विनिर्माण आधार को विश्व स्तरीय उत्पादन के साथ जोड़कर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया जा रहा है।
3: Working to strengthen each other's
4: हम एक दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने और यूरोपीय संघ के सभी लोगों और भारतीयों के लिए साझा समृद्धि और बेहतर भविष्य की दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं। हमने एफ्टा के साथ समझौते किए हैं जो पिछले साल 1 अक्टूबर से लागू हुए। ब्रिटेन के साथ समझौता 15 जुलाई को लागू हुआ और 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के साथ समझौता 2027 की पहली तिमाही में लागू होगा। इन समझौतों के साथ हम पूरे यूरोप के साथ कई क्षेत्रों में दोतरफा व्यापार के लिए तैयार होंगे।
1: पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडवार्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मिलेंगे। भारत की 4 दिन की यात्रा पर आए जांजीबार के राष्ट्रपति डॉ हुसैन अली मिवनई आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। कल उन्होंने चेन्नई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 63वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। हमारी श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आगामी कड़ी में हम रामवीर तंवर से बातचीत करेंगे। श्री तंवर ने जल संरक्षण और जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक कार्य किया है। उन्हें आमतौर पर पॉन्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है।
5: मेरा भतीजा आया था कि अंकल आपका नाम टीवी में आ रहा है और मैं भगा भगा नीचे गया। जब तक नीचे गया तो मन की बात प्रोग्राम तो चल रहा था बट मेरा वाला जो पार्ट था वो खत्म हो गया था। तो मैं वापस गया अपने कमरे में, जब मैं लेकिन वहां जाके देखा तो मेरा मोबाइल बज रहा था। मैंने उठा के देखा तो बहुत सारे ढेरों सारे मैसेज थे। पक्षी तालाब किनारे पे तो बैठ नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं तालाब के बीच में एक आईलैंड बनाते हैं मिट्टी का, उस पर बैठने की व्यवस्था करते हैं। अभी तक 100 से ज्यादा आईलैंड बनाए।
6: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। आप इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी है। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी नोकुहारा के हटने के बाद अंतिम चार में पहुंची हैं। और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं मृगनयनी पांडे।
7: हॉकी इंडिया आज से देश भर में कोचिंग और रेफरी शिक्षा कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जानकारी देना है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप तिर्की ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आयोजित ये कार्यशालाएं देश में हॉकी की मजबूत नींव तैयार करने और खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अब अगर बात करें फीफा विश्व कप की, तो फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: मौसम विभाग ने उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी कल तक तेज वर्षा हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज।
8: धन्यवाद जागृति। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, न धुआं न प्रदूषण, रेलवे में हरित परिवहन की शुरुआत। प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया की सबसे लंबी और ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन। नव भारत टाइम्स के शब्द हैं, हाइड्रोजन की ताकत, स्वदेशी तकनीक, पटरी पर दौड़ी देश की ऐसी पहली ट्रेन। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर नागरिकता का प्रश्न उठाते हुए लिखा है, समस्या ये है कि अपने देश में नागरिकता सिद्ध करने वाला कोई सुनिश्चित प्रमाण पत्र नहीं है। हिंदुस्तान ने SIR से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, SIR में नाम कटने से नागरिकता नहीं जाती। 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट अगले साल आ सकते हैं, लिखता है दैनिक भास्कर। पॉलीमर शीट कंपनियों से निविदाएं मंगाई, 18 अगस्त को टेंडर। जनसत्ता ने RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा का बयान दिया है, कमजोर मानसून आर्थिक वृद्धि के लिए जोखिम।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, 2 नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की शुरुआत भी करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम संजय मट्टू। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi inaugurates 75 redeveloped railway stations across the country under Amrit Bharat scheme. Also flags off 2 new train services. Home Minister Amit Shah to visit BSF border outpost in West Bengal today to review security and launch development initiatives. UN Human Rights Agency voices concern over wave of unrest in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Calls for probe into deaths of protesters. In Japan Open Badminton, PV Sindhu faces Chen Yufei of China in semi-final of women's singles in Tokyo, and in FIFA World Cup, France and England to lock horns for third place at Miami tonight. Prime Minister Narendra Modi virtually inaugurated 75 redeveloped railway stations across 20 states from Jalandhar in Punjab last evening. These stations have been modernized under the Amrit Bharat Station Scheme, which is one of the world's largest station redevelopment programs. Developed at a cost of about 1,570 crore rupees, these stations have been transformed into modern passenger-friendly facilities. Redeveloped in the spirit of Virasat Bhi, Vikas Bhi, the stations incorporate elements reflecting local culture, heritage and architecture. On the occasion, Mr. Modi flagged off the Kartoli-Ambala train service, which will improve connectivity across Punjab, Haryana and Himachal Pradesh. He also flagged off the Sant Ravidas Express between Amritsar and Varanasi, establishing a direct rail link between two of India's most revered spiritual and cultural centres. He also inaugurated the 30.9-kilometre-long Package 6 of the four-lane Greenfield Delhi-Amritsar-Katra Expressway. Speaking on the occasion, Mr. Modi said the inauguration of the 75 redeveloped railway stations reflects the rapid transformation that Indian Railways has undergone over the past few years.
10: बीते वर्षों में भाजपा सरकार ने स्थितियों को बदलना शुरू किया आज पूरे देश में रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: क्या मेरी कसम,
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय,
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग्स आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
4: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
5: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
4: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

दोस्तों कहते हैं कि सच्ची सफलता वही है जो ईमानदारी और मेहनत से प्राप्त की जाए। अगर आप उस सफलता पाने के लिए तैयार हैं तो ये सफलता आपका भी इंतजार कर रही है। हेलो हाय नमस्कार श्रोताओं, आप जुड़ चुके हैं आरजे आनंद के साथ। सुप्रभात, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग है इस वक्त।

एक खूबसूरत मौसम और खूबसूरत वाइव लेकर आई है ढेर सारी खुशियां आपके और मेरे दरवाजे पर। श्रोताओं, आप जुड़ चुके हैं आपके शहर के अपने इकलौते सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 पर आरजे आनंद के साथ, और ये सिलसिला लगातार चलने वाला है 10 बजे तक इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहां आप होंगे, हम होंगे और हमारी होगी ढेर सारी बातचीत। तो आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, थोड़ी देर में लौट कर आएंगे तो आपसे ढेर सारी बातचीत करेंगे इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पर। सुबह का मेरा प्यार भरा सलाम कबूल कीजिए जनाब, आज की प्यारी मॉर्निंग में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग है। जुड़ी रहिए, ठीक रहिए, सुनते रहिए आपका मॉर्निंग मैगजीन शो। अभी लौट कर आएंगे तो आपसे ढेर सारी बातचीत करेंगे। मौसम इतना खूबसूरत है, इस खूबसूरत मौसम में एक सलाम का पैगाम आपके नाम कर रहा हूँ आज की सुबह। चलिए इस गाने को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग।

0: सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग।
1: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
1: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद। मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

0: वेलकम बैक है जी। सच में मौसम तो है बड़ा कातिल, लेकिन मौसम सच में बहुत ही औसम है। एंड फिलहाल 30 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है। आज लाइट रेन रहने वाला है, यानी हल्की फुल्की भीनी भानी जो बारिश है वो लगातार जारी रहेगी, और आज का मौसम बहुत ही औसम रहने वाला है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, आपको बताते चलें, अभी फिलहाल हवाएं 2 किलो प्रति घंटा की रफ्तार से रहेंगी। एयर क्वालिटी पहले से थोड़ी बेटर हो गई है एंड विजिबिलिटी बहुत बढ़िया चल रही है। ह्यूमिडिटी ठीक ठाक रहने वाली है, क्योंकि वेदर कुल मिला के थोड़ा सा ऑसम ही रहने वाला है। एंड ये दोपहर होते होते पहुंच जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। चलो जी, मिनिमम जो है वो 30 डिग्री है, मैक्सिमम 35 डिग्री है। आगे बढ़ते हैं, ये थी वेदर की अपडेट। एंड अगर बात करें अभी आपके मैसेजेस की, तो बहुत ही ब्यूटीफुल और खूबसूरत मैसेज आपके पहुंच गए हमारे पास ढेर सारे। पहला संदेश मेरे पास पहुंचा है यहाँ पर, इनका नाम शबनम है। ये मुझे मैसेज करती हैं जयंतीपुर से, लिखती हैं, हेलो आनंद जी, सुप्रभात, आपने बहुत ही खूबसूरत ट्रैक प्ले किए हैं सुबह, वाकई ही बहुत ही ज़बरदस्त आपने बना दी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शबनम जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक संदेश हमारे पास पहुंचा है रिंकू जी का, ये लिखते हैं, आनंद जी वेरी गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, आपको भी जय श्री राम लिखते हैं। सैटरडे मॉर्निंग में आपको सुनकर बड़ा मजा आ रहा है, और एक तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, अरे वाह क्या बात है सर। एक मैसेज मेरे पास पहुंचा है शिखा जी का, हमारी रेगुलर लिसनर है, मानसरोवर से मैसेज करती हैं एंड लिखती हैं, शिखा जी हाय आनंद जी, कैसे हैं आप, आज तो बारिश करा दी है, सुबह सुबह चाय पकौड़े, कैन यू इमेजिन। यार देखो, मैं इमेजिन करूं ना करूं, आप जरूर करना। वैसे सुबह सुबह ऐसे मौसम में क्रिस्पी आलू के पराठे हो, चाय पकौड़े हो, तो आनंद ही आनंद आ जाए, है ना। गरम गरम अदरक वाली चाय मिल जाए कड़क, फिर तो उस पर क्या ही कहना। एनीवेज, कुछ लोग चाय बना भी रहे होंगे, तो कुछ लोग चाय सिप सिप करके पी भी रहे होंगे, कोई भरोसा भी नहीं है मेरे लिसनर्स का, वो कभी भी चाय बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मैसेज मेरे पास पहुंचा है यहाँ पर, हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल है, माय नेम इज साक्षी, गुड मॉर्निंग साक्षी। एक संदेश आया है हमारे प्यारे जुल्फी भाई का, लिखते हैं, हेलो आनंद जी, सुबह सुबह ऐसे गाने सुनाकर दिल चुरा लूंगा, यार एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतोगे भाई, जितनी बार आप जितवा दो उतनी बार जीत लूंगा मैं तो आपका दिल। एंड जुल्फी भाई लिखते हैं, जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए बड़ा सोचना पड़ता है। बिल्कुल जी, ये बात तो आपने सही कही है, एंड मैं भी इस बात से अग्री करता हूँ, डेफिनेटली ये बात बिल्कुल सत्य बात है। मुझे भी लगता है कि जिंदगी में कुछ बड़ा उखाड़ना हो तो उसके लिए कुछ बड़ा करना पड़ता है, और बड़ा करने के लिए बड़ा इनिशिएटिव लेना पड़ता है बॉस। आने वाला ब्यूटीफुल ट्रैक फाल्कनी पाठक का एक गाना, ब्यूटीफुल नंबर, मौसम इतना औसम है तो ये गाना तो बनता है।
1: सावन में मोरनी बनके मैं तो छम छम,
0: आहा ओए होए क्या बात है,
1: सावन में मोरनी बनके मैं तो छम छम,
0: ओए होए क्या बात है।
1: सावरिया तेरी याद,
0: आने वाला बेहतरीन गाना,
1: तेरी चिट्ठियां,
0: आहा चलो एंजॉय करो यार।

बताना भूल गया था आपको, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 99.6, आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। आनंद विद यू लेडीज एंड जेंटलमैन, आई विल बी राइट बैक। बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक फाल्गुनी पाठक की आवाज में निकल गया है, ये आपको ले जाएगा जूम करके फ्लैश बैक में। वॉल्यूम बढ़ाओ, एंजॉय करते जाओ। गुड मॉर्निंग।

0: हे गाइस, नाश्ता तो मैं बहुत अच्छा हूँ और अब लोगों को अच्छे से नचवा रहा हूँ।
1: मैं लीडर हूँ भाई, आपसे अपना
2: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
3: हाँ, मेरी कसम
2: मिस कर दिया तो रीलोड।
4: चाय चाय चाय
5: बिंदास मॉर्निंग
2: बिंदास मॉर्निंग्स आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
6: यार, सोना कितना महंगा हो गया है। काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
7: अरे, सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
6: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
8: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद।

0: 4। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681। 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
1: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
1: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
0: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
2: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
3: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
4: बिल्कुल जी, नाचते रहिए, झूमते रहिए। आप सun रहे हैं RJ आनंद को ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 पर, जहां बातें हो रही हैं ढेर सारी आपकी, मेरी और ऐसी ही वो प्यारी प्यारी बातें जिसपे ऑफकोर्स बात करना तो बनता है यार। आज दिन इतना प्यारा है, मौसम इतना प्यारा है, तो ऑफकोर्स यार गाने भी तो प्यारे होने चाहिए। तो बस प्यारे प्यारे गाने भी आपके लिए प्ले कर रहा हूं आज की सुबह, जिनको सुन के आप भी एकदम फ्लैश बैक में पहुंच जाओगे। एक और बहुत ही खूबसूरत ट्रैक आपके रेडियो सेट पे निकल गया है, एंड इस गाने के बाद हम लौट कर आएंगे तो आपसे बातचीत करने वाले हैं आज के दिन के बारे में। क्यों स्पेशल है आज का ये दिन, क्यों खास है, क्या स्पेशलिटी है आज के दिन में, डेफिनेटली आपको बताऊंगा। बस आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए। हाँ जी, मेरे साथ बोलेंगे आप और गुनगुनाते रहिए। चलिए, एक और ब्यूटीफुल ट्रैक आपके रेडियो सेट पे निकल चुका है आज की सुबह, आप इंजॉय करेंगे इस गाने को RJ आनंद के साथ। बहुत ही बेहतरीन ट्रैक। चलो चलो चलो शुरू करते हैं। आज ही शुरू हो जाओ।

यार पहले की जितनी प्यारी फिल्में होती थी ना उतने प्यारे गीत भी होते थे, नो डाउट। पहले की पिक्चरों में ना बड़े लंबे लंबे गाने होते थे, मतलब इतने लंबे लंबे गाने होते थे और हर एक सीन के बाद, थोड़ी सी अच्छे से सीन के बाद तुरंत गाने आ जाते थे ना पहले। वेलकम बैक, 8:53 का समय हो गया, आप सुन रहे आनंद को। शनिवार की सुबह आप सभी का वेरी वेरी पावरफुल वाला गुड मॉर्निंग है यार, एनर्जेटिक वाला गुड मॉर्निंग। मौसम एब्सोल्युटली ऑसम है, इस मौसम में आप क्या कर रहे हैं डेफिनेटली आप बताइएगा मुझे, एंड अपने प्यारे प्यारे मैसेज भी आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं 9837896896 के माध्यम से। एंड अभी हमारे पास आपके लिए ढेर सारे सवाल भी होंगे जिस पर हम बवाल करने वाले हैं आपके साथ, यानी कि सवाल जवाब डेफिनेटली होते रहेंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। एंड फिलहाल अभी हम यहाँ पर आपको बताते हैं आज का दिन क्यों खास है, लेकिन उससे पहले जोरदार तालियां, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए आज की सुबह, इतने प्यारे मैसेज पहुंचाने के लिए।

श्रोताओं, हर दिन का इतिहास बहुत ही खास होता है। आज 18 जुलाई है, 2026 स्पेशल मॉर्निंग है। एंड क्यों खास है ये 18 जुलाई, आइए आपको बताते हैं। देखिए, 18 जुलाई का दिन भारतीय और विश्व इतिहास में बेहद ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही खास है। इसी दिन भारत को आज़ादी मिलने की जो राह थी वो थोड़ी सी आसान हुई थी। एंड आज का दिन क्यों खास है, नेल्सन मंडेला जी का जन्म हुआ था आज के दिन, जो बहुत ही ज़्यादा अपने आप में एक ग्रैंड पर्सनालिटी, डायनेमिक पर्सनालिटी रहे। डेफिनेटली बात करेंगे उनके बारे में और बात करेंगे आज के दिन के बारे में। लेकिन उससे पहले शुरुआत करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिनके बारे में जानना आपको जरूरी। सन 2002 में आज ही के दिन डॉक्टर EPG अब्दुल कलाम भारत के 12वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। श्रोताओं, आज ही के दिन, हाँ जी, आज यानी 18 जुलाई की तारीख थी सन 2002 में, जब डॉक्टर EPG अब्दुल कलाम जी भारत के 12वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। श्रोताओं, इसके अलावा भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए SLV स्कोर 3 से रोहिणी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण जो है आज के दिन किया था। एंड ये सन 1980 में हुआ। श्रोताओं, आज के दिन तो ये वो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो ऑफ कोर्स मैं आपके साथ हमेशा साझा करता हूं। हर दिन का जो इतिहास है वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल इसीलिए हो जाता है क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ खास रहता है। आपको बता दें, ब्राजील ने चौथी बार विश्व कप फुटबॉल चैंपियनशिप जीती थी 1994 में आज ही के दिन। और श्रोताओं, आज ही के दिन जो है एक और खास चीज़ जिसने इतिहास के पन्नों को और ज़्यादा खास बना दिया, हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ उन महान शख्सियत की जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। नेल्सन मंडेला, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित दक्षिणी अफ्रीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति, सन 1918 में आज ही के दिन जन्म हुआ था। एंड साथ ही महीद हसन, जो प्रसिद्ध गजल गायक है, 1927 में इनका भी जन्म हुआ था आज के दिन। श्रोताओं, और आपको बताते चलें एक और नाम जुड़ जाता है जो भारत के प्रसिद्ध साहित्यकारों में से आते हैं, राजेश जोशी, 1946 में इनका जन्म हुआ था आज के दिन। श्रोताओं, और आज के दिन एक बहुत ही खूबसूरत बॉलीवुड अभिनेत्री का जन्मदिन हम सेलिब्रेट करते हैं। शी इज अ वेरी वेरी आइकॉनिक एक्ट्रेस एंड शी इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, चार्मिंग एंड शी इज अल्टीमेट एक्ट्रेस, जो है ये अपने आप में बहुत ही प्यारी सेलिब्रिटी हैं। आई नो इनके बारे में बात करना बनता है। एंड आज के दिन स्मृति मंदाना, जो 1996 में इनका जन्म हुआ था, भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी है। ऑफकोर्स इनके बारे में हर कोई जानता है, शी इज वेरी वेरी अमेजिंग लेडी एंड अपने आप में एक नया मुकाम हासिल करने वाली ये लड़की, जो एक कॉन्फिडेंस का और आत्मविश्वास का फुल पिटारा है। फिलहाल 857 हो गए स्टूडियो की घड़ी में पाजी, और अभी मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूँ।

एक्चुअली गाइस कुछ गाने प्ले कर रहा हूँ यहाँ पे एंड आपको आइडेंटिफाई करके मेरे को बताना है कि जो गाने चल रहे हैं वो कौन सी सेलिब्रिटी पर पिक्चराइजेशन है जो अभी मैं यहाँ पर गाने प्ले करने वाला हूँ, ठीक है। एंड जैसे कि मैंने बताया आज बहुत ही प्यारी प्यारी ब्यूटीफुल सी एक्ट्रेस का बर्थडे हम सेलिब्रेट करते हैं एंड ऑफकोर्स कौन नहीं जानता इनके बारे में, इतनी प्यारी एक्ट्रेस हैं, इतनी प्यारी सेलिब्रिटी हैं, तो इनके बारे में बात करना तो बनता है। कुछ अच्छे अच्छे इनके गाने प्ले करूँगा, फिर आप मुझे बताना आज की हमारी कौन है ये आइकॉनिक सुपरस्टार जिनका आज हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है जी। सो चलो शुरू करते हैं भाजी, 3 2 1 गो स्टार्ट। जरा बताओ ये गाने कौन सी हीरोइन के ऊपर पिक्चराइजेशन है, बहुत ही ब्यूटीफुल एक्ट्रेस है, ऑफ कोर्स इनको आप पहचान ही जाओगे।

0: बहुत ही आइकॉनिक लड़की है यार, अपनी उत्तर प्रदेश की लड़की है। कौन सी सेलिब्रिटी की बात कर रहा हूँ? पैसे वालों की। हाँ, ये गाना सुनो इसका। अच्छा एक और चलाता हूँ जो बहुत ही पॉपुलर गाना है। उड़ गया रे मेरी हवा के झोंके से। कौन सी हीरोइन की बात कर रहा हूँ? सजन मेरे सजन तेरी दुल्हन सजाऊंगी। आप मुझे मैसेज करके बताना 9837896896 पे आज कौन सी ब्यूटीफुल एक्टर का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, बॉलीवुड की कौन सी ये आइकॉनिक लड़की है जिनका आज बर्थडे होता है यार। कुछ गाने प्ले कर रहा हूँ। अच्छा एक और गाना सुनाता हूँ जो बहुत ही फैबुलस है। आने वाले कुछ गाने चलो अभी इतने पैसे में इतना मिलेगा, बहुत ही सफिशिएंट है आज के लिए। मुझे व्हाट्सएप करके बताना कौन सी सेलिब्रिटी का बर्थडे आज सेलिब्रेट करते हैं हम, कौन सी हीरोइन के ऊपर पिक्चराइजेशन गाने चला रहा हूँ, अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके बताना। अगला गाना सुनो। अभी बहुत है सर, बहुत है अभी, बहुत है, बस बस हो गया। अभी आप मेरे को मैसेज करना ठीक है, मैं इंतजार करूंगा आपके मैसेजेस का। फिलहाल स्टेशन क्लॉक में सुबह के 9 बज चुके हैं, आप सुन रहे हैं आनंद को, वेरी गुड मॉर्निंग। कुछ कहना चाहते हैं आप मुझे तो व्हाट्सएप कर सकते हैं 9837896896 पे, हमें इंतजार है आपके मैसेजेस का। वेरी गुड मॉर्निंग।
1: इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन।
2: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए।
0: हाँ जी अभी मिलते हैं आपको इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे एंड वापस आते हैं, फिर बताते हैं आज के दिन के बारे में।
3: अब क्या तोड़ दिया नालायक, सॉरी
4: नलायक बेटा।
5: हाँ जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम, क्या हाल चाल।
6: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग।
7: स्किन एलर्जी मस्त से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।
8: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
9: था मेरी कसम
8: मिस कर दिया तो रीलोड।
10: चाय चाय चाय
8: बिंदास मॉर्निंग्स आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।

0: वेलकम बैक है जी, सैटरडे की सुबह आप सुन रहे हैं आरजी आनंद को, लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड दिस इज माय लास्ट आवर। लेडीज एंड जेंटलमैन, देखिए मौसम बहुत ही ऑसम है, एंड ऑफ कोर्स इतने सारे मैसेज आप कर रहे हैं उसके लिए ओरिजिनल वाली तालियां, थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। एंड मौसम बहुत ऑसम है, आप झूमते नाचते ऑफिस पहुंचे, आपके लिए अच्छे गाने ऑफ कोर्स मैंने लाइंड अप कर दिए हैं, आने वाले कुछ अच्छे गाने जो आपकी सुबह को और भी एब्सोल्युटली अमेजिंग बनाने वाले हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड ऑफ कोर्स दिस इज माय रिस्पांसिबिलिटी कि आपकी सुबह को थोड़ा सा रिचार्ज करो। आप यार बात आई है पूरे मुरादाबाद को एंटरटेन करने की, तो ऑफ कोर्स यार ये जिम्मेदारी मैं भला कैसे भूल सकता हूँ। आज देखिए चौथा सैटरडे है जुलाई का, सो दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, आज अगर आप बैंक जा रहे हो तो कहीं ऐसा ना हो आपको वापस लौट के आना पड़े, तो आज बैंक की हॉलीडे है। एंड अगर मुझे कोई बैंक वाले अधिकारी या फिर कोई मुझे बैंक करनी सुन रहे तो यू कैन कॉल मी यार, आप मुझे कॉल करके बता सकते हो, देखो आज बैंक बंद है ना, मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ, मेरे को पता है यार, पहले और सॉरी दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक ऑफ होती है, ठीक है? तो आज जो है चौथा सैटरडे जुलाई का, क्या कह रहे हो आप? नहीं चौथा तो है ही नहीं आनंद, ये तो तीसरा सैटरडे है, चौथा कहाँ से हो गया है, तो तीसरा वाला सैटरडे है, आज तो ऑफ हो ही नहीं सकता बैंक, तो आप पता करके मुझे बता दो फिर जरा 9837896896 पे चौथा सैटरडे या तीसरा सैटरडे है। वैसे तो तीसरा ही सैटरडे होना चाहिए, क्योंकि जब पहला वाला सैटरडे आया तो 4 थी, दूसरा वाला आया तो 11 थी, अब तीसरा वाला आया तो 18 जुलाई है, जो फिर अगला वाला आएगा उसको 25 जुलाई होगी, तो अभी तो तीसरा सैटरडे है ना, सही कह रहा हूँ मैं? जी आपके मजे लेते रहता हूँ मैं थोड़े थोड़े, बिकॉज मैं चेक करता हूँ कि कितने लोग जो है इंटेलिजेंट वाली सेंस ऑफ ह्यूमर को यूज करते हैं। बाबा खैर मैं आपसे जोक से बात नहीं करूंगा, वेल आज जो है तीसरा सैटरडे है, ठीक है जी, आज जो है जुलाई का तीसरा सैटरडे है। नेक्स्ट 25 वाला आएगा फोर्थ सैटरडे। अच्छा मैं आपसे ये कह रहा था, अच्छा बैंक जो है वो कब कब ऑफ है इस जुलाई के महीने में, अभी और आने वाले टाइम में मैं ये आपको डेफिनेटली पूरा अपडेट दूंगा, अभी जब लौट के आऊंगा तो तब पक्का पक्का। मैंने जो आपसे एक सवाल पूछा है उसका जवाब कौन देगा? हाँ आप ही तो दोगे ना यार, मैंने आपसे कही तो है यार मुझे मैसेज करके जरा फटाफट बताओ। आज की सुबह मैंने आपसे इतना प्यारा सवाल पूछा यार, एक बहुत ही कमाल की बॉलीवुड सेलिब्रिटी का बर्थडे होता है और आप है कि मैसेज ही नहीं कर रहे हो यार, ये तो गलत बात है, ऐसे कैसे चलेगा यार, इतना बढ़िया मैंने आपसे सवाल पूछा है। एक काम करते हैं जरा इनकी बात सुनते हैं।
1: गुड मॉर्निंग आनंद भाई
0: जी,
1: कैसे हो?
0: बढ़िया सर,
1: मैं भी सुबह का शुरुआत रेडियो से शुरू कर रहा हूँ,
0: एफएम
1: मुरादाबाद।
0: अरे वाह,
1: गुड मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ सभी लोग सुनते रहिए, सुनाते रहिए,
0: क्या बात है,
1: एफएम मुरादाबाद आनंद भाई के साथ बजाते रहिए,
0: बहुत ही बढ़िया, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू भैया।
1: मैं भी अपने ड्यूटी पे निकल रहा हूँ, साथ
0: nice.
1: में मुरादाबाद आनंद भाई के साथ सुन रहा हूँ, और जो सुबह की शुरुआत बहुत ही अच्छी होती है जब इतने अच्छे अच्छे गाने आनंद भाई लाते हैं और इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ देते हैं, तो दिल से धन्यवाद आनंद भाई को, एफएम मुरादाबाद जो सबको दीवाना बना दे, सुनते रहिए सभी लोग।
0: थैंक यू सो मच, इतनी प्यारी बात बोलने के लिए यार बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट, एंड ऐसे ही आप प्यारी प्यारी बातें करते रहिए, हम इंतजार करते रहेंगे आपके और प्यारी प्यारी वॉइस नोट का। फिलहाल बैंक अभी जुलाई में कब कब और ऑफ रहने वाली डेफिनेटली बताता हूँ ना, कल तो संडे यार, ऑफ कोर्स कल तो ऑफ रहेगी, क्या इस सैटरडे ऑफ है या नेक्स्ट सैटरडे बता दूंगा अभी आपको इस गाने के उस पार। आई विल बी राइट बैक गाइस, आप कहीं मत जाइए, आरजे आनंद को सुनते रहिए वॉल्यूम बढ़ा के, एंड ऐसे ही मेरा साथ देते रहिए ना यार। गुड मॉर्निंग।

0: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है,
1: लेकिन सोनिया
0: डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं,
1: नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन।
2: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए।
3: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
4: मॉर्निंग। अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
5: अरे बेटा बस थोड़ी दूरी तो जाना है।
4: पर पापा।
5: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
6: अब क्या तोड़ दिया नालायक? सॉरी
7: माँ। मम्मा का नालायक बेटा।
8: हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम, क्या हाल चाल?
3: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

आज के गाने आप कौन से बॉलीवुड अभिनेत्री पर ग्रेजुएशन वाली सुन रही हैं, आपको मुझे बताना है, बिकॉज आज इनका बर्थडे होता है 18 जुलाई 2026। शी इज वेरी वेरी अमेजिंग एक्ट्रेस। इनका बहुत ही प्यारा सा जो है भाई साहब, मैं इनके बारे में कुछ बता रहा था, भूल गया, बाद में लौट के आया तो बताऊंगा, वापस आऊंगा तो बताऊंगा। इनका एक बहुत ही प्यारा सा जो निक नेम है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, पीसी का, याद आ गया। हाँ, और एक और चीज़ मैंने जो भी पढ़ी है प्रियंका चोपड़ा के बारे में, मैं डेफिनेटली आपको बताने वाला हूँ। क्यों बात कर रहा हूँ प्रियंका की, मैंने अभी थोड़े दिन पहले आपको बताया ना, पीसी आजकल जो बहुत ट्रेंड कर रही है एंड उन्होंने अपनी वेडिंग को लेकर भी कुछ खुलासे किए हैं पीसी ने, तो उस पर भी हम बात करेंगे। एंड इसके अलावा और क्या बात करने वाले हैं आज, हम डेफिनेटली बताऊंगा, थोड़ा सा इंतजार तो करूँ। आई विल बी राइट बैक।

पप्पी लेडी नेहा भसीन की आवाज एंजॉय कर रहे थे अभी आप ये बेहतरीन गाना गुंडे मूवी से। वेलकम बैक है जी। अभी फिलहाल स्टेशन की घड़ी में 9:17 हो गए। आनंद को सुन रहे हैं आप सभी का तगड़ा वाला वेलकम बैक है। धांसू गाने आप सुन रहे हैं। वीकेंड है, सैटरडे है, मौसम अच्छा है, सारी चीजें बहुत बढ़िया हो रही है, बहुत मजा आ रहा है। आप लोगों की मैसेज इतने बढ़िया आ रहे हैं, थैंक यू वेरी वेरी मच इतने प्यारे मैसेज के लिए। अच्छा बैंक की बात कर रहा था तो मैं आपको बता दूं लेडीज एंड जेंटलमैन, आज बिल्कुल बैंक खुली हुई है। आपको जो है बैंक बंद मिलेगी, अगर तो मिलेगी फोर्थ सैटरडे को, महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद होती है। तो आज तीसरा सैटरडे है, यस, तो आज छुट्टी नहीं है। 25 जुलाई को जो है चौथा सैटरडे है जब बैंक ऑफ रहेगी, एंड 26 को भी बैंक ऑफ रहेगी क्योंकि नेक्स्ट डे संडे है। कल भी बैंक ऑफ रहेगी, यानी कि कल 19 जुलाई को। 19 को ऑफकोर्स संडे में बैंक ऑफ रहती है। तो आज बिल्कुल बैंक खुले हुए हैं। अगर आपको कुछ भी काम करना है, कुछ भी आपकी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, जो भी आपका लगता है कि आपके बैंक के जरूरी काम है, डेफिनेटली यू हैव टू गो एंड कंप्लीट योर वर्क। इसमें कोई इशू नहीं है यार। आगे बढ़ते हुए मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप सुन रहे हैं आनंद को, एंड फिलहाल जुलाई का जो महीना है वो भी मुझे लग रहा है कि बहुत तेजी से निकलने को है यार। आप खुद सोचिए ना कितनी तेजी के साथ रफ्तार पकड़ रहा है ये समय भी। एक मैसेज पहुंचा है मेरे पास। हाय गुड मॉर्निंग आनंद जी, कैसे हाल चाल है? माय नेम इज निधि। हाय निधि, गुड मॉर्निंग। निधि जी लिखती है, जिंदगी छोटी नहीं होती, हम जीना ही देर से शुरू करते हैं, जब तक रास्ते समझ में आते हैं आनंद जी तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। ओ माय गॉड, सच अ टचिंग, एकदम टच कर देने वाली बात आपने बोल दी है। वेरी वेरी हार्डकोर थॉट आज की सुबह आपने शेयर कर दिया है। थैंक यू सो मच निधि जी ये बात शेयर करने के लिए। मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे, इतनी पॉजिटिव बातें मत करो आप। आपको बताएं, असम की गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छी चीज़ शुरू की है। बेसिकली असम की गवर्नमेंट ने ना, अभी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा सर्कुलेट भी हो रहा था ये ट्रेंड, बहुत किया है ये वाला इन्फॉर्मेशन कि असम में जो गवर्नमेंट है वहाँ की, उन्होंने ये किया कि अगर कोई भी बंदा अपने घर का कचरा रोड पे फेंकता है, इधर उधर फेंकते हुए पाया जाता है, तो उसके वीडियो को CCTV कैमरा में रिकॉर्ड किया जाएगा और पब्लिकली उसके वीडियो को चलाया जाएगा। देखो भाई, अभी क्या हो रहा है ना कि प्रॉब्लम लोग स्मार्टली कर रहे हैं क्रिएट, तो अब सोल्यूशन भी स्मार्टली होंगे ना। तो उन्होंने भी बहुत ही डिजिटली और स्मार्टली एक तरीका ढूंढा है कि भैया अगर कोई बंदा कहीं पर कचरा फेंकता है, गंदगी करता है, अगर वो पाया जाता है ये करता हुआ, तो भैया उसका वीडियो रिकॉर्ड होगा, सोशल मीडिया में कैप्चर किया जाएगा, एंड उसके बाद उसके वीडियो को सोशल मीडिया पर जो है फैलाया तो जाएगा ही, लेकिन शहर के अलग अलग बड़े बड़े LEDs पर भी चलाया जाएगा। सोचिए अपने आप में कितना अलग सा ये इनिशिएटिव है वहाँ की गवर्नमेंट का, एंड मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। एंड ऑफकोर्स ये बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव है यार, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता है भाई, उनको लगता है कि नहीं बस हमारा अपना ही घर है, इसको ही साफ रखना है। भाई जिस देश में हम रहते हैं ये भी आप उनका ही घर है यार, इसको भी तो अपने को ही साफ करना है। ये साफ सुथरा होगा तो अपना घर भी तो साफ सुथरा रहेगा ही। सिर्फ अपना घर चमकाने से कुछ नहीं होगा, हमारे आसपास के एनवायरमेंट भी, हमारा जो सराउंडिंग एरिया है वो भी तो ब्यूटीफुल होना चाहिए ना। कोई अगर एंटर हो तो उसे लगे वाओ क्या एरिया है यार, क्या मतलब खूबसूरत माहौल है वहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बारिश तो हल्की फुल्की हो रही है, कहीं वाटर लॉगिंग ना हुई, मुझे तो ये लग रहा है। बाहर का मौसम कैसा हो रहा है, एक एक फोटोज जरा मुझे शेयर करो आप 9837896896 पे फटाफट से। और हमारे पास इसके अलावा मैसेज पहुंचा है यहाँ पर आलोक जी का, इन्होंने मेरे को सही जवाब दे दिया है। आलोक थैंक यू सो मच यार, आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर पकड़ा है। मौसी ने मेरे को सही जवाब दिया है कि आज इस सेलिब्रिटी का बर्थडे होता है। रिजवान खान साहब सही जवाब दे रहे हैं, एंड इसके अलावा रितिका मुझे राइट आंसर दे रही है, थैंक यू रितिका। इसके अलावा मेरे पास मैसेज पहुंच रहा है, हाय गुड मॉर्निंग आनंद, कैसे हाल चाल है? माय नेम इज श्रुति। हाय श्रुति, गुड मॉर्निंग। श्रुति भी मुझे सही जवाब दे रही है, थैंक यू सो मच ऑल द पार्टिसिपेंट्स। अभी तो बहुत सारा टाइम है, 9:20 हो रहे हैं। आपको बता दूं क्या RBI लेकर आ रहा है भारत में प्लास्टिक के नोट, कैन यू इमेजिन? अगर प्लास्टिक के नोट होंगे तो वो कैसे होंगे यार? हाँ जी, आपको बता दें RBI भारत में जल्दी प्लास्टिक, यानी कि कुछ एक ऐसी ब्यूटीफुल चीज क्रिएट करने वाला है जिसपे आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। आप पहले हमने सुना था ना प्लास्टिक वाले पैसे आएंगे ना गलेंगे ना ख़राब होंगे, ऐसे कुछ नोट्स आने वाले हैं। तो ऐसे ही कुछ खास बताया जा रहा है कि भैया ऐसा कुछ जो नोट है वो अब आ सकता है, मतलब वाटरप्रूफ जो है वो पैसा मिल सकता है। अब देखते हैं भाई क्या होगा, फिलहाल अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आपको बता दें, और ये जो नोट है प्लास्टिक वाले, ये ऑलरेडी पहले से चलते आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, UK एंड कनाडा जैसे देशों में, ये नोट पहले से सफलतापूर्वक चल रहे हैं। अब इंडिया में भी इसको लाने की तैयारी है, तो बहुत अच्छी बात है भाई साहब। आप बिलीव नहीं करेंगे, चीन के अंदर बंदरों की डिमांड हाई हो गई है, मतलब एक की कीमत 30 लाख रुपए है भाई साहब, बताइए अब आप, मतलब बंदरों की, यहाँ तो भाई इतने बंदर परेशान कर रहे हैं, उधर बंदरों की कीमत 30 लाख रुपए, ओ माई गॉड।
आखिर क्यों है ये? डेफिनेटली इस पे हम चर्चा करेंगे अभी, और बाकी देश विदेश में क्या चल रहा है वो तो मैं आपको बताता ही हूँ, लेकिन मुरादाबाद में क्या चल रहा है?

0: ये कुछ गाने हैं जो आपको आइडेंटिफाई करके मुझे बताने हैं कौन से सेलिब्रिटी के ऊपर पेस्चराइजेशन है। थोड़ी देर में पीसी के बारे में बात करेंगे। आपके लिए तालियां यार, आपके लिए तालियां। इतनी अच्छी बातें आप कर रहे हो, इतने प्यारे प्यारे मैसेज कर रहे हो, इतने सुंदर सुंदर मैसेज कर रहे हो, मैं इमोशनल हो जाऊंगा यार।
1: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
2: मॉर्निंग। सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
4: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
5: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
4: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
6: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। मिला
5: अरे तो भाई गुस्सा क्यों होते हो, यहाँ इंसाफ भी मिलेगा और एंटरटेनमेंट भी। एंटरटेनमेंट भी, क्योंकि आप सुन रहे हैं आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, जो कहता है रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और दिल से कहिए जियो बिंदास।

ये गाना आपको बहुत कुछ याद दिला देगा। दिस इज वेरी वेरी आइकॉनिक ट्रैक। आज की सुबह बहुत ही स्पेशली गाना ये प्ले कर रहा हूँ आप सभी के लिए। हाँ जी मतलब इतना प्यारा गाना है, पिक्चर बहुत प्यारी है एंड इसका म्यूजिक आई लव दिस सॉन्ग, बहुत ही अमेजिंग ट्रैक है। पाजी जरा बचाओ, हाँ कमाल कर रहे हो यार। ओए होए, आज के जो आइकॉनिक सेलिब्रिटी है ना जिनका बर्थडे है वो इस गाने में भी है। आपको कितने सारे क्लूज दे रहा हूँ, चलो गाना सुनो फिर मिलता हूँ। गुड मॉर्निंग।

0: बात है यार, हम भी तो आपकी खातिर ही रेडियो पर बैठते हैं हर दिन मंडे टू सैटरडे, और कैसे वीकेंड आ जाता है पता ही नहीं चलता है यार, मैं आपको सच में बता रहा हूँ। वेलकम बैक है जी। रिसेंटली एक नई रिसर्च की गई है जिसमें पता लगाया गया है कि सब रात को जब लड़कियां सोने जाती हैं तो वो सोने से पहले अपनी पसंद का कुछ ना कुछ देखकर सोती हैं, और 65% गर्ल्स सोने से पहले जो है अपना शॉपिंग का सामान कर मतलब शॉपिंग की जो चीज़ें वो देखकर ही सोती हैं। आई डोंट नो कितना जेन्युइन था, मुझे नहीं पता, मैं रिसर्च के बारे में स्टडी कर रहा था, उसमें मेंस का भी एक डेटा निकल के आया है कि भैया 65% मेंस ऐसे हैं जो बेड पर जाने के बाद से वो सोचते हैं कि पूरा दिन हमने क्या किया है, किधर गए, क्या किया, कैसा रहा उनका दिन, वो अपने दिन के बारे में सोचकर ही सोते हैं कि आज हमने पूरे पूरे दिन क्या क्या चीज़ की, ये चीज़ करनी थी ये नहीं की, ये चीज़ करनी थी ये हो गई। इस तरीके से वो अपना पूरे दिन को जो है एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, अपने पूरे दिन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उसके बाद उनको बेहतर नींद आती है। वहीं गर्ल्स का डेटा है कि भैया वो सोने से पहले अपनी पसंद की चीज़ें देखती हैं, और कुछ लड़कियों का तो ये भी निकल के आया कि वो शॉपिंग करके ही सोती हैं। भैया कैसी कैसी रिसर्च हो जाती है ना, कभी कभी पता नहीं चलता, कुछ फालतू रिसर्च भी हो जाती है। जरा इनकी प्यारी सी आवाज़ सुन लेते हैं, ये हमारे प्यारे नियमित लिसनर हैं, ये तो अपडेट मैंने आपको दे ही दी है, फिलहाल इनको सुनते हैं।
1: नमस्कार
0: नमस्कार राधे राधे,
1: विलास मॉर्निंग,
0: क्या बात है जी।
1: मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ, और मैं आपका दोस्त भूपी शर्मा नगर पंचायत पाक बड़ा से बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप, आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद, आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन जो सुनाता है आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ और अच्छे अच्छे सॉन्ग भी। कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे यहाँ जो सिर्फ आपके सामने ही आपके होंगे। झूठ को ताकत इंसान देता है और सच को ताकत भगवान। लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं, उन्हें सिर्फ फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। नमस्कार राधे राधे, भेजते रहिए अच्छे अच्छे मैसेज, वॉइस नोट नंबर 98-378-96-896। जी हाँ, यही नंबर आपकी आवाज़ को पहुंचाएगा सारे देश तक, सारे संसार तक, और हो सकता है कि आपकी आवाज़ पहुंच जाए अपनों तक। नमस्कार राधे
0: राधे। थैंक यू सो मच भूपी जी, इतनी प्यारी बात करी। आगे बढ़ते हैं भैया, एक बार फिर से जो है कार्तिक आर्यन की वापसी हो सकती है बॉक्स ऑफिस पर। यस, कार्तिक आर्यन जो एक बार फिर से धमाल कर सकते हैं, यानी कि रूही बाबा एक बार फिर से कमबैक करने वाले हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट एक बॉलीवुड की ऐसी न्यूज़ जो बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड कर रही है। यस, भूल भुलैया 4 की बात हो रही है। हाँ जी, भूल भुलैया 4 की तैयारी बॉक्स ऑफिस पर जो है आने को तैयार है, एंड कार्तिक आर्यन एक बार फिर से करेंगे धमाका, बताया जा रहा है। बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन इस साल जो है अब तक उन्होंने कोई भी फिल्म अभी तक जो है रिलीज उनकी नहीं हुई है, बट अभी बताया जा रहा है कि इस साल उनकी जल्द ही जो है फिल्में आएंगी, एंड उनके जो फैंस हैं वो बेसब्री से उनकी मूवीज का इंतजार कर रहे हैं। ऑफ कोर्स यार, कार्तिक आर्यन मुझे भी बढ़िया लगता है, लड़का बिंदास से एक्टिंग अच्छी करता है, नो डाउट। एंड ये जो है इनकी तो काफ़ी हिट फिल्में जाती ही हैं, बट अभी बताया जा रहा है कि बॉक्स ऑफिस पर अभी भूल भुलैया 4 को लेकर, इस प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत हो रही है। और एक सामने अपडेट ये भी आया कि कार्तिक आर्यन के करियर की सबसे सफल और जो सबसे पॉपुलर इनकी फिल्म बताई जा रही है कि भूल भुलैया ही होगी। एंड जिस तरीके से भूल भुलैया 3 ने कमाल किया है, रॉक मचाया, वैसे भूल भुलैया का जो है सीक्वल 4 भी बहुत ही कमाल का होने वाला है। एंड प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने भी जो है उन्हें कहा है कि भैया हम आपको सपोर्ट करेंगे, स्क्रीन पे आप बहुत अच्छा करते हो, नो डाउट। एंड बाकी भी देखते हैं भूल भुलैया 4 में क्या करने वाले हैं कार्तिक आर्यन जी। वैसे तो एक्सपेक्टेशन यही होती है फैंस की यार, अगर उन्होंने सीक्वल 3 अच्छा किया तो ऑफकोर्स 4 भी बहुत बढ़िया करेंगे डेफिनेटली।

चलिए आगे बढ़ते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑफ कोर्स आप हमारे साथ तो हैं ही और हमारे पास ढेर सारे मैसेज भी पहुंच रहे हैं, उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के सीएम साहब योगी आदित्यनाथ जी ने एक बार फिर से अनाउंसमेंट किए कि भैया 47 लाख लोगों को मिलेगा राशन, यूपी सरकार का एक बड़ा फैसला। एक बार फिर से अगर अभी तक आपका राशन वाशन नहीं आ रहा है तो बॉस हो सकता है इस बार आपका भी इसमें जल्दी से नाम आ जाए। चलिए फिलहाल एक और मुझे अपडेट देनी थी, एक बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव एक जहाँ पर लिया गया है, रील्स बनाओ और 3 लाख रुपए लेके जाओ। भाई साहब मैं तो जा रहा हूँ शो छोड़ के 3 लाख रुपए कमाने के लिए। ये कहाँ का फंडा है भाई, डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा। कल रात को मैंने एक वीडियो देखा इंस्टाग्राम पे एंड दिस इज वेरी बैड वीडियो, आई डोंट नो लोग क्या वायरल होने के लिए कुछ भी करते हैं यार, मतलब आई कांट बिलीव दिस कि लोग क्या क्या कर रहे हैं यार। मतलब सोशल मीडिया पर आने के लिए आप रोटी में रसगुल्ला डाल के बना रहे हो, समोसे में रसगुल्ला डाल के बना रहे हो, हमारे इमोशंस के जो तुम आलू छील रहे हो ना उसके बारे में तो मैं आपको क्या ही बताऊं यार, मतलब आटा माटी ठसकली सब कुछ मैं गड़बड़ कर देता हूं कई बारी, तो ऐसे ही ये सोशल मीडिया वाले भी गड़बड़ कर रहे हैं, इनको देख के ना मेरा दिमाग हिल जाता है यार। मतलब कर क्या रहे हैं यार ये लोग, अगर वायरल होना है आपको तो कोई अच्छी चीज करो ना यार, कोई बढ़िया चीज करो, ये क्या तुम अलूल जुलूल हरकतें करके जो है सोशल मीडिया पे जगह बनाना चाहते हो। अच्छा इसी चीज को लोग पसंद भी करते हैं यार, क्या ही कर सकते हैं भाई। अभी कल रात को जो मैंने एक वीडियो देखा सोशल मीडिया पर, उसे देख के ना मैं मतलब मेरी आंखें खुल रही है, दीदी जी खाना खाना है तो आराम से खाओ, वायरल होने के लिए खाने को इतना ज्यादा क्यों परोसना थाली। मतलब दीदी का वीडियो देख के तो मेरे आंसू निकल रहे थे भाई, आके बताता हूँ। फिलहाल एक काम करते हैं, एक छोटा सा गाना सुनते हैं अभी एंड जब लौट के आऊंगा तो मैं 3-4 अपडेट आपको बैक टू बैक दूंगा और एक हेल्थ अपडेट भी मैंने बहुत अच्छी सी निकाल के रखी है आपके लिए, डोंट फरी, लेकर आता हूँ इसे स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कर सकते हैं 9837896896 पर, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपके व्हाट्सएप मैसेजेस का 9837896896। बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक निकाल दिया है मैंने आपके रेडियो सेट पे, बहुत प्यारा गाना है, बहुत ही खूबसूरत ट्रैक, शाहिद माल्या की आवाज़।

0: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आज आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
1: थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने बहुत प्यारे मैसेज किए हैं एंड ऑफ कोर्स आज जिनका बर्थडे है उनके बारे में मैं डेफिनेटली भी बताने वाला हूँ। बहुत सारे मैसेज ऑलरेडी मेरे पास आ चुके हैं और आप लोगों ने बहुत अच्छा गेस भी किया है कि आज किसका बर्थडे है एंड सारे लोग बहुत ही बढ़िया हैं। और ये गाना अब जो है सारे राज खोल देगा, सारे पर्दे हटा देगा ये आने वाला गाना। यस जिनका बर्थडे है वो इस गाने में भी है। सुनीति चौहान, विशाल दिलदानी की आवाज, एंजॉय कीजिए इस गाने।

0: दुनिया।
1: बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक अभी आपने एंजॉय किया, देसी गर्ल का बर्थडे है ये समय, टॉकिंग अबाउट प्रियंका चोपड़ा, आज उनका बर्थडे है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। पीसी बॉलीवुड की बहुत ही खूबसूरत एंड ग्लोबल स्टार को वेरी हैप्पी बर्थडे। आज बॉलीवुड की देसी गर्ल ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा अपना बर्थडे मना रही हैं। उनका जन्म 18 जुलाई 1982 को झारखंड के जमशेदपुर में हुआ था, लेडीज एंड जेंटलमैन। एंड आपको बता दें, उन्होंने बहुत सारे खिताब अपने नाम किए हैं एंड शी इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड पॉपुलर बॉलीवुड सेलिब्रिटी। जी हाँ, भारत का नाम जो है पूरी दुनिया में रोशन कर दिया है। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड में नहीं, हॉलीवुड में भी उन्होंने जो है अपनी एक अलग पहचान बनाई है। बाजीराव मस्तानी, मैरी कॉम, फैशन और डॉन जैसी तमाम शानदार फिल्में जो है उनकी बहुत ही पॉपुलर रही हैं। दिस इज़ वेरी वेरी आइकॉनिक मूवीज़ एंड उनकी अदाकारी को खूब सराहा गया है। तो चलिए, आज प्रियंका चोपड़ा का बर्थडे, तो उनको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम की एंटायर फैमिली की ओर से, हमारे सारे लिसनर्स की ओर से वेरी हैप्पी बर्थडे प्रियंका चोपड़ा। अगर आज की तारीख में आपका भी बर्थडे होता है तो आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं पीसी के साथ, यानी प्रियंका चोपड़ा के साथ। एंड उनके गाने आज आप सुन रहे हैं उन्हीं के ऊपर पिक्चराइजेशन, बिकॉज आज उनका बर्थडे जो है, तो उनके कुछ अच्छे गाने, कोई एक गाना जो आपको लगता है पीसी का डेफिनेटली प्ले होना चाहिए शो में, तो आप मुझे डेफिनेटली बताइएगा। बट बहुत ज्यादा चैलेंजिंग मत कर दीजिएगा यार, कोई एक गाना ऐसा बताइएगा जो लगता है कि हाँ यार, ये गाना ऑफकोर्स सबको पसंद आ सकता है। आनंद, ये गाना अगर आप प्ले करोगे प्रियंका चोपड़ा का, तो डेफिनेटली सबको मजा आ जाएगा। तो कोई एक गाना डेफिनेटली आप बता सकते हो, देखते हैं किसकी चॉइस अच्छी होगी। जब तक आप व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपको कुछ अल्टीमेट इन्फॉर्मेशन बताता हूँ फटाफट से, आई मीन कुछ जरूरी जानकारियां आप तक पहुंचा दूं फटाफट से, बिकॉज दिस इज माय रिस्पांसिबिलिटी। मुझे ऐसा लगता है कि फटाफट जो है आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए जो कहीं और आपको मिले ना मिले, बट मेरे शो पे तो आपको 101% मिलनी चाहिए ब्रो। तो आइए अब जरा मैं आपको फटाफट से वो सारी इन्फॉर्मेशन दे ही देता हूं। एंड डेफिनेटली मैं वो गाना जरूर प्ले करूंगा जो गाना आपका, हमारा, हम सभी का ऑल टाइम फेवरेट है, जो हमें फ्लैश बैक में ले जाता है जब भी अंताक्षरी का नाम आता है ना बॉस, ये गाना तो हर किसी की जुबान पे होता है। एंड इस गाने ने बहुत रॉक मचाया था, उनके बर्थडे पे गाना ने मचेगा तो बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी यार। हर किसी की जुबान पे रटा हुआ गाना। ओए होए, कितने के चेहरे पे तो हंसी आ गई, नॉस्टैल्जिया वाली है, क्या बात है। अब देखो यार, बर्थडे पीसी का है तो ये गाना तो डेफिनेटली बनता है, लेकिन इस गाने से पहले मैं कुछ कड़क अपडेट आपको फटाफट बता देता हूँ, मेरी जान, बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन बताना। देखो भाई, बिहार के ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर जो है श्रवण मेला 2026 को डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए जो है थोड़ी सी और पहचान दिलाने के लिए बिहार पर्यटन विभाग ने एक अनूठी पहल की है। विभाग ने देश भर के सोशल मीडिया क्रिएटर्स एंड इन्फ्लुएंसर के लिए एक बहुत ही खूबसूरत कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया है। राष्ट्रीय व्यापी वीडियो मेकिंग प्रतियोगिता की शुरुआत की है एंड इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य है कांवड़ियों की परम्परा और श्रवण मेले

कि आध्यात्मिकता का एक छोटा सा सोशल मीडिया के माध्यम से एक बड़ा जो है मैसेज जाना चाहिए और जो बड़े लोगों तक, ये बड़े पैमाने तक जो है लोगों तक पहुंचना चाहिए। पर्यटन सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि इस प्रतियोगिता का नाम जो है श्रवण मेला 2026 होगा एंड इसमें इन्फ्लुएंसर भी एक्टिव होंगे जो बहुत अच्छे अच्छे शूट्स निकालेंगे एंड अगर वो इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको 3 लाख रुपये मिलेंगे। कैन यू इमेजिन यार, 3 लाख रुपीज़ आप जो है लेकर जा सकते हैं। बट यार ये जो कंपटीशन है थोड़ा सा टिपिकल होने वाला है बिकॉज इतने सारे कंपटीशन जो है होते रहते हैं लेकिन ये मुझे लगता है बड़ा चैलेंजिंग और बड़ा ही डिफरेंट कंपटीशन होने वाला है। ऑफकोर्स श्रवण मास शुरू होने वाला है, आपको भी पता है 30 जुलाई से सावन शुरू हो रहा है एंड इसकी कॉम्पिटिशन की तैयारी जो है बिहार में तो होगी। आपको बता दें इस प्रतियोगिता में, इस कॉन्टेस्ट में वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनका फेसबुक, इंस्टाग्राम या एक्स, ट्विटर, यूट्यूब को मिलाकर न्यूनतम फॉलोवर जिनके अगर 2500 फॉलोवर्स हैं तो डेफिनेटली वो पार्टिसिपेट नहीं, इसमें इन्होंने 25,000 की संख्या दी, या 25,000 अगर उनके फॉलोवर्स हैं तो वो डेफिनेटली जो है इसमें इनरोल कर सकते हैं एंड उनकी एज 18+ होनी चाहिए, वो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपकी 25,000 फॉलोवर है तो डेफिनेटली डू ट्राई दिस, एक अच्छा कॉम्पिटिशन है, बढ़िया। मोर डिटेल्स के लिए आप गूगल्स पे जाएं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी मेरी जान। अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं, सैटरडे की सुबह आनंद को सुन रहे हैं आप। और UPI का जो ट्रेंड है बहुत तेज़ी से बढ़ा है अपने भारत में। UPI की रफ्तार जो है जून में थोड़ी सी धीमी ज़रूर पड़ी लेकिन डिजिटल पेमेंट का दबाव अभी भी कायम है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सन 2026 जून के महीने में UPI की थोड़ी सी ट्रांजेक्शन्स कम किए गए हैं एंड बाकी मई में जो है पूरा रिकॉर्ड जो है पीछे छूट गया था। मई में भाई साहब 29.9 लाख करोड़ लोगों ने जो है UPI का इस्तेमाल किया था, वहीं जून में 28.9 लाख करोड़ लोगों ने जो है इस्तेमाल किया। यानी कि मई में डेटा थोड़ा ज़्यादा था एंड जून में थोड़ा सा कम रहा है, बट अभी जुलाई में देखते हैं कितने लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। फिर भी मैं आपको बता दूं एक नया रिकॉर्ड बना है, जून में भी जो है काफ़ी अच्छी खासी संख्या में लोग UPI ट्रांजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं एंड ये अपने आप में एक बहुत ही ग्रेट इन्फॉर्मेशन है। एंड UPI जो है अभी भारत से दुनिया तक UPI पहुंची, अब UPI जो है UAE एंड इसके अलावा और भी अलग अलग जगहों पर जो है पहुंच चुका है अब, ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। एंड फिलहाल अगर आप डिजिटल पेमेंट करते हैं, आप डिजिटल पेमेंट में बिलीव करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, स्मार्ट हो रहा है, डिजिटल हो रहा है, चीज़ें बदल रही हैं तो आपको भी बदलना चाहिए यार, है ना। आगे बढ़ते हैं, बदलते हैं एक गाने के साथ, मैं लौट कर आता हूं। बहुत ही अच्छा ट्रैक आपकी रेडियो सेट पे निकल रहा है, बहुत ही अल्टीमेट ट्रैक।

होए, बड़ा ही ऑल टाइम फेवरेट गाना है आप सभी का, मुझे पता है यार। आप सुन रहे हैं आरजी आनंद को, ये है आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। देखो यार मेरे जाने का टाइम हो रहा है, लेकिन फटाफट से ना आपके दिमाग की बत्ती गुल मीटर चालू करने के लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं। एंड ये जो है क्वेश्चन कोई गाने शाने वाला नहीं है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। आज मैं आपसे प्रियंका चोपड़ा का ही एक सवाल पूछने वाला हूँ, आज उनका ऑफकोर्स बर्थडे है। तो आप मुझे बताओ, प्रियंका चोपड़ा ने जो है एक अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता था, बहुत ही बढ़िया खिताब था ये, एंड ये खिताब प्रियंका चोपड़ा ने सन 2000 में जीता था, ये कौन सा खिताब है जो पीसी ने जीता था? यस, इसके बाद जो है वो अलग ही लेवल पे चमक गई थी। बताओ जरा मुझे, मैसेज करके बताना प्रियंका चोपड़ा ने सन 2000 में कौन सा खिताब जीता था, ये आपको मेरे को मैसेज करना है। प्रियंका चोपड़ा ने साल सन 2000 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता था, कितने लोगों को पता है जरा मुझे मैसेज करके बताना। मैं इंतजार कर रहा हूँ आपके मैसेजेस का 9837896896 पे व्हाट्सएप करिएगा मुझे। आज प्रियंका चोपड़ा का बर्थडे है इसीलिए उन्हीं से जुड़ा एक सवाल पूछ रहा हूँ। उनका ये फिल्मी क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है कि कहीं ना कहीं इसका जवाब डेफिनेटली आपको पता होगा। नहीं पता है तो फिर दिमाग लगाना पड़ेगा बॉस, तभी आपको सही जवाब पता चलेगा। तो मैसेज करके बताओ मुझे फटाफट से 9837896896 पे। I want to ask you, this is very simple question. Priyanka Chopra ने साल सन 2000 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता था? WhatsApp करो मुझे फटाफट से, I am waiting for your messages.

0: सैटरडे मॉर्निंग है, वीकेंड है, वाइब है, अच्छे गाने हैं और फिलहाल मैं बताने आ गया हूँ भैया आपको टाइम घड़ी घड़ी वक्त बता रही है, सुबह के 10:01 हो गए हैं।
1: वो आ गया, देखो देखो वो आ गया।
2: अरे आनंद इज बैक।
3: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन विलिस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
4: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
5: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
4: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
5: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
4: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
3: मुरादाबाद
4: से संपर्क कीजिए।
5: नियम और शर्तें लागू।
6: आवश्यक सूचना, 400 KB बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास UP कॉरपोरेशन की मझोला 400 KB उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
7: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
8: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग, बिंदास।

देखो आज प्रियंका चोपड़ा का बर्थडे है। हाय गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। 10:04 हो गए हैं, 18 जुलाई है आज, सैटरडे की सुबह है। मैंने पूछा है आपसे कि प्रियंका चोपड़ा ने एक बहुत ही अच्छा इंटरनेशनल खिताब जो है अपने नाम किया था सन 2000 में, वो जो खिताब उन्होंने जीता था कौन सा खिताब जीता था, ये सन 2000 में अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता था कौन सा वाला खिताब पीसी ने अपने नाम किया था सन 2000 में, यही आपको मुझे बताना है। अगर आप पीसी के सबसे बड़े फैन तो मैसेज करके बताओ जरा मुझे।

क्या बात है भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। आप देखिए, ऑनलाइन सब्जियां आती थी, ऑनलाइन जो है आपकी फेवरेट चीज़ें आ जाती थी, खाने पीने की चीज़ें आ गई, कपड़े शपड़े सब आ जाते, लेकिन अब सिलेंडर भी आपके घर ऑनलाइन आ जाएगा। ये जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा यार ये तो बड़ी कमाल की चीज़।

0: स्पेशली हम जैसे बाहर रहने वालों के लिए तो अच्छी बात है यार। जब भी जैसे ही हमारे सिलेंडर बोलते हैं फिर हमें लगता है यार फिर से जाना पड़ेगा, लेकिन अब इंटरनेट ने ये आसान कर दिया यार, तो हमारे लिए तो देखो एक अच्छी चीज हो गई है, तो एक बार ताली तो होनी चाहिए यार। चलो बहुत ही बढ़िया है, मतलब कुछ किसी ने तो कुछ तो सोचा हम जैसे लोगों के लिए भी। वेल, आगे बढ़ते हुए आपको कहना चाहता हूँ बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन सिलेंडर मंगवा रहे हैं तो भैया देखिए सबसे पहले ज़रूरी चीज़ ये है कि उसकी वो चेक कर लीजिएगा वो पूरी तरीके से सेफ है या नहीं, मतलब वो जो पैक फूड होता है ना वो चीज़ें आपको चेक करनी है, सील बंद पूरी तरीके से है या नहीं। भाई पता चल रहा है 10 किलो की जगह आपको 8 किलो गैस मिल रही है, ऐसा भी हो सकता है भाई, तो इसलिए पूरी अच्छे से जो है चेकिंग चुकिंग करके ही आप ऑनलाइन अगर मंगा रहे हैं सिलेंडर तो भैया पहली बात तो 10 किलो वाले सिलेंडर आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो अगर आप ये मंगवा भी रहे हैं तो कोशिश करें कि उसकी पूरी डिटेल्स चेक करें जब आपके घर डिलीवरी बॉय लेकर आए, उसके बाद ही आप उसको जो है यूज़ करें। आगे बढ़ते हैं, बाकी हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि हमने जो आपसे सवाल पूछा था उस पर ढेर सारे लोगों ने अपने अपने आंसर्स दिए हैं, आप सभी के लिए दिल से थैंक यू सो मच, और सब लोगों ने एक से बढ़कर एक मैसेजेस किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड बाकी मैं बस आपसे इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि देखिए अगर आप FM मुरादाबाद सुनते हैं तो आपको तमाम जानकारियाँ मिलती हैं, आप लोगों ने ढेर सारे मैसेज किए हैं, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं, और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। और एक नई रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया है कि देश में 60% लोग जो हैं अब AI का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी चीज़ों को पूरा करने के लिए, चाहे वो छोटे छोटे काम हो, कोई इन्फॉर्मेशन हो, कोई भी रिसर्च करनी हो, इन सब के लिए लोग जो है आजकल 60% लोग इंडियंस की मैं बात कर रहा हूँ, एक डेटा निकल कर आया है जिसमें 60% लोग जो है AI ChatGPT का इस्तेमाल करते हैं हर चीज़ को पूछने के लिए, मतलब अगर उनको सब्जी लेने भी जाना है तो वो ChatGPT से पूछते हैं जाऊं या नहीं जाऊं, बताओ यार, मतलब पर्सनली असिस्टेंट हायर कर लिया आप लोगों ने, मतलब बेचारे को उसको फ्री को इतना मत दौड़ाओ कि वो भी कभी कभी कंफ्यूज आ जाए कि भैया ये सब्जी लेने के लिए मेरे से क्यों पूछ रहा है भाई, ये तेरी पर्सनल चॉइस है, मैं क्या कर सकता हूं। ऐसे भाई यार सवाल पूछते रहते हैं लोग। एनीवेज चलो आगे बढ़ते हैं, आप लोगों ने सच में बहुत प्यारे मैसेज किए हैं, थैंक यू सो मच इतने प्यारे मैसेज के लिए। 10:10 हो गए हैं और अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से, बिकॉज जाऊँगा नहीं तो फिर आऊँगा कैसे, है ना, तो जाना भी पड़ेगा बॉस। एंड आप लोगों ने सच में बहुत अच्छे जवाब दिए हैं, मैंने आपसे बड़ा सिंपल सवाल पूछा था, मैंने आपको कहा था आप मुझे बताओ प्रियंका चोपड़ा ने साल 2000 में कौन सा वाला अंतर्राष्ट्रीय खिताब अपने नाम किया था, और आप लोगों ने सच में बहुत अच्छे मैसेज किए हैं, बहुत बहुत थैंक यू, आपने बिल्कुल सही जवाब जो है वो पहुँचा दिए हैं, और इसके लिए आप सभी का दिल से थैंक यू करना चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वाकई में बहुत अच्छे जवाब दिए हैं। आप सभी के लिए एक गाना छोड़ के जा रहा हूँ, और आज सबसे पहले सही जवाब किसने दिया बता दें आपको, बता दें क्या,
1: मैं डालू लाल के बंगड़ा तू भी गिद्दा वाले, चल ऐसा रंग जमा दे हम भी भरे सभी मत वाले,
0: ओए होए
2: मन कहे कि मैं ले आऊं चांदर तारे सारे, इन हाथों पर मैं चांद रखूं इस मांग।
0: नीतू जी मेरे साथ जुड़ी हैं, लिखती हैं हेलो आनंद जी, गुड मॉर्निंग, सच में मौसम बहुत ही ऑसम हो रहा है, बारिश हो रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, ऐसे में इतने प्यारे प्यारे गाने आप ले कर रहे हो, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, मजा आ रहा है आपको सुन के, वेरी गुड मॉर्निंग आनंद, थैंक यू सो मच। एंड हमारे पास मोहसिन जी ने सबसे पहले सही जवाब दिया था, प्रियंका चोपड़ा जी ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था लंदन में, एंड सबसे पहले 2000 में उनका पहला खिताब जो था वो यही था, आनंद जी क्या बात है मोहसिन जी, धन्यवाद। एंड इसके अलावा हमारे पास देखो गौरव टेलर जी नवीन नगर से सही जवाब दे रहे थे, बिल्कुल जस्ट इनके बाद उनका ही सही जवाब पहुंच गया मेरे पास, बहुत बहुत धन्यवाद साहब अपना ये सही जवाब दर्ज कराने के लिए, और अभी आगे बढ़ते हैं, आप सभी के लिए वंडरफुल तालियां और ये एक अच्छा सा गाना। गौरव टेलर जी नवीन नगर से जुड़े हैं, लिखते हैं आनंद भाई जय श्री राम, गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल हैं आपके, इनको हमारा शो अच्छा लग रहा है, इनको हमारी इन्फॉर्मेशन भी पसंद आ रही है, एंड मौसम भी सुहाना हो रहा है ये कह रहे हैं, और लिखते हैं आनंद भाई इन्होंने जो मैंने सवाल पूछा था उसका जवाब इन्होंने दिया है, और साथ में शुभकामनाएं देते हैं आज के दिन। मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी सैयद शारिक अली जी लिखते हैं आनंद जी वेरी गुड मॉर्निंग, एंड उन्होंने भी एकदम सही जवाब दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। लक्ष्मी जी सूर्यनगर से सही जवाब दे रही हैं, टीना कुंदनपुर से सही जवाब दे रही थी, एंड इसके अलावा हमारे पास सही जवाब कहाँ से पहुंचा था, ये मुरादाबाद से रणवीर जेठालाल जी जुड़े थे, इन्होंने एकदम सही जवाब दिया है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज की सुबह। एक और लक्ष्मी जी जुड़ी है हमारे साथ माता मंदिर से, डॉली हमारे साथ गागन से जुड़ी है। हेलो डॉली जी, गुड मॉर्निंग। डॉली जी लिखते हैं, आनंद जी प्रियंका चोपड़ा का बर्थडे है आज, मैं गागन मुरादाबाद से मैसेज कर रही हूँ। और आनंद सर, प्रियंका चोपड़ा ने सन 2000 में जो है मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया था। बिल्कुल डॉली, थैंक यू सो मच। येलो येलो। एंड इसके अलावा भूपि शर्मा नगर पंचायत फागवाड़ा से जुड़े हैं। एंड ये मैसेज हमारे पास कहाँ से पहुँच रहा है, ये वाला मैसेज अलका वर्मा जी का आ गया है। अलका वर्मा जी तो हमेशा अपनी प्यारी सी मधुर मधुर आवाज हम तक पहुँचाती हैं, जरा सुनते हैं।
3: राधे राधे। राधे राधे। आनंद जी, आज देसी गर्ल यानी कि बरेली गर्ल यानी कि प्रियंका चोपड़ा जी का बर्थडे है, धन्यवाद।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही सही जवाब दिया है आपने मैडम जी।
3: राधे राधे आनंद
0: जी, आपको भी राधे राधे।
3: आनंद जी, 2000 में प्रियंका चोपड़ा ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था।
0: अरे वाह, आप कौन सा खिताब जीतेंगे, आप ये बताइए जरा। हाँ, सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर लेती है। ये हमारे साथ डीके रोड़ा चंदन नगर से जुड़ गए हैं। हेलो आनंद भाई, बहुत ही सुंदर आवाज है आपकी, मजा आ जाता है आपका शो सुनकर। ये मैसेज हमारे पास आ रहा है अमित वर्मा हिमगिरी कॉलोनी से, लिखते हैं गाने बहुत ही अमेजिंग प्ले करते हो आप, मजा आता है आपको सुनकर, बहुत शुभकामनाएं। प्रियंका चोपड़ा का बर्थडे है आज। आनंद भाई, आज तीजा सैटरडे है आज जी, मैं भी यही कह रहा हूँ पाजी, आज तीजा सैटरडे है, चौथा नहीं है, चौथा 25 को है। बहुत मजे लेने के लिए कह रहा था। हाय गुड मॉर्निंग, अलीशा हमारे साथ जुड़ गई है, अलीशा ने सही जवाब दिया है। एंड नॉनेश कुमार जी जुड़े हैं मेरे साथ, लिखते हैं आनंद जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, मैं लाल दुपट्टा गाना सुनना चाहता था, आपने पहली प्ले कर दिया, मजा आ गया। हमारे साथ जुड़े हैं जोन रोजी पलवली सहारनपुर से, लिखते हैं हेलो आनंद जी गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है। लिखते हैं मन की सच्चाई और अच्छाई दिखाई नहीं जाती, ये तो भीनी भीनी खुशबू है जो हवा में खुद ही फैल जाती है। वाह क्या बात है गाइज, मैं थक गया हूँ, मेरे जुबान में दर्द हो रहा है, इतने सारे मैसेज आ रहे हैं। हेलो राजा कश्यप जी गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है। ये बेबी राधिका जुड़ रही है, गुड मॉर्निंग आनंद जी, प्रियंका चोपड़ा का बर्थडे है। आलोक मिलन बिहार से जुड़े हैं। रिजवान खान साहब जुड़ चुके हैं सही जवाब के साथ। एंड ये जेहाना रानी नांगल से, ये कौन जुड़ी है, ललिता कश्यप नवीन नगर से जुड़ गई हैं। गुड मॉर्निंग, मौसम बहुत प्यारा है, आलू के पराठे बनाए हैं तो आप खाती रहिए। एंड सही जवाब भी दे रही हैं। चमन लाल साहब जुड़ गए हैं, लक्ष्मी कश्यप एंड गीता कश्यप, ओ माय गॉड। ये शबीना खान रहमत नगर से जुड़ गई हैं। गाइस मैं क्या करूं, मैसेज तो पढ़ने पड़ेंगे। समझा दे समझा दे। हेलो आनंद भाई, जय श्री राम, बबलू सैनी मुंबई महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच जिन लोगों ने जवाब दिए भाई, अब मैं सच में दिल से बता रहा हूँ, थक गया हूँ यार। अब जाने का टाइम ही आया, बाय बाय बाय बाय, अब मंडे को है मिलते, बाय बाय। ये कुछ टेक्स्ट मैसेज आती है, ये भी पढ़ लेता हूँ यार। हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल है। हेलो सर गुड मॉर्निंग। हाय गुड मॉर्निंग, आपको भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हेलो आनंद जी, कैसे हालचाल है, आज प्रियंका चोपड़ा का जन्मदिन है, ओके पार्टी दे दो आप मुझे। अमरोहा से हमारे साथ जुड़ी है, हेलो नमस्ते नेहा जी, मुझे पहुँचाती हैं, गुड मॉर्निंग आनंद, कैसे हैं आप, गुड मॉर्निंग नेहा जी। ये लिखती हैं बारिश में नहा रहे हैं, अच्छी बात है। चलिए गाइस, अब हम मिलेंगे आपको मंडे की सुबह, अपना रखिए ढेर सारा ख्याल, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। आज की तारीख में आपका भी बर्थडे होता है तो अपना बर्थडे आप इसी के साथ सेलिब्रेट करते हो, यानी प्रियंका चोपड़ा के। आप मस्त रहें, झकास रहें और ऐसे ही एंजॉय करते रहें, बहुत बढ़िया गाने, बहुत बढ़िया शोज, ऐसे ही सुनते रहें एफएम मुरादाबाद 89.6। हैव अ ब्यूटीफुल वीकेंड एंड हैव अ वंडरफुल डे, बाय बाय।

और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
5: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

हेलो जी हेलो, गुड वाली मॉर्निंग है मॉर्निंग मसाला शो में आरजे रीना के साथ अब कनेक्ट हो गए श्रोताओं। और समय की बात करूं तो 10:28 हो चुके हैं और आज की तारीख 18 जुलाई अपने आप में बहुत स्पेशल, बहुत खास। और आज दिन है सैटरडे यानी कि शनिवार। श्रोताओ आप सभी को सत श्री अकाल, गज वाली मॉर्निंग है, बहुत की सुबह हो चुकी है और बहुत की सुबह भी नहीं हुई है क्योंकि उनका मानना ये है कि आज भी छुट्टी है और कल भी संडे है तो बस आराम कर लेते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ जनाब उठ जाइए, समय देखिए यानी कि रेडियो की घड़ी में समय बहुत आगे निकल चुका है। और कहते हैं ना जब आप समय पर उठते हैं तो आपकी हर काम अपने आप पूरा हो जाता है, बस उसके लिए थोड़ा सा हमें मेहनत करना पड़ता है। शनिवार को ये सुनहरी सुबह का यही कहती है, आज घड़ी को नहीं अपने दिल को थोड़ा वक्त दीजिए, पूरे हफ्ते काम किया है तो आज थोड़ा मुस्कुराइए, थोड़ा गुनगुनाइए और थोड़ा खुद के साथ वक्त बिताइए क्योंकि वीकेंड की शुरुआत होनी चाहिए अच्छे मूड के साथ। जी श्रोताओं, हम अक्सर पूरे हफ्ते काम करते रहते हैं लेकिन जब हमें 2 दिन की छुट्टी मिलती है तो उसमें लगता है कि बड़ा सुकून है, कोई कोई एंजॉय करते हैं और कोई कोई तो भैया उनका ये मानना है कि कल को हमें ऑफिस जाके बॉस की डांट ना सुनना पड़े, इसीलिए वो आज थोड़ा काम को जो पेंडिंग रहता है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। यानी कि उनका कहना होता है कि कल पर क्यों छोड़ना, आज घर बैठ के आराम से कर लेते हैं, ना कोई शोर शराबा, कुछ नहीं, बिल्कुल शांत माहौल। और शांत माहौल में जब आप काम करते हैं तो आपका हर काम ऑल गुड होता है। सो श्रोताओं, आप सभी के साथ कनेक्ट हो गए हैं 2 घंटे के लिए। आपके जो प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं बड़े शानदार होते हैं, तो आज एक टॉपिक लेकर मैं आई हूँ जिस पर आज हम बात करेंगे। साथ ही साथ आप हमें मैसेज करिए, नंबर है 9837896896। रेडियो की घड़ी में समय हो चुका है यानी कि 10:31। चलिए फिलहाल एक गाना सुनते हैं और लौट कर आते हैं, आप सभी के मैसेज शामिल करेंगे जी।

जी हेलो, दिस साइड आर्जरीना और रेडियो की घड़ी में भैया समय हो चुका है 10:00 यानी कि 37 मिनट। मॉर्निंग मसाला शो में आप आर्जरीना के साथ कनेक्ट है श्रोताओं, और आप सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। और देखिए, आप सभी के बीच यानी कि काम की बातों के साथ साथ बहुत सी भाई अपडेट ऐसे लेकर आ जाते हैं कि ये हमारे जिंदगी से रिलेटेड, और हमें इसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। यानी कि अब हमारे यानी कि इंडिया में पहला हाइड्रोजन ट्रेन चल चुका है, जो कि उसमें बिजली की जरूरत नहीं है, ना ही उसमें डीजल की जरूरत है, बस वाटर पेपर यानी कि भाप से वो चलता है, जिसमें किसी भी चीज़ का हमें किसी भी तरीके से पॉल्यूशन से आप बच सकती है, वातावरण शुद्ध रहेगा। यानी कि अब इंडिया में भी शुरू हो चुका है, जो कि पहले जापान में और जर्मनी में होता था, लेकिन अब और साथ ही साथ दिल्ली में भी भाप से चलने वाली जो बसें हैं वो भी चलाई गई है। तो देखिए, जैसे जैसे ये हमारे जो कहते हैं ना टेक्निकल बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे डेवलप होता जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में जो ये पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसको रोकने के लिए बनाया जा रहा है। तो श्रोताओं, आज हम एक और टॉपिक पर बात करेंगे, यानी कि EKCC इलेक्ट्रॉनिक किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। लेकिन उससे पहले जो आप सभी के प्यारे मैसेज आए हैं उनको भी शामिल करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं यानी कि हमारे पास किनका मैसेज आता है आज की सुबह। जनकपुर सहारनपुर से हमारे साथ कनेक्ट होते हैं जॉन रोजेस परवली जी, और ये गाना सुनना चाहते हैं, ये शाम मस्तानी मूवी का नाम है कटी पतंग, और सिंगर का नाम यानी कि वॉइस में सुनना चाहते हैं किशोर कुमार जी की आवाज़ में। बहुत ही खूबसूरत ये फिल्म है कटी पतंग, यानी कि मूवी 1970 में रिलीज़ हुई थी। रीना जी, जय श्री राम। गौरव टेलर नवीन नगर मुरादाबाद से कनेक्ट होते हैं, क्या हाल है आपके? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम बहुत ही बिंदास पेश कर रही हो आप, जानकारियां भी बहुत अच्छी लेकर आती हो। ओ माय गॉड, मुझे सुनना बहुत पसंद है, थैंक यू सो मच। और आज ये गाना सुनना चाहते हैं, बिल्कुल जी, हम आपको गाना सुनवाएंगे। हर किसी के दिल में एक लड़की का ख्याल रहता है, क्या बात, मिलते सुनवाएंगे। और ये कुछ लाइनें भी लिखते हैं, खुशी के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ता है ऐसा हम समझते हैं, लेकिन खुशी के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है ऐसा अनुभव कहता है, क्या बात है जी। बहुत ही शानदार आपने लाइनें लिखी हैं। और समय की बात करो श्रोताओं, तो 10:40 हो चुके हैं, बहुत से अपने काम पर निकल चुके हैं, और बहुत से ऐसे हैं कि बस आज फैमिली वालों के साथ हम एंजॉय करेंगे। और मुझे लगता है कि इस भागदौड़ की दुनिया में ना अपने फैमिली वालों को समय देना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कल को कोई रिग्रेट ना रहे कि हमने फैमिली वालों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करा है।

जिंदगी दे नाल। अगला मैसेज आता है हमारे पास बबली अनजान, गीता कश्यप, भाभी ललिता कश्यप, आप हमारे नाम पूरे पढ़िए जी। अरे जी, हमने पढ़ लिया आपका पूरा नाम। देखिए, आप सब इतना नाम मेंशन कर देती हैं कि और हमारे पास मैसेज ऑलरेडी बहुत सारे होते हैं और हमें उनको भी शामिल करना होता है। अब एक मैसेज छूट जाए तो फिर मैसेज आता है, मैडम हमारा मैसेज नहीं शामिल हुआ। तो कृपया करके एक दो लाइन ही शामिल करा करिए। जरूरी नहीं है कि आप पूरी फैमिली के नाम मेंशन करें, बस एक दो नाम बहुत काफी होता है। और ये बहुत ही प्यारा गाना सुनना चाहते हैं, मुझे छोड़ के मत जाइए। बिल्कुल जी, ये हम आपको गाना सुनवाएंगे। चलिए फिलहाल हम गाना सुनते हैं। गौरव टेलर जी की रिक्वेस्ट पर आई, हर किसी के दिल में एक लड़की का ख्याल रहता है।

0: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IIM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
1: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
1: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर निकट सर्किट हाउस दिल्ली रोड मुरादाबाद
4: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित

0: सबका भरोसा डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: यू आर कॉलिंग।
1: हेलो जी, गुड वाली मॉर्निंग है आज जरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी।

हेलो जी, हेलो मॉर्निंग में सलामी, गुड वाली मॉर्निंग है जी। आरजू रीना के साथ अब कनेक्ट है। समय की बात करूँ तो 10:53 हो चुके श्रोताओं, और एक बहुत ही प्यारा संदेश जो कि हमारे किसान भाइयों के लिए है। अक्सर सोचते हैं कि भैया आगे कैसे क्या किया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा। कभी कभी पैसे नहीं होते हैं तो हम सोचते हैं कि यार किसी से ले लेते हैं, उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे। लेकिन अब आपको इसके लिए और भी आसान रास्ता आपको मिल चुका है जी। यानी कभी भी किसान को फसल के लिए कर्ज लेने, बैंक के कई चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब समय बदल रहा है। अब आया है EKCC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक किसान क्रेडिट कार्ड, जो किसानों को डिजिटल तरीके से किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने और प्रोसेस को तेजी से बनाने में मदद करता है। इसके कई जगहों पर आवेदन ऑनलाइन आगे बढ़ाया जा सकता है और समय की बचत होगी। तो अगर आपके घर में कोई भी किसान है तो उन्हें EKCC की जानकारी ज़रूर दीजिए, क्योंकि जानकारी की सबसे बड़ी ताकत है और आपको बार बार बैंक की चक्कर लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक किसान क्रेडिट कार्ड बनवा लिया तो। जो भी आप करना चाहेंगे आसानी से कर सकते हैं। बैंक से आप लोन ले सकते हैं, जितने समय के लिए आप लेंगे उसके बाद आप आसानी से उसको चुकता कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही फैंटास्टिक वाला है। तो अगर आप लोन लेना चाहें अपने मुरादाबाद के बैंक में, तो किसान इलेक्ट्रॉनिक किसान क्रेडिट कार्ड बनवाइए और इसका लाभ उठाइए जी। चलिए फिलहाल मैसेज की तरफ बढ़ते हैं, किनका हमारे पास मैसेज आता है, क्योंकि आप सभी के जो मैसेज होते हैं ना बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खास होते हैं श्रोताओं। और यूं ही आरजू रीना के साथ आप कनेक्ट रहिए। चलिए फिलहाल देखते हैं किनका मैसेज आता है हमारे पास। अमरोहा से नेहा कनेक्ट होती है। नमस्ते, नमस्ते जी, और ये गाना सुनना चाहती है, पर्दा है पर्दा, आय हाय क्या बात है जी। ये ऋषि कपूर जी का मूवी है ये, और उसी मूवी से ये गाना सुनना चाहती है। डेफिनेटली आपको भी गाना सुनना रामपुर से सबनम बी, राहत अली, नेहा, लाइबा, काजमी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं रीना मैम? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताएं।

बहुत प्यारा गाना सुनना चाहती हैं, करते हैं हम इससे मोहब्बत, क्या बात है जी। और ये बहुत प्यारी लाइनें भी लिखती हैं, जान से ज्यादा चाहते हैं, जान से ज्यादा चाहते हैं आपको, हर खुशी से ज्यादा मांगते हैं आपको, अगर कोई है। प्यार की हद होती है तो उसे हद से भी ज्यादा हम चाहते हैं, क्या बात है जी। बहुत ही शानदार आपने लाइन लिखी है। चलिए जी अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। मुरादाबाद यूपी से रणवीर सिंह हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। जेठालाल जी गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग सर। ये सुबह जितनी खूबसूरत है, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, उतनी खूबसूरत आपका और रेडियो एफएम मुरादाबाद सुनने वालों को हर पल हो, का हर पल हो। और ये गाना सुनना चाहते हैं, दिल में आग लगाए सावन का महीना, क्या बात है जी। बहुत ही शानदार गाना है। और सावन बस 30 तारीख, कुछ दिन और उसके बाद सावन की जो शुरुआत है, आई है जब सावन की शुरुआत होती है ना श्रोताओं, तो अभी से ही पता लग गया है कि यानी कि धीमी धीमी हल्की हल्की बारिश हो जाती है और कभी कभी इतनी गर्मी हो जाती है भैया कि बस मन ही नहीं करता कुछ करने का, है ना। तो चलिए फिलहाल हम गाना एंजॉय करते हैं और उसके बाद लौट कर आते हैं श्रोताओं। फिलहाल आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि आपने किथे नहीं जाना जी, आज रीना के साथ कनेक्ट रहना है। ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

क्या बात है जी, सदाबहार आप गाने एंजॉय कर रहे हैं मोहम्मद रफी जी की आवाज में, बहुत ही खूबसूरत गुड वाली मॉर्निंग है जी। दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है, यानी कि 11:07 हो चुके श्रोताओं रेडियो की घड़ी में। गुड वाली मॉर्निंग है आप सभी को, और आज का दिन हमारे लिए बेहद खास है। वो बेहद खास इसलिए है कि आज देसी गर्ल की बर्थडे है जी। बिल्कुल, आज का दिन है उस देसी गर्ल के नाम जिसने मिस वर्ल्ड से लेकर हॉरर तक अपनी अलग पहचान बनाई। जी हाँ, आज उन्हीं का जन्म है, प्रियंका चोपड़ा।

और इन्होंने अपने जिंदगी में ना स्ट्रगल बहुत की, क्योंकि देखिए जब भी आप कोई अच्छे काम की शुरुआत करते हैं ना तो एकदम आपको सफलता नहीं मिलती, उसके लिए आपको मेहनत बहुत करना पड़ता है। कभी दिल हार जाता है, टूट जाता है, तो कभी मन से एक आवाज आती है, नहीं यार मत कर कुछ भी, छोड़ दे ये सब। वैसे ही इनके मन में भी ख्याल आया, लेकिन इन्होंने सोचा कि जो होएगा देखा जाएगा, पीछे क्यों मुड़कर देखना, जब एक बार हमने बॉलीवुड में कदम रख दी है तो क्यों ही पीछे हटना है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इन्होंने सबसे पहले फिल्म यानी कि तमिल में की थी, तमिल फिल्म थी इनकी, यानी कि 2002 में आई इनकी फिल्म तमिल। उसके बाद इन्होंने बॉलीवुड में पहली इनकी फिल्म रही द हीरो लव स्टोरी 2003 में, लेकिन इन्हें फिर भी अच्छी पहचान नहीं मिली। फिर वो दौर आया जब 2003 में एक और इनकी फिल्म आई अंदाज। इस फिल्म के बाद इनको बॉलीवुड में कैसी पहचान मिली, तब इन्होंने सोचा कि नहीं अब पीछे नहीं मुड़ना है, चाहे अब कुछ हो जाए, जो हो चुका है उसको पीछे छोड़ देते, कभी पीछे के बारे में तो सोचना ही नहीं है। और उसके बाद ये अपना काम शिद्दत से करती चली गई। और आज इसी देसी गर्ल का बर्थडे है, तो हमारी पूरी रेडियो की टीम की तरफ से, आप सभी की तरफ से हैप्पी वाला बर्थडे जी। और बहुतों की ये फेवरेट एक्टर हैं, अगर आपके भी फेवरेट एक्टर हैं तो आज आपको इनके गाने बताने हैं, इन्हीं के मूवी से आपको गाने बताने हैं जो आपको बेहद बेहद पसंद है। एक गाना तो इनका ऐसा है भैया, ऑल टाइम, मतलब मोस्टली वो गाना सुना ही सुना जाता है, रिक्वेस्ट भी बहुत आती है उस गाने की। तो अगर आप चाहते भैया इनका फेवरेट वाला इनके मूवी से गाना सुनना, तो बिल्कुल सुन सकते हैं। नंबर है 9837896896। और आज जिनका जिनका भी बर्थडे है, तो हमारी रेडियो की टीम की तरफ से आपको हैप्पी वाला बर्थडे।

कश्मीर से मिराज उद्दीन जी कनेक्ट होते हैं और ये गाना सुनना चाहते हैं, एक मुलाकात जरूरी है सनम, क्या बात। गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग जी।

अगले मैसेज की बात करूं तो हेलो गुड मॉर्निंग रीना जी, वेरी गुड मॉर्निंग जी। जिला मुरादाबाद ग्राम बेजना से कनेक्ट होते हैं रिजवान खान। उमेश खान जी कनेक्ट होते हैं और इनके साथ इनको और भी दोस्त का नाम है दीपक, और ये गाना सुनना चाहते हैं, क्या चांदी जैसा तन है क्या बात है। लोहा मूवी से ये गाना सुनना चाहते हैं। डेफिनेटली हम आप

सिसवा दोरहा से हमारे साथ कनेक्ट होते हैं नई मूल अकरम जी, गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग जी, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं? और साथ में इनके हैं आफिस भाई, शाकिर भाई और नूर भाई, के साथ ये गाना सुनना चाहते हैं, टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगाए। सोचिए गाइस, कभी आपके फोन में एकदम नोटिफिकेशन आ जाए कि 40,000 आपके अकाउंट में आ गए हैं, तो आप क्या करेंगे? मतलब खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहेगा, पागल हो जाएंगे, वो अलग ही बात है। चलिए जी, फिलहाल गाना सुनते हैं, बहुत ही शानदार वाला गाना, दिल में आग लगाया सावन वाला गाना है, और इसके बाद लौट कर आते हैं। मैसेज कर सकते हैं जी, नंबर है 9823789686। फिलहाल इस देसी गर्ल एक गाना बहुत ही खूबसूरत है, इसको भी सुनते हैं, उसके बाद कनेक्ट होते हैं श्रोताओं से। लिखेंगे

सावन का लगाए ओ माय गॉड, बहुत ही शानदार आपने किशोर कुमार की आवाज में। गुड वाली मॉर्निंग है जी, मॉर्निंग मसाला शो में समय की बात करूं तो 11:21 हो चुके श्रोताओं, और आज की तारीख यानी कि 18 जुलाई अपने आप में बहुत और बेहद खास है, और ये दिन हमारे लिए खास इसलिए भी है क्योंकि आज मनाया जाता है नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय डे, यानी कि हर साल 18 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। यह दिवस आखिरकार खास क्यों है? लोगों को समाज की भलाई के लिए प्रेरित करने के लिए, शांति, समानता, मानव अधिकार और न्याय का संदेश फैलाने के लिए, यह याद दिलाने के लिए कि हर व्यक्ति अपने छोटे छोटे अच्छे कामों से दुनिया में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, और हर किसी के अंदर टैलेंट होता है जी, बस अपने आप के अंदर झांकना, पहचानना होता है। इस दिन लोगों से यानी कि 67 मिनट समाज सेवा करने की अपील की जाती है। यह 67 मिनट से यानी कि नेल्सन मंडेला की 67 वर्ष तक मानव अधिकार की समानता के लिए उन्होंने, जब ये

बहुत प्यारा है, थैंक यू सो मच जी। ललिता कश्यप जी कनेक्ट होती है नवीन नगर मुरादाबाद से, और आज मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। बिल्कुल जी, आलू के पराठे बना रहे हैं, क्या बात है जी, पैक करवा के भिजवा दीजिएगा। आज प्रियंका चोपड़ा जी का बर्थडे है, हां जी, हैप्पी वाला बर्थडे। चलिए उनकी तरफ से मैं आपको बोल देती हूँ थैंक यू, और ये गाना सुनना चाहती है उन्हीं का, रब करे तुझको भी प्यार हो जाए। वाकई गाना बहुत ही शानदार है, बहुत ही खूबसूरत है।

अगले मैसेज की बात करूं तो हेलो गुड मॉर्निंग मैम, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी। अलीशा कनेक्ट होती है मुरादाबाद से और ये गाना सुनना चाहती है, तेरा मेरा प्यार, तेरा मेरा प्यार है अमर। बहुत खूबसूरत गाना है ये।

0: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
1: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
0: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
1: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
0: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
2: मुरादाबाद
0: से संपर्क कीजिए।
1: नियम और शर्तें लागू।
3: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।

जी गुड वाली मॉर्निंग है। मॉर्निंग मसाला शो में आज जरीना के साथ कनेक्ट है। श्रोताओं, समय की बात करूं तो 11:36 हो चुके हैं और भाई आज जरीना के साथ आप कनेक्ट कीजिए। और ये कहा जा रहा है गेहूं यानी कि हर महीने अब 8% महंगा हो सकती है। श्रोताओं देखिए, गेहूं यानी कि गेहूं के बिना जिंदगी चलनी अधूरी है ना। जब तक गेहूं ना हो घर में आटा कैसे आएगा, और आटा नहीं आएगा तो रोटियां कैसी बनेंगी। अब वही हर महीने 8% बढ़ने की संभावना बताई जा रही है। बाकी महंगा होए, हर चीज़ तो महंगी हो रही है जी, कुछ भी देख लो। और फिलहाल मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी, जो भी पैकेट के जो सामान हैं वो थोड़ा सोच समझ कर देख कर आपने खर्च करना है, क्योंकि अगर आप देख कर सामान खरीदते हैं तो बहुत अच्छा रहते हैं, अदरवाइज़ मिलावटें अब हर किसी चीज़ में है। खासकर जो पैकेट बंद वाली चीज़ है, जो जैसे दूध वगैरह हो गया, इन चीज़ों का तो आपने खास कर ध्यान रखना है। और मैसेज

जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी। ये हमारे साथ टीना जी कनेक्ट होती हैं। पायल ने मचाया शोर, ये गाना सुनना चाहती हैं। गुजरात से मधु भाई चौहान जी हमारे साथ कनेक्ट होते हैं।

गाना सुनना चाहते हैं जिंदगी की तलाश में। हेलो गुड मॉर्निंग रीना मैम, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं। अनम हरथले से कनेक्ट होते हैं हमारे साथ और ये गाना सुनना चाहते हैं, सीने से लगा लूं तुझे। क्या बात है जी। रानी नांगल से रिहाना कनेक्ट होती है, गुड मॉर्निंग कैसे हैं मैम? बहुत अच्छे हैं, आप बताइए कैसे हैं और ये गाना सुनना चाहती हैं। हद कर दिया आपने, हद कर दिया आपने। क्या बात है जी।

विक्की सागर जी का मैसेज आता है, क्या बात है जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर। और ये गाना सुनना चाहते हैं, आज मौसम बड़ा बेईमान है, आज मौसम। चलिए जी, मौसम से पहले हम सुनते हैं टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगा कर आते हैं जी, ठीक है। मेरी आर्जुरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।

सनम क्या बात है, सिर्फ तुम मूवी से आप ये गाना एंजॉय कर रहे हैं। एक मुलाकात जरूरी है सनम। बिल्कुल जी, एक मुलाकात तो वाकई में जरूरी है, लेकिन एक झलक और बारिश के दिख जाए तो जो ये उमस वाली गर्मी है ना, उससे थोड़ी सी हमें राहत मिल जाएगी। गज वाली मॉर्निंग है जी। मॉर्निंग में सलाह शोमिया आरजे रीना के साथ आप कनेक्ट हैं। समय की बात करूं तो 11:46 हो चुके हैं श्रोताओं। और देखिए, अगर आप मैच देखने के दीवाने हैं तो कल है 19 तारीख और दिन है संडे का, जिसमें आपको ऑफिस भी नहीं जाना है, बिल्कुल आप फ्री है, बिंदास है, बेधड़क है। अगर आप घूमने की प्लानिंग बना रहे तो वो अलग बात है, लेकिन कल है यानी कि थर्ड ODI मैच इंग्लैंड वर्सेस इंडिया के बीच, और ये मैच 3:30 शुरू हो जाएगा जी। तो अगर आप हैं मैच देखने के दीवाने तो ODI मैच यानी कि कल 3:30 शुरू होने वाला है, यानी कि लास्ट ODI मैच है ये। देखना ये है कि भैया कौन सी टीम बाजी मारती है। अभी तो दोनों टीम की बिल्कुल सेम उस पटरी पर है, एक मैच इंडिया ने जीता है तो एक मैच इंग्लैंड वालों ने। चलिए फिलहाल मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। राधे राधे, जय श्री राम। जय श्री राम जी, अजय कुमार जी कनेक्ट होते हैं शाही खदर जिला मुरादाबाद से, और ये गाना सुनना चाहते हैं, लगी आग सावन। ओके, अगले मैसेज की बात करूं तो गुड मॉर्निंग रीना जी, कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं जी, खुल के प्यार करेंगे। ओ भाई साहब, क्या बात है जी, खुल के ही प्यार करना चाहिए। ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं रवि सैनी लाइन पर मुरादाबाद।

0: चलिए जी, फिलहाल कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम, उसके बाद कनेक्ट होते हैं आप सभी इसके साथ श्रोताओं।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
2: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
3: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
2: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
3: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
4: मुरादाबाद
2: से संपर्क कीजिए।
3: नियम और शर्तें लागू।

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। रब करे तुझको भी प्यार हो जाए। उदित नारायण जी की आवाज में, अलका याग्निक जी की आवाज में बहुत ही खूबसूरत आपने गाना एंजॉय किया है, फ्रॉम मूवी मुझसे शादी करोगी। आय हाय क्या बात है जी। कुछ मूवी बहुत ही शानदार होते हैं जी, जिसे देखने का बार बार मन करता है, और उनमें से ये मूवी है मुझसे शादी करोगी। मुझसे शादी करोगी। और अगले मैसेज की बात करूं तो श्रोताओं, हमारे पास मैसेज आता है मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से। इरशाद हुसैन अंसारी जी कनेक्ट होते हैं, सैयद सारी कली जी, मेराज अंसारी, बाबू अंसारी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी। और ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, आपका शो मॉर्निंग मसाला अच्छा लग रहा है, और एक गाना सुनवा दीजिएगा, बैठे बैठे अचानक ये क्या हो गया, बारिश आ गया जी।

अगले मैसेज की बात करूं तो ये हमारे साथ हरिओम जी कनेक्ट होते हैं मुरादाबाद लाइन पार से। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर, ये और ये गाना सुनना चाहते हैं, तुझसे ये कैसा नाता है। चलिए श्रोताओं, इसी के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत।

चलिए श्रोताओं, मिलेंगे हम आपको आफ्टरनून में, यानी कि फरमाइशों में मिलने वाले हैं, जो आप सभी के फरमाइशी वाले गाने प्ले करने वाले हैं। इसी के साथ मिलती हूँ, यहाँ से जाने की इजाजत, लेकिन जो आप सभी के गाने हैं वो डेफिनेटली मैं प्ले करूंगी। रेडियो सुनते रहिए, FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। बाय, टाटा, टेक केयर।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
3: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
4: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
3: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
4: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
3: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
1: मुरादाबाद
3: से संपर्क कीजिए।
4: नियम और शर्तें लागू।
5: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 अब से कुछ देर में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। इसे हैदराबाद की निजी कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने बनाया है। विक्रम 1 का ये प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ये पहली बार होगा जब किसी भारतीय निजी कंपनी ने देश में डिजाइन और तैयार किया गया ऑर्बिटल क्लास रॉकेट लॉन्च किया है। इस रॉकेट का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम 1 मिशन को भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि ये 4 चरणों वाला रॉकेट तेज और जरूरत के अनुसार उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने स्काईरूट एरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये मिशन देश के युवाओं की प्रतिभा, मेहनत और नए विचारों को दिखाता है। इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रूपये से अधिक की लागत आएगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड वर्ष 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है, बल्कि भारत अपने रुख पर दृढ़ता के साथ कायम है। नई दिल्ली में आज फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
6: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं, बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया। हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा।
5: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के इस नेतृत्व को देखा है और यह तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। श्री सिंह ने कहा कि इस अभियान में आकाश तीर, आकाश मिसाइल प्रणाली और ब्रह्मोस सहित कई अन्य अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों का उपयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2030 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ NDPS अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। पीवी सिंधु ने टोक्यो में खेले जा रहे जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई है। फाइनल में कल पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
1: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
0: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
1: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
0: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
2: मुरादाबाद
0: से संपर्क कीजिए।
1: नियम और शर्तें लागू।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजेरीना। साथियों, पिछले कार्यक्रम में हमने टीबी की इलाज के बारे में विस्तार से बात की थी। हमने जाना था कि टीबी का इलाज पूरी तरह संभव है, सरकार मुफ्त दवाइयां देती है और यहां तक कि दवा प्रतिरोधी यानी MDR टीबी का भी इलाज उपलब्ध है। लेकिन आज हम उस विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि सच कहे तो टीबी के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई केवल दवा शुरू करने से नहीं होती, बल्कि दवा को लगातार और सही तरीके से जारी रखने से होती है। बहुत सारे मरीज इलाज शुरू कर लेते हैं लेकिन बीच में दवा छोड़ देते हैं, फॉलो अप जांच नहीं करवाते, कई बार काम पर चले जाते हैं या फिर दवा से होने वाली किसी परेशानी के कारण खुद ही इलाज बंद कर देते हैं और यही छोटी सी गलती कई बार बहुत बड़ा नुकसान कर देती है। तो आज हम बात करेंगे इलाज को बीच में ना रोकने की, दवाओं को संभावित रिएक्शन की, अगर दवा से परेशानी हो क्या करना चाहिए, निक्षय जैसी सरकारी व्यवस्थाएं मरीजों की मदद कैसे करती हैं और परिवार तथा समुदाय का सहयोग कितनी जरूरी है। इन सब विषयों पर बात करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है हमारी अपनी स्वास्थ्य साथी टीकन देवी। स्वागत है टीकन भाभी आपका।
1: धन्यवाद आरजेरीना, और सभी श्रोताओं को भी मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। आरजेरीना जी, पिछले कार्यक्रम के बाद मुझे कई लोगों के फोन आए, अधिकांश लोगों ने तो एक ही बात कही, हमें पता है कि टीबी का इलाज होता है लेकिन इतने महीनों तक दवा लगातार लेना आसान नहीं होता। और सच कहूँ तो यही वह जगह है जहाँ सबसे ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है। इलाज शुरू करना महत्वपूर्ण है लेकिन इलाज पूरा करना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और मुझे लगता है कि आज की चर्चा शुरू करने से पहले अगर आप कोई ऐसी कहानी सुनाए जो इस विषय को समझने में मदद करे तो श्रोताओं को बताओ और अच्छी तरह समझाइए।
1: बिल्कुल, मैं आपको एक ऐसी घटना बताना चाहूँगी जो कुछ वर्ष पहले

0: पहले हुई थी। पास के एक छोटे से कस्बे में लगभग 12 साल का एक छोटा सा बच्चा था, रवि। रवि को लगातार बुखार रहता था, वजन कम हो रहा था और खांसी भी लंबे समय से बनी हुई थी। जांच हुई और पता चला कि उसे टीबी है। परिवार घबरा गया, लेकिन डॉक्टर ने समझाया कि चिंता की बात नहीं है, इलाज शुरू हो गया है। शुरुआती कुछ हफ्तों में रवि की हालत सुधरने लगी, बुखार कम हुआ, भूख लौटने लगी और घर वालों को लगा कि अब सब ठीक है। लेकिन लगभग 1.5 महीने बाद रवि को एक नई समस्या शुरू हुई। उसके शरीर पर लाल चकत्ते निकलने लगे, उसे मतली महसूस होने लगी, कभी कभी उल्टी भी होने लगी। तब पिता बहुत डर गए। गांव में कुछ लोगों ने सलाह दी, दवा बंद कर दो, दवा ही नुकसान कर रही है। लेकिन सहयोग से उसी समय उसके पिता ने हमारे इस कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई का एक पुराना एपिसोड सुना था, जिसमें कहा गया था कि दवा से कोई भी असामान्य परेशानी हो तो तुरंत स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर को बताना चाहिए, लेकिन अपनी तरफ से दवा बंद नहीं करनी चाहिए। उन्होंने वही किया। अगले ही दिन बच्चे को अस्पताल ले गए, डॉक्टर ने जांच की, दवाओं की समीक्षा की, आवश्यकता बदलाव किए और कुछ अतिरिक्त उपचार दिए। कुछ ही दिनों में स्थिति नियंत्रण हो गई। आज रवि पूरी तरह स्वस्थ है। सोचिए, अगर उसके माता पिता डरकर दवा बंद कर देते तो बीमारी दोबारा गंभीर हो सकती थी। यानी समस्या दवा से नहीं बल्कि समय पर सलाह ना लेने से पैदा होती है।
1: वाह, यह कहानी सचमुच बहुत सीख देती है। यानी दवा के दौरान कोई परेशानी हो जाए तो घबराना नहीं है, बल्कि तुरंत स्वास्थ्य प्रणाली से संपर्क करें। लेकिन भाभी, सबसे पहले यही बताइए कि इलाज की निरंतरता यानी कंटिन्यूटली ऑफ ट्रीटमेंट इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है?
0: देखिए अर्जरीना, टीबी का जीवाणु बहुत चालाक होता है। जब मरीज दवा शुरू करता है तो कुछ ही हफ्ते में खांसी कम होने लगती है, बुखार कम हो जाता है और शरीर बेहतर महसूस करने लगता है। यही पर कई लोग गलती कर बैठते हैं। वैसे सोचते हैं कि अब हम ठीक हो गए हैं, लेकिन वास्तव में उस समय शरीर के अंदर मौजूद सभी जीवाणु समाप्त नहीं हुए होते हैं। लक्षणों का कम होना और बीमारी का पूरी तरह खत्म होना दो अलग अलग बातें हैं। इसीलिए राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम बार बार कहता है कि डॉक्टर जितने समय तक दवा लेने को कहें उतने समय तक नियमित रूप से दवा लेना जरूरी है। याद रखिए, आराम महसूस होना इलाज की सफलता का संकेत हो सकता है, लेकिन इलाज पूरा होने का प्रमाण नहीं।
1: बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन व्यवहार में लोग इलाज बीच में छोड़ देते हैं, क्यों?
0: कारण कई होते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि अब वे ठीक हो चुके हैं, कुछ लोग रोज दवा लेने से उब जाते हैं, कुछ लोगों को काम पर जाना होता है और वे फॉलोअप नहीं कर पाते, कुछ लोग दूर शहर या राज्य में काम करने चले जाते हैं, कुछ लोग दवा के हल्के दुष्प्रभावों से डर जाते हैं और कुछ लोग समाज की डर या शर्म की वजह से इलाज छिपाने लगते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि सरकार ने इन चुनौतियों को समझते हुए कई व्यवस्थाएं बनाई हैं ताकि मरीज का इलाज बीच में ना टूटे।
1: यही तो मैं पूछना चाहती थी, अगर कोई मरीज इलाज के दौरान गांव छोड़कर दूसरे शहर चला जाए तब क्या होगा? क्या उसे फिर से पूरी प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये बात खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जहां लाखों लोग रोजगार के लिए दूसरे जिलों या राज्यों में जाते हैं। सरकार ने ट्रांसफर अकाउंट की व्यवस्था बनाई है। अगर मरीज अपने स्वास्थ्य कर्मी या टीबी टीम को जानकारी देते हैं तो उसका रिकॉर्ड निश्चय प्रणाली में अपडेट किया जा सकता है और नए स्थान पर भी इलाज जारी रखा जा सकता है। यानी केवल स्थान बदलने के कारण दवा बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ जाए वहाँ की सरकारी स्वास्थ्य सुविधा से जुड़िए और इलाज रखिए।
1: आपने निक्षय नाम का नाम लिया, बहुत सारे श्रोताओं ने इसके बारे में सुना होगा लेकिन विस्तार से शायद नहीं जानते होंगे।
0: निक्षय वास्तव में टीबी मरीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था है। यह एक डिजिटल प्रणाली है जिसके माध्यम से मरीजों का रिकॉर्ड, इलाज की प्रगति, फॉलोअप, सहायता और निगरानी की जाती है। इसके जरिए स्वास्थ्य कर्मी ये देख सकते हैं कि मरीज इलाज पर लीवर बना हुआ है या नहीं। अगर किसी मरीज की फॉलो अप जांच बाकी है तो उसे याद दिलाया जा सकता है। अगर मरीज कहीं और चला गया है तो उसका इलाज एक नए स्थान से जोड़ा जा सकता है और इसी व्यवस्था के माध्यम से कई प्रकार की सहायता भी सुनिश्चित की जा सकती है। यानी निक्षय केवल एक कंप्यूटर सिस्टम नहीं बल्कि इलाज की निरंतरता बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण साधन है।
1: अब बात करते हैं दवाओं से होने वाली प्रक्रियाओं की, यानी साइड इफेक्ट या रिएक्शन, क्योंकि यही वह विषय है जिससे लोग सबसे ज्यादा डरते हैं
0: और डर अक्सर जानकारी की कमी से पैदा होता है। आरजे रीना, जैसे ही किसी को पता चलता है कि टीवी की दवाई कई महीनों तक चलेगी तो उसके मन में एक चिंता भी रहती है, कहीं दवा से कोई परेशानी हुई तो। इसलिए सबसे पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि अधिकांश टीवी मरीज बिना किसी गंभीर समस्या के अपना पूरा इलाज सफलतापूर्वक करवा लेते हैं। लेकिन हाँ, कुछ मरीजों को इलाज के दौरान कुछ दुष्प्रभाव या प्रक्रियाएं महसूस हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, किसी को शुरुआत में मितली या उल्टी की शिकायत हो सकती है, किसी का पेट भारी लग सकता है या जलन महसूस हो सकती है, कुछ लोगों की भूख थोड़ी कम हो जाती है, कई बार त्वचा पर खुजली या लाल चकते दिखाई दे सकते हैं, कुछ मरीज कमजोर, थकान या चक्कर आने की बात भी बताते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे संकेत भी हैं जिन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, जैसे आँखों या त्वचा का पीला पड़ना, पेशाब का रंग बहुत गहरा हो जाना, धुंधला दिखाई देना, हाथ पैरों में झंझनाहट या सुन्नपन महसूस होना, सुनने की क्षमता में बदलाव आना या व्यवहार और मानसिक स्थिति में कई असामान्य परिवर्तन महसूस होना। ऐसे लक्षणों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगी, दुष्प्रभाव होने का मतलब ये नहीं कि इलाज असफल हो रहा है और ना ही इसका मतलब ये है कि मरीज अपने मन से दवा बंद कर दे। वास्तव में सबसे बड़ी गलती यही होती है, कई बार लोग किसी पड़ोसी, रिश्तेदार या अधूरी जानकारी आधार पर दवा छोड़ देते हैं, जबकि सही कदम ये है कि तुरंत अपने स्वास्थ्य कर्मी, आशा बहन, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या डॉक्टर को इसकी जानकारी दें। याद रखें, अधिकांश दुष्प्रभावों का प्रबंध किया जा सकता है। डॉक्टर जरूरत पड़ने पर जांच करेंगे, सलाह देंगे और यदि आवश्यक हुआ तो इलाज में उचित बदलाव भी करेंगे। लेकिन अगर मरीज बिना बताए दवाएं बंद कर देता है तो बीमारी फिर से सक्रिय हो सकती है और इलाज और भी कठिन हो सकता है। इसीलिए हमारा संदेश बहुत सरल है, दुष्प्रभाव छिपाइए मत, घबराइए मत और अपने मन से दवा बिल्कुल भी मत रोकिए। समय पर जानकारी देना ही सुरक्षित और सफलता इलाज की कुंजी है।
1: यानी दवा से परेशानी हो तो पहला कदम दवा छोड़ना नहीं बल्कि डॉक्टर से बात करना।
0: बिल्कुल, क्योंकि हर शिकायत गंभीर नहीं होती, कुछ दुष्प्रभाव अस्थायी होते हैं, कुछ का इलाज किया जा सकता है, कुछ मामलों में डॉक्टर दवा की समीक्षा कर सकते हैं, लेकिन ये निर्णय केवल परीक्षित स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर को लेना चाहिए, मरीज को नहीं। याद रखिए, जल्दी जानकारी देना इलाज बचाता है जबकि चुप रहना इलाज को खतरे में डाल सकता है।
1: वाह, फॉलो अप जांचों की भी बात होती है। कई लोग सोचते हैं कि दवा मिल गई तो अब अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं।
0: यही एक और बड़ी गलतफहमी है, इलाज केवल दवा खाने का नाम नहीं है, इलाज में नियमित निगरानी भी शामिल है। डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी जब फॉलो अप जांच के लिए बुलवाएं तो अवश्य जाएं। अगर बलगम का नमूना मांगा जाए, अगर कोई जांच लिखी जाए तो करवाएं। इन जांचों से पता चलता है कि दवा सही काम कर रही है या नहीं, कहीं अतिरिक्त सहायता की जरूरत तो नहीं है, और यदि कोई समस्या है तो उसे समय रहते पकड़ा जा सकता है।
1: भाभी, आपने पिछली बार MDR TB का भी जिक्र किया था, इसके संदर्भ में इलाज की निरंतरता कितनी महत्वपूर्ण है?
0: रीना, MDR TV यानी दवा प्रतिरोधी टीबी में तो यह और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ऐसे मामलों में इलाज अपेक्षाकृत जटिल हो सकता है, दवाएं अधिक हो सकती है, निगरानी ज्यादा करनी पड़ सकती है और फॉलो अप भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन मैं श्रोताओं को ये बताना चाहूँगी कि MDR-TB का मतलब इलाज असंभव होना नहीं है। आज बेहतर जांच, बेहतर निगरानी और नए उपचार पद्धतियों के कारण मरीजों के ठीक होने की संभावना पहले से कहीं अधिक है। बस शर्त एक ही है, इलाज बीच में नहीं रुकना चाहिए।
1: और परिवार की भूमिका, कई बार मरीज अकेला पड़ जाता है।
0: परिवार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है आर्जेरीना। सरकार भी मानती है कि टीवी का इलाज केवल मरीज नहीं करता, पूरा परिवार करता है। घर का कोई सदस्य दवा याद दिला सकता है, फॉलोअप में साथ जा सकते हैं, लक्षणों में नजर रख सकता है, मानसिक सहारा दे सकता है और सबसे महत्वपूर्ण मरीज को ये महसूस करा सकता है कि वह अकेला नहीं है। कई बार दवा से ज्यादा असर एक सहारा देने वाले शब्द का होता है।
1: और पोषण, क्योंकि पिछली बार भी आपने कहा था कि रिकवरी में भोजन की बड़ी भूमिका होती है।
0: बिल्कुल, दवाएं बीमारी का इलाज करती हैं, लेकिन शरीर को ताकत भोजन देता है। इसलिए सरकार निक्षय पोषण योजना जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से पोषण सहायता भी उपलब्ध कराती है। मरीज को नियमित भोजन, पर्याप्त आराम और पौष्टिक आहार लेना चाहिए। दालें, दूध, अंडे, चना, सोयाबीन, हरी सब्जियां और स्थानीय पौष्टिक खाद्य पदार्थ शरीर की रिकवरी में मदद करते हैं।
1: तो अगर आज की चर्चा को कुछ मुख्य संदेशों में समेटा हो तो आप क्या कहेंगे?
0: श्रोताओं से 8 बातें याद रखने का आग्रह करूंगी। पहले, टीवी की दवा कभी अपने मन से बंद ना करें। दूसरी, बेहतर महसूस होना इलाज पूरे होने का संकेत नहीं। तीसरा, दवा से कोई भी असामान्य परेशानी हो तो तुरंत स्वास्थ्य कर्मी को बताएं। चौथा, फॉलो अप जांचें इलाज का जरूरी हिस्सा है। पांचवी बात, अगर आप कहीं और जा रहे हैं तो स्वास्थ्य टीम को बताकर इलाज जारी रखें। छठी बात, निक्षय और सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं इलाज की निरंतरता में मदद करती है। सातवीं बात, परिवार और उपचार सहयोगी मरीज की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और आठवीं बात, MDR-TB भी इलाज योग्य है, बशर्ते मरीज नियमित रूप से कार्यक्रमों से जुड़ा रहे।
1: बहुत सुंदर। और मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगी, अगर रवि के माता पिता उस दिन डर का दवा बंद कर देते तो शायद आज कहानी कुछ और होती, लेकिन उन्होंने सही समय पर सही कदम उठाया। यही समझ, यही जागरूकता और यही सतर्कता हर परिवार तक पहुँचनी चाहिए। साथियों, याद रखिए, टीवी का इलाज केवल दवाओं से नहीं बल्कि धैर्य, नियमितता, परिवार के सहयोग और स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े रहने से सफल होता है। आइए अंत में हम सब मिलकर लेते हैं सेहत की शपथ।
0: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
1: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
0: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
0: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
0: सेहत सही तो लाभ कई।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ गई और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी समस्या

0: की जो हमारे आसपास बहुत आम है, लेकिन कई बार समय रहते पहचान नहीं हो पाती। गर्भ अवस्था के दौरान खून की कमी यानी अनीमिया। कई बार लोग सोचते हैं कि गर्भवती महिलाओं को कमजोरी, थकान या अचानक चक्कर आना तो सामान्य बात है, लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही होता है? क्या इसके पीछे खून की कमी भी हो सकती है? अगर हाँ, तो इसे कैसे पहचाना जाए? अब जांच करानी चाहिए? कब जांच करानी चाहिए? और माँ और बच्चे दोनों को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए? इसी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ हमारे अपने सेहतिया जी और टीकन देवी जी। सेहतिया जी, सबसे पहले तो यही बताइए कि आखिर ये है अनीमिया है क्या?
1: देखिए आर्जेरीना, सरल भाषा में कहते हैं जब शरीर में खून की कमी हो जाती है या खून में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो उसे अनीमिया कहा जाता है।
0: और गर्भवती महिलाओं में यह इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है?
1: क्योंकि गर्भावस्था के दौरान माँ के शरीर को अपने साथ साथ कई बच्चे की कई जरूरतों को भी पूरा करना होता है। ऐसे में आयरन और फोलिक और एसिड की जरूरत काफी बढ़ जाती है। अगर यही जरूरत पूरी ना हो तो खून की कमी हो सकती है।
0: तो क्या खून की कमी का असर केवल गर्भवती महिलाओं पर पड़ता है?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं आर्जेरीना, इसका असर गर्भवती महिलाओं और बच्चों दोनों पर पड़ सकता है। अगर समय पर पहचान और इलाज ना हो तो समय से पहले प्रसव, कम वजन का बच्चा और मां के स्वास्थ्य से जुड़ी कई परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसीलिए जितनी जल्दी पहचानना होगा उतना ही बेहतर परिणाम मां और बच्चे दोनों के लिए होगा।
0: यानी गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य सीधे बच्चे के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है?
1: बिल्कुल आर्जेरीना, और इसी वजह से विशेषज्ञ अक्सर कहते हैं कि हम केवल बीमारी का इलाज नहीं करना चाहिए बल्कि कुपोषण और एनीमिया के दृष्टि चक्र भी तोड़ना है।
0: दृष्टि चक्र वह कैसे?
1: अगर कोई गर्भवती महिला खुद कुपोषित है और के शरीर में खून की कमी है तो उसका असर गर्भावस्था और बच्चे के स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। बाद में बच्चे को पर्याप्त पोषण ना मिले तो वह कुपोषण और खून की कमी की समस्या से प्रभावित हो सकता है। इसी तरह कुपोषण और एनीमिया एक दुष्चक्र पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता आ रहा है, इसीलिए गर्भवती महिला का पोषण, जांच और समय पर इलाज बहुत ही जरूरी है।
0: दोस्तों, यह बात सचमुच सुनने वाली है, यानी आज माँ के स्वास्थ्य में किया गया निवेश आने वाले बच्चे के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। सेहतिया जी, कई श्रोता सोच रहे होंगे कि खून की कमी के लक्षण क्या होते हैं?
1: देखिए आर्जेरीना, अगर आयरन की कमी है, अगर गर्भवती महिला बहुत कमजोर महसूस करती है अपने आप को, अगर उसे चक्कर आते हैं, सांस फूलता है, दिल की धड़कन तेज होने लगती है या रोजमर्रा का काम भी भारी लगने लगे तो केवल थकान ही नहीं हो सकती, यह आयरन की कमी के लक्षण भी हो सकते हैं।
0: लेकिन कई बार तो लोग इन बातों को गर्भ अवस्था का सामान्य हिस्सा मानकर नजरअंदाज कर देते हैं
2: और यही सबसे बड़ी गलती है। हमारे गांव की सीमा की कहानी सुनिए। दूसरी बार गर्भवती थी, लगातार कमजोरी रहती थी। घर वाले कहते थे गर्भ में बच्चा है, थोड़ा बहुत तो होगा ही। लेकिन एक दिन आशा बहन उसे स्वास्थ्य केंद्र लेकर गई। वहां खून की जांच हुई, पता चला कि उसे एनीमिया है। अगर जांच नहीं होती तो शायद ये बात पता ही नहीं चलती।
0: फिर क्या सीमा ने इलाज शुरू कराया?
2: हाँ, उसने स्वास्थ्य कर्मी की सलाह मानी, नियमित जांच कराई और अपने खान पान पर भी पूरा ध्यान दिया। कुछ समय बाद उसकी स्थिति में सुधार आने लगा। यही वजह है कि समय पर पहचान बहुत जरूरी है।
0: यानी केवल लक्षण देखकर अनुमान लगाने के बजाय जांच करवाना जरूरी है।
2: बिल्कुल, और इलाज तब संभव होगा जब पूरा परिवार गर्भवती महिला के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देगा।
0: अब सबसे जरूरी सवाल, गर्भवती महिलाओं को जांच कब कराना चाहिए?
1: गर्भ ठहरते ही स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण कराना चाहिए, उसके बाद हर ANC संपर्क पर जांच करवानी चाहिए।
0: ANC यानी गर्भ अवस्था के दौरान होने वाली नियमित जांच।
1: बिल्कुल, और पूरी गर्भावस्था में कम से कम 4 ANC जांच करानी चाहिए।
0: और इन जांचों में क्या क्या देखा जाता है?
1: कई बातें देखी जाती हैं आरजे, लेकिन खून की जांच बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इससे पता चलता है कि गर्भवती महिला में खून की कमी है या नहीं।
0: अगर जांच में खून की कमी मिलती है तो क्या हर स्थिति एक जैसी होती है?
1: नहीं, खून की कमी अलग अलग स्तर से हो सकती है। अगर हीमोग्लोबिन 10 से 10.9 ग्राम के बीच कुछ हो तो इसे हल्का अनीमिया कहा जाता है। 7 से 9.9 ग्राम के बीच हो तो मध्यम अनीमिया और अगर 7 ग्राम से कम हो तो गंभीर अनीमिया।
0: यानी हर स्थिति में एक जैसा इलाज नहीं होता।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: अब बात करते हैं इलाज और बचाव की। अक्सर IFA और MMS का नाम सुनने को मिलता है, आखिर ये है क्या?
1: आर्जेरिना IFA यानी आयरन और फॉलिक एसिड की गोली और MMS ऐसी पूरक गोलियां हैं जिनमें आयरन के साथ कई जरूरी विटामिन और खनिज भी होते हैं जो गर्भवती महिलाओं और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं।
0: यानी MMS सिर्फ आयरन नहीं बल्कि कई जरूरी पोषक तत्वों का समूह है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन क्या केवल गोलियां ही पर्याप्त हैं?
1: नहीं, पूरक गोलियां महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनके साथ संतुलित और पौष्टिक भोजन भी उतना ही जरूरी है।
2: बिल्कुल सही। केवल गोलियां खाने से बात पूरी नहीं होती, घर का भोजन और पूरक आहार दोनों महत्वपूर्ण हैं।
0: किस तरह का भोजन करें?
2: घर में जो उपलब्ध हो उसमें पौष्टिकता पर ध्यान दें। खासतौर पर प्रोटीन युक्त भोजन बहुत महत्वपूर्ण है। दालें, चना, राजमा, दूध, दही, अंडा या स्थानीय रूप से उपलब्ध अन्य प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ शरीर को ताकत देने में मदद करते हैं।
0: यानी भोजन में केवल मात्रा नहीं गुणवत्ता भी जरूरी है।
2: बिल्कुल। गर्भवती महिला को पर्याप्त भोजन, पूरक आहार और प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ मिलने चाहिए। परिवार को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसे सबसे आखिर में नहीं बल्कि प्राथमिकता के साथ भोजन मिले।
0: सेहतिया जी, अब एक ऐसा शब्द जिसका नाम लोग आजकल ज्यादा सुन रहे हैं, IVFCM, यह क्या है?
1: सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि IVFCM हर गर्भवती महिलाओं के लिए नहीं होता।
0: अच्छा।
1: हाँ, इसका उपयोग उन गर्भवती महिलाओं में किया जा सकता है जिनमें जांच के बाद मध्यम या गंभीर आयरन की कमी से होने वाले अनीमिया पाया गया हो और डॉक्टर को लगे कि तेजी से सुधार की जरूरत है।
0: यानी पहले जांच फिर डॉक्टर की सलाह।
1: बिल्कुल सही आर्जेरिना। और भी सरल भाषा में कहें तो यह आयरन शरीर में चढ़ाया जाता है नसों के रास्ते ड्रिप लगाकर। इसका इस्तेमाल उन स्थितियों में किया जा सकता है जहां जांच में आयरन की कमी होने वाले मध्यम या गंभीर अनीमिया पाया गया हो और डॉक्टर की तेज तथा निगरानी में इलाज जरूरी समझें।
0: तो लोग अपने मन में इसकी मांग नहीं कर सकते?
1: नहीं, कौन सा इलाज उचित है इसका निर्णय स्वास्थ्य केंद्र की सलाह और डॉक्टर की जांच पर आधारित होता है।
2: और एक बात याद रखिए, इलाज का सही रास्ता जांच, डॉक्टर की सलाह, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र और जरूरत होने पर आगे की निगरानी।
0: दोस्तों, आज की चर्चा से एक बात साफ हो गई कि कमजोरी को सामान्य मानकर टालना सही नहीं है।
2: बिल्कुल। अगर घर में गर्भवती महिला है तो उसकी जांच समय पर करवाएं, उसे पौष्टिक भोजन दीजिए, पूरक आहार और IFA, MMS जैसी पूरक गोलियां नियमित लेने में मदद कीजिए और स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े रहिए।
1: याद रखिए, जो गर्भवती महिलाएं गर्भ ठहरते ही पंजीकरण करवाती हैं, समय समय पर स्वास्थ्य केंद्र जाती हैं और पूरी गर्भावस्था में कम से कम 4 ANC की जांच कराती हैं, उनके स्वस्थ रहने और बच्चे के स्वस्थ पैदा होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है।
0: बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, आज का पहला कदम क्या हो? अगर घर में गर्भवती महिला है तो उससे पूछिए क्या उसका पंजीकरण हुआ है, क्या उसकी खून की जांच हुई है, क्या वह नियमित ANC जांच करवा रही है, क्या वह IFA या MMS जैसी पूरक गोलियां ले रही है, क्या उसे पर्याप्त पौष्टिक भोजन और प्रोटीन युक्त आहार मिल रहा है। याद रखिए, समय पर पहचान, अच्छा पोषक, पूरक और आहार, सही इलाज से माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य बेहतर बनाया जा सकता है। इसी संदेश के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। फिर मिलेंगे सेहत सही लाभ कई के अगले अंक में, जहां हम बात करेंगे मध्यम और गंभीर अनीमिया तथा IV और FCM की भूमिका पर। नमस्कार, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6।
1: मुरादाबाद 89.6 मेरा नाम आरजी आनंद है। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सेहत सही तो लाभ कहीं। और आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे गर्भ अवस्था में एनीमिया की पहचान, जांच, पोषण और IFA MMS एवं समय पर जांच और इलाज। इसके विषय पर बात करने के लिए आज हम मौजूद हैं वुमेन हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट वुमेन हॉस्पिटल फ्रॉम मुरादाबाद सिविल लाइन्स, जहाँ पर हमारे साथ आज हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर सोनम रस्तोगी जी, गायनेकोलॉजिस्ट, हमारे साथ इस सेशन में मौजूद रहेंगी। उनसे हम आज ढेर सारी बातचीत करेंगे। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस प्रोग्राम में। मैम थोड़ा सा मैं चाहूंगी परी आप भी हमारे लिसनर्स को अपने बारे में प्लीज बताएं।
3: नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनम रस्तोगी जिला महिला अस्पताल में स्त्री व प्रसूति रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूँ।
1: ओके मैम, थैंक यू सो मच। तो मैम एक सेशन हम आपके साथ करने वाले हैं जिसमें सबसे पहला मेरा क्वेश्चन होगा कि गर्भ अवस्था में अनीमिया के समय पर पहचान के लिए कौन कौन सी जांचें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो हर बार विमेन स्किप कर देती हैं, उनके विषय में थोड़ा सा आप बताइए।
3: गर्भावस्था में एनीमिया के लिए जो जांचें हैं उसमें सबसे जरूरी जो जांच है वो हीमोग्लोबिन की जांच होती है।
1: ठीक है मैम।
3: इसके लिए हम CBC कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं।
1: ऑलराइट, ठीक है मैम। ओके, तो मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है जांच।
3: बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे ही पता चलता है कि आपके शरीर में खून सही मात्रा में है या नहीं।
1: ओके ठीक है। अच्छा मैम एक क्वेश्चन और रहेगा कि इसी स्तर पर अगर हीमोग्लोबिन सामान्य, माध्यम और गंभीर एनीमिया माना जाता है क्या इसको?
3: बिल्कुल, हीमोग्लोबिन कम से कम 11 ग्राम होना चाहिए गर्भवती महिला के केस में, कम से कम।
1: ठीक है।
3: अगर वो 11 से कम है और 9 से ज्यादा है तो वो माइल्ड एनीमिया में आता है, मतलब हल्का एनीमिया।
1: ठीक है।
3: फिर अगर वो 9 ग्राम से कम और 7 ग्राम के बीच में है तो वो मॉडरेट एनीमिया में आता है, मतलब कि एनीमिया थोड़ा ज्यादा है।
1: ज्यादा है।
3: और अगर 7 ग्राम से भी कम है तो वो सीवियर एनीमिया में आता है। इसका मतलब कि ये जो स्टेज है ये जानलेवा भी हो सकती है।
1: ओके।
3: इनका ट्रीटमेंट तुरंत, सब लेवल्स का ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके से होता है, और अगर 7 ग्राम से कम है तो जान का भी बहुत खतरा रहता है और तुरंत खून चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है।
1: ऑलराइट। अच्छा मैम क्या केवल आयरन की गोलियां ही पर्याप्त हैं या इसके अलावा जो विशेष खान पान है, जो भोजन है, क्या उसमें भी कोई विशेष बदलाव जरूरी है?
3: भोजन तो सबसे जरूरी है, दवाइयां तो सबको नहीं मिल पाती है, सब लोग अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते हैं। उन लोगों के लिए तो खान पान बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल।
3: जिन भी चीजों में आयरन की मात्रा है, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, पालक हो गई, बीन्स हैं जितनी,
1: हाँ जी, ये दालें भी आई थिंक,
3: दालें, दालों में प्रोटीन्स होते हैं वो बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल।
3: क्योंकि खून में आयरन भी होता है और ग्लोबुलिन भी होता है।
1: राइट।
3: हीम प्रोटीन होता है।
1: राइट।
3: तो प्रोटीन भी चाहिए हमको और आयरन भी चाहिए। उसको आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए विटामिन सी जो नींबू संतरा इनमें होता है वो भी जरूरत है।
1: ओके, तो मतलब ये सारी चीजों को भी डाइट में मेंटेन करना है।
3: बिल्कुल करना
1: सारे
3: चाहिए। और जितने सेब हैं,
1: हाँ जी, जो फ्रूट्स
3: हैं, ओके, फ्रूट्स हैं,
1: मौसमी फल को ज्यादा शामिल करें।
3: बिल्कुल सही बात।
1: बहुत ही अच्छा लगा मैम, थैंक यू मैम। एक क्वेश्चन और रहेगा, यदि गर्भवती महिलाएं समय पर एनीमिया का उपचार नहीं करा पाती हैं अनफॉर्चुनेटली, तो क्या माँ और बच्चे पर इसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है?
3: बिल्कुल, गर्भावस्था के दौरान बच्चे का जो ग्रोथ है,
1: हाँ जी,
3: वो कम हो सकता है और बच्चा गर्भावस्था के दौरान खत्म भी हो सकता है अगर बहुत ज्यादा खून की कमी है तो।
1: ओके
3: ठीक है। फिर डिलीवरी के दौरान क्या दिक्कतें आती हैं? प्रसव के दौरान महिला को ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो सकती है।
1: ओके।
3: और क्योंकि जितने भी प्रसव होते हैं, चाहे हम नॉर्मल डिलीवरी से कराएं, चाहे हम सिजेरियन ऑपरेशन से कराएं, सब में खून बहता है, सब में शरीर का खून हीमोग्लोबिन कम हो जाता है।
1: कम हो जाता।
3: तो जो महिला के अंदर सही मात्रा में खून होगा उसकी डिलीवरी नॉर्मल तरीके से हो जाएगी। नॉर्मल मतलब कि उसकी डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होने के चांसेस है। लेकिन जो महिला पहले से ही खून की कमी है, एक तो उसको खून भी ज्यादा होगा, दूसरा उसका खून डिलीवरी में निकल गया तो हार्ट पे और ज्यादा लोड पड़ेगा।
1: ओह माय गॉड।
3: इसलिए जान का खतरा बढ़ जाता है,
1: कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है,
3: बहुत कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। और हमारे देश में तो जितनी भी मात्र की मोर्टैलिटी होती है, मरती हैं जितनी भी महिलाएं प्रसव में या प्रसव के दौरान या गर्भावस्था में, उसमें सबसे बड़ा कारण हमारे देश में आज भी कुपोषण है, खून की कमी।
1: एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच मैम। लास्ट क्वेश्चन रहेगा चाहते जाते, एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर टाइम। आपने इतना इम्पोर्टेंट समय दिया हमारे फिर मुरादाबाद पे हमारे लिसनर्स के लिए। गर्भावस्था के दौरान अनीमिया से बचाव के लिए आपका एक सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज जो आप यहाँ से रेडियो से हमारे डिलीवर करना चाहें।
3: बिल्कुल, मैं सब लोगों से ये बात कहना चाहूंगी कि घर में अपने खान पान का ध्यान रखें, गर्भावस्था शुरू होने से पहले ही, अगर बच्चा प्लान भी कर रहे हो उससे पहले ही अपनी हेल्थ को ठीक रखना है। फिर आप जब डॉक्टर से मिले तो अपनी डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको सारी जांचें करवाएंगे। अगर आप जल्दी चले जाते हैं, किसी डॉक्टर को जल्दी कंसल्ट करते हैं, तो हो सकता है कि सही स्टेज में आपके शरीर में क्या कमियां हैं वो पता लग सके और सही समय से उनका इलाज हो सके कि आपको एक हेल्दी बच्चा मिल पाए।
1: That's very nice, ma'am. Thank you so much. Lovely talking to you, ma'am. हमारे साथ आने के लिए गाइज आप कहीं मत जाइए, आप सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
4: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
5: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है ZIG प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। ZIG करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे RJ आनंद को, और मेरे साथ इस प्रोग्राम में है हमारी प्यारी दोस्त RJ रीना। श्रोताओं, प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। जी हाँ, ये वो प्रोग्राम है जिसमें हम अलग अलग मुद्दे उठाते हैं, अलग अलग विषयों पर हम बात करते हैं ताकि हमारे समाज में और हमारे जो आज की युवा पीढ़ी है वो अपनी सोच बदल सके। क्योंकि देखिए, जब उनकी सोच बदलेगी तो अपने आप ही समाज और देश प्रगति करेगा, उन्नति करेगा और हमारा देश और भी खूबसूरत बनेगा। क्यों RJ रीना, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। बढ़िया
2: मैं तो बहुत बढ़िया हूँ आनंद, तुम बताओ तुम कैसे हो? इस गर्मी में, इतनी ज्यादा गर्मी है यार कि पूछो मत।
1: ऊपर से लाइट जो है बार बार भागे जा रही है, तो यही कहने वाली थी।
2: हाँ, यही कहने वाली थी मैं।
1: इसकी और मेरे विचार इसलिए मैच कर रहे हैं क्योंकि रात को मच्छर और पसीना दोनों ही परेशान कर रहे हैं। ये ऊपर से AC में चली आती है और मैं ऊपर से नीचे खुले चौड़े में चला हूँ सड़कों पे, रातों रात परेशान हो रहे हैं ना।
2: बिल्कुल सही।
1: और दोपहर में भी बहुत तेज गर्मी है श्रोताओं। इस वक्त देखिए दोपहर हो रही है और चिलचिलाती तगड़ी धूप है। हम कोशिश यही करेंगे कि हम तो स्टूडियो के अंदर ही रहें, लेकिन आपसे भी गुजारिश करेंगे कि इस धूप में बाहर ना ही निकलो तो अच्छा है।
2: और स्टूडियो में है ना तभी राहत मिल रही है, सच बताऊं। बाहर जाके तो ऐसा लग रहा है कि भाई क्यों ही आ गए बाहर, इतनी गर्मी मिर्ची वाली धूप लग रही है।
1: करेक्ट। और इस गर्मी में अपना ख्याल रखिए, अपने बार का ख्याल रखिए। खैर दोस्तों, आज सोच बदलो में हम एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पे बात करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही प्यारा है। आज का हमारा विषय है पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी, जो कि बहुत जरूरी और बहुत ही अहम मुद्दा है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे बात करना बहुत जरूरी है आज, और इसीलिए मैं और रीना ये टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। कभी सोचा है गर्मी हर साल सालों साल क्यों बढ़ती जा रही है, बारिश का मौसम क्यों बदल रहा है और पेड़ क्यों कम होते जा रहे हैं? दोस्तों, आज का हमारा विषय ही पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी है और आज की एक छोटी सी कहानी के जरिए हम आपको कुछ बताने की कोशिश करेंगे। और आज की कहानी एक छोटे से गांव की है। जी हाँ, कुछ लोगों ने अपनी सोच बदली और पूरा गांव ही बदल गया। कहाँ की है ये कहानी जरूर आपको बताएंगे। चलिए रुकते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए।

0: तो आज की कहानी की जो शुरुआत है वो रीना करेगी, लेकिन सबसे पहले आपका स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम सोच बदलो में। एक गीत आपने सुना, उसके बाद अब कहानी सुनेंगे आप रीना के साथ और आनंद के साथ। जी रीना।
1: हाँ, तो मैं बताना चाहती हूँ, एक छोटा सा गांव था
0: जी,
1: नाम था हरियापुर। पहले यहाँ गांव बहुत खूबसूरत था, चारों तरफ पेड़, साफ नदी और ठंडी हवा। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने पेड़ काटने शुरू कर दिए, प्लास्टिक हर जगह फेंकी जाने लगी और नदियां सूख गई। कुछ साल बाद हालत ऐसी हो गई, गर्मी में पानी भी कम पड़ने लगा। गांव के लोग परेशान थे, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। सो आगे की कहानी अब आरजे आनंद आपको बताएंगे।
0: जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं सोच बदलो प्रोग्राम आनंद के साथ। श्रोताओं, यह है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। दोस्तों, उसी गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था, उसका नाम आरव था। एक दिन उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी पहले इस गांव में कितनी ठंडक थी और बहुत ही हरा भरा था, लेकिन अब इतना गर्म क्यों हो गया है। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा क्योंकि पहले लोग प्रकृति को माँ मानते थे, जो हमारी प्रकृति थी उसे लोग पूछते थे, उसे माँ मानते थे, लेकिन अब लोग सिर्फ उसका इस्तेमाल करते हैं। आरव को यह बात दिल से लग गई। दोस्तों, कभी आपने सोचा है क्या हम भी कहीं ना कहीं प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्या हम पानी बेवजह बहाते हैं? क्या हम प्लास्टिक का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? अगर हाँ, तो सोच बदलने का समय आ गया है।
1: अगले दिन आरव ने अपने स्कूल में एक छोटा सा अभियान शुरू किया। उसने अपने दोस्तों से कहा, अगर हम सब मिलकर हर साल सिर्फ एक पेड़ भी लगाए तो हमारा गांव फिर से हरा भरा हो सकता है। धीरे धीरे बच्चे जुड़ने लगे, फिर शिक्षक भी जुड़ने लगे, फिर पूरा गांव एक साथ देने लगा।
0: क्या बात है। देखिए दोस्तों, ऐसे ही करके जो है ये गांव ने पूरा एक दूसरे का साथ दिया। और दोस्तों, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हम सब कर सकते हैं। इस कहानी का मतलब सोच बदलो में सिर्फ इतना सही है कि आजकल जो हमारी प्रकृति से हम लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो तभी बंद होगी, तभी रुकेगी, तभी थमेगी जब हम लोग अपनी सोच को बदलेंगे। क्यों रीना?
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और हर में एक जिम्मेदारी ले कि हम मतलब हर दिन एक पेड़ लगाएं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और पेड़ लगाने के साथ साथ उसको अच्छे से पानी भी दें, उसकी देखरेख भी करें, उसका ख्याल भी रखें। श्रोताओं, कुछ चीजें हैं जो हम और आप मिलकर कर सकते हैं तो शायद हम हमारी प्रकृति को हम अच्छे से बचा सकें। जैसे साल में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं, हालांकि रीना ने तो रोज ही बोला है, अगर ये पॉसिबल हो तो बहुत अच्छी बात है। पानी की बर्बादी कम कीजिए, जितना हो सकता है उतना ही पानी का इस्तेमाल करें। अक्सर खाना बनाते समय घर की लेडीज की टंकी खुली छोड़ देती है, ब्रश करते टाइम हम भी पानी की टंकी को खुला छोड़ देते हैं, वो बहता रहता है। कई बार हम वॉशरूम नहाने जाते हैं, पानी भर चुका होता है, उसके बाद भी पानी बहता रहता है। तो ये चीजें अगर हम कम कर देंगे तो शायद हमारी प्रकृति पहले की जैसी खूबसूरत और सुंदर हो जाए। अपना कंट्रीब्यूशन देना बहुत जरूरी है। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कीजिए, जितना हो सकता है आप कम से कम इस्तेमाल कीजिए। आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आप सब्जियां लेने जा रहे हैं, आप बाजार जा रहे हैं, तो घर के बने थैलों का इस्तेमाल कीजिए। प्लास्टिक का जितना आप कम इस्तेमाल करेंगे, जितना कम यूज में लाएंगे, उतना ही हमारी प्रकृति को हम सुंदर बना पाएंगे। कचरे को सही जगह डालिए। कल तो खैर वो हरा गीला और सूखा डब्बा चल गया है ना रीना? हाँ, तो उसमें आप जो है कचरा डालिए। ब्लू एंड ग्रीन कलर के बॉक्स होते हैं लगे हुए नगर निगम की तरफ से, बहुत ही खूबसूरत पहल है।
1: एक कचड़े में मतलब जो गीला डालते हैं और एक दूसरा सूखा कचरा डालते हैं,
0: तो बस सूखे में सूखा डालें, गीले में गीला डालें। और ये डस्टबिन का जो इस्तेमाल बताया गया है वो मेरे आपके हम सभी के लिए है। अगर हम इनका सही से इस्तेमाल करेंगे तो ऑफकोर्स हमारी प्रकृति को और भी खूबसूरत और सुंदर लगेगी। यकीन मानिए दोस्तों, छोटा कदम भी बड़ा बदलाव ला सकता है। जरूरत है सही समय पर सही सोच बदलने की। आगे बढ़ते हैं श्रोताओं, दो साल के बाद हरियापुर गांव में फिर से वो गांव हरा भरा लगने लगा। नदियां साफ होने लगी, हवा ठंडी लगने लगी और गांव के लोगों को समझ भी आ गया कि अब हम प्रकृति का ध्यान रखेंगे तो प्रकृति भी हमारा ध्यान रखेगी। और बहुत जरूरी है श्रोताओं, ये कहानी नहीं है, एक्चुअली एक जेन्युइन थॉट है। और मुझे भी लगता है रीना, जब हम अपने आसपास प्रकृति का अपने नेचर का ध्यान रखते हैं तो वो भी ध्यान रखता है। शुद्ध हवा हमें मिलती है, समय समय पे हमें फल, ताजे सब्जियां, दालें, सब कुछ हमें मिलता है, प्रकृति से तो मिलता है।
1: लेकिन वो तभी मिलेगी ना जब हम उसकी रक्षा करेंगे।
0: हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। तो उसकी रक्षा करना किस किसकी जिम्मेदारी है रीना?
1: वो हमारी जिम्मेदारी,
0: हमारी जिम्मेदारी है बिल्कुल। जैसे रीना ने कहा आप डेली एक पेड़ लगा सकते हैं, पॉसिबल नहीं है तो आप हफ्ते में एक बार पेड़ लगाइए।
1: हाँ, बिल्कुल लगाइए, लेकिन जरूर लगाइए,
0: जरूर लगाइए। अगर आप नहीं लगा पा रहे तो जो लगे हुए हैं आपके आसपास पार्क में किसी खुले एरिया में आप उनको पानी दीजिए, आप उनका ध्यान रखिए, साफ सफाई का ध्यान रखिए। वो जैसे जैसे पेड़ बड़ा होगा वो आपको ब्लेसिंग्स भी देगा, वो मुस्कुराएगा भी और आप भी बहुत खुश होंगे जैसे वो पेड़ बढ़ेगा। क्यों?
1: पहले के टाइम में तुम्हें देखा है कि हर घर के पास में एक पेड़ जरूर होता था,
0: बिल्कुल,
1: वरना फिर आप बाहर चले जाओ, सड़कों पर चले जाओ, पेड़ आपको मतलब पहले दिखते ही थे। लेकिन अब क्या है कि हम पेड़ों को काट रहे हैं, घर बना रहे हैं, वहां पर अच्छी अच्छी बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हैं, जिसके वजह से पेड़ तो कम हो गए लेकिन जनसंख्या यानी कि घर की तो ऑब्वियसली बात है कि बहुत ज्यादा है। तो आपसे यही गुजारिश करना चाहेंगे, इस शो का मकसद यही है कि हम अपने पर्यावरण को शुद्ध रखें, पेड़ लगाए ज्यादा से ज्यादा, पानी के जो वेस्टेज है वो कम करें। पहले के टाइम में होता था कि लोग कुएं से पानी भरते थे, नल से पानी भरते थे और उसी उतना ही पानी यूज करते थे जितना उनको नीड होती थी, लेकिन अब हम उससे ज्यादा बहाते रहते हैं पानी।
0: बिल्कुल सही कहा, तो पानी वेस्ट मत कीजिए। फिलहाल अभी एक काम करते हैं, एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, उसके बाद में और रीना मिलेंगे। आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम सोच बदलो रीना और आनंद के साथ, और ये प्रसारित होता है आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ से। तो श्रोताओं मिलते हैं इस छोटे से म्यूजिकल गीत के बाद।

0: वेलकम बैक एक बार फिर से श्रोताओं, यू आर लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ज, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो सुन रहे हैं आप। और इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना फेवरेट सोच बदलो, जिसमें मैं और रीना आज एक कहानी के जरिए आपको समझा रहे हैं कि हमारी प्रकृति का ध्यान रखना कितना जरूरी है। आजकल तुम देखते हो रीना, बिना मौसम के बरसात हो जाती है। इवन अभी भी आप यकीन मानना, थोड़े टाइम पहले हमें लग रहा था कि गर्मियां आ गई, लेकिन उसमें ठंड आ रही थी, लोगों ने गर्म कपड़े बाहर निकाल लिए थे बारिश की वजह से भी, और थोड़ी ठंड भी, मतलब बेमौसम की ठंड हो रही थी, तो जिससे हमें लग रहा था कि हाँ भाई, जो प्रकृति है वो कहीं ना कहीं हमसे नाराज है, वो हमें दिखा रही है, बता रही है, जता रही कि भैया जागो, नहीं तो फिर आगे आपको ऐसी चीजों का सामना करना पड़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो।
1: वो इसीलिए ना कि हम प्रकृति के साथ छेड़खानी करते हैं,
0: बिल्कुल बेवजह पेड़ काट देते हैं जिसका कोई सेंस नहीं होता, लगाने की कम और काटने की ज्यादा कोशिश की जाती है।
1: जबकि पेड़ तो कुछ भी नहीं मांगता है, बल्कि आपको वो फल देता है, सब्जियां देता है, ताजी हवा। बिल्कुल सही कहा तुमने। अरे आनंद, गर्मी के टाइम में अगर पहले की बात करूं तो पहले क्या होता था कि पेड़ इतने ज्यादा होते थे ना कि जिनको भी अगर गर्मी लगती तो वो पेड़ के छांव के नीचे बैठ जाते थे, पूरा गांव मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था वहां पर, एक दूसरे से बातें भी करते रहते थे और दिन यही गुजर जाता था। लेकिन अब क्या है, हम पेड़ काट रहे तो उसके नीचे बैठ भी नहीं पाते हैं।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं ये। और श्रोताओं, हम तो सिर्फ इतना से कहना चाहते हैं सोच बदलो के माध्यम से कि आप भी प्लीज अपनी सोच बदलिए, निरंतर प्रयास कीजिए कि अपने प्रकृति के साथ आप छेड़छाड़ न करके उसका ख्याल रखें। अगर आप किसी पार्क में जा रहे हैं, किसी खुले एरिया में जा रहे हैं जहां पर खूबसूरत ग्रीनरी है, तो उसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी आपकी है, हमारी है। उसे गंदगी से ना भर के उसकी साफ सफाई का ख्याल रखें। अक्सर हम अपनी परिवार के साथ कहीं घूमने जाते हैं तो हम वहीं पर कुछ भी खा रहे होते हैं, प्लास्टिक की चीजें वहीं छोड़ के आ जाते हैं, चिप्स खाया बच्चे ने पैकेट वहीं फेंक दिया, तो उससे आसपास की गंदगी जो है ना वो बढ़ रही है, कहीं हो रही है। और उसका जो जिम्मेदार है वो कौन है, आम इंसान ही उसका जिम्मेदार है, यानी कि मैं और आप ही। तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा ताकि वो साफ और स्वच्छ बना रहे, मैं और आप ही तो लेंगे। तो बस इन बातों का जरा ख्याल रखिए और बच्चों को डिसिप्लिन में रहे, कहीं बाहर जा रहे हैं जहां पर आपको और उनको पता है कि यहां गंदगी नहीं करनी है तो वहां नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है। तो छोटी छोटी चीजें, इनका ख्याल अगर आप रखेंगे, आपका परिवार के लोग रखेंगे, हम रखेंगे, तो सोच भी बदलेगी, समाज भी बदलेगा और खूबसूरती जो प्रकृति की वो और बढ़ जाएगी। क्यों?
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और आजकल क्या होता है ना कि हम कचरा भी अपने बगल में ही सरका देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप कचरा वहां पर देखेंगे कि कचरे की ढेर लग जाती है, फिर वो सड़ने लग जाता है, जो उसे दूषित हवाएं आती है उसे हम बीमार पड़ने लग जाते हैं। इसीलिए कचरे को भी एक अच्छी जगह रखिए ताकि वहां पर जो जहां सब कचरे डालते हो।
0: करेक्ट, बिल्कुल सही कहा है। इसीलिए जैसे हमने पहले भी जिक्र किया था श्रोताओं की, जो डस्टबिन है उसी में आप कचरा डालें। चलिए श्रोताओं, एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: म्यूजिकल ब्रेक के बाद वेलकम बैक है। मैं और रीना आपके साथ बने हुए हैं प्रोग्राम सोच बदलो में। कहानी के जरिए बता रहे थे कि कितना जरूरी है अपने पर्यावरण का ख्याल रखना, अपने प्रकृति का ख्याल रखना। और श्रोताओं कहते हैं कि हम अक्सर यही सोचते हैं और हमारी सोच भी बन गई है कि दुनिया बदलना बहुत मुश्किल है, लेकिन सच तो यह है रीना, दुनिया बदलने के लिए ना बस एक छोटी सी सोच बदलनी पड़ती है।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने कि सोच बदलते हैं तभी दुनिया अपने आप बदल जाएगी।
0: करेक्ट। तो अपनी दुनिया को बदलना है अगर आपने, तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलना बहुत जरूरी है। स्टेबिलिटी लेकर आइए और एक कंटिन्यूटी में एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़िए। और दोस्तों यह धरती हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली, यह हमारे बच्चों से उधार मिली है। श्रोताओं अगर आज हम इसका ध्यान रखेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी साफ हवा और साफ पानी पा सकेगी। तो आज के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ आज के दिन, आज के इस खास टॉपिक पे, इस खास फुल सेशन में, कि देखिए आप जो है ना अपनी प्रकृति का अगर ध्यान रखना चाहते हैं तो अपना कॉन्ट्रीब्यूट देना शुरू कीजिए। जब आप अपना कंट्रीब्यूट देंगे, छोटी छोटी चीजों को अपने दिनचर्या में शामिल करेंगे, तो हमारा पर्यावरण और हमारी प्रकृति दोनों ही खूबसूरत बनेंगे। और जब ये खूबसूरत होंगी तो हमारा समाज भी स्वस्थ होगा, खूबसूरत होगा और मस्त होगा। क्यों रीना?
1: बिल्कुल सही कहा तुमने।
0: और मुझे लगता है कि दोस्तों अपनी सोच को बदलने के साथ साथ ना, मेरा सिर्फ एक छोटा सा और आपके लिए सजेशन रहेगा कि आजकल ना गर्मियां हो रही है, गर्मियों में हम क्या करते हैं ना, हम सोचते हैं हम दो बार नहाए, हम चार बार नहाए। नहाना कंपलसरी है, लेकिन आप बार बार अगर नहाएंगे तो उससे हमारा पानी भी वेस्ट होगा। पानी वेस्ट मतलब हम प्रकृति के साथ फिर से छेड़छाड़ पर आ गए, क्योंकि हमें लगता है यार हमें खुद को ठंडक प्रदान करनी है तो हम नहा लेते हैं। तो तुम्हारा क्या मानना है रीना, क्या हम दो बार नहा के पानी वेस्ट नहीं कर रहे हैं? चलो दो बार नहाना तो छोड़ो, नहाना जरूरी है, लेकिन हम बड़ी बड़ी गाड़ियां धोने लग जाते हैं अपनी पानी के से।
1: हाँ,
0: उसमें कितना पानी वेस्ट करते हैं हम।
1: ऊपर से एक बात की जाए, हम घर को ऐसे धोने लग जाते हैं भैया जैसे नदी बहा देते हैं।
0: हाँ,
1: घर को साफ कर, आई नो कि आप देखिए घर में झाड़ू पोछा लगा सकते हैं वो ठीक है, उसमें कम पानी वेस्ट होता है पोछा लगाते हैं तो, लेकिन हम धोने लग जाते ऊपर से सड़कों को उतना रगड़ रगड़ के धोने लग जाते, पानी ऐसे बहा देते जैसे भैया पता नहीं क्या कितने टाइम से गंदा है सड़क। तो ऐसा नहीं करना है हमें, पानी को अगर आप सेफ रखेंगे तभी आप भी सेफ रहेंगे। और वही कहते हैं ना, जल बचाओ तो कल काम आएगा ये।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। देखिए सड़कों को धोना मैं कहता हूँ कि अच्छी बात है, अपने घर के आसपास साफ सफाई रखना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हमारे आसपास में जो हम कई बार क्या करते हैं ना कि बहुत ज्यादा वेस्टेज कर देते हैं। शर्मा जी सामने सुबह सुबह टंकी खोल के खड़े हैं, बतिया रहे हैं वर्मा जी के साथ, पानी बर्बाद हो रहा है, तो वो नहीं करना है आपने, है ना शर्मा जी। अगर आप सुबह सुबह साफ सफाई कर रहे हैं तो जरा वर्मा जी थोड़ी देर के बाद बतिया लीजिएगा, पहले सफाइयां कर लो, उससे पानी वेस्ट नहीं होगा, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन भी सही जगह पर लगेगा और आप सही जगह पर काम कर रहे होंगे। क्योंकि कई बार हम बातूनी के चक्कर में अपना पानी की बर्बादी कर देते हैं, है ना। और अगर आप कहीं आसपास निकल रहे हैं अभी गर्मियों के इस टाइम में और आपको कहीं पानी की टंकी खुली नजर आए तो प्रयास करें कि वो बंद कर दें,
1: बंद करें बिल्कुल, है ना। ये ना सोचे कि कोई और आके बंद करेगा बल्कि आप ही करिए,
0: या मुझे बहुत जल्दी है, एक मिनट एक सेकंड भी नहीं लगेगा, आप अगर वहां जाओगे पानी का बंद कर दोगे टंकी तो शायद वो पानी कल आपके और मेरे फ्यूचर के लिए काम आ सकता है। क्यों?
1: हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। और आजकल आपको भी पता है कि गर्मी बहुत ज्यादा है और गर्मी में हम कूलर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते भी हैं ताकि गर्मी से हमें राहत मिले,
0: उसके अंदर पानी डालते हैं।
1: हाँ, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि जो आप कूलर में पानी डालते हैं उसको फेंके ना, उस पानी को बल्कि गमले में डालिए ताकि गमलों को भी पानी मिलता रहे, वो भी स्वस्थ रहे।
0: बिल्कुल बिल्कुल नहीं, और पेड़ पौधों को, और ये बड़ा अच्छा बोला रीना ने, पानी को यूटिलाइज कीजिए। बेसिकली क्या होता है ना, जब हम अपने छतों पे यानी कि टेरेस पे हम पक्षियों के लिए पानी भर के रखते हैं ना छोटे छोटे बॉल्स में, उनको चेंज करना जरूरी है, पानी जमा मत होने दीजिए। और अगर कूलर में आपका पानी है आप उसको चेंज करो बट उसको फेंको मत, उसी पानी को अगर आप किसी अच्छे से बर्तन में निकाल के उसी पानी को आप अपने गमलों में प्लांट्स में यूज कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको लग रहा है कि आपके इन दिनों में क्या होता है ना, हमारी छत की टैंक भी बड़ी गर्म हो जाती है और हम जो पानी चलाते हैं तो वो गर्म निकलता है एकदम आग की तरह, फिर हम उस पानी को थोड़ी देर बाहर रहते हैं ताकि ठंडा आए, है ना, इस चक्कर में ही पानी वेस्ट होता है। तो वो वाला पानी को आप बहाना नहीं है, उस पानी को भी आप सेव करें और सेव करने के बाद जो है उसे अपने प्लांट में यूज करें या उसको दो घंटे बाद आप इस्तेमाल करेंगे तो वही पानी आपको ठंडा
1: हो जाता है। बिल्कुल सही,
0: बहुत ज्यादा चिल तो नहीं होगा लेकिन एटलीस्ट नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: तो श्रोताओं छोटी छोटी चीजें करके आप अपनी सोच को भी बदल सकते हैं और अपने आसपास की प्रकृति को और पर्यावरण को भी बचा सकते हैं।

है। फिलहाल बचाना पड़ेगा हमें, अभी हमें और रीना को एक छोटा सा क्या म्यूजिकल वाला ब्रेक आ रहा है, तो हमें बचानी पड़ेगी अपनी एनर्जी ताकि हम दोबारा आके आपसे फिर से बातचीत कर सकें। तो चलो एक छोटा सा गीत, उसके बाद आते हैं।

0: वेलकम बैक एक बार फिर से। यू आर लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो सुन रहे हैं। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। रीना और आनंद आपका साथ दे रहे हैं और आज हमने ढेर सारी बात करी। साफ पानी कितना जरूरी है, साफ हवा, शुद्ध हवा का होना कितना जरूरी है, पेड़ों को बचाना कितना जरूरी है। अगर हम इन सबका ख्याल रखेंगे तो हमारी प्रकृति और भी सुंदर और खूबसूरत लगेगी। कहानी भी हमने सुनाई इस प्रोग्राम के जरिए और अब हमारा जाने का भी समय हो गया है। पता नहीं चल रहा है ना रीना कितनी तेजी से समय निकला, लेकिन जाते जाते हमारी प्रकृति हमें क्या क्या देती है एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। शुद्ध हवा, साफ पानी और हरियाली। लेकिन जरा सोचिए अगर हमारी हवा ही गंदी हो जाए, अगर हमें ताजी हवा मिलना ही बंद हो जाए तो क्या होगा? सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा श्रोताओं, बीमारियां बढ़ने लगेंगी और जिंदगी का सुकून कहीं जैसे खो सा जाएगा। इसीलिए जरूरी है कि हम अपनी प्रकृति की रक्षा करें, पेड़ लगाएं, प्रदूषण कम और पर्यावरण को साफ रखें। क्योंकि याद रखिए दोस्तों, अगर प्रकृति सुरक्षित है तो हमारी जिंदगी भी सुरक्षित है। तो आइए मिलकर आज हम सब एक छोटा सा कदम उठाएं और अपनी सोच को बदलें और अपने आसपास की चीजों का जरा खास तौर पर ख्याल रखें। स्पेशली पेड़ को लगाने के साथ साथ उसका देख रेख भी उसकी रखनी बहुत जरूरी है, उसका सही ख्याल रखना भी जरूरी है। बाकी पोल्यूशन कम करने के लिए अपनी गाड़ियों को जरा कम इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपकी गाड़ी से जो धुआं निकलता है ना वो भी प्रदूषण फैलाता है और हमारे आसपास की प्रकृति को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। क्यों?
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी की वजह से जो पर्यावरण में ये जो दिक्कतें आ रही है, हवा की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो सिर्फ गाड़ियों की वजह से ही तो हो रही है।
0: ये तो आपने सही कहा। तो दोस्तों आज का सोच बदलो कार्यक्रम हमने पर्यावरण बचाने की इसमें बात करी और अब हमें जाना पड़ेगा, हमारा जाने का समय हो गया है। और आज हमने जाना इस प्रोग्राम में पेड़, पानी और हवा से हमने जुड़ी हुई तमाम सारी बातें करी। तो बस जाते जाते इतना ही कहेंगे, पानी की बर्बादी को रोकिए, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल कीजिए और हर साल कम से कम कुछ पेड़ तो आप जरूर लगाइए। तुम क्या कहोगी रीना जाते जाते?
1: मैं तो यही कहूंगी आप मतलब हफ्ते में एक पेड़ नहीं लगा सकते तो महीने में कम से कम एटलीस्ट दो पेड़ जरूर लगाइए।
0: करेक्ट, सही कहा आपने। और अब तो पेड़ों का सीजन भी आने वाला है और इस भीषण गर्मी से जरा अपना ख्याल रखिए, खुद को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए, जितना हो सकता है तरल पदार्थों का सेवन कीजिए।
1: पानी तो देखिए हमेशा पीते रहिए अपने पास। अब बाहर भी जा रहे हैं ना तो जैसे हम फोन को नहीं भूलते वैसे पानी की बोतल भी आपने नहीं भूलना है, अपने साथ लेकर जाना है।
0: एग्जैक्टली, डिहाइड्रेटेड रहिए, पानी पीते रहिए और कोशिश कीजिए कि आप पानी के भी अलग अलग फ्लेवर बना के रखें। आप पानी के अंदर कुछ लेमन्स के स्लाइस डाल सकते हैं, आप उसमें खीरे के कुछ स्लाइस डाल सकते हैं, वो एक वाटर आप तैयार कर सकते हैं। कुछ पुदीने की पत्तियां आप डालेंगे तो वो पानी और भी ज्यादा फ्रेश हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने फ्लेवर को चेंज कीजिए और पानी पीते रहिए और कोशिश कीजिए कि नारियल पानी का इंटेक भी आप ज्यादा से ज्यादा अपनी रूटीन में शामिल करें। अभी के लिए मैं और रीना लेंगे आपसे इजाजत, छोड़ के जाएंगे कुछ और खूबसूरत गीत के साथ। फिर आपकी और मेरी मुलाकात होगी जल्दी और रीना के साथ इसी प्रोग्राम के जरिए जिसका नाम है सोच बदलो। याद रखिए श्रोताओं, अगर आपकी सोच बदलेगी तो चीजें हमारी और आपकी अपने आप ही बदल जाएंगी। ऐसे ही बातों के लिए प्लीज सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6।
1: रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।
0: बिल्कुल जी, बाय बाय, टेक केयर,
1: बाय।

बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर। चार योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीज एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
1: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अशोर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आरजे राज। मैं कर रहा हूं आपसे बात, और जैसा कि आपको पता है कि जब मैं आता हूं तो कुछ न कुछ इम्पोर्टेंट बात को लेकर आता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड के बारे में। जब आपको सस्ता ऑफर दिखाई देता है तो क्या सच में वो सस्ता ऑफर है या फिर आपके लिए एक महंगी गलती। तो दोस्तों, आज का ये जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है, ये प्रस्तुत किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से। आज का विषय है ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड, यानी ऑनलाइन खरीदारी के नाम पर होने वाली ठगी। ऑनलाइन शॉपिंग देखो हमारे लिए सुविधा भी है उससे, पर हमारे लिए खतरा भी है। तो चलिए जानते हैं। श्रोताओं, आज हम कपड़े, मोबाइल, टीवी, दवा, टिकट सब कुछ ऑनलाइन खरीदते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग एक तो हमारा समय बचाती है, साथ में दाम की तुलना आसान बनाती है और घर बैठे सुविधा भी देती है। लेकिन इसी सुविधा का फायदा उठाकर साइबर ठग लोगों को ठग रहे हैं। चलिए एक रेडियो ड्रामे के जरिए मैं आपको सारी बात समझाता हूँ। इसमें दो लोग हैं, पहले हैं राहुल और दूसरा है राज। राहुल कहता है, अरे वाह, ये वेबसाइट तो नया स्मार्टफोन सिर्फ 6,000 रूपए में दे रही है,
1: जबकि मार्केट में वही फोन 15,000 रूपए का है।
0: अब राज कहता है, इतना सस्ता कहीं नकली तो नहीं। फिर राहुल कहता है, नहीं नहीं, वेबसाइट बहुत प्रोफेशनल लग रही है और फ्री डिलीवरी भी है। तभी लो, कार्ड से पेमेंट हो गया। अब राहुल जो है चिंता में है, क्योंकि 5 दिन हो गए हैं, ना तो डिलीवरी आई है, ना कस्टमर केयर फोन उठा रहा है। तो कुछ दिनों के बाद वही वेबसाइट बंद हो जाती है। मतलब अब राहुल समझ जाता है कि वह ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड का शिकार हो चुका है। ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड होता क्या है? ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड में नकली वेबसाइट बनाई जाती है, असली ब्रांड की नकल की जाती है, बहुत सस्ते ऑफर दिखाए जाते हैं, पेमेंट होते ही सामान नहीं आता, आता है तो नकली सामान आता है या फिर वेबसाइट ही गायब हो जाती है। कई मामलों में कार्ड और बैंक डिटेल की चोरी भी हो जाती है। आखिर लोग ठगी में क्यों फंस जाते हैं? श्रोताओ, ठग हमारी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। आज ही ऑफर खत्म हो जाएगा, स्टॉक लिमिटेड है, सिर्फ मिनट में खरीदें। जल्दबाजी में हम जांच करना भूल जाते हैं। याद रखिए, अगर ऑफर बहुत अच्छा लगे तो जरूरी नहीं कि वह सच हो। अब ऑनलाइन शॉपिंग करते समय कैसे सुरक्षित रहें, ये जानना भी जरूरी है। ऑनलाइन खरीदारी से पहले ये सावधानी जरूर अपनाएं, केवल जानी पहचानी वेबसाइट से खरीदें। वेबसाइट का नाम ध्यान से देखें, स्पेलिंग गलत हो सकती है, HTTPS और लॉक का निशान देखें, बहुत सस्ते ऑफर से सावधान रहें, अनजान वेबसाइट पर कार्ड स्वैप ना करें, कैश ऑन डिलीवरी संभव हो तभी चुनें। तो बुजुर्ग और नए यूजर्स के लिए खास सलाह मैं देना चाहूँगा। श्रोताओं, ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड के शिकार अक्सर बुजुर्ग, पहली बार ऑनलाइन खरीदारी करने वाले, छात्र और गृहणियाँ होती हैं। इसलिए परिवार में सबको समझाइए, बिना पूछे किसी लिंक से खरीदारी ना करें, शक हो तो किसी जानकार से सलाह ले लें। फ्रॉड हो जाए तो क्या करें, ये जानना भी जरूरी है। अगर आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है तो तुरंत कॉल करें 1930 पर। आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं www.cybercrime.government.in पर। जितनी जल्दी शिकायत, उतनी जल्दी पैसे वापस मिलने की संभावना। साइबर सुरक्षा की जानकारी के लिए आप www.staysafeonline.com पर भी विजिट कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के 5 सुनहरे नियम मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। बहुत सस्ता मतलब बहुत जोखिम, अनजान वेबसाइट खतरे की घंटी, जल्दबाजी नुकसान, जानकारी साझा करना गलती, सावधानी सुरक्षा। जाते जाते श्रोताओं, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन शॉपिंग सुविधा है, लेकिन समझदारी के बिना खतरा भी है। स्मार्ट खरीदारी करें, सुरक्षित खरीदार करें। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की ओर से। मैं बस इतना ही कहूंगा कि जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। आप सुन रहे हैं मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़, आपके शहर रेडियो स्टेशन, जो आपको एंटरटेन तो करता ही है, साथ में काम की बात भी बताता है। तो दोस्तों, अभी के लिए इस शो से अलविदा लेने से पहले मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूंगा कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो कुछ चीजों का अवश्य ध्यान रखें। सबसे पहले, अगर आपको कोई सस्ता ऑफर दिखाई देता है तो क्रॉस चेकिंग जरूर करें कि वो सस्ता है या फिर फ्रॉड हो। अगर आप किसी वेबसाइट से किसी लिंक के जरिए शॉपिंग कर रहे हैं तो वहाँ चेक करें कि वो वेबसाइट HTTPS से स्टार्ट होती है या फिर वहाँ पे लॉक का साइन है या फिर नहीं है। ये छोटी छोटी जानकारियाँ ही शायद आपको ठगने से बचा सकती हैं, क्योंकि ये जो ठग है ना, वो जितने शातिर है ना, आपको पता नहीं है कितने शातिर हैं। तो सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज। मैं मिलूंगा बहुत जल्दी आप सबसे, करूंगा और भी बात। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।

0: विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम-1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम-1 में 3 ठोस प्रणोदक चरण और 1 तरल ईंधन वाला रमन इंजन लगाया गया है। ये अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस उपलब्धि के लिए स्काईरूट एरोस्पेस को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को आगे आकर नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।
2: भारत और पूरी टीम, बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको, आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने विक्रम-1 की टीम को उनसे मिलने का निमंत्रण भी दिया। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये ऐतिहासिक उपलब्धि भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ती है। उन्होंने कहा कि निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती ताकत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि यह अभियान भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में निजी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि उपलब्धि अंतरिक्ष अन्वेषण में वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।
3: कंग्रेचुलेशंस इन स्पेस फॉर फैसिलिटेटिंग
0: इन स्पेस और इसरो को इस शानदार सार्वजनिक निजी भागीदारी और सफल प्रक्षेपण के लिए बहुत बहुत बधाई। इस सहयोग को अनुकूलित करने के लिए इसरो को बधाई। आज के सफल प्रक्षेपण ने वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में भारत की स्थिति को और मजबूत कर दिया है।
3: इन द हाईली कॉम्पिटिटिव एरिना ऑफ स्पेस इकोनॉमी
1: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उपलब्धि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में हुए सुधारों, स्वदेशी नवाचार और उद्यमशीलता की भावना की मजबूती को दर्शाती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वर्चुअल माध्यम से नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस नई रेल सेवा के शुरू होने से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच रेल संपर्क को और मजबूती मिलेगी। ये रेलगाड़ी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आने वाले पर्यटकों और वन्य जीव प्रेमियों के साथ

0: लगातार होता रहा है और आज इन प्रयासों का एक जो फल निकला है वो ये है कि आज कम से कम हफ्ते में 2 दिन ये गाड़ी स्टार्ट हो पा रही है। बहुत अच्छी बात है, कुमाऊं के लोग आराम से गढ़वाल जा पाएंगे, देहरादून कैपिटल तक जा पाएंगे और कई तरह के जो काम राजधानी में ही होते हैं वो सब यहाँ पर कर पाएंगे।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है बल्कि ये आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। नई दिल्ली में आज फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
2: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
1: श्री सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है।
2: ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में टेक्नोलॉजिकल वारफेयर का एक शानदार नमूना था। इस ऑपरेशन में आकाश तीर, आकाश मिसाइल सिस्टम और ब्रह्मोस जैसी एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम के साथ साथ अनेक लेटेस्ट इक्विपमेंट का भी उपयोग किया गया। इसने साबित किया है कि हमारी सेनाएं बदलाव को समझ भी रही हैं और उसे आत्मविश्वास के साथ उसका उपयोग भी कर रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता भारत के उद्योगों पर विश्वास का प्रमाण है।
1: श्री सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश की रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भरता को कम करने का भी संकल्प लिया है।
2: नई डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के माध्यम से बाई इंडियन आईडीडीएम जैसी व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी गई। सेनाओं के आधुनिकरण के लिए निर्धारित बजट का 75% भाग भारतीय उद्योगों से खरीद के लिए सुरक्षित किया गया। इस साल हम नया डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर लेकर आ रहे हैं जिसके कारण देश में डिफेंस प्रोडक्शन को एक नई रफ्तार मिलेगी और एक नई ताकत भी मिलेगी।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। मानसून सत्र से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों

25 लाख रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। उनके खिलाफ NDPS अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने सर गारफील्ड सोबर्स के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवार और दुनिया भर में क्रिकेट जगत के उनके प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूचना और प्रसारण तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को उनके जन्मदिवस पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री वैष्णव देश के प्रमुख बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, जो विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय ने भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से युवा शोधार्थियों की

0: लिए एक देशव्यापी शोध लेख प्रतियोगिता आयोजित करने की घोषणा की है। ये पहल 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्टों के आधार पर छात्रों को मौलिक शोध के लिए प्रोत्साहित करते हुए सार्वजनिक वित्त, सुशासन, वित्तीय संघवाद, सामाजिक क्षेत्र के व्यय और सतत विकास जैसे विषयों पर शोध एवं सार्थक विमर्श को बढ़ावा देना है। संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने इनोवेट इंडिया माईगव मंच पर इंडिया पोस्ट शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है। प्रतिभागियों को माईगव पोर्टल के माध्यम से एक मौलिक शुभंकर डिजाइन, उसके लिए उपयुक्त नाम और संक्षिप्त अवधारणा पत्र जमा करना होगा। प्रतियोगिता में प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 15 अगस्त है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल खबरों के साथ हैं अक्षित वैद्यान।
1: पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यू फी के खिलाफ पहला सेट 21-19 से जीता। दूसरे सेट में चेन यू फी ने चोट के कारण मुकाबले से हटने का निर्णय लिया। फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई है। 31 वर्षीय सिंधु ने वर्ष 2026 की शुरुआत विश्व रैंकिंग में 18वें स्थान से की थी। महिला सिंगल्स के फाइनल में कल पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। स्पेन से हार के बाद फ्रांस का विश्व कप अभियान समाप्त हो गया। हालांकि किलियन एम्बाप्पे ने 8 गोल और 3 असिस्ट के साथ शानदार प्रदर्शन किया है। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कल तक मूसलाधार वर्षा तथा कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में आज कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान है। बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, माहे, ओडिशा तथा पूर्वोत्तर के राज्यों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कल तक अलग अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आज गर्म तथा उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। ईरान ने आज कुवैत पर मिसाइलों और ड्रोन से बड़े पैमाने पर हमले किए। हमलों के बाद कुवैत ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया और सभी उड़ान सेवाएं निलंबित कर दी। ईरान से दागी गई मिसाइलों के कुवैती हवाई क्षेत्र में प्रवेश के बाद अधिकारियों ने लोगों को घरों के अंदर रहने तथा सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की सलाह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्षेपण के लिए स्काईरूट एयरोस्पेस की टीम को बधाई दी और इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत के

स्थिति सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07052।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
3: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो महिला मंच, और ये है आपके शहर का अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी आरजे खुशी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जो घर से जुड़ा हुआ है, महिलाओं की स्वास्थ्य और पोषण पर। दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि घर में सबसे पहले महिलाएं उठती हैं और सबके बाद में ही सोती हैं। सुबह बच्चों का टिफिन बनाना, घर का काम संभालना, कई महिलाएं तो ऑफिस भी जाती हैं, यानी पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होती है। लेकिन एक सवाल है, क्या महिलाएं अपने स्वास्थ्य का उतना ध्यान रखती हैं जितना बाकी लोग रख पाते हैं? अक्सर जवाब होता है नहीं। कई बार महिलाएं जल्दी जल्दी में खाना खा लेती हैं, कई बार अपना खाना ही छोड़ देती हैं। लेकिन हमें ये समझना होगा कि अगर महिलाएं स्वस्थ रहेंगी तभी पूरा परिवार स्वस्थ और खुश रहेगा। इसीलिए आज के इस खास शो में हम बात करेंगे कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें और अपने खान पान में कौन कौन सी चीजें शामिल कर सकती हैं।
4: क्या बात है, बहुत जरूरी बात तुमने कही आज खुशी। सो अब हम बात करते हैं पोषण का महत्व। महिलाओं के लिए सही पोषण बहुत जरूरी होता है, लेकिन कई बार महिलाएं अपने खान पान पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। कई घरों में देखा जाता है कि महिलाएं पहले पूरे परिवार को खाना परोसती है और बाद में खुद खाती है। कई बार जब तक उनकी बारी आती है तब तक खाना ठंडा हो जाता है या कम बचता है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि शरीर को ताकत देने के लिए सही और संतुलित भोजन बहुत जरूरी है। महिलाओं को अपने खाने पीने में हरी सब्जियां, दाल, फल, दूध और अनाज जरूर शामिल करना चाहिए। ये चीजें शरीर को जरूरी पोषण देती है और शरीर को मजबूत बनाती है। इसी के साथ कोशिश करेंगे कि दिन में 3 बार सही समय पर खाना जरूर खाए। खाना छोड़ना या देर से खाना खाना स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होता है।
3: बिल्कुल रीना जी, आप सही कह रही हो। दोस्तों एक बहुत बड़ी समस्या जो कई महिलाओं में देखी जाती है वह है आयरन की कमी। आयरन की कमी से शरीर में खून की कमी होती है, जिससे कमजोरी, चक्कर आना, जल्दी थक जाना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कई महिलाएं कहती हैं कि उन्हें हर समय थकान महसूस होती है। इसका एक ही कारण है, शरीर में आयरन की कमी भी हो सकती है। इसीलिए खाने में ऐसी चीजें जरूर शामिल करें जिनमें आयरन भरपूर मात्रा में हो, जैसे पालक, चुकंदर, अनार, गुड़, दाल और हरी पत्तीदार सब्जियां। अगर हम अपने खाने में इन चीजों को शामिल करेंगे तो शरीर को ताकत मिलेगी और कई बीमारियों से भी बचाव होगा।
4: बिल्कुल, बहुत सही बात कही है तुमने खुशी। और अब हम बात करेंगे कैल्शियम का महत्व। दोस्तों महिलाओं के लिए कैल्शियम भी बहुत जरूरी होता है। कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो हड्डियां कमजोर होने लगती है और आगे चलकर जोड़ों में दर्द या अन्य समस्याएं हो सकती है। इसीलिए महिलाओं को अपने खाने में दूध, दही, पनीर, हरी सब्जियां और सूखे मेवे का जरूर शामिल करना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कि दूध सिर्फ बच्चों के लिए जरूरी होता है, लेकिन सच यही है कि महिलाओं के लिए भी दूध और कैल्शियम बहुत जरूरी होता है।

0: साथियों, अब हम बात करने वाले हैं पानी के बारे में, पानी के महत्व के बारे में, क्योंकि आपको पता है गर्मियों का समय है और पानी हमारे लिए कितना जरूरी है। दोस्तों, कई बार महिलाएं दिन भर में काम में इतना व्यस्त हो जाती हैं कि पानी पीना ही भूल जाती हैं। लेकिन पानी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। ये शरीर को तरोताजा रखता है और शरीर को गंदगी से बाहर निकालने में मदद करता है। डॉक्टर भी कहते हैं कि दिन में कम से कम 7 से 8 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। अगर आप चाहें तो इसे अपने पास पानी की बोतल रख सकती हैं, ताकि आपको याद रहे और आप समय समय पर पानी पीती रहें।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने कि पानी पीना हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन साथ साथ हम बात करेंगे आराम की जरूरत। इस भाग दौड़ की दुनिया में ना, सच बताऊ, औरतें आराम मानो तो उनके जिंदगी में है ही नहीं। पता नहीं वो कहाँ चला गया है, ये कोई जादू है या क्या है कि उनको थकान कभी फील ही नहीं होती है। तो श्रोताओं, स्वास्थ्य के लिए आराम और नींद भी बहुत जरूरी होती है। कई महिलाएं दिन भर काम करती हैं और रात में भी देर तक जागती रहती है। इससे शरीर को पर्याप्त आराम नहीं मिल पाता है। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेना शरीर के लिए बहुत जरूरी है। जब शरीर को सही आराम मिलता है तो मन भी खुश रहता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है और आप कोई भी काम फिर आसानी से कर पाएंगे। कहते हैं ना, जब तक आपकी बॉडी आराम नहीं कर पाती है तब तक आप कोई भी काम करिए, आप अच्छे मन से नहीं कर पाएंगे। ऊपर से आपका सर भारी रहेगा और पूरा दिन लगेगा कि यार क्या ही करूँ क्या ना करूँ।
0: सर में भी दर्द होने लगता है
1: रीना। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही खुशी ने। आप जैसे सुबह उठोगे, जब तक आपके अंदर थकान होगी ना, आपके सर में दर्द तुरंत बन जाता है। इसीलिए सोना आराम करना बहुत जरूरी है हमारे जिंदगी में।
0: प्रॉपर 7-8 घंटे की नींद लीजिए, ताकि आपका बॉडी अगले दिन के लिए तैयार रहे और एनर्जेटिक रहे।
1: बिल्कुल। सो मिलते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद। बस आप यूं ही बने रहिए आरजे रीना और आरजे खुशी के साथ महिला मंच शो में। और बहुत ही शानदार ये गाना आप सभी को हमारी प्यारी वुमनिया के लिए डेडिकेट है।

0: दोस्तों, रीना जी ने अभी बात की थी आराम के बारे में और अब मैं बात करने वाली हूँ व्यायाम के बारे में। जी हाँ, सुबह सुबह दोस्तों देखिए, हमारा जीवन जो है ना, वो हमारा जो स्वास्थ्य है वो एक धन है और उस धन को हमें कैसे एकत्रित करना है, कैसे इकट्ठा करना है, वो हम कैसे करेंगे आपको पता है, जब हम आप अपने फिटनेस का ख्याल रखेंगे। क्योंकि कहते हैं ना, स्वास्थ्य ही असली धन है। और अब मैं बात करने वाली हूँ व्यायाम के बारे में। दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम बहुत जरूरी है। अगर महिलाएं रोज 20 से 30 मिनट की सैर करें या हल्का फुल्का योग करें तो शरीर फिट रहता है। व्यायाम करने से शरीर में ऊर्जा बढ़ती है और मन भी अच्छा महसूस करता है। इसीलिए कोशिश करें कि हर रोज थोड़ा समय अपने स्वास्थ्य के लिए जरूर निकालें।
1: बिल्कुल खुशी, तुमने बहुत अच्छी बात कही है। इस भाग दौड़ की दुनिया में ना, हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाते। इसीलिए सभी वुमनिया से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने लिए सुबह आधा घंटा निकालिए, इतना ही काफी है आपके लिए।

0: सो अब हम बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। कई बार महिलाएं इतनी जिम्मेदारियों में उलझ जाती हैं कि तनाव बढ़ने लगता है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। इसीलिए थोड़ा समय अपने लिए निकाले, अपने मनपसंद गाने सुने, किताब पढ़े या दोस्तों से बात करें। ये छोटी छोटी चीजें मन को खुशी देती है। और बिल्कुल सही बात है, हम क्या है ना पूरे परिवार की जिम्मेदारी में ना खुद की मनपसंद चीजें भूल ही जाते हैं।
1: अच्छा, इसीलिए आपने बात की है रीना कि भूल ही जाते हैं अपनी दुनिया, अपनी फैमिली को मतलब केयर करने में, उनको संभालने में।
0: हाँ।
1: तो ये बताओ, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ना तो अभी आपकी शादी हुई है और ना ही आपके बच्चे हैं, आप अभी अकेली हैं, तो आप अपनी मनपसंद की चीजें क्या करती हैं जब आप फ्री रहती हैं?
0: देखो, घर पे भी रहती हूँ तो मम्मी से जो बोलती हूँ वो बनाती हैं।
1: अरे वाह।
0: और मम्मी से मैं कभी पूछती हूँ ना क्या आपको क्या पसंद है, तो बोलती है जो तुम्हें पसंद है मैं वही खा लूंगी। मैंने कहा नहीं मम्मी, आज ऐसा नहीं चलेगा, आज आप बताओ कि आपको क्या पसंद है।
1: हाँ।
0: तो मेरी मम्मी को ज्यादा कुछ नहीं, बस खीर।
1: अरे वाह,
0: खीर बहुत पसंद है मेरी मम्मी को, सच में। हाँ, वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस खीर बना दो मेरे लिए। तो मैंने अपनी मम्मी के लिए ना एक बार खीर बनाया और मेरी मम्मी को सच में बहुत पसंद आया। तो मेरी मम्मी कहती है कि जब भी अगर तू खीर बनाएगी ना घर में, मतलब खीर बनाने की बारी आएगी तो तू ही बनाएगी। तो मैं अपने घर में वही बनाती हूँ, और बल्कि मम्मी ने ही सिखाया मुझे खीर बनाना भी।
1: हाँ।
0: तो देखिए, मतलब हम अपने घर में ना अपने साथ साथ मम्मी का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमारा परिवार आगे बढ़ता है।
1: एग्जैक्टली। और फिर रीना, मुझे ऐसा लगता है कि देखो, जो सबका ख्याल रखती है तो उनका भी ख्याल रखने वाला कोई चाहिए ना।
0: बिल्कुल। और आप गाइस ये पूछोगे ना अपनी मम्मी से कि आज आपकी पसंद का खाना बनाते, बताओ क्या खाना है आपको, तो उनके जो चेहरे पर खुशी होगी ना, नेक्स्ट लेवल वाली होगी खुशी। आगे हम बात करते हैं,
1: आगे हम बात करने वाले हैं अभी स्वास्थ्य के ऊपर। अब मैं बात करने वाली हूँ नियमित जांच।
0: बिल्कुल।
1: तो दोस्तों, महिलाओं को समय समय पर स्वास्थ्य जांच की भी। अच्छा रीना, आपको पता है हमारी जो घर की वुमेन होती है ना, वुमनिया जिसको आप बोल रही हैं, वो सबका ध्यान रखती हैं, लेकिन वो अपने स्वास्थ्य को लेकर अपना ध्यान नहीं रख पाती हैं। लाइक जैसे छोटी छोटी कभी चक्कर आ जाते हैं, कभी वीकनेस फील होती है, तो वो जांच नहीं करवाती हैं, वो नजरअंदाज कर देती हैं कि ठीक हो जाएगा, नॉर्मल है। लेकिन ऐसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी ये जो चीजें होती हैं, जो ये बड़ी प्रॉब्लम कब बन जाए, कब बड़ा रूप ले लें, कुछ नहीं पता है।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने, इसीलिए समय पर जांच करवाना बहुत जरूरी है। और मैं घर की सभी वुमनिया से रिक्वेस्ट करूंगी कि कभी आप ये ना सोचे कि घर के नुस्खे से ही हम ठीक हो जाएंगे, बल्कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि आपको डॉक्टर के पास ही जाना जरूरी होता है। सो श्रोताओं, हम लेंगे यहाँ से जाने की इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर से कनेक्ट होंगे और करेंगे और बातें, और फिर हम बोलेंगे आपको बाय बाय।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा गाना एंजॉय किया आपने आज रीना और आज खुशी के साथ। सो अब हम लेंगे यहाँ से जाने की इजाजत, लेकिन जाने से पहले आज के शो का सबसे बड़ा संदेश यही है कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज ना करें। परिवार की जिम्मेदारियां निभाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। याद रखिए, अगर महिला स्वस्थ है, खुश है, तो पूरा परिवार भी खुश और स्वस्थ रहता है। इसीलिए हमें अपने स्वास्थ्य के साथ साथ हमारी प्यारी वुमनिया के जो स्वास्थ्य हैं उनके ऊपर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। और घर में जितने भी वुमनिया हैं, बस एक दूसरे की हेल्प करें, साथ रहे, क्योंकि आप साथ रहकर आगे बढ़ोगी तो फैमिली और भी आगे जाता है। तो इसीलिए हमें कभी किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए, तो परिवार और समाज दोनों स्वस्थ रहेगा। और इसी के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत। तो हम आप सभी के साथ फिर से कल कनेक्ट होंगे दूसरे टॉपिक के ऊपर। अभी के लिए दीजिए जाने की इजाजत। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। यूं ही पानी पीते रहिए क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, और मौसमी फल खाते रहिए, खरबूज, तरबूज, बहुत से ऐसे फल है, कीवी कहते हैं, छोटा पैकेट बड़ा धमाल, तो इसीलिए कीवी का सेवन करिए जिसे आयरन भरपूर मात्रा में मिलता है। और साथ ही साथ अंजीर जो पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, सो उसको भी आप जरूर खाएं। और एक और सब्जी है जो सभी फ्रूट से 10 गुना ज्यादा उसके अंदर विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, वो है मोरिंगा, जो लंबे फलियां होती हैं। और मोरिंगा का आप सूप बनाकर पीजिए, सब्जी बनाकर खाइए, सभी फलों से भी ज्यादा गुण होता है उसके अंदर, सब्जियों से ज्यादा पावर होती है उसके अंदर, सो इसको जरूर आप अपने डाइट में शामिल करें, इसको शामिल करना बहुत जरूरी है। सो चलिए गाइस, बाय।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
2: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
1: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
2: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
1: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
3: मुरादाबाद से
1: संपर्क कीजिए।
2: नियम और शर्तें लागू।

0: हेलो जी, गुड वाली आफ्टरनून है आज रीना के साथ फरमाइशों में। और समय की बात करो श्रोताओं, तो 3:13 हो चुके हैं और आज का मौसम भी बड़ा ही औसम है। तो देखिए श्रोताओं, आज आपने क्या करना है, यानी कि हमें कॉल करना है। नंबर है 9823789698 अगर आप गाना सुनना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमें कॉल करिए। किसी को आप डेडिकेट करना चाहते हैं तो भी आप नाम मेंशन कर सकते हैं, लेकिन नाम सिर्फ और सिर्फ आपके दो इंसान के ही नाम लेने हैं, या फिर आपके जितने दोस्त हैं आप कह सकते हैं मैं अपने सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहता हूं, लेकिन दो नाम से ज़्यादा आप नाम नहीं ले सकते हैं। इसीलिए आपका ये जो शो है फरमाइश शुरू हो चुका है, आप कॉल कर सकते हैं और गाना सुन सकते हैं। तो चलिए आखिरकार हमारे फर्स्ट कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो,
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून। नमस्कार सर, कैसे हैं आप?
1: सब बढ़िया है, आप बताइए। हमारे
0: सब बहुत बढ़िया है सर, आप बताइए कि आप कैसे हैं?
1: सब बढ़िया है, आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, सुबह में सुना और अभी सुन रहे हैं दोपहर से।
0: चलिए जी,
1: आपका प्रोग्राम कर रहा है फरमाइश।
0: जी जी जी, आप अपने बारे में तो बताइए। ओके जी ओके, तो बताइए सर आज कौन से गाने सुनना चाहते हैं आप?
1: इनका नाम है इंसानियत के दुश्मन। गाने के बोल हैं अमीर से होगा या गरीब से होगा, प्यार जो भी होगा नसीब से होगा।
0: क्या बात है जी, सुरेश वाडकर जी की आवाज में है ये।
1: अरे हमारे साथ में है जो हमारे रेडियो श्रोता सैयद तारी कहते हैं, सैयद खाना से साहब इसे नम तारी है, इधर सर मुरादाबाद से सत्या नम तारी।
0: ठीक है ठीक है, आप साहब गाने समाधि राम बोलते हैं। ओके ओके सर, सर सिर्फ दो नाम लेने हैं, सिर्फ दो नाम। ठीक है जी, हम आपको ये गाना सुनवाते हैं। ठीक है
1: ठीक है, नमस्कार।
0: ओके जी नमस्कार। तो चलिए श्रोताओं ये गाना सुनते हैं और आप सभी से यही कहना चाहेंगे, सिर्फ और सिर्फ दो गाने ही, मतलब दो इंसान के ही आप अपने नाम ले सकते हैं जो आपके दोस्त हैं, सिर्फ दो इंसान के नाम लेने आपने। चलिए आते हैं लौट कर जी।

0: हेलो जी, हेलो, गुड वाली आफ्टरनून है। आज रीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। सुरेश वाडकर जी की आवाज़ में बहुत ही आपने खूबसूरत गाना एंजॉय किया है। और समय की बात करूँ तो 3:31 हो चुके हैं श्रोताओं, फरमाइशों में आज रीना के साथ कनेक्ट है। और देखिए, इसमें कुछ नहीं करना होता, बस सिंपल सा फंडा है, अपने फ़ोन उठाना है और हमें कॉल करना है। नंबर है 9823789689 पर आप कॉल करके आप अपने फेवरेट वाला गाना एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए अपने सेकंड कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी सर, नमस्ते। हेलो जी, उनका एकदम ही कॉल कट गया है, लेकिन कोई बात नहीं, नेटवर्क इश्यू हो जाता है, बट हम आपका गाना ज़रूर प्ले करेंगे सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो। आपका जो गाना है ये तू गंगा की मौज, ये वाला मैं गाना आपको ज़रूर सुनवाऊंगी। तो फिलहाल इस गाने को एंजॉय करते हैं और लौट कर आते हैं श्रोताओं, कॉल करते रहिए 9837 8968 96।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है ZIG प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। ZIG करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: जी हेलो, गुड वाली आफ्टरनून है। आज रीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करो श्रोताओं, तो 3:29 हो चुके हैं, यानी कि अपने पास समय है। लेकिन कल के लिए आप सोच रहे होंगे कि कल संडे है और संडे को फरमाइश शो आएगा, तो बिल्कुल भी नहीं। आज के पास, आज यानी कि आपके पास मौका है हमें कॉल करने के लिए, और उनसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जिन्होंने इस वीक कॉल किया है, यानी कि मंडे ट्यूसडे वेनेसडे, रिक्वेस्ट है कि कॉल ना करें। अगर आप कॉल कर भी रहे हैं तो यहाँ पे शो हो जाता है, आपका कॉल कोई नहीं उठा पाएगा। इसीलिए जिन्होंने इस वीक कॉल नहीं किया है वही कॉल करें। चलिए फिलहाल अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो, मझोले से बोल रही हो? क्या नाम है आपका?
1: स्वाति।
0: क्या करती हो आप?
1: स्टडी सिक्स्थ क्लास में
0: हो आप? ओके, तो ये बताओ हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है?
1: मोदी।
0: हाँ। ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, वो हमसे बड़े हैं ना?
1: यस।
0: तो बड़ों को ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है?
1: मोदी जी।
0: हाँ, मोदी जी। ठीक है, अब बताओ कौन सा गाना सुनना चाहती हो आप? शुरू से पता है आपको, स्टार्टिंग से क्या नाम है इसका, जरा बताओ मुझे आज।
1: टूट गई चूड़ियां कलाई।
0: नहीं, स्टार्टिंग से साजन तुमसे प्यार की लड़ाई में। किसके साथ सुनना चाहती हो आप ये?
1: मम्मी पापा और आपके साथ।
0: अच्छा, तो आप हमारे स्टूडियो कब आओगी?
1: परसों मैं आपके स्टूडियो के सामने से निकली।
0: ओए, फिर आप यहाँ नहीं आई?
1: पापा कह रहे हैं कि मजा।
0: अच्छा, ये तो गलत बात है। आपको, आपका मन नहीं करता हमसे मिलने?

0: करने के लिए?
1: करता है,
0: तो आ जाए करो।
1: लेकिन कोई डांटेगा तो?
0: अरे कोई भी नहीं डांटेगा, यहाँ पर प्यार करेंगे सब आपसे। तो आप तो बच्ची हो, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी परी हो।
1: सुनाना।
0: हाँ, सारी सुनाओ आप।
1: बादल बादल बरसा पानी, आज नहाएंगे मनमानी।
0: चलो, आपकी ये शायरी सुन के आज बारिश आ ही जाएगी, है ना? ठीक है जी, अब मैं सुनाती हूँ आपको गाना, ठीक है? अरे खत्म होने के बाद भी सुना दो? ठीक है जी, पूरा सुनाएंगे आपको। भैया छोटे छोटे बच्चे भी कहते हैं पूरा गाना सुनवाना, मैं क्या, कोई बात नहीं जी, खत्म होने तक सुना देते हैं। चलिए जी, लौट कर आते हैं, और फिलहाल इस गाने के साथ एंजॉय करिए आप भी। वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं अगर आप ऑन द वे हैं तो।

0: क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। मैंने प्यार क्यों किया मूवी से आपने गाना एंजॉय किया श्रोताओं। और समय की बात करूँ तो 3:36 हो चुके हैं। फरमाइश शो में आप आर्जरीना के साथ कनेक्ट हैं, जहाँ आपने कॉल करना होता है और आप अपने पसंद के गाने सुन सकते हैं। तो चलिए अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। और साथ ही साथ अगर आप मैच देखने के दीवाने हैं तो ODI मैच यानी कि थर्ड मैच है कल, यानी कि 3:30 आप देख सकते हैं। अगर आप मैच देखने के दीवाने हैं तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच ये मैच होगा। चलिए फिलहाल कॉलर से बात करते हैं। हेलो,
1: नमस्कार,
0: नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? ओके
1: हीराम, हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: भगवान जी, कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं दीदी, बहुत बढ़िया है। और अभी पानी का मौसम हो रहा है, हो सकता है 10-11 दिन के बाद हमारे यहाँ पानी गिर जाए दीदी, बरसात हो जाए।
0: अच्छा, चलिए अच्छी बात है। आप तो भगवान जी है, वैसे भगवान जी से बोलिए कि भगवान बारिश कर दे।
1: दीदी हमारे हाथ में नहीं है,
0: आपके हाथ में नहीं है सर, अपने हाथ में होता है। भगवान जी से प्रार्थना करिए, बारिश आ जाएगी।
1: प्रार्थना कर सकते हैं दीदी।
0: हाँ तो बताइए सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: फिल्म का नाम है बंजारन, गाने के बोले दीदी मेरे दिल की गलियों में कब से तू आबादी, ये वाला गीत सुनना है दीदी।
0: ओके सर, किसके साथ सुनना चाहते हैं?
1: अभी सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे दीदी, लाइव सुन रहे हैं और आपको भी सुनाना चाहेंगे दीदी। धन्यवाद
0: चलिए जी, सभी दोस्तों के साथ आपको ये गाना सुनवाते हैं। ठीक है जी,
1: दीदी।
0: ओके जी, शुक्रिया। चलिए जी, गाना सुनते हैं, बहुत ही शानदार, यानी कि मेरे दिल की गलियों में। फिलहाल दिल में नहीं जाना है जी, बस गाना सुनना है। ओके।

0: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
1: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
1: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना पुराना सोना लाओ नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस उत्सव ज्वेलर्स आभूषण एक खुशियां अनेक आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद कॉल करें 7055070552
5: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी हाई शुगर पीलिया हार्ट प्रॉब्लम किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज बांझपन का आधुनिक इलाज पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा अत्याधुनिक लेबर रूम OT SICU MICU हमारी पहचान है एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा
6: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है ZIG प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई ZIG करो स्वच्छता की जिद करो

0: जी गुड वाली इवनिंग है अर्जुनीना के साथ एफ एम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी। फरमाइशों में कनेक्ट है। समय की बात करूं तो 3:46 हो चुके श्रोताओं, और टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। और ये कहा जा रहा है कि रात के यानी कि 12 से 1 बजे के बीच में अगर बारिश आएगी, और वो बारिश कल सुबह तक होने वाली है। तो आज तो बारिश नहीं हो पाई, बस भगवान जी ने थोड़ा सा ही दर्शन दिया है सुबह सुबह, और उसके बाद बारिश तो ऐसे खत्म हुई, बस उमस वाली गर्मी रह गई है। लेकिन कल बताया जा रहा है कि बारिश आने की पूरी पूरी संभावना है, तो आप बस एंजॉय करिए, कल के लिए तैयारी रखिए पकौड़े सकौड़े के लिए। चलिए फिलहाल अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं जबलपुर एमपी से आपका श्रोता सुखी बात कर रहा हूँ। और रीना जी कैसी हैं आप?
0: बहुत बढ़िया हूँ सर, मैं एकदम मस्त हूँ। आप बताइए आपके फैमिली में सब ठीक है?
1: सब ठीक है इधर, आपके उधर परिवार? और हरियाणा में मौसम कैसा है?
0: हरियाणा में सर मौसम इतना गर्म है कि क्या ही बताएं।
1: इधर तो आज रात भर चपटता रहा, अभी तो खुला है, धूप है।
0: चलिए अच्छी बात है, बारिश आ रही तो मौज लीजिए, इधर गर्मी बहुत ज्यादा है, परेशान हो रहे हम सब तो।
1: हाँ तो बारिश नहीं हुई अभी तक, ऐसे बिगाड़ता ही है बस।
0: हाँ ठीक है जी,
1: ले रहे हैं अच्छा है, मगर गाना सुना दीजिए, पुराना गाना है जिंदगी और तूफान।
0: ठीक है गाना सुनवाते हैं आपको। ठीक है जी,
1: आप और सभी मुरादाबाद सुनने वाले श्रोता बंधुओं को नमस्कार।
0: जी नमस्कार आपको भी। चलिए श्रोताओं गाना सुनते हैं, बहुत ही शानदार। जिंदगी और बता तेरा क्या है इरादा, जिंदगी का बस एक ही इरादा है, संघर्ष करते रहिए जबी आप आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज हार मान लिया तो समझ लीजिए आप वहीं हार मान गए। इसीलिए कभी हार नहीं माने, संघर्ष करते रहिए।

0: गज वाली इवनिंग है आरजे रीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। जिस समय की बात करूं तो 3:54 हो चुके हैं श्रोताओं, और आइए अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी सर, नमस्ते
1: जी। हेलो जी, नमस्ते मैम
0: जी। नमस्ते, क्या नाम है आपका?
1: जिला रामपुर ग्राम से वकील अगरम बात कर रहा हूँ आपसे।
0: हाँ जी, और बताइए कैसे हैं?
1: एकदम अच्छे मैम। लंबे अंतराल के बाद में बात हो रही है, तो हाल चाल और भी अच्छे हो रहे हैं।
0: चलिए जी, दुगना हो जाना चाहिए सर तो फिर तो।
1: लेकिन मैम काफी दिनों के बाद आज आपकी हेलो फरमाइश सारे के लिए आवाज सुनी है, और आपसे बात भी हो रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपसे बात करने का अंदाज बहुत अच्छा लगता है।
0: थैंक यू सो मच सर।
1: लेकिन मैम आप इतने अच्छे तरीके से प्रोग्राम पेश करती हैं, हेलो फरमाइश हो के श्रोताओं के पसंद के गीत सुनवाती हैं, और तमाम दूर दूर से श्रोताओं की कॉल आती है, ये बहुत अच्छा लगता है मैम। जानकर खुशी होती है कि उस शहर से कॉल आ रही है और गाने सुनते हैं, तो काफी अच्छा लगता है।
0: जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। बताइए कि आपकी फरमाइश क्या है?
1: देखिए मैम, जब हेलो फरमाइश में रामपुर से कॉल शामिल हो रही है, तो मूवी रहेगी वक्त हमारा है।
0: वक्त तो अपना ही होता है सर, बस पहचानना होता है।
1: जी मैम, ऐसा मस्ताना मौसम हो रहा है, तो इसी मस्ताना मौसम के ऊपर एक सॉन्ग है, मौसम है मस्ताना, इस टाइप से बोले।
0: ओके ओके जी, मौसम है मस्ताना, वक्त हमारा मूवी से।
1: जी, मेरे साथ में मेरे दोस्त हैं।
0: सिर्फ दो नाम, दो दोस्त के नाम लेने हैं?
1: जी मैम, मेरा तो एक ही दोस्त है।
0: ठीक है।
1: डिस्ट्रिक्ट रामपुर ग्राम खेत एंड से मोहम्मद कामिल
0: जी
1: सुनने वाले हैं, सभी सॉन्ग डेडिकेट रहेगा मैम।
0: चलिए जी, सभी के साथ आपको ये गाना सुनवाते हैं, ठीक है जी?
1: थैंक यू, बाय।
0: ओके जी, ओके बाय। चलिए, मौसम है मस्ताना गाना सुनते हैं श्रोता, और लौट कर आते हैं आप सभी। अब मुलाकात होगी यानी कि दूसरे घंटे में, यानी कि 4:00।

0: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
2: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
3: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
2: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
3: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
4: मुरादाबाद
2: से संपर्क कीजिए।
3: नियम और शर्तें लागू।

0: हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है अर्जुरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करें श्रोताओं, तो दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है। फरमाइशों में आप अर्जुरीना के साथ कनेक्ट है, यानी कि 4:05 हो चुके हैं और अपने पास सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा और बचता है श्रोताओं, तो आप आराम से कॉल कर सकते हैं बिंदास बेधड़क होकर, क्योंकि कल संडे है और संडे को आपको भी पता है कि ये फरमाइश शो नहीं आता है। तो आज का जो मौका है हमारे पास, हमें चांस मिल रहा है, तो उस चांस को नहीं गंवाना चाहिए। चलिए फिलहाल हम यानी कि दूसरे घंटे के फर्स्ट कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो,
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते जी, क्या नाम है आपका? हेलो
1: जी, बीबीपुर से मकबूल हुसैन बात कर रहा
0: हूँ। ओके जी, बताइए कैसे हैं सब?
1: बस बढ़िया है मैम, आप थोड़ा आप कैसे हैं? दरअसल हमारे बहन दीदी के भी बहुत नखरे हो रहे हैं।
0: नखरे हो रहे हैं, अच्छी बात है जी। रक्षाबंधन आने वाला है ना, इसीलिए नखरे हो रहे हैं।
1: अच्छा, तो नाराज इसमें नाराज होने के बाद कुछ नहीं मिलेगा ना, तो नाराज हो गया तो नखरे दिखाओगे तो कुछ भी ना दूंगा।
0: नखरे भाई के आगे दिखाए जाते हैं सर।
1: अच्छा।
0: और क्या सर, भाई बहन का रिश्ता अनमोल होता है सर।
1: हाँ ये तो है, आपकी वजह से मैंने पूरा सपना खोल दिया मैं।
0: हाँ जी,
1: आपकी वजह से मैंने इस हफ्ता खोल दिया, मैंने कहा मैं मैम से बात करूंगा अरीना जी से।
0: ओके ओके जी, थैंक यू। बताइए सर, फिर कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: ईद के बोल है, पता नहीं पावी है कौन सी है, गीत के बोल है, अब चाहे मारू थी या बाबा यारा मैंने तो हाँ कर ली। और दो नाम को बता रहे आप, तो मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी, गफ्फार हाजी जी, मोहम्मद की तरह।
0: ठीक है जी, सभी के साथ आपको ये गाना सुनवाते हैं। ठीक है जी,
1: थैंक यू।
0: ओके ओके ओके जी, चलिए श्रोताओं गाना सुनते हैं। दाग मूवी से ये गाना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने रिलिक्स यानी कि लिखे हैं। और अगर म्यूजिक की बात करूँ तो लता मंगेशकर जी और किशोर कुमार जी की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत ये गाना। और इस गाने को सुनिए, एंजॉय करिए, लौट कर आते हैं इस स्टेशन पर।

घर छोटे

0: फूटे या माथा
1: अब तक

0: हेलो जी, हेलो, गुड वाली अर्जुरीना के साथ फरमाइश शो में और समय की बात करूँ श्रोताओं, तो 4:14 हो चुके हैं और आइए अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो हेलो,
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? कौन बोल रहे हैं?
1: शाकिर।
0: ओके जी, बताइए कैसे हैं सर आप?
1: बढ़िया मैम, आप सुनाइए कैसे हैं आपके स्टूडियो में सब लोग?
0: सब बहुत बढ़िया, एकदम मस्त है। शाकिर बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हो?
1: मैम गाना सुनना है पत्थर के सनम का।
0: पत्थर के सनम तुझे। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। ओके ओके, मूवी का नाम भी यही है। ओके जी, टाइम किसके नाम लेना चाहेंगे?
1: ये हमारे दोस्त काम कर रहे हैं हमारे पास, दानिश भाई।
0: चलिए जी, उन्हीं के साथ आपको ये गाना सुनवाते हैं, ठीक है? ओके ओके ओके, चलिए श्रोताओं गाना सुनते हैं, पत्थर के सनम तुझे हमने। ये गाना अभी सुनने के बाद पता चलेगा प्रॉपर पूरा, और ये मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आप ये गाना एंजॉय करेंगे। और पत्थर के सनम यानी कि ये मूवी रिलीज़ हुई थी 1967 में। जो पुराने गाने होते हैं वो सच में सदाबहार होते हैं, और आपको आप उनको जितनी बार भी सुन लो ना, आपके कान ना बोर नहीं होंगे, वो बोलेंगे कि नहीं यार एक दो बार और रिपीट करो, इसको सुनना है। क्योंकि जो सदाबहार जो पुराने गाने हैं ना, वो एकदम मस्त होते हैं, फैंटास्टिक होते हैं। सो चलिए इस गाने को सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं शो में। और आपसे यही कहना चाहेंगे कि कॉल करते रहिए, नंबर है 9823789689 पर।

0: क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है श्रोताओ, मोहम्मद रफी जी की आवाज में। गुड वाली इवनिंग है जी, आरजेरीना के साथ आप कनेक्ट है फरमाइश शो में। और समय की बात करूँ तो यहाँ पर 4:20 हो चुके हैं और आज के टेम्परेचर यानी कि 38 डिग्री सेल्सियस, और कल बताया जा रहा है भैया बारिश की संभावना जताई जा रही है कल, यानी कि जो थोड़ी सी गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी अब उससे थोड़ा सा राहत मिलने वाला है, लेकिन राहत भी बस जिस दिन बारिश आती है उस दिन तक, उसके बाद फिर से वही गर्मी है ना। लेकिन क्या ही करें, अब हर वेदर में हमें रहना है, तो बस अपनी सेहत का ध्यान रखिए, आप पानी पीते रहिए क्योंकि पानी पीना बहुत ज़रूरी है। बॉडी में पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, अगर बॉडी में पानी की कमी होती है तो बहुत सी चीज़ें हैं बॉडी के अंदर जो प्रॉब्लम शुरू करना स्टार्ट कर देती हैं, तो अपना ध्यान रखना है जी। चलिए फिलहाल अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ जी बोलिए, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया है मैडम जी।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम मोहन सिंह हरि सिंह ठाकुर, महाराष्ट्र हिंगोली जिला।
0: अच्छा, महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं आप, वहाँ का वेदर कैसा है सर?
1: अभी तो बारिश चालू है मैडम जी, और आधा घंटा पहले भी गिरी है और चालू भी है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, क्या करते हैं आप?
1: मेरा हम खेती बाड़ी करते हैं और साथ में भैंस तो भैंसा है।
0: ओके ओके ओके, खेत में क्या बो रखा है सर अभी आपने?
1: सोयाबीन, तुवर, हल्दी, कपास।
0: अच्छा कपास,
1: हाँ जी कपास भी लगा दें।
0: अच्छा अच्छा, तो उसकी खेती कैसे करते हैं सर कपास की?
1: चार बाई चार, चार फुट अंतर बीच में रहता है और उसको ऐसा एक फुट पे ऐसे लगा दे जाते हैं मैडम।
0: ओके ओके,
1: बोले तो हल्दी की जो तुम्हार को समझ में नहीं आएगा, उसको सरी गिरानी पड़ती है ट्रैक्टर से, सरी उसके वटम, हाँ उसका वटम ये गिरता है।
0: ओके,
1: उसके ऊपर हल्दी भी लगाते हैं, सोयाबीन भी लगाने आता है, तुअर भी लगाने आती है, जैसे अपने हिसाब से।
0: ओके ओके ओके सर, एक्चुअली आपसे पूछना जरूरी है ना कि सर बहुत से श्रोता हमें सुन रहे हैं तो उनको भी जान,
1: जो महाराष्ट्र के है वो सुन लेंगे, वो उनको एक ही बात में समझ में आ जाती है मैडम जी।
0: हाँ हाँ हाँ,
1: कि हल्दी किस तरह से लगाते हैं, सोयाबीन कैसे लगाते हैं, बोते हैं, क्या तुअर किस तरह से लगाते हैं, वो समझ जाएंगे।
0: अच्छा अच्छा, हल्दी का तो सर मुझे भी पता है, जैसे आपने कपास का बोला था ना उस चीज का नहीं पता है।
1: उसको आवरता लगा के कपास ऐसी लगानी पड़ती है, उसकी एक बीज रहती है, उसको एक एक एक एक एक फुट पे ऐसी लगाना पड़ता है।
0: ओके ओके ओके जी, चलिए बताइए सर आप गाना बताइए, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मैडम जी बेवफा सनम है, करे ना कपूर, अक्षय कुमार वाजी, और उसके एक गीत है।
0: हाँ जी,
1: और गीत के बोल है, मैं तेरा आशिक हूँ जमाने से, रिश्ता चुपता नहीं चुपाने से,
0: चुकाने से
1: आशिक हूँ जमाने।
0: जी
1: हाँ, गाने के बोल है मैडम,
0: अभिजीत सिंह की आवाज में ये गाना है।
1: अभिजीत भट्टाचार्य
0: जी,
1: अभिजीत सिंह नहीं, अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज।
0: जी जी, 2005 में ये मूवी रिलीज हुई थी।
1: हाँ
0: जी, चलिए आपको हम गाना सुनवाते हैं, ठीक है सर?
1: थैंक यू, धन्यवाद मैडम जी।
0: थैंक यू जी, थैंक यू, अच्छा लगा आपसे बात करके, कॉल करते रहा करिए आप सब लेकिन वीक में सिर्फ और सिर्फ एक बार। चलिए जी गाना सुनते हैं, लेकिन गाना सुनने से पहले कुछ कमर्शियल एड ब्रेक है श्रोताओ।
2: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा, चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर, 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीज एब्सोल्युटली फ्री, साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट, विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद, कॉल नाउ 9412211111।
3: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद,
4: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक,
3: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
4: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई,
3: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी,
4: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
5: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077। डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
6: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
3: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
6: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

0: हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है। फरमाइश शो में आर्जरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करो श्रोताओं, तो 4:36 हो चुके हैं और से बात करते हैं, सुनना चाहते हैं। हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ जी सर, नमस्ते, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया मैम, अपना सुनाइए।
0: मैं बहुत बढ़िया हूँ। क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: जी मैम, मेरा नाम मोहम्मद कामिल है, मैं जैनपुर मुरादाबाद से।
0: ओके ओके जी, बताइए सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज आप?
1: गाने का बोल है, तेरे नाम के सारे जिंदगी गुजार देंगे, क्या बेवफा तुझे दिल से निकाल देंगे।
0: अच्छा, जा बेवफा तुझे दिल से निकाल देंगे
1: जी।
0: ठीक है जी, किसके साथ सुनना चाहते हैं?
1: फिलहाल तो मैं इतना ही हूँ, जिसके साथ सुनना चाहता था वो मुझे धोखा देकर चली गई, इसलिए ये गाना मैं इसलिए ही सुनना चाहता हूँ। मेरा बहुत बुरा दिल टूटा हुआ है मैम, बहुत बुरा दिल।
0: सर देखिए, अब जो जो जाने वाला है उसको तो आप रोक नहीं सकते हो, इसीलिए कहते हैं कि अटैचमेंट थोड़ा सा कम बना के रखनी चाहिए, क्योंकि हमें सामने वाला का नहीं पता कैसा है कैसा नहीं है। अब जो जाएगा उसको तो आप रोके भी नहीं सकते, चाहे कितनी भी पाबंदी लगा लेती है, लेकिन अब उसी के सहारे आप परेशान रहेंगे, टेंशन लेंगे, तो फिर आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बस ये समझ के अपनी ज़िंदगी एंजॉय करिए कि जो होना है वो अच्छा ही होता है लाइफ में, आगे क्या पता और भी बेटर हो आपके लिए, अच्छा ऑप्शन हो। भगवान ने देखो जो होता है इस लाइफ में अच्छे के लिए होता है, बस हम सोच लेते हैं, हमारा एक्सपेक्टेशन इतना ज्यादा होता है ना सर, कि हम उसी से उम्मीद लगा लेते हैं, उसे आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, लेकिन भगवान ने कुछ तो सोचा होगा ना, इसीलिए आप उसे अलग कर दिया। ठीक है जी, तो आगे बढ़िए। ये मैं सोचिए कि वो चली गई तो मैं ऐसा गाना सुनूंगा, मैं कोई काम नहीं करूंगा, आप अपने काम पर फोकस रखिए, ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए ही करता है जी। तो अब मैं आपको ये गाना सुनवाती हूँ, किसी का नाम नहीं लेना है ना आपको?
1: हमारी सिस्टर है फलीमा और हमारे दोस्त हैं मुनव्वर और बस मैं हूँ।
0: ठीक है, चलिए चलिए, फैमिली वालों के साथ एंजॉय करिए, घर वालों के साथ, अपने काम पर ध्यान दीजिए। ठीक है जी,
1: ओके मैम,
0: ओके ओके। चलिए जी, गाना सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं। और सही बात है श्रोताओं, हमें किसी से अगर आप अटैच हो जा रहे हैं तो इतना अटैचमेंट मत रखिए कि कल को वो इंसान जाता है आपसे दूर तो आप उसके बिना ना रह पाए। इसीलिए कुछ मतलब प्यार खुद से करिए, इतना खुद से प्यार करिए कि आपको जरूरत ही ना पड़े किसी और की। चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं, लौट कर आते हैं।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: जी हेलो, गुड वाली इवनिंग है फरमाइश शो में आर्जरीना के साथ आप कनेक्टेड श्रोताओं। और समय की बात करूँ तो 4:47 हो चुके हैं और आइए अपने अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी सर बोलिए। नमस्ते
1: जी। नमस्ते मैम, ठीक है?
0: हाँ जी हाँ जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हैं?
1: अच्छे हैं, हम भी ठीक हैं, बढ़िया हैं।
0: चलो अच्छी बात है सर, बढ़िया ही रहना चाहिए ना
1: जी।
0: नाम बताइए अपना, कहाँ से बात कर रहे हैं
1: जी? मोहम्मद रिजवान सिरसमदराय से बात कर रहे हूँ।
0: ओके जी, बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज?
1: जी गाना सुनना है चांदनी मूवी का, रंग भरे बादल में मैंने दिल पे लिख दिया तेरा नाम चांदनी।
0: ओके, किसी का नाम श्रीदेवी की जो है ये वाला गाना?
1: जी जी श्रीदेवी का।
0: ओके ओके, किसी का नाम लेना चाहेंगे?
1: जी दोस्त है, दो दोस्त है, एक तो भाभी है हमारी।
0: हाँ, दो दो ही दोस्त के नाम लेने हैं सर
1: जी, बस एक साथ में भाभी है हमारी। हाँ। नाम है उनका।
0: अच्छा,
1: और एक हमारे भैया सगीर।
0: चलिए जी, उन्हीं के साथ आपको ये गाना सुनवाते हैं, ठीक है?
1: ठीक है ठीक है।
0: और सभी सुनने वालों के साथ तो अब देखना ये है भैया कि लास्ट लकी कॉलर कौन हमारे साथ कनेक्ट होते हैं और फिर हम लेंगे ऐसे जाने की इजाजत और अपनी मुलाकात होगी सीधा मंडे इवनिंग मस्ती शो जो कि 5 बजे से लेकर शाम 7 बजे को आता है।

0: क्या बात है जी, चांदनी मूवी से ही आपने गाना एंजॉय किया है। ओ मेरी चांदनी, श्रीदेवी की, ओ माय गॉड, इनके डायलॉग और इनके डांस, इनकी अदाएं, हाय हाय, जो हमेशा हर किसी के दिलों में राज करती ही रहेंगी। चाहे वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में, उनकी अदाएं हर किसी के इंसान के दिल में बस यूं ही उजागर है और हमेशा हमेशा ही रहेगा, क्योंकि ये ऐसी एक्टर थी भैया कि हर चीज में परफेक्ट। यानी कि इनका कहना था, जब ये शूटिंग पर जाती थी तो रीटेक तो नाम ही नहीं होता था, रीटेक लेती ही नहीं थी भाई, एक बार में फाइनल फाइनल डन हो जाता था, ऐसी एक्टर थी ये। चलिए, गुड वाली इवनिंग है, यानी कि फरमाइश शो में आप आरजे रीना के साथ कनेक्टेड श्रोता हो और लास्ट लकी कॉलर हमारे साथ कनेक्ट हो गई है। समय की बात करूँ तो 4:54 और इसी लास्ट कॉलर के साथ हम लेंगे यहाँ से जाने की इजाजत। लेकिन जाने से पहले चलिए बात करते हैं। हेलो हेलो
1: हेलो फरमाइश, गुड इवनिंग जी।
0: वेरी गुड इवनिंग जी, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ जी, आप कैसी हो? मैं भी सब स्टूडियो में
0: बहुत अच्छे हैं, हमारे स्टूडियो में एकदम मस्त हैं। आप बताइए कि आपको हाँ जी, फैमिली में सब कैसे हैं?
1: सभी ठीक है जी यहाँ पे भी।
0: ओके, अच्छी बात है। आप अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर रही हैं?
1: जी मैं जिला मुरादाबाद ग्राम गोदी से निकट फातिमा आपसे बात कर रही हूँ।
0: ओके जी फातिमा जी, बताइए आज कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आप?
1: जी मूवी का नाम रहेगा पुलिस और मुजरिम, और उसी में सॉन्ग है रोशनी तू है मेरी जिंदगी तू है।
0: ओके, बहुत अच्छा गाना है और आप लास्ट लकी कॉलर हाँ बनी हैं, तो बताइए कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत अच्छा लग रहा है जी, काफी दिनों के बाद लास्ट कॉल हुई है मेरी।
0: लग गई ना, बस ये है कि कॉल लग जानी चाहिए।
1: हाँ, लग जानी चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो
1: मैं प्रयास करती हूँ तो लग ही जाती है मेरी कॉल,
0: वो पता है कि
1: नहीं होती।
0: नहीं, वो पता है जो शिद्दत से करते हैं ना, उनकी कॉल लग जाती है,
1: लग जाती है।
0: हाँ, बस दिल होना चाहिए। हाँ भाई, मैं दिल से, देखो दिल से आप जो भी काम करोगे ना, वो काम आपका सफल ही हो जाता है।
1: हाँ जी, मैं दिल से ही कॉल लगाती हूँ, मुझे ज्यादा दिक्कत होती ही नहीं है कभी।
0: हाँ, अच्छी बात है। तो और भी श्रोता जो सुन रहे होंगे ना, वो भी अब ये कहेंगे नहीं यार, मन में कुछ नहीं होना चाहिए, बस दिल से कॉल लगाओ, लग जाती है।
1: दिल से कॉल लगाओ, हाँ जी लग जाती है।
0: हाँ जी, तो चलिए हम आपको ये गाना सुनवाते हैं, कुछ जाते जाते कहना चाहेंगे?
1: जी मैं ये कहना चाहती हूँ रेडियो से जुड़े रहे सभी
0: और रेडियो सुनते रहे, है ना, प्यार लुटाते रहे।
1: हाँ जी, रेडियो सुनते रहे।
0: चलिए जी, सुनवाते आपको गाना, ठीक है?
1: ओके थैंक यू जी, बाय।
0: ओके बाय। चलिए जी, अब हम लेते हैं यहाँ से जाने की इजाजत। फिलहाल ये गाना बहुत ही शानदार है, मेरी मोहब्बत तुझसे, यानी कि पुलिस और मुजरिम मूवी से कृष्ण कविता कृष्ण मूर्ति की आवाज में और मोहम्मद अजीज जी की आवाज में, बहुत ही खूबसूरत ट्रैक। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, पानी पीते रहिए।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
4: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे आईटीएम यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
5: नैक द्वारा ए ग्रेड एनआईआरएफ में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
4: डिप्लोमा से पीएचडी तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
5: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
4: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
5: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
6: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
7: और उद्यमशीलता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साहसिक सुधारों का समर्थन मिलता है तो क्या हासिल किया जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के पहले निजी तौर पर विकसित प्रक्षेपण यान विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण पर स्काईरूट एरोस्पेस को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि ये अंतरिक्ष को अधिक सुलभ बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि ये ऐतिहासिक उपलब्धि भारत की अंतरिक्ष यात्रा में परिवर्तनकारी अध्याय की शुरुआत है। श्री बिरला ने कहा कि विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण के साथ भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र ने अपनी बढ़ती तकनीकी उत्कृष्टता, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का प्रदर्शन किया है। संसद का मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। मानसून अधिवेशन 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने इनोवेट इंडिया माईगॉव मंच पर इंडिया पोस्ट शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है। इसका उद्देश्य इंडिया पोस्ट के लिए ऐसा आधिकारिक शुभंकर तैयार करना है जो संगठन के विश्वास, विश्वसनीयता, सेवा और डिजिटल नवाचार जैसे मूल्यों का प्रभावी प्रतिनिधित्व करे। ये प्रतियोगिता सभी नागरिकों के लिए है। प्रतिभागियों को माईगॉव पोर्टल के माध्यम से मौलिक शुभंकर डिजाइन, उसके लिए उपयुक्त नाम और संक्षिप्त अवधारणा पत्र जमा करना होगा। प्रतियोगिता में प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 15 अगस्त है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच देर रात 2:30 बजे अमरीका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल सेमीफाइनल में आज सिंधु ने चीन की चेन यूफी को पहले गेम में हराया। दूसरे गेम में चेन यूफी को चोट के कारण सिंधु को वॉकओवर मिला। प्रतियोगिता के फाइनल में कल सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
1: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
1: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट
2: और एडमिशन कॉल 9639004077
3: मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना और आप सुन रहे अपने शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी और आज फिर आप सभी के बीच कनेक्ट हो गए हैं कुछ खास बातें लेकर कुछ नई बातें लेकर जिसके बारे में हमें अक्सर पता नहीं होता है सो आज के यानी कि लीगल टॉक्स शो में बात करेंगे साइबर क्राइम के बारे में आजकल एक ऐसा अपराध तेजी से बढ़ रहा है जो बिना हथियार के भी आपकी मेहनत की कमाई पर हमला कर सकता है जी हाँ हम बात कर रहे हैं साइबर क्राइम की एक छोटी सी गलती एक अनजान लिंक पर क्लिक या किसी फर्जी कॉल पर भरोसा करना और आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है आजकल ऑनलाइन फ्रॉड फेक OTP कॉल्स यानी कि सोशल मीडिया हैकिंग और डिजिटल ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं याद रखिए कोई भी बैंक या सरकारी स्वास्थ्य कंपनी संस्था कभी भी फोन पर आपका OTP ATM और पेन या पासवर्ड नहीं मांगती है इसीलिए सतर्क रहिए और कभी भी आपके पास ऐसी कॉल आए ऐसे लिंक्स आ रहे हैं जो आपको बोला जा रहा है कि उस लिंक पर आप प्रेस करें तो करने से पहले एक बार सोचिएगा जरूर कुछ ऐसे कॉल्स आ जाते हैं जो हमें लालच देते हैं और हम उस ठगिया यानी कि शिकार बन जाते हैं और ऊपर से भी बोला जाता है कि आपके पास ये कॉल आया तो प्लीज किसी के साथ शेयर मत करिएगा वरना आपके साथ और भी गलत हो सकता है और हम क्या करते हैं यहाँ पर डर जाते हैं सो इस टॉपिक पर बात करने के लिए आज फिर से हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं एडवोकेट अनिरुद्ध सर सर आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत वेलकम है
4: बहुत बहुत धन्यवाद रीना जी
3: तो सबसे पहले आप बताइए सर कैसे हैं आप
4: बहुत बढ़िया और हर बार की तरह मैं इस बार भी आपका शो का बहुत वेट कर रहा था कि जल्दी से शो में मैं आऊं और कुछ नई बातें जो अपने लिसनर्स है जो कम्युनिटी रेडियो के आपके जो लिसनर्स है उनको कुछ नॉलेज मिल पाए और हम लोग नए नए टॉपिक्स के बारे में लीगल टॉक्स कर पाए उनके साथ में
3: क्या बात है लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले सर मैं आपके जर्नी के बारे में जानना चाहूंगी कि आप पहले मतलब PhD भी कर रखी है आपने
4: PhD मेरी ऑनरिस कोर्स में है मानत उपाधि जिसको बोलते हैं तो मुझे फ्रांस की एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है तो उनके द्वारा समाज में जो सोसाइटी में मेरे द्वारा जो भी काम किया गया है जो मैं लीगल अवेयरनेस लोगों को फैलाता हूँ या उनको नॉलेज मिलती है उनको हेल्प करता हूँ तो उसके लिए मुझे उन्होंने सोशल वर्क के लिए मुझे उन्होंने ऑनर किया था
3: तो मतलब PhD के बाद मतलब हाँ एडवोकेट के लिए कैसे आइडिया आया आपके दिमाग में
4: देखिए जर्नी मेरी जो हुई थी वो एक जॉब से शुरू हुई थी और जॉब से पहले मैंने होम ट्यूशंस पढ़ाता था मैं उससे पहले फिर जॉब के बाद सोचा नहीं क्यों ना मुझे जो है MBA करना चाहिए किसी अच्छे कॉर्पोरेट में काम करना चाहिए फिर मैंने MBA किया MBA के बाद मैंने एक मीडिया कंपनी में जो है मैं एसोसिएट रहा और के लिए मैं मार्केटिंग एंड सेल्स से रिलेटेड जो भी उनका स्ट्रेटेजी होती थी वो मैं उसके लिए प्लानिंग करता था और जो है उसके बाद फिर कुछ लाइफ में कुछ ऐसा है कुछ घटित हुआ कुछ हैपनिंग हुई मैंने कहा नहीं अगर लीगल लॉस की बार हमें कोई जानकारी नहीं है और अगर हम इसको नहीं पढ़ेंगे तो हम जो है किसी ना किसी क्राइम का डेली हिस्सा बन सकते हैं
3: और मुझे लगता है कि सर जब चीजें खुद पर बीतती है तो हमें उस चीज के लिए आगे बढ़ना चाहिए जब तक हमें पता नहीं होगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे
4: बिल्कुल बिल्कुल
3: तो सर आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपसे कि साइबर क्राइम आखिरकार होता क्या है
4: देखिए हम कोई भी चीज अगर फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे कोई भी अगर कोई भी विज्ञापन देखते हैं एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो हमें प्रलोभन दिए जाते हैं कि अब ये आप भी जानते हैं कि अगर किसी चीज की वैल्यू 100 रुपए है वो एकदम 10 रुपए में मिलती है तो कस्टमर क्या होता है एकदम अट्रैक्ट हो जाता है कि भाई आज तो बेनिफिट मिल रहा है 100 रुपए की चीज 10 रुपए में मिल रही है उसी लालच में हम क्या करते हैं किसी अननोन लिंक को हम खोजने लगते हैं और उस पर हम क्लिक करते हैं क्लिक करके क्या होता है जैसे कई एक जो मैलाफिशियस वायरस होता है फोन में आ जाता है या कोई ऐसा लिंक होता है जिससे हमारे फोन का एक्सेस
3: उसके फोन में कनेक्ट
4: दूसरी तरफ बैठे हुए जो साइबर अपराधी है उनके पास चला जाता है उसका एक्सेस और उस एक्सेस को प्राप्त करने के बाद जितनी भी हमारी निजी जानकारियां हैं हमारा ईमेल आईडी का पासवर्ड क्या है ATM का पासवर्ड क्या है कोई हमारा ऐप है फाइनेंशियल उसका पासवर्ड क्या है वो सारी डिटेल उसके जो साइबर अपराधी बैठा हुआ उसके पास चली जाती है और जिससे हमें नुकसान हो सकता है वो हमारा बैंक अकाउंट भी खाली कर सकता है, उसको हैक कर सकता है। और सबसे बड़ी चीज, एक चुनौती जो ये है कि अगर सामने से कोई दुश्मन आ रहा है और हमें पता है कि भाई ये जो है हमें डैमेज कर सकता है, हमें हार्म कर सकता है, तो हम अलर्ट हो जाते हैं।
5: बिल्कुल बिल्कुल।
4: लेकिन साइबर की दुनिया में ऐसा कि हमें सामने वाले का फेस नहीं दिखाई देता।
5: करेक्ट करेक्ट।
4: पीछे कौन बैठा है, कहाँ बैठा है, उसकी लोकेशन हमें नहीं पता है, उसका फेस हमें पता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन हमें नहीं पता है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज देखने में आता है कि जो साइबर अपराधी हैं वो दूसरे कंट्रीज में बैठे होते हैं, दूसरे सिटी में बैठे होते हैं, और कई बार पुलिस को भी बहुत बड़ी जो है एक चैलेंजेस हो जाते हैं कि साइबर अपराधियों को ढूंढना। आज के युग में जो एक हमारी जो टेक्नोलॉजी एक जो इतना ज्यादा एडवांस हो गई है, तो कहीं ना कहीं उसके नुकसान भी है, कहीं ना कहीं फायदे भी है। तो साइबर क्राइम एक तरीके का अपराध है, और वो अपराध है जैसे घर में किसी के चोरी करना, यहाँ तो आपको चोर दिखाई दे रहा है, वो ताला तोड़ देता है, लेकिन यहाँ आप किसी चोर को किसी का फेस नहीं होता, उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, वो छुपा हुआ होता है।
5: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो श्रोता, हमें इससे यही पता चलता है कि अगर आपके पास कोई भी व्हाट्सएप पे लिंक आता है या टेक्स्ट मैसेज आते हैं या कॉल्स आते हैं, तो वहां पर आपको घबराना नहीं है, बल्कि धैर्य के साथ, समझदारी के साथ आपने वहां पर काम लेना है। सो सर, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या साइबर अपराध आज पारंपरिक अपराधों से ज्यादा खतरनाक हो गया है?
4: हाँ रीना, बिल्कुल आपने ठीक कहा। साइबर अपराध जो है, पारंपरिक जो अपराध आजकल होते हैं, उससे ज्यादा बहुत ज्यादा डेंजरस और खतरनाक हो गया है। क्योंकि देखिए, साइबर अपराध में जैसे मैंने आपको बताया, आप आपके शहर में नहीं बल्कि किसी दूसरे स्टेट में बैठा हुआ हो सकता है, किसी कंट्री में बैठा हो सकता है, ठीक है। वो एक दिन में एक के साथ चोरी नहीं कर रहा है, उसके जो निशाने पे कई एक जो है ऐसे अकाउंट्स रहते हैं, कई एक ऐसे जो यूजर्स रहते हैं, तो वो टारगेट करता है कि वही जो ज्यादा एक्सेस करता है, ज्यादा प्रलोभन देखता है, वो वहां से बैठे बैठे हमारी सारी एक्टिविटीज को नोट कर रहा होता है, जो भी साइबर अपराधी होता है। तो एक तरीके से एक अपराधी एक दिन में हजारों लोगों को वो निशाना बनाता है, उसका चेहरा दिखाई नहीं देता, पहचान छुपा लेता है वो अपनी, और इसलिए साइबर अपराधी तक पहुंचना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, और प्रभाव साइबर अपराध का जो प्रभाव है बहुत बढ़ चुका है आज की डेट में।
5: वो तो बिल्कुल सही कहा सर आपने। सो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर, आजकल ओटीपी फ्रॉड सबसे ज्यादा सुनने को मिलता है, ओटीपी इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है?
4: देखिए, ओटीपी आपके बैंक खाते तक पहुंचने का सबसे सुरक्षित तरीका माना गया है,
5: एक आसान जरिया।
4: आसान जरिया, ठीक है। अब कोई आदमी आपका ओटीपी पूछ रहा है, ठीक, तो निश्चित तौर पे वो आपके अकाउंट का एक्सेस करना चाह रहा है, उसमें से कुछ उसकी मैलिफाइड इंटेंशन है, ठीक है। यदि किसी अपराधी को आपका कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर या पासवर्ड मिल जाए, तब भी वो बिना ओटीपी के लेन देन पूरा कर सकता है। इसलिए किसी भी अनजान को आप अपनी कोई भी पर्सनल डिटेल है वो बिल्कुल ना दे। और याद रखिए, ओटीपी आपकी तिजोरी की चाबी है, बिल्कुल आपने एक तरीके से अगर उसको अपनी चाबी दे दी आपने, बिल्कुल, तो उसके लिए तो बहुत आसान हो गया, उसने ओटीपी डाला अपने आपके अकाउंट से, जो भी उसको चीज
5: पैसे चाहिए थे
4: या जो भी उसको फाइनेंशियल एक्सेस चाहिए था आपका, उसने जो उसको यूज कर लिया।
5: मतलब एक तरीके से ये होता है कि पूरा डाटा ही स्टोर कर लिया उसने।
4: एक तरीके से ओटीपी देने का मतलब आपने चोर के हाथ में चाबी दे दिया। तो जब आपने ओटीपी दे दिया तो आपने उसे सारी चीज दे दी, चाबी दे दी, तो आपका अकाउंट उसके नॉलेज में आ गया, उसको एक्सेस मिल गया, उसने उसमें जो क्राइम कर दिया।
5: और बहुत से तो ऐसे हैं सर कि जैसे एक ही नंबर एक ही होता है उनके पास, तो वो हर चीज से उनका लिंक होता है।
4: हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो आपका फोन एक तरीके से हैक हो जाता है, बिल्कुल। वो आपकी जो स्क्रीन पे आप जो भी एक्टिविटीज करते हैं, वो उनके पास जो साइबर अपराधी बैठे होते हैं दूसरी तरफ, वो एक्सेस फोन का उनको मिल जाता है, तो वो सारी एक्टिविटीज जो भी आप कर रहे हो सब उनको पता चलती रहती है।
5: बिल्कुल बिल्कुल जी। तो हमें कभी भी श्रोता ओटीपी कोई भी हो देने से पहले एक बार उसकी पुष्टि जांच जरूर करिए। सो सर, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्या बैंक कभी ओटीपी, पैन या पासवर्ड मांगते हैं?
4: नहीं, बैंक की तरफ से आरबीआई की गाइडलाइंस है कि बैंक किसी भी कस्टमर से फोन पे, मेल पे कोई भी पासवर्ड या कोई भी ऐसी जो जानकारी है जो उसके बैंक खाते से जुड़ी हुई है नहीं मांगता है। आरबीआई सरकार के साथ साथ जितने भी सरकारी विभाग हैं, चाहे वो वित्तीय संस्थाएं हैं, वो कभी भी ओटीपी पिन एटीएम या सीवीवी या पासवर्ड कभी भी नहीं मांगते। ये ऊपर से आरबीआई की गाइडलाइंस के अगेंस्ट में है, और जो बैंक की तरफ से भी दिन प्रतिदिन जो है अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाती है कस्टमर्स के लिए, तो आप कभी भी जो है इस तरीके की कोई जानकारी अगर फोन पे मांगे तो उसको बिल्कुल साझा ना करें।
5: बिल्कुल श्रोताओं, नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि बैंक से कभी भी आपको अगर कॉल आता है तो इस तरीके से वो बातें करते ही नहीं है, पहली बात। तो सर, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूपीआई और क्यूआर कोड के माध्यम से लोग कैसे ठगी का शिकार हो जाते हैं?
4: देखिए, सबसे बड़ी गलतफहमी ये होती है आज की डेट में कि लोग सोचते हैं कि क्यूआर कोड स्कैन करने से पैसा एकदम आ जाता है, ठीक है, जबकि सच्चाई ये है कि अधिकांश मामलों में क्यूआर कोड स्कैन करके पिन डालने का मतलब पैसा भेजना होता है, ना कि आना।
5: बिल्कुल करेक्ट।
4: तो आपने अगर क्यूआर कोड स्कैन किया और आपने पिन डाल दिया तो पैसे आपके चले गए एकदम, आते नहीं। तो कई केसेस में हमने ऐसा देखा है कि सामने वाले ने उसको फोन करके कहा मैंने आपको क्यूआर कोड भेजा, आप उसको स्कैन करके अपना पासवर्ड डाल दीजिए, आपके पास पैसे आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही उसने पासवर्ड डाला तो उसके अकाउंट से पैसे चले गए उतने।
5: बिल्कुल बिल्कुल।
4: तो आप पहले उसको चेक करें कि उसमें रिसीव लिख के आ रहा है या सेंट में लिख आ रहा है। तो आप अगर क्यूआर कोड किसी ने आपको भेजा है तो उसमें डिटेल थोड़ी सी नीचे लिख के आती है, और अननोन कोई अगर आपसे पैसे का आदान प्रदान करने के लिए कह रहा है तो बिल्कुल भी उस पर विश्वास ना करें, तत्काल उसको फोन को ब्लॉक कर दें। और कोई भी ऐसा लिंक जो आपको लगता है कोई मेडिशियस हो सकता है या वायरस हो सकता है तो उसको कभी भी उसको टच ना करें बिल्कुल भी।
5: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए हम आजकल डिजिटल जमाना है सर, कहीं भी सामान भी लेने जाते हैं, क्योंकि आजकल बहुत रेयर होंगे जिनके पास कैश वो रखते हैं, क्योंकि आजकल हर किसी के पास ऑनलाइन पैसे रहते हैं, चाहे आप ऑटो में जाइए।
4: बात मैं और बताना चाहूंगा कि एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि पैसा प्राप्त करने के लिए कभी भी पिन नहीं डालना पड़ता है। अगर मुझे किसी से पैसा प्राप्त तो मैं क्यों पिन डालूंगा?
5: बिल्कुल बिल्कुल।
4: तो जिसको पैसा भेजना है वो पिन डालता है, ठीक है। तो यदि कोई कहे कि पैसा लेने के लिए पिन डालिए तो समझ जाइए कि वो आपसे ठगी का प्रयास कर रहा है।
5: अब उसने सीधा कह दिया पैसा लेने के लिए, तो मतलब कि वो डालेंगे।
4: अगर मेरे को वो पैसा भेज रहा है तो मैं क्यों पिन डालूंगा? तो पिन आपसे अगर वो मांगे और कहेगी मैं आपको पैसे भेज रहा हूँ कि पिन दे दीजिए, तो समझ जाइए वो ठगी का प्रयास कर रहा है।
5: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल जी। तो चलिए सर, आगे बढ़ते अपने शो में। श्रोताओं, आई होप कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर आपके मन में भी कोई डाउट कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे भेज सकते हैं। सर, आजकल हैकिंग का बहुत ज्यादा फ्रॉड बढ़ चुका है, यानी कि व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो जाता है, इंस्टा हैक हो जाता है, फेसबुक हैक हो जाता है, तो मतलब इससे कैसे बच सकते हैं इंसान?
4: देखिए, सबसे बड़ी तो एक चीज ये है कि आप फोन अपना जैसे यूज करते हैं तो किसी अननोन के हाथ में अगर आप फोन दे रहे हैं तो अपने फोन को आप पहले लॉक लगा के रखिए, ठीक है, क्योंकि फोन पे क्या होता है, आपने किसी अननोन ने आपका फोन उठाया, अगर उस पर लॉक नहीं है तो उसने उसको स्क्रीन उसकी खोली, स्कैन क्यूआर कोड से स्कैन करके उसका एक्सेस किसी और डिवाइस पे ले लिया, और वो वहीं से जो है उसको एक्सेस करेगा और सारी जितनी भी डिटेल्स है आपकी वो उसके पास चली जाएगी। तो ये एक तरीके से तो आपने बिल्कुल जो है अपने सारी जो निजी जानकारी है जब आपकी फोन का एक्सेस चला गया तो सब शेयर हो गई, तो फिर क्राइम के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अपराधी किसी भी बहाने से अगर वेरिफिकेशन कोड प्राप्त करने की कोशिश करे, जैसे ही वो कोड साझा करता है व्हाट्सएप अकाउंट अपराधी के मोबाइल में सक्रिय हो जाता है, तो इसके बाद वे आपके रिश्तेदारों को मित्रों को फोन कर सकता है।
5: बिल्कुल, बिल्कुल।
4: पैसे की जरूरत, आपने देखा होगा कई केसेस में कि फेसबुक पे मैसेंजर पे पैसे की डिमांड करते हैं, तो इस मोस्टली इन केसेस में हमने यही देखा कि फोन व्हाट्सएप माध्यम से उसने क्यूआर कोड प्राप्त कर लिया और फोन का एक्सेस चला गया उसके पास में, तो आपके जितने कॉन्टेक्ट्स हैं वो सब जगह उसने रिक्वेस्ट भेज दी।
5: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये
4: आपकी फोटो लगा लेते हैं व्हाट्सएप पे, जिससे उनको आपके रिलेटिव्स को यकीन हो जाए भाई
5: ये बिल्कुल
4: भाई रीना को पैसे की जरूरत है ना।
5: बिल्कुल,
4: तो इस चीजों से आपको सतर्क रहना है, और किसी को भी आप अपना फोन अननोन को तो बिल्कुल भी आपको
5: बिल्कुल
4: नहीं
5: देना है,
4: और अपने फोन में पासवर्ड जरूर लगा के रखें।
5: बिल्कुल बिल्कुल सर, ये सही कहा आपने कि अपने फोन में पासवर्ड लगा कर रखना चाहिए श्रोताओं। और
4: व्हाट्सएप वेरिफिकेशन कोड भी ओटीपी जितना ही गोपनीय और कॉन्फिडेंशियल है, तो उसको भी साझा ना करें।
5: बिल्कुल। और जैसे कि सर ने बताया कि आपके पास कोई मैसेज करता है, जैसे कि मेरा नाम ही लेके आपको कोई मैसेज कर दे कि रीना को पैसे चाहिए और मैं रीना ही बात कर रही हूँ, तो कभी कभी हम यकीन भी कर लेते हैं, लेकिन इन चीजों का ना आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आपको भी पता है कि काफी टाइम से आप उससे बात कर रहे हैं, आप उसके नोन में है, तो आज तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन वो एकदम कैसे आपसे बोल सकता है कि मुझे पैसे चाहिए। तो इसके लिए आपको पहले पुष्टि करनी चाहिए, यानी कि उससे कॉल करना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए कि वाकई में कि रीना ही है जो

0: किसी के कहने से और व्हाट्सएप पे मांगने से आप पैसे बिल्कुल ट्रांसफर ना करें।
1: चलिए आगे बढ़ते अपने शो में श्रोताओं, आजकल डिजिटल अरेस्ट के नाम पर बहुत ठगी हो रही है, यह क्या है सर?
0: देखिए डिजिटल अरेस्ट जो होता है, जो अपराधी आजकल क्या कर रहे हैं, वो एक डर बैठालते हैं। कभी वो पुलिस अधिकारी ऑफिसर बन के फोन करेंगे, कभी वो कहेंगे ईडी से हम बोल रहे हैं, कभी एसबीआई सीबीआई से सॉरी, कभी वो सीबीआई या किसी सरकारी एजेंसी का अधिकारी बनकर वीडियो कॉल करते हैं और फिर कहते हैं कि भाई आपका जो है एक क्राइम हुआ था, मर्डर में आपका नाम आया है, किसी और बहुत ही ज्यादा कोई सीरियस केस में वो बताते हैं कि भाई आपका नाम आया है, आपकी फैमिली मेंबर का किसी का नाम है, तो एक डर बैठाल देते हैं वो।
1: बिल्कुल
0: डर बैठाल के वो क्या करते हैं, वो डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं। कई केसेस में भी आपने भी न्यूज में भी सुना होगा, और कई केसेस भी ऐसे आए कि एक जो प्रोफेसर थी, लेडी थी, मुंबई का केस था, तो उसको डिजिटल अरेस्ट करके कई लाखों करोड़ों रुपए की उससे ठगी कर ली थी।
1: क्या बात।
0: और कानूनी प्रक्रिया, कानूनी जो लैंग्वेज में अगर मैं बात करता हूँ कानूनी, तो उसमें भारतीय कानून में डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई भी कानूनी प्रक्रिया नहीं है।
1: नहीं है,
0: ठीक है। किसी भी किताब में डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई कानूनी प्रक्रिया, कोई पावर ऐसे किसी भी सरकारी एजेंसी को, पुलिस को नहीं दी गई है। तो आप इस बात से बिल्कुल सतर्क रहिए, अगर कोई आपको फोन करके डरा है कि आपका बेटा या आपकी बेटी या आपका कोई रिलेटिव जो है इस तरीके से क्राइम में नाम है उसका, और जो है आपको जो है उसमें ये आपको फर्जी कोई वारंटी फोन पे दिखा है, तो आप पहले उसको बार अपने वकील से, जो भी आपका वकील हो, आपका एडवोकेट हो, उसको आप उसको नॉलेज में करें या नजदीकी थाने में आप उसको जरूर एक बार इंक्वायरी जरूर करें।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: क्योंकि कानूनी प्रक्रिया में डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है। और ये केसेस बहुत आज की डेट में बढ़ गए हैं, हालांकि हमारी जो सरकार है वो भी काफी कदम उठा रही है और अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाती है कि डिजिटल अरेस्ट के बारे में जाने और इस तरीके की फर्जी कॉलों से और स्कैम से सावधान रहे।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आगे बढ़ते हैं शो में, यानी कि सोशल मीडिया पर लोग कौन सी सबसे बड़ी गलती करते हैं?
0: देखिए लोग सोशल मीडिया पर जो सबसे ज्यादा गलती करते हैं वो ये कि अपने परिवार के साथ वो कहीं अगर यात्रा कर रहे हैं या जा रहे हैं, वो फोटोज डाल देते हैं या बैंक की जानकारी देते हैं, आपका जन्मदिन है उसकी डिटेल्स मिल जाती है, मोबाइल नंबर अपना, या अपनी निजी फोटो सार्वजनिक तौर पे वो पोस्ट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, अपराधियों को इनकी जानकारी का पूरा ब्यौरा मिल जाता है और वो उसको उपयोग करके विश्वास पैदा करते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो अब आप ही कहीं अगर जाते हैं, आपने फेसबुक पे डाल दिया भी फैमिली के साथ जा रहे हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ उसको पता चल गई, फैमिली के फोटो उसको पता चल गए, ठीक है, बैंकिंग की जानकारी उसको पता चल गई, तो वो क्या करेगा, वो आपके जो भी ग्रुप्स हैं, आपके नियरेस्ट एंड डियरेस्ट हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको मिसगाइड करेगा, एक फर्जी अकाउंट बना सकता है आपका।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: आपकी फोटोज दिखा के उस पे फेसबुक पे लगा के, तो उससे क्या होगा, एक सामने वाले के पास वो क्या करते हैं,
1: तो फ्रेंड प्रूफ मिल गया उनको,
0: फ्रेंड रिक्वेस्ट पहले वो भेजते हैं, फिर धीरे धीरे जब उनको लगता है कि सामने वाले को यकीन आ गया कि जो है आप ही हो, तो उससे पैसे की डिमांड कर सकता है या और किसी तरीके से जो है कुछ और जो है अपने क्राइम में वो कामयाब करने के लिए कुछ ना कुछ और गलत जो है जो भी वो ठगी का प्रयास करना चाहेगा वो कर सकता है वो।
1: सर बहुत अच्छा लगता है कि आप हमारे स्टूडियो में आते हैं और हमें बहुत सी जानकारियां देकर जाते हैं, इनफैक्ट हमारे श्रोताओं को भी, हमें भी नहीं पता इन चीजों के बारे में और हम गलती कर जाते हैं, क्योंकि यार डिजिटल आजकल जमाना है, हर चीज सोशल मीडिया से रिलेटेड है। तो सर एक बहुत कॉमन है जो कि इंसान चाहता है कि घर बैठे उसके पास सामान आ जाए, चाहे शॉपिंग हो, चाहे खाना हो, मतलब वट एवर कुछ भी हो, हम चाहते हैं कि घर बैठे बैठे हमें वो चीज मिल जाए। तो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए आजकल लोग बहुत इजी टू एक्सेस लाइफ जीना पसंद करने लगते हैं ना, वो चाहते हैं कि वो एकदम एक क्लिक पे सारी चीज मेरे सामने हो, घर पे सामान आ जाए, बाजार ना जाना पड़े। अब थोड़ा देखिए कहीं ना कहीं आसानी तो है ऑनलाइन शॉपिंग से, लेकिन जैसे जैसे ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज बढ़ा है तो साइबर अपराधियों को एक नए नए जो है एक अपॉर्चुनिटी मिलती जाती है, वो सोचते हैं कि ये तरीका अच्छा है तो क्राइम करने की सोचते हैं उससे। तो अगर कभी भी आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो एक तो ये है कि आप विश्वसनीय वेबसाइट से ही खरीदारी करें, ठीक है। बहुत ज्यादा कोई छूट देने वाला ऑफर अगर आ रहा है कुछ, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, तो उससे थोड़ा सावधान रहें, अलर्ट रहें, उसको थोड़ा सा डीपली चेकें,
1: यानी कि सस्ते के चीज में हमें ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए।
0: नहीं, ऑफर कई बार ऑथेंटिक भी होते हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसे ऑफर्स होते हैं जो एकदम आदमी एकदम क्लिक कर देता है बिना सोचे समझे।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और एक क्लिक पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जा सकती है, तो आप पहले उसका यूआरएल चेक करें, पहले आप उसका वेबसाइट का यूआरएल जांचें, अज्ञात लिंक से खरीदारी बिल्कुल ना करें, जैसे किसी ने आपको लिंक भेज दिया कि इस तरीके से आपको साहब मूवी की 2 टिकट मिल जाएगी।

0: बिल्कुल
1: ठीक है,
0: बिल्कुल
1: या आपको इतने परसेंट छूट मिल जाएगी या कैशबैक मिल जाएगा, आजकल बहुत आ रहा है आपने देखा होगा। तो इस तरीके के लिंक पे बिल्कुल भी क्लिक ना करें जब तक आप उसको वेरीफाई नहीं कर लें बिल्कुल भी। और जहां संभव हो कैश ऑन डिलीवरी का विकल्प चुने, अगर आप कोई ऑप्शन कोई आप ले भी रहे हैं, कोई शॉपिंग भी कर रहे हैं, तो कैश ऑन डिलीवरी का विकल्प लें कि जब सामान आपके पास में आ जाए तो उसका आप पेमेंट करें।
0: क्या बात है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बच्चे और युवा भी साइबर अपराधियों के निशाने पर है?
1: जी देखिए, बच्चे और युवा तो सबसे ज्यादा आज की डेट में है, क्योंकि हर हाथ में तो मोबाइल एक्सेस हो गया है। और बच्चों को अभी इतनी डीप नॉलेज नहीं है, वो एकदम से क्या करते हैं, कोई भी लिंक आता है उसको क्लिक करके जो है देखने लग जाते हैं कोई क्यूरियोसिटी। ऐसी युवाओं का भी आज की डेट में जैसे कोई एकदम एडवर्टीजमेंट कोई फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे आया, उन्होंने एकदम उसको क्लिक किया और जो है उसकी डीप में और ज्यादा विंडो जो है यूआरएल पे जाते रहते हैं, तो उससे क्या होता है उनके चांसेस और बढ़ जाते हैं रिस्क के। तो सबसे बड़ी चीज है कि युवाओं को थोड़ा अवेयर रहना चाहिए हर चीज को। हर चमकती हुई चीज जैसे सोना नहीं होती, उसी तरीके
0: बिल्कुल,
1: से
0: बिल्कुल
1: स्क्रीन पे हर चीज आपकी बेनिफिट की नहीं हो सकती, है ना। तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है और किसी भी अननोन लिंक पे बिल्कुल क्लिक ना करें एकदम।
0: बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है श्रोताओ, आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो सोच समझ के जरूर करिए। सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निवेश और ट्रेडिंग के नाम पर होने वाली ठगी से लोग कैसे बचे?
1: देखिए मोस्टली लोग आजकल स्टॉक मार्केट में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, अब धीरे धीरे ट्रेंड बदल रहा है, तो जितने भी साइबर अपराधी हैं तो उन्होंने एक नया तरीका निकाला है कि वो एक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के नाम पे और ठगी करने लगे हैं, उनको ज्यादा प्रॉफिट दिखाते हैं। अगर यदि कोई व्यक्ति आपका पैसा दुगना करने का वादा कर रहा है एक सर्टन डेज में कि भाई इतने निश्चित रूप में इतने दिन में दुगना कर दूंगा और बिना कोई रिस्क के आपको मुनाफा मिलेगा, तो सबसे बड़ी चीज है वो कुछ ना कुछ जो है फ्रॉड हो सकता है, तुरंत अलर्ट हो जाइए।
0: बिल्कुल।
1: दूसरी चीज, दुनिया में कोई भी वैध निवेश 100% गारंटी नहीं देता। जो वैलिड इन्वेस्टमेंट होगी, जो जेन्युइन इन्वेस्टमेंट होगी, वो कभी आपको गारंटी नहीं देगी कि आपका पैसा जो है 100% दुगना हो जाएगा।
0: दुगना हो जाएगा।
1: तो निवेश से पहले अगर आप कोई शेयर मार्केट में निवेश करते हैं या किसी और कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कोई भी ऑनलाइन लेते हैं, तो सबसे पहली चीज कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर देखिए उसका, ठीक है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: उसका लाइसेंस उसका चेक करिए, उसकी विश्वसनीयता जब आप जांचे तभी आगे बढ़िए उसको।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी।
0: यदि किसी व्यक्ति के खाते से पैसे कट जाए तो सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए?
1: देखिए अगर आपके कोई आपने कोई अननोन लिंक पे एकदम आपने क्लिक किया है और आपको लगता है कि भाई एकदम जो है पैसे आपके खाते से कट गए हैं, तो सबसे पहले तो आप बैंक को सूचित करें, खाते को आप एकदम जो है उसको फ्रीज कराइए ताकि उसमें अगली कोई ऐसी ट्रांजेक्शन ना हो पाए, ठीक है। तुरंत आप राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें, नंबर आप नोट कर लीजिए, जब भी कोई साइबर घटना हो तो राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930।
0: हाँ,
1: इस पे कॉल करके आपको तुरंत कंप्लेंट अपनी लॉन्च करनी है। जितनी जल्दी शिकायत होगी उतनी जल्दी उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी आपका पैसा रिफंड आने की बन जाती है, ठीक है। पैसे को रोकने की संभावना उतनी अधिक होगी अगर आप जितनी जल्दी कंप्लेंट अपनी लॉन्च कराएंगे, तो पैसे की वापसी चांसेस बढ़ जाते हैं।
0: तो क्या सर ठगी जो पैसे हो जाते हैं क्या वापस मिल सकते हैं?
1: हाँ बिल्कुल मिल सकते हैं, कई मामलों में संभव है। अगर आपने टाइमली कंप्लेंट लिखा दी है, टाइमली आपने एक्शन लिया है, तो आपको जो है ठगी आपके साथ हुई है तो पैसे आपको मिल सकते हैं। लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि शिकायत कितनी जल्दी करी
0: जल्दी करी है। बिल्कुल, मतलब जल्दी की जाए तो पूरे पूरे चांसेस होते हैं कि आपके पैसे मिल सकते हैं,
1: पैसे आपके वापस हो सकते हैं। अगर आपने बिल्कुल टाइमली एक्शन लिया है, आपने साइबर जो हेल्पलाइन नंबर है उस पे आप कंप्लेंट लॉक कराइए एकदम, और जो है ट्रांजेक्शन को रोकने के लिए धनराशि को फ्रीज करने की, उससे क्या होता है उनको टाइम मिल जाता है, जो अधिकारी होते हैं वो फ्रीज कर देते हैं उस अकाउंट को जिस अकाउंट में पैसे आपके गए हैं, तो वहां से वो जितना पैसा आपका गया तो वापस दिलाने के लिए वो उसमें सदैव तत्पर रहते हैं।
0: क्या बात है। तो श्रोताओ अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो सोचिए मत, सीधा बैंक जाइए, वहाँ पर उनको जानकारी दीजिए कि जो भी आपके साथ दिक्कतें होती है, ताकि आपका पैसा जल्दी हो सके और जल्दी आपको मिल सके।
1: खाता तुरंत फ्रीज कराना जरूरी होता है, क्योंकि वो साइबर अपराधी जिसने करी है तो दोबारा भी ट्रांजेक्शन करने की कोशिश
0: करेगा।
1: जब आपका अकाउंट ही फ्रीज हो जाएगा तो पैसे से ट्रांसफर होगा नहीं उसमें, और कंप्लेंट आप लॉक करा देंगे तो आपके अकाउंट से जो पैसा ट्रांसफर होगा किसी अन्य खाते में गया होगा तो ट्रेस हो जाता है।
0: अच्छा,
1: तो जब अकाउंट ट्रेस हो जाता है तो उसमें पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि हमारा जो रकम हमारे अकाउंट से गई है वो वापस आ जाए।
0: वापस आ जाए। सर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि श्रोताओं के लिए आपकी सबसे 5 महत्वपूर्ण सलाह क्या हो सकता है?
1: देखिए मैं सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है यही एक एडवाइस करूंगा, तो पहला तो ये कि आप कभी भी अपना ओटीपी किसी को मत दीजिए, पिन आपका है, पासवर्ड है, कभी किसी के साथ भी शेयर ना करें बिल्कुल भी। दूसरा ये कि कोई भी अननोन लिंक आए तो उस पे आपको क्लिक नहीं करना है, उसको बिल्कुल इग्नोर कर दें,
0: इग्नोर करना है।
1: हाँ। तीसरा ये कि QR कोड सोर्स समझकर स्कैन करें, जैसे हमारी आदत है ना, हम कहीं भी QR कोड स्कैन कर लेते हैं, कहीं भी पेमेंट ले रहे हैं दे रहे हैं तो सोर्स समझ के स्कैन करें उसको, ठीक है। चौथा ये कि जल्दबाजी में कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन ना लें, कोई भी वित्तीय निर्णय जल्दबाजी में ना लें। और पांचवा ये है कि अगर ठगी होती है आपके साथ तो सबसे पहले आपको 1930 पे साइबर सुरक्षा हेल्पलाइन जो नंबर दिया हुआ है, टोल फ्री नंबर, इस पे तुरंत शिकायत अपनी जो है दर्ज कराएं, अपनी कंप्लेंट लॉन्च कराएं।
0: क्या बात है
1: ये।
0: सर जाते जाते आप हमारे श्रोताओं को एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे?
1: देखिए, कम्युनिटी आपका रेडियो है तो आप कम्युनिटी के बात करते हो, और हर बार आप अवेयरनेस की कुछ ना कुछ लोगों को इतना आप जो है अवेयर करते हो, आपके माध्यम से जो है हमारी श्रोताओं से बात हो पाती है। तो मैं यही बोल सभी तभी आपके कम्युनिटी रेडियो के लिसनर्स है कि साइबर सुरक्षा का कोई विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता है ये, है ना, तो इसका कोई ऑप्शन नहीं है, ये हमारी नीड है। और घर का ताला टूटने से तो नुकसान सीमित होता है, लेकिन मोबाइल अगर आपके बैंक खाते की जानकारी सुरक्षा टूट जाए तो जीवन भर की कमाई आपकी खतरे में
0: पड़ सकती है।
1: तो इसलिए जागरूक रहें, सतर्क रहें, और अपने परिवार को भी साइबर सुरक्षा के नियम अवश्य सिखाएं। और जो है ओटीपी, पिन और पासवर्ड आपकी तिजोरी की चाबी है, इन्हें कभी भी किसी के साथ भी साझा न करें। और याद रखिए, साइबर अपराधी आपके बैंक की सुरक्षा नहीं तोड़ते, वे आपकी सावधानी तोड़ते हैं।
0: बिल्कुल,
1: ठीक है। तो मैं इसी के साथ अपने श्रोताओं को, अपने लिसनर्स को एडवाइस करूंगा कि जो है अलर्ट रहें और अवेयर रहें।
0: बिल्कुल। तो श्रोताओं, अब हम लेते हैं ऐसे जाने की इजाजत। आई होप कि आपने बातें सुनी और अब इसको फॉलो भी करेंगे, और फिर हम मिलेंगे आप सभी के साथ एक नई जानकारी के साथ, एक नई बातों के साथ, जिसके माध्यम से आपको अच्छी अच्छी जानकारियां मिलते रहे, इनफैक्ट हमें भी अच्छी जानकारियां मिलती है। और ये जो आजकल साइबर क्राइम जो हो रहा है, यानी कि जो बढ़ रहा है, इसके लिए तो बहुत हमें ध्यान रखने की जरूरत है। तो अभी के लिए साइनिंग ऑफ, हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नई जानकारी के साथ। बाय बाय।
2: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFEM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद,
3: NAC द्वारा ए ग्रेड, NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक,
2: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
3: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई,
2: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी,
3: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
4: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है ZIG प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। ZIG करो, स्वच्छता की जिद करो।
5: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
4: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का सामुदायिक रेडियो। आनंद के साथ हैं आप और प्रोग्राम का नाम है हेलो डॉक्टर, और हमारे साथ कोई ना कोई विशेषज्ञ, कोई ना कोई एक्सपर्ट मौजूद होते हैं। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आकाश सिंघल, जो श्री साई हॉस्पिटल में है इस वक्त, वहाँ पर वर्किंग है। अब सर का वेलकम करेंगे और उनसे बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आज हमने उनको क्यों आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में और हमारे इस प्रोग्राम में हेलो डॉक्टर में, तो वो तो हम आकाश जी से ही जानेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत थे हमारे FM मुरादाबाद के स्टूडियो में, जोरदार तालियों के साथ वेलकम टू FM मुरादाबाद। हाउ आर यू, कैसे हैं आप, प्लीज बताएं आकाश जी।
5: फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म।
4: थैंक यू सर,
5: दिस इज द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस।
4: ओह वाओ, लवली, कैसा लग रहा है? पहले तो मैं यही पूछूंगा।
5: इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, लाइक थोड़ा सा है कि नाउ आई कैन शेयर माई थॉट्स विद द पीपल। ठीक है, आपके चैनल से काफी लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा जो जो चीजें हैं जो मैं चाहता हूँ कि एवरी पेरेंट शुड नो।
4: क्या बात है।
5: तो पहले तो मैं बताता हूँ, मेरा नाम डॉक्टर आकाश सिंघल है, जैसे कि आपने सबको बताया है।
4: जी जी, प्लीज।
5: मैंने MBBS किया है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से।
4: ब्यूटीफुल।
5: फिर MD पीडियाट्रिक्स किया है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से।
4: वाह।
5: उसके बाद मैंने किया है DM न्यूरोलॉजी एम्स न्यू दिल्ली से।
4: क्या बात है।
5: अब लोग सोचते हैं ये DM न्यूरोलॉजी है क्या?
4: जी,
5: तो मैं बताना चाहूंगा कि DM न्यूरोलॉजी बच्चों की सुपर स्पेशलिटी है।
4: हाँ जी।
5: इसमें हम बर्थ से 1 मंथ तक के बच्चों को देखते हैं। अब आजकल प्रीमेच्योरिटी, लो बर्थ वेट, मतलब समय से पहले बच्चे डिलीवर हो रहे हैं, कम वजन के साथ बच्चे डिलीवर होते हैं, तो इसकी एक सुपर स्पेशलिटी है। ऑल दो हम सारे ही पेडियाट्रिशियंस अपने ही कोर्स में न्यूबॉर्न बच्चे देखते हैं, बट सुपर स्पेशलिटी की जहां बात आती है तो वी आर एक्सक्लूसिवली लुकिंग आफ्टर न्यूबॉर्न फॉर द लास्ट 3 ईयर्स।
4: हाँ जी।
5: तो इसमें एक्सपर्टीज बढ़ता है और विद टाइम नॉलेज भी होती है। एंड रही बात मेरे बारे में, तो मैंने दिल्ली एम्स से किया है, तो वो एक हायर रेफरल सेंटर है, तो वहाँ पे हाई रिस्क केसेस ही मोस्टली होते हैं।
4: Alright.
5: तो हमारी एक्सपर्टीज उसी में ज्यादा होती है। तो समय से पहले डिलीवर हो गए हैं, खून बदलना पड़ा है किसी बच्चे का, बच्चा पैदा होने के बाद नहीं रोया है, ये सब केसेस।
4: बहुत ही अच्छा परिचय सर ने दिया है, तो ऑडियंस अब आप दिल थाम के बैठिए, आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेगी। आज हेलो डॉक्टर के प्रोग्राम में डॉक्टर आकाश सिंघल जी मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से अपने आप को जो है आपके साथ इंट्रोड्यूस किया। सो डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि जो नवजात शिशु है उसकी देखभाल में मतलब किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए हमें जब न्यू बॉर्न बेबी होता है?
5: जब बेबी डिलीवर होता है, एक्चुअली कॉमन चीजें कुछ मिथ्स हैं।

0: जो अगर बेबी नॉर्मल है, हेल्दी है, तो क्या करते हैं फैमिलीज, कभी कभी कुछ बुट्टी पिलाने लगते हैं
1: जी जी।
0: कोई कोई अम्बिलिकल कॉर्ड जो बच्चे की नाल होती है उस पर पाउडर या तेल लगाने लगते
1: जी
0: हैं
1: जी जी जी।
0: एक बहुत बड़ा मिथ है कि धूप दिखाएंगे तो पीलिया कम हो जाएगा, जॉन्डिस कम हो जाएगा
1: जी जी जी।
0: ये कॉमन चीजें हैं। कुछ लोग गाय का दूध, भैंस का दूध, मतलब डिफरेंट ये सब चीजें ट्राई करते हैं,
1: बट
0: ये चीजें नहीं होती, होनी चाहिए। ये सब चीजें बच्चों में इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ाती है। तो कुछ जैसे कि जैसे अगर बेबी हेल्दी है, मदर के पास है, तो उसे हर से 2 से 3 घंटे में ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए, ठीक है। अच्छे से साफ सफाई रखनी चाहिए। ये नहीं कि कभी कभी मैं देखता हूँ हॉस्पिटल में कि एक बेबी डिलीवर हुआ है, साथ में 6-7 रिश्तेदार हैं उसके साथ, तो हमें नहीं पता कि किसको क्या बीमारी है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, कुछ है, तो वो बच्चे की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, तो वो बहुत जल्दी इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं और फिर बच्चों की उनकी दिक्कत बढ़ जाती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर बेबी डिलीवर है तो पूरी साफ सफाई का ध्यान रखें, हाइजीन मेंटेन रखें, हाथ धो के ही बच्चे को टच करें, इन सब चीजों का ध्यान दें।
1: ओके, सो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से आपने बताया। और कई बार ऐसा होता है कि जन्म के तुरंत बाद, जैसे कहते हैं कि बच्चे को माँ का दूध देना बहुत जरूरी होता है, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है, जन्म के तुरंत बाद बच्चे को माँ का दूध मिलना चाहिए?
0: हाँ, डेफिनेटली यस। अगर मदर हेल्दी है, मतलब नॉर्मली क्या होता है, अगर नॉर्मल डिलीवरी है,
1: हाँ
0: तो हम
1: जी।
0: प्रैक्टिस करते हैं स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट इन अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ। इसका मतलब है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है उसे माँ के पेट के ऊपर रख देते हैं।
1: दिस इज कंगारू मदर केयर आई थिंक,
0: सॉर्ट ऑफ, इट्स अ डिफरेंट थिंग।
1: ऑलराइट,
0: कंगारू मदर केयर मोस्टली प्रीटम बच्चों के लिए होती है, जो कम वजन के बच्चे होते हैं।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: ठीक है। इन एवरी बेबी डिलीवरी के बाद क्या होता है, अंदर जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसका तापमान मेंटेन रहता है, बाहर आने के बाद ठंडा होने का रिस्क रहता है
1: जी।
0: तो बच्चों के लिए ठंडा होना काफी हानिकारक होता है। तो यही कहा जाता है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ है तो उसको माँ के पेट के ऊपर रखें और वहीं पे ही इमीडिएटली ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करें। नॉर्मल डिलीवरी में ये पॉसिबल होता है, कुछ मुश्किलें आती हैं जब बच्चा ऑपरेशन से, सीजरियन डिलीवरी से होता है, उसमें इमीडिएटली पॉसिबल नहीं हो पाता है कुछ कुछ जगह। अगर हम चाहें तो हम कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, बट ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ फीडिंग फॉर द बेबी।
1: ओके, डॉक्टर साहब एक सवाल रहेगा, जो नवजात शिशु होते हैं उनको, मतलब कितनी बार वो दूध पीते हैं या उन्हें कितनी बार दूध पिलाना चाहिए, इसके विषय में थोड़ा सा आप बताइए।
0: बेबी को 2-3 आवरली, इनिशियली 2-3 आवरली हम बोलते हैं, जैसे अगर बच्चे शुरू में कि दो से तीन घंटे में आप फीड कराएं, कुछ चीजें होती हैं जैसे मदर्स को नहीं, जो फर्स्ट टाइम मदर्स बने
1: हैं, हाँ जी,
0: उनको नहीं पता
1: नहीं
0: होता
1: पता
0: है
1: होता
0: क्या
1: है।
0: करती हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है फोर मिल्क और हैंड मिल्क, मतलब शुरू का दूध और बाद का दूध
1: जी।
0: तो हम की कहते हैं कि एक बार अगर मदर फीड करा रही है तो वो सफिशियंट टाइम के लिए फीड कराएं, जिससे बच्चे को पूरे एक तरफ से पूरा दूध मिले।
1: Okay.
0: क्योंकि क्या होता है, अगर बच्चा सिर्फ शुरू का दूध पीता है तो उसमें सिर्फ उसकी थर्स्ट, मतलब कि उसकी प्यास बुझती है, उसका पेट नहीं भरता है, ना ही वजन बढ़ता है। जो बाद का दूध होता है, वो जो गाढ़ा होता है, जिसको हम हैंड मिल्क बोलते हैं, उसमें हमारे फैट्स होते हैं, बाकी चीजें होती हैं, तो जिससे उसका पेट भी भरता है और उसका वजन बढ़ता है। तो कुछ मदर्स अगर एक बार में दोनों तरफ से फीड करा रही हैं तो सिर्फ 4 मिल्क दे रही हैं, तो बच्चे का वजन नहीं बढ़ेगा, पेट नहीं भरेगा, बच्चा क्रैंकी रहेगा। और जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो हम प्रैक्टिस करते हैं फीडिंग ऑन डिमांड, मतलब बच्चा जब मांग रहा है दूध हमें उसको फीड कराना है। फीड कराने के बाद हमें ध्यान रखना है कि हमें हर बार डकार दिलानी है। फीड कराने के बाद बर्फ कराना, मतलब डकार दिलाना, बेहद जरूरी होता है। तुरंत लेटाएं ना उसको, अच्छे से बर्फ करा के तभी लेटाएं।
1: बहुत ही बढ़िया, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेलो डॉक्टर, मेरा नाम आनंद है और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ श्री साई हॉस्पिटल से डॉक्टर आकाश सिंघल जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब कई बार ऐसा होता है कि जो नवजात शिशु होते हैं वो कई बार रोने लगते हैं, तो ऐसे में जो समझ नहीं आता है, ना तो मम्मी को समझ आता है ना पापा को समझ आता है, तो बच्चा अगर ज्यादा रोता है तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए?
0: अगर बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है तो कुछ बच्चा, तो उसके पास ओनली वे ऑफ एक्सप्रेशन इज रोना। अगर उसको कोई भी दिक्कत होगी वो सिर्फ रोएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: है ना,
1: बिल्कुल।
0: वो कॉमन चीजें होती हैं, सबसे पहले
1: मतलब कोई रीजन, कोई कारण, मतलब जिसे पता,
0: तो हम थोड़ा सा सबसे पहले ट्राई करते हैं कि फीड करा के देखते हैं। मोस्टली बच्चों में क्या होता है, वो भूखे होते हैं, इस वजह से वो रो रहे होते हैं, हमने फीड करा के शांत हो जाते हैं, इट्स गुड। कुछ कुछ बच्चों में क्या होता है, अगर वो फीड भी नहीं कर रहे होते हैं तो एक नोज ब्लॉक बहुत कॉमन चीज होती है। मतलब मैंने जितने भी मैं पेशेंट्स देखता हूँ, तो वन ऑफ द नेक्स्ट पेशेंट, सब में किसी न किसी को नोज ब्लॉक बहुत कॉमन होता है। सिंपल, अब बेबी की नोज गंदी है, वो क्लीन तो कर पाएगा नहीं, तो उसके लिए है कि हम कुछ मेडिकेशन या फिर नॉर्मल सलाइन ड्रॉप्स होती हैं उसको हम डालते हैं, बेबी की नोज क्लियर हो जाती है तो वो इजिली फीड कर पाते हैं, शांत हो जाती है। ठीक है, कुछ बच्चे लाइक अगर हमें देखना है कि अगर एक्सेसिवली क्राई कर रहा है तो उसमें डायपर तो वेट नहीं है, कॉमन चीज हमें देखनी है। कभी कभी हम मिस कर देते हैं कि बच्चे का डायपर गीला है, वो उसको इरिटेट कर रहा होता है और बच्चा रो रहा होता है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छे से डॉक्टर साहब आपने बताया है। नवजात में जो बुखार है वो कितना खतरनाक होता है छोटे बच्चों में?
0: छोटे बच्चों में ज्यादा खतरनाक पहले कहें तो हमें उनके अंदर टेम्परेचर मेंटेन करने की इतनी कैपेसिटी नहीं होती, तो इसलिए ही आप देखेंगे कि कहीं पे भी आपने अगर नर्सरी देखी होगी तो उसमें हर बच्चा यूजुअली वार्मर के नीचे लेटा होता है, मतलब कि उसको कॉन्स्टेंटली हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो इसलिए उनमें ठंडे होने का रिस्क ज्यादा होता है।
1: ठीक है, बहुत
0: उनमें ठंडे होने का रिस्क ज्यादा होता
1: जी,
0: है
1: जी, जी,
0: ठीक है, तो हमें मैं यही बोलता हूँ सब पेरेंट्स को कि जितने आप कपड़े पहन रहे हैं उससे एक लेयर एक्स्ट्रा पहना के रखें, बच्चों को कवर करके रखें। पेरेंट्स का सवाल होता है कि सर एसी चला सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, अब इतनी गर्मी है। मैं यही बोलता हूँ कि ठीक है आप एसी चला सकते हैं, बट टेम्परेचर आप रूम का 25-27 डिग्री मेंटेन करके रखो, डायरेक्टली पंखे के नीचे नहीं लेटाओ बच्चों को, बच्चों को अपने से लेयर एक्स्ट्रा पहना के रखो। ठीक है, और दूसरा चीज आती है बच्चे का टेम्परेचर आप थर्मोमीटर से चेक करने की जरूरत नहीं है, हम अपने हाथ से भी छू के बच्चे के हाथ और पैर देख सकते हैं कि अगर वो ठंडे हैं तो हम एक्स्ट्रा कपड़े पहना रहे हैं। ठीक है, और अगर बच्चा बहुत ज्यादा पसीने आ रहे हैं कुछ है तो हमें कपड़े कम कर देने हैं।
1: बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, जो जन्म लेते हैं बच्चे उन्हें जन्म की कितनी देर बाद उनको नहलाना चाहिए और उनको कब नहलाना चाहिए? बेसिकली नहीं पता होता है, जो न्यू पेरेंट्स होते हैं तो आजकल लाइफस्टाइल इतना बिजी है, सुपर फास्ट है भाई, बहुत सारी चीजों से जो पेरेंट्स नहीं होते हैं रूबरू, तो मैं अगर आपसे ये पूछना चाहूँ तो डॉक्टर साहब,
0: अगर बेबी का वेट 2 kg से ज्यादा है
1: जी,
0: मतलब यूजुअली हमारा 2 kg से ज्यादा तो मतलब ऑलमोस्ट पूरे समय पे पैदा हुआ है।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि जब बच्चे की जो कॉर्ड होती है अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसको हम आम भाषा में बच्चे की नाल बोलते हैं या नाभि बोलते हैं,
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: जब वो अलग हो जाती है उसके बाद ही बच्चे को नहलाना चाहिए। ठीक है, और अगर किसी बच्चा जो समय से पहले पैदा हुआ है, वजन कम है, जिनका जैसे 1.5 kg मतलब 1.5 किलो 1.25 किलो इस टाइप के वजन है, जितना भी है, तो जब बच्चे का वजन 2 किलो या उससे ज्यादा हो जाए हमें उसके बाद नहलाना चाहिए बच्चे को।
1: छोटे बच्चों के लिए, जो छोटे न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनके लिए टीकाकरण कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट है? कई बार पेरेंट्स लगवाने से डरते हैं आज भी ग्रामीण इलाकों में कि बच्चे को बुखार आ जाएगा, बच्चा रोने लगेगा, तो ये बहुत सारे ना लोग एक्सक्यूजेस देते हैं, टीकाकरण नहीं करवाते हैं, तो ये कितना जरूरी है डॉक्टर साहब?
0: टीकाकरण बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों में, क्योंकि हम इससे कई बीमारियों से बचा सकते हैं, इसलिए हमारी गवर्नमेंट में भी काफी सारी वैक्सीन आती है, तो हर वैक्सीन के साथ साइड इफेक्ट होते हैं, बट वैक्सीन से होने वाले फायदे कई ज्यादा हैं उन साइड इफेक्ट से। तो मैं यही कहूंगा सारे पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को सारे ही टीके लगवाएं जितने अवेलेबल हैं, उनसे एटलीस्ट बीमारियां या तो नहीं होंगी, चांसेस कम हो जाएंगे या सीवियरिटी कम हो जाएगी बीमारी की।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं हेलो डॉक्टर प्रोग्राम, मेरा नाम आनंद है और ये है आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे। हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आज डॉक्टर आकाश सिंघल जी हमारे साथ मौजूद है श्री साई हॉस्पिटल से, और आज हम न्यू बॉर्न के ऊपर ढेर सारी बात करें, नवजात शिशुओं को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब एक और मेरा सवाल है, जो नवजात का वजन होता है वो कितना सामान्य माना जाता है?
0: नॉर्मली कहें तो हम 2.5 kg के अराउंड एक एवरेज बर्थ वेट होता है। ठीक है, उससे कम है अगर
1: जी,
0: हम उनको लो बर्थ वेट बोलते हैं, मतलब जन्म का वजन कम है, बट जैसे जैसे वजन कम होने के कई कारण हो सकते हैं, या तो बच्चा पहले डिलीवर हो गया है या फिर ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन है, मतलब उसका गर्भ के अंदर वजन ठीक से नहीं बढ़ा है, तो वो एक अलग चीज होती है। वजन अगर जैसे जैसे बच्चा समय से पहले होगा तो उसका स्वाभाविक है वजन भी कम होगा, तो इसके साथ सारी चीजें हमारे रिस्क बढ़ते हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं न्यूबॉर्न प्रीटर्म या फिर हमारे लो बर्थ या वेरी लो बर्थ 1500 ग्राम से कम वाले बच्चों में काफी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं, क्योंकि सारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स इमेच्योर है। मैं अपने पेशेंट्स को भी यही समझाता हूँ कि उसका अगर आप ब्रेन देखें तो ब्रेन की वेसल्स हैं वो कमजोर हैं, उनमें अगर कोई भी प्रेशर चेंज होगा तो उनमें रप्चर का रिस्क रहेगा, ब्रेन हेमरेज का रिस्क रहता है। बच्चे के लंग्स ठीक से डेवलप नहीं हुए हैं अगर, तो उनमें छोटी मशीनी, जैसे हम आम भाषा में छोटी मशीन कहते हैं, जो सीपैप होता है या फिर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। और अगर बच्चे की गट भी हमारे अगर समय से पहले हैं तो वो भी कमजोर होती है, तो बच्चे कुछ बच्चे प्रीटम बच्चे या हमारे जो कम वजन वाले बच्चे हैं फीड यानी कि दूध पचाने में भी दिखते हैं, ठीक है, और उनमें इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति भी कम होती है। तो ये सारी कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं जो समय से पहले जन्म हुए बच्चे या फिर जो काफी मतलब हमारे 1500 ग्राम 1600 ग्राम वाले ये जो बच्चे होते हैं इनमें देखी जाती है। इन बच्चों को आईसीयू की बेहद जरूरत होती है, यहाँ पे हम इनको मिनिमल हैंडलिंग करनी होती है, मतलब कम से कम डिस्टर्ब करें बच्चों को, सारा काम बच्चों का क्लस्टर केयर की सारा काम जो भी करना है, डायपर चेंज करना है, फीड देनी है, ये सब हम एक साथ करें। जितना कम हम इनको हैंडल करेंगे, जितनी पूरी कोशिश रहनी चाहिए कि हम इनको इन यूट्रो एनवायरनमेंट जो कि गर्भ के अंदर का वातावरण होता है वो हमें प्रोवाइड करने की, जिससे इनकी ग्रोथ अच्छी हो।
1: डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आप आए हमारे स्टूडियो और आपने हमारे तमाम सुनने वालों को बहुत बेहतरीन जानकारी दी, और मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी कहीं ना कहीं जो न्यू पेरेंट्स बनने वाले हैं उनके लिए भी बहुत कमाल होगी और जो लोग बन चुके हैं उनके लिए भी कमाल की होगी। सो थैंक यू सो मच, वेल आपने इतना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम आगे भी आपको आमंत्रित करते रहेंगे और आप प्लीज आते रहिएगा श्योर। और मैं जाने से पहले आपसे एक संदेश लेना चाहूंगा, जो तमाम लोग आपको सुन रहे हैं स्पेशली मॉम डैड जो अभी न्यू बनने वाले हैं और जो बन गए उनके लिए आप क्या संदेश जाते जाते।
0: मैं बताना चाहूंगा कि बच्चों में हमें डेंजर साइंस का ध्यान रखना चाहिए। डेंजर साइंस मतलब खतरे के संकेत।
1: हाँ जी।
0: किस स्थिति में हमें बच्चों को तुरंत अस्पताल लेके जाना है। अगर बच्चा सुस्त है, मोस्टली बच्चे पूरे दिन सोते हैं, फीड करेंगे सो जाएंगे, फीड करेंगे थोड़ी बहुत एक्टिविटी करेंगे सो जाएंगे, बट आपके उठाने से भी नहीं उठ रहे हैं, वो बच्चा सुस्त है, आप उसको अस्पताल लेके जाएंगे। बच्चे को दौरे आ रहे हैं या फिर बच्चे को सांस लेने में तकलीफ है या बच्चा दूध नहीं पी रहा है या फिर बच्चा तापमान बच्चे का टेम्परेचर काफी कम है या उसको बुखार है,
1: हाँ जी हाँ,
0: ठीक है, या फिर बच्चे के हथेलियां तलवे पीले हो गए हैं, ये सब हमारे डेंजर साइंस होते हैं, इनको बेहद ध्यान रखना है। और ऐसी अगर बच्चों में कोई भी चीजें देखने को मिलती हैं तो तुरंत अस्पताल में दिखाना है। और एक और एडवाइस पेरेंट्स के लिए कि मदर्स को अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है बच्चे की केयर करते टाइम, क्योंकि अगर मदर की हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो मदर का मिल्क आउटपुट कम होगा, वो बेबी का ठीक से ध्यान नहीं रख पाएंगी तो वो ठीक नहीं है, तो मदर्स को भी अपना ध्यान रखना। और एडवाइस रहेगी पेरेंट्स के लिए कि आजकल इंटरनेट के जमाने में सिर्फ इंटरनेट पे ही भरोसा ना करें,
1: बिल्कुल सही कहा,
0: अगर कोई भी दिक्कत लगती है आप अपने नजदीकी डॉक्टर से डिस्कस करें और अपनी उनके ओपिनियन को ही माने, क्योंकि नेट पे तो अगर खोलेंगे तो कुछ भी आ जाएगा, उसके बाद डरेंगे ही और कोई फायदा नहीं होगा, तो बेहतर रहेगा कि आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और उनकी एडवाइस को माने।
1: थैंक यू सो मच डॉक्टर आकाश जी, आप आए बहुत बहुत थैंक यू, और एफएम मुरादाबाद आरजे आनंद आपका शुक्रिया करता है, उम्मीद करता हूँ आगे भी ऐसे मिलते रहेंगे सर, बहुत बहुत थैंक यू। सुनते रहिए आप एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, रेडियो बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए, फिर मिलते हैं एक नई सीरीज में किसी और नए एक्सपर्ट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: आवश्यक सूचना 400 KV बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 KV उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारी।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है ZIG प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। ZIG करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: हेलो जी, कैसे हाल चाल है? यू आर लिस्निंग टू एफ मुरादाबाद 89.6 FM, आपके शहर का सामुदायिक रेडियो सुन रहे हैं आप। और आज का जो ये टॉपिक है बहुत ही स्पेशल है। आई नो दैट आप इसको हर हफ्ते सुनते हैं और कुछ ना कुछ स्पेशल टॉक्स होते हैं इसमें। और हमारे साथ स्पेशल टॉक करने के लिए एक खास एक्सपर्ट हमारे साथ होते हैं, एक खास मेहमान होते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में मैं नहीं होता हूँ भाई। ये चेयर जो है बेसिकली रीना संभाल रही होती है, तो वो अभी भी मेरे साथ स्टूडियो में ही है। उसने मेरे को पकड़ के बाहर से अंदर बैठा लिया कि बेटा तू भी आ जा। सो हेलो, कैसे हो आप?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ।
0: आपके शो का नाम क्या है? लीगल टॉक्स आपने शायद रखा हुआ है ना?
1: हाँ हाँ,
0: लीगल टॉक्स में कौन होते हैं हमारे एक्सपर्ट?
1: एडवोकेट अनिरुद्ध अरोड़ा जी हमारे साथ कनेक्ट होते हैं हर हफ्ते
0: जी,
1: जहां हम ढेर सारी बातें करते हैं।
0: और आज मैं वो बातें सुनने आया हूं। तो सबसे पहले तो हम अपने एडवोकेट साहब का ही वेलकम करेंगे अपने स्टूडियो में। सर बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप?
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हर बार हर हफ्ते आप एक प्रोग्राम रखते हैं
0: जिसका
2: नाम लीगल टॉक्स है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये जो प्रोग्राम है आपका बहुत अवेयरनेस का प्रोग्राम है।
0: चलिए, बहुत मजे की बात है। और ये अवेयरनेस के प्रोग्राम में एक आपको बस अकेली रीना मिलती है, लेकिन आज हम दो लोग मिल गए आपको।
2: हाँ, तो अच्छा है ना, दोनों के साथ आप भी अवेयर हो गए थोड़ा थोड़ा।
0: जरूरी है सर, और मुझे लगता है कि आज की जनरेशन को अवेयर होना बहुत जरूरी है।
2: यूथ तो हमारे देश का आईना है।
0: एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा कह रहे हैं सर आप। तो सर बताइए थोड़ा सा जरा अपने बारे में हमारी जनता को। आप जो है काफी समय से कर रहे हैं ये लीगल टॉक्स, कैसा लग रहा है आप?
2: देखिए, आपका प्रोग्राम ही ऐसा है कि लीगल टॉक्स, तो लीगल टॉक्स का मतलब ये कि हम जो कानूनी बातें हैं उसकी बारीकियां उसको समझ पाए। और हमारे दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में कहीं ना कहीं कुछ रोज ऐसा कुछ घटित होता है जो कहीं ना कहीं लीगल मैटर से जुड़ा हुआ होता है।
0: करेक्ट करेक्ट।
2: और अगर ये जानकारी आपके लिसनर्स तक पहुंच रही है, वो लोग अवेयर हो रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीज ये एजुकेशन सीरीज में मानता हूँ इसको।
0: बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया।
2: और लॉ के स्टूडेंट्स भी इसको सुनते हैं, और जो है घर में माताएं बहनें महिलाएं सीनियर सिटीजन भी सुनते हैं, तो उनको अपने अधिकारों के बारे में पता चलता है।
0: बहुत जरूरी है।
2: और हमें अगर अपना लीगल राइट पता हो, हमारे फंडामेंटल राइट्स पता हो, तो निश्चित तौर पर हम अवेयर होते हैं और हमारी एजुकेशन भी बढ़ती है, और हम किसी भी क्राइम के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, उसको क्राइम को रोक सकते हैं,
0: उस पर एक्शन ले सकते हैं। बट उसके लिए हमें पर्टिकुलर एक राइट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ना सर?
2: बिल्कुल, क्योंकि टाइम पे लिया हुआ ही एक्शन आपको बचा सकता है।
0: एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा है देखिए अनिरुद्ध जी ने। और मुझे लगता है कि इसके लिए आपको सही इन्फॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए, और वही सही इन्फॉर्मेशन लीगल टॉक्स के थ्रू आपको हर वीक दी जाती है, और जिसमें हमारे साथ एडवोकेट साहब होते हैं। और यहाँ पर आपको लॉ भी पढ़ाया जा सकता है, शायद अगर मैं कहूँ तो, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है सर। कुछ ना कुछ तो आप ऐसा देखे जाते होंगे हमारे लिसनर्स को।
2: ये टॉपिक इतना डीप में है कि इसमें कोई भी कहे कि मैं इसमें परफेक्ट हूँ, तो नोबडी इज परफेक्ट।
0: आई थिंक
2: रोज नए नए सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट्स आते हैं, तो हमको भी रेगुलर बेसिस पे एक स्टूडेंट की तरह, एक न्यू कमर की तरह उसको हमें स्टडी करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है।
0: क्या बात है।
2: तो एडवोकेट्स की जो लाइफ होती है ना, वो स्टूडेंट लाइफ ही मान के चलिए,
0: मतलब हर दिन एक नई लर्निंग का पीछे,
2: पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती है।
0: हर दिन कुछ ना कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखना है। अरे वाह, क्या बात है। लेकिन सर मजा उसी में है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब तक आपको कुछ नया नहीं मिलेगा तब तक आपको मजा नहीं आएगा।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
0: है ना। जब आपको नया मिलता है तो वो कुछ नए चैलेंजेस होते हैं, तो उनके साथ जब आप काम करते हो, आगे बढ़ते हो, तो और मजा आता है।
2: देखिए, फील्ड ऐसा है कि आपको खुद ही इंटरेस्टिंग नई नई चीजें पता चलेंगी। अब जैसे अभी कोई नया जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का भी, अभी बहुत फेमस आप देख रहे होंगे, आजकल सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड हो रहा है, एक मॉडल त्रिशा करके है ना, तो उसका भी एक सुसाइड का केस या मर्डर का केस जो भी है वो अभी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं कहीं ना कहीं हमारा, अगर हम उसको डीप में जाएंगे ना, तो लीगल चीज से ही वो जुड़ा होता है, तो हमको अगर चीजें पता होंगी तो हम भी उस चीज को जो हम फेस करते हैं लाइफ में, तो हम इन चीजों से बच सकते हैं। और आजकल के डेज में मैंने ये देखा है कि मोस्टली ये प्रॉब्लम्स हर
0: किसी बंदे को, हर दूसरे बंदे के सामने आ रही है, कहीं ना कहीं में चल रही है,
2: देख रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं उन चीजों से अगर हम अवेयर रहेंगे तो हम टाइमली प्रिकॉशन ले सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने सर, और हम भी इस बात से अग्री करते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, हर घंटे नई चीजें देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, और अगर हमें हमारे राइट्स पता होंगे, सही इन्फॉर्मेशन पता होगी, तो हम अपने लिए भी एक्शन ले पाएंगे। बहुत ही अच्छा। तो रीना, आज क्या टॉपिक है? गुमसुम होकर मत बैठ, मैं यहाँ पे आया उसका मतलब ये नहीं कि मेरी जिम्मेदारी है, ये तेरी सीट है, तू ही संभालेगी इसे, मैं तो सीखने आया हूँ।
1: आज हमारा टॉपिक है यानी कि PIL, पब्लिक इंटरेस्टेड लिटिगेशन,
2: पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन।
0: ओके, लिटिगेशन, ठीक है। कोई नहीं सर, आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए. आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन इस टॉपिक को मैं चाहूंगा कि अरोड़ा साहब आप बताएं. आप बताएंगे तो लिसनर को ज्यादा समझ आएगी.
2: देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा वो PIL, PIL की फुल फॉर्म होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन.
0: ओके,
2: ठीक है. जैसे आपको नाम से ही पता चला होगा कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट, तो यानी अगर पब्लिक के इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई लिटिगेशन है, कोई चीज है, तो उसको हम पब्लिक की आवाज बन के कोर्ट में उठा सकते हैं.
0: करेक्ट. अच्छा, जब कोई लोक अदालत होती है तो उसमें भी इस चीज का यू नो जिक्र होता है?
2: नहीं, लोक अदालत अलग मैटर होता है, PIL अलग.
0: ये जो आपने लास्ट वाला बोला है ना, ये हमने कहीं पर तो सुना है सर.
2: PIL,
0: PIL का लास्ट वाला जो है, LL का जो फुल फॉर्म आपने अभी बताया,
2: पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन.
0: लिटिगेशन के बारे में बात करें.
2: देखिए, जो लिटिगेशन होती हैं, लिटिगेशन इज ए काइंड ऑफ, एक जो आप वहाँ पे जो अपना मैटर जो आप उठाते हो, जो कंटेंट होता है,
0: ठीक है,
2: कोई किसी चीज को लेके जो आप कोर्ट में जाते हो उसको लिटिगेशन बोलते हैं.
0: ओके, मतलब तो ये कोर्ट में ही, मतलब मोस्टली
2: लिटिगेशन वर्ड जो है वो कोर्ट से रिलेटेड ही होता है. और जो आप लोक अदालत की बात कर रहे हैं, लोक अदालत जो होती है वो एक कोर्ट के द्वारा निर्धारित की गई, हमारी जो जुडिशरी के द्वारा निर्धारित की गई एक लोक अदालत होती है, उसमें मोस्टली केसेस मीडिएशन होती है, रिकनसाइल कराने के लिए.
0: correct,
2: होती है.
0: correct.
2: कि दोनों पार्टीज जो हैं, जिन दोनों के बीच में डिस्प्यूट है,
0: करेक्ट,
2: उसको बैठ के
0: समझौता किया जाए,
2: म्यूचुअली उसको टेबल पे बैठ के उसको सॉर्ट आउट किया जाए, उसको जो है आगे कोई भी अगर उसमें कोई कंट्रोवर्सी है कुछ है तो उसको कंपनसेट और डैमेजेस के बिहाफ पे उसको सॉर्ट आउट करके उसको खत्म किया जाए.
0: मतलब दोनों पार्टी के बीच,
2: क्योंकि हमारी जो इंडिया है, हमारी इंडिया की जुडिशरी में अगर आप देखेंगे तो इतने कई सालों से, 20-30 सालों से लोग लीगल अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, बैटल लड़ाई लड़ रहे हैं. आप चाहे सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, चाहे हाई कोर्ट चले जाइए, चाहे लोअर कोर्ट, तो मोस्टली लोगों की जो लाइफ है वो कोर्ट में ही चली जाती है. तो उसको ही इजी वे में करने के लिए एक लोक अदालत का जो ऑर्गेनाइज किया गया कि लोग अपने छोटे छोटे विवादों को आपसी सहमति से बैठ के उसे सुलटाएं.
0: थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग दिस इन्फॉर्मेशन अरोड़ा साहब, बहुत अच्छा लगा, हमें भी नई इन्फॉर्मेशन मिली. वेल, बैक टू पॉइंट, अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं. आज का टॉपिक है PIL के बारे में हम बात कर रहे हैं ना.
1: जी हाँ हाँ, बिल्कुल.
0: यस, तो थोड़ा सा इसके बारे में अभी आपने बता ही दिया पर्टिकुलर ये क्या चीज है, तो इसके बारे में थोड़ा सा और अगर हम डिटेल में जानना चाहें, हमारे लिसनर्स को थोड़ा सा अगर आप और एक्सप्लेन करना चाहें बेसिकली इसके बारे में, और ये किस तरीके से वर्क करता है.
2: देखिए, आपने जैसे आजकल न्यूज में भी और न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो या सोशल मीडिया पे, तो आपने बहुत वर्ड सुना होगा कि भाई उन्होंने PIL दाखिल करी है.
0: हाँ ठीक है,
2: सुनी होगी ना.
0: बिल्कुल सुना है सर, बिल्कुल.
2: तो PIL क्या होता है, एक जनहित याचिका होती है, पब्लिक इंटरेस्ट, जैसे नाम से आपको पता चला है, पब्लिक जनहित,
0: करेक्ट
2: ना, इंटरेस्ट, पब्लिक के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, लिटिगेशन यानी याचिका.
0: राइट,
2: ये याचिका जो होती है ये व्यक्ति विशेष के निजी हित के लिए नहीं, बल्कि मतलब अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं अपने लिए ये फाइल नहीं कर सकता,
0: ठीक है,
2: लेकिन एक ग्रुप ऑफ सोसाइटी, अगर पब्लिक को वो प्रॉब्लम है तो उसके बिहाफ पे मैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन समाज के बड़े वर्ग के हित में दाखिल की जाती है. ये किन मामलों में दाखिल कर की है वो बता देता हूँ मैं. जैसे कोई अवैध कब्जा कर लेता है, या सार्वजनिक भूमि पर कोई अतिक्रमण कर लेता है. जैसे सपोज करिए आप रह रहे हैं, एक सार्वजनिक भूमि है और उसको कोई कब्जा लेता है, तो आप उस केस में आप PIL दाखिल कर सकते हैं. या कोई एनवायरमेंट को हार्म कर रहा है.
0: ओके,
2: ठीक है.
0: अच्छा,
2: क्योंकि आपने देखा होगा भी मोस्टली लोग क्या करते हैं, अनऑथराइज अपनी फैक्ट्रीज कर लेते हैं, ठीक है, एनवायरमेंट को पॉल्यूटेट करते हैं, उसके आसपास का जो सराउंडिंग्स खराब होती है, तो इसको लेके भी आप PIL दाखिल कर सकते हैं. लेकिन PIL में जो पब्लिक इंटरेस्ट की बात होनी चाहिए वो आपका निजी पर्सनल मैटर नहीं होना चाहिए.
0: करेक्ट, मतलब वो पब्लिक उसमें ऑलरेडी हाईलाइट हो रहा है ना.
2: बिल्कुल,
0: तो पब्लिक की हित की बात,
2: पब्लिक की बात होनी चाहिए.
0: करेक्ट.
2: अब जैसे कोई सड़क है, नाली है, सीवर है,
0: दिस इज अ पब्लिक प्लेस,
2: पब्लिक प्लेस, पब्लिक की बात हो रही है, पेयजल, पानी की समस्या, सार्वजनिक समस्याओं की, कोई
0: ट्रैफिक की समस्या भी इंक्लूड कर सकते हो.
2: ट्रैफिक की भी कर सकते हैं, क्योंकि ट्रैफिक भी आप
0: पब्लिक के लिए ही,
2: पब्लिक के लिए होनी चाहिए जी. सरकारी अधिकारी कोई लापरवाही कर रहे हैं,
0: राइट,
2: वो कोई चीज को लेके पब्लिक का कोई काम है और पूरे समूह की, ग्रुप की बात हो रही है पब्लिक के लिए, उसको नहीं कर रहे हैं, तो आप उसके खिलाफ भी आप PIL ला सकते हैं.
0: बेसिकली मॉडल ऑफ पॉइंट की कुल मिला के पब्लिकली ही चीजें चल रही
2: है, पब्लिक की बात होनी चाहिए. भ्रष्टाचार, कोई करप्शन है किसी मुद्दे को लेके.
0: रीना ने एक क्वेश्चन मेरी तरफ सरका दिया है हल्के से, की आप जरा सर से आप पूछिए, तो मैं ही पूछ लेता हूँ सर. पहला क्वेश्चन इसमें, मतलब इसने लिखा है की जनहित याचिका PIL क्या है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है. बेसिकली
2: मैं वही बता रहा हूँ, PIL जो याचिका होती है, पब्लिक के इंटरेस्ट की बात ही।
0: अच्छा, जो अभी आपने हमें एक्सप्लेन किया,
2: जो हमें पब्लिक के इंटरेस्ट की ही बात वहाँ पे करनी होती है। पब्लिक का इंटरेस्ट कहीं से अगर ब्रीच हो रहा होता है या उसका पब्लिक का हेरेसमेंट होता हो रहा होता है, तो उसको लेके ही हम
0: आवाज उठाना,
2: उसको लेके ही हम PIL दाखिल कर सकते हैं। इंडिविजुअल के तौर पे नहीं कर सकते। अगर हमें इंडिविजुअल के तौर पे कोई रिलीफ चाहिए होता है, तो उसके लिए और एप्लीकेशंस।
1: अच्छा सर, इसमें यानी कि कौन कौन सी व्यक्ति या संस्थाएं जनहित याचिका दायर किया जा सकता है?
2: देखिए, ये व्यक्ति कोई इंडिविजुअल भी दाखिल कर सकता है, लेकिन पब्लिक के किसी ग्रुप के बिहाफ पे, कि इस पर्टिकुलर पब्लिक को इस एरिया में, सराउंडिंग में ये प्रॉब्लम है, जिससे पूरा एक समूह, पूरा ग्रुप इफेक्टेड है,
0: ठीक है,
2: तो उसको लेके ही हम दाखिल कर सकते हैं इसको। आप निजी कोई पर्सनल आपका कोई अगर इसमें हित है, कोई सेल्फ है, तो उसको लेके आप PIL दाखिल नहीं कर सकते। उसके लिए और बाकी और रिलीफ जो कोर्ट ने आपको दी हुई है, जो और लिटिगेशंस हैं और जो एप्लीकेशन है, वो आप किसी और कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं।
0: क्या बात है, लीगल टॉक्स आप सुन रहे हैं एडवोकेट अनिरुद्ध अरोरा जी के साथ, और साथ में रीना और मैं भी हैं। ये चल रहा है आपके शहर के अपने सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 FM पर। सर, अच्छा ये बताइए, PIL और सामान्य याचिका में क्या अंतर है, थोड़ा सा इसके बारे में हम दोनों जानना चाहते हैं।
2: सामान्य याचिका तो कोई भी दाखिल कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, रीना भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं,
0: ठीक है,
2: वो हम इंडिविजुअल अपने लिए भी कर सकते हैं,
0: ठीक है,
2: लेकिन PIL सिर्फ पब्लिक की गुड फेथ के लिए, पब्लिक के भले के लिए, या कोई पब्लिक से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा है उसके लिए हम कर सकते हैं। यदि मामला आपके व्यक्तिगत अधिकार या निजी विवाद से संबंधित है, तो आप समानता PIL नहीं बल्कि नियमित रिट याचिका या अन्य उपयुक्त कार्रवाई कर सकते हैं।
1: अच्छा सर, जनहित याचिका किन किन मुद्दों पर दायर की जा सकती है?
2: देखिए, जनहित याचिका के मुद्दे जैसे मैंने अभी बताया, अवैध कब्जा हो या सार्वजनिक भूमि पर कब्जा हो, एनवायरमेंट को कोई हार्म पहुंचा रहा हो, सड़क है, नाली है, सीवर है, पेयजल जैसी सार्वजनिक सुविधाओं की कोई समस्या हो, या फिर सरकारी अधिकारियों की कोई लापरवाही है, उसके अंगेश आप PIL दाखिल कर सकते हैं। भ्रष्टाचार से संबंधित सार्वजनिक हित के मुद्दे हो, कोई मानवाधिकार का उल्लंघन हो, ठीक है, या सार्वजनिक सुरक्षा या कानून व्यवस्था से जुड़े कोई गंभीर मुद्दे हो, तो उसके खिलाफ भी आप PIL दाखिल कर सकते हैं।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा अरोड़ा साहब, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन और आ रहा है, मैं देख पा रहा हूँ कि अभी हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर पर्यावरण की, थोड़ी देर पहले पेड़ वगैरह की बातें हमने करी, तो अगर मैं इसी से रिलेट पूछूं कि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अगर मैं बात करूँ, PIL की क्या भूमिका रही है, मतलब किस तरीके से ये
2: पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र की अगर आप बात करते हैं, तो PIL की बहुत अहम भूमिका रही है। अभी आपने करीब 2-3 महीने पहले सुना होगा कि अरावली हिल्स का एक मुद्दा बहुत छाया था।
0: करेक्ट, अरावली। हाँ,
2: तो अरावली हिल्स क्या था? अरावली हिल्स में ये था कि वहां पे बहुत सारे नेचुरल मिनरल्स और कई ऐसी चीजें थी, रिसोर्सेस थे, कि जितने भी भूमाफिया थे या लैंड माफिया थे, वो खनन वहां पे कर रहे थे। बहुत उस खनन की वजह से जो वहां की जो नेचुरल ब्यूटी थी और एनवायरमेंट को हार्म हो रहा था, उसके खिलाफ PIL डाली गई थी, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेके अरावली हिल्स में खदान क्षेत्र को ब्लॉक कर दिया था। वहां पे कोई ऐसी अगर कोई खदान करता हुआ पाया गया या कुछ है, उसमें गवर्नमेंट को भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि इस एरिया को, जो नेचुरल ब्यूटी है, उसको आपको बिल्कुल प्रिजर्व करके रखना है। तो अरावली हिल्स का मुद्दा आपको पता होगा कितना बड़ा मुद्दा था, और हमारे एनवायरमेंट को सेव करने के लिए निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट भी बहुत सुमोटो, कई केसेस में हमने देखा कि वो सुमोटो भी ले लेते हैं।
0: करेक्ट दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 FM, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो, रीना और आनंद है, जहां पर लीगल टॉक्स चल रहा है विद एडवोकेट अनिरुद्ध अरोरा जी के साथ। सर, आपका नाम मैं सही ले पा रहा हूँ?
2: बिल्कुल बिल्कुल।
0: कभी कभी होता है ना, मेरी जुबान थोड़ी हिल जाती है, जब ब्रेकफास्ट में केला खाते हैं तो जुबान फिसल जाती है। आज वैसे मेरे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। ये लड़की बहुत जो है आजकल हंस रही है, इसके तो खैर हम बाद में बात लगाएंगे, टेंशन मत ले तू। अच्छा सर, अभी हम PIL के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत सारे लिसनर्स हमारे जानना चाह रहे होंगे ये है क्या, व्हाट इज दिस PIL, इसके थोड़ा सा इसका एक बार रिपीट कर दो फुल फॉर्म।
2: देखिए, PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जैसे मैंने आपको बताया, तो अगर पब्लिक के मुद्दे से रिलेटेड आप कोई भी बात कोर्ट में अपने सुप्रीम कोर्ट में
0: पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो यहाँ दोनों को याद कर लेना चाहिए, नहीं तो हम आउट हो जाएंगे ऑफिस से। ध्यान रखना,
2: नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगा तो मैं आपसे पूछूंगा कि PIL की फुल फॉर्म।
0: सर मैं अगर भाग गया तो ज्यादा सही, मैं गायब हो गया तो बात अलग है, तू याद करके रखियो, तेरा शो है। पब्लिक इंटरेस्ट
2: लिटिगेशन,
0: यार पब्लिक सीखने को मिली है।
2: पब्लिक के जब भी हित की बात हमें कोई करनी हो या कोई याचिका दायर करनी हो,
0: जी जी सर,
2: तो हम उसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं, वो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं।
0: ओके
2: ठीक है।
0: तो देखिए गाइज, अब हम सिर्फ एंटरटेनमेंट की बातें नहीं कर रहे हैं, अब हम सीरियस बातें भी कर रहे हैं। और जहां पर आज जो है ये इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें अनिरुद्ध जी बता रहे हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था। और आई थिंक हो सकता है हम अपने शो में आपसे कभी भी पूछ लें कि PIL का फुल फॉर्म क्या है, तो हमें याद होना हो आपको जरूर होना चाहिए। हम तो गूगल करके भी निकाल लेंगे, आप गूगल नहीं करना
1: चाहिए, गूगल करके निकाल लेंगे तुम्हें।
0: हाँ ये बात तो वो तेरी तरह है, मैं समझ गया हूँ। जितना दिमाग तू चलाती इतना हमारे लिसनर भी चला लेते हैं। वेल आगे बढ़ते हैं, बैक टू पॉइंट।
1: हाँ
0: तो रीना कुछ क्वेश्चन पूछ रही है सर आपसे। हाँ प्लीज।
1: हाँ तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या PIL के माध्यम से सरकारी नीतियों और योजनाओं की समीक्षा कराई जा सकती है?
2: यस बिल्कुल कराई जा सकती है। अगर जनहित याचिका PIL के माध्यम से हम सरकारी नीतियों और योजनाओं की कोई जानकारी नहीं मिलती है,
0: हाँ जी हाँ जी,
2: तो हम उस योजनाओं की जानकारी के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में PIL दाखिल कर सकते हैं और उस योजनाओं की न्यायिक समीक्षा कराने की मांग कर सकते हैं। यदि वह संविधान कानून या जनहित के विरुद्ध हो, हालांकि न्यायालय समानता नीति के गुण दोष हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन यदि किसी नीति से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो और मानहानि की गई हो या कानून का पालन ना किया हो, तो न्यायालय हस्तक्षेप भी कर सकता है इसमें।
1: क्या बात
0: okay.
1: है
0: so, अच्छा डिजिटल टाइम है सर, आजकल डिजिटल जमाना है, इस पे अगर हम बात ना करें तो लगेगा बड़ी नाइंसाफी हो रही है हमारी जेंजी के लिए। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि डिजिटल युग में नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए PIL कितना महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए जरा।
2: देखिए डिजिटल जब से युग आया, डिजिटल ट्रेंड आया, तो PIL का महत्व और ज्यादा ही बढ़ गया है। आप देख रहे हैं आज की डेट में इतने ज्यादा फ्रॉड्स होते हैं, जो डाटा है हमारा उसको स्कैम कर लिया जाता है, उसको गोपनीयता उसकी भंग हो जाती है, साइबर सुरक्षा है, ऑनलाइन जो एक लोगों कहते हैं कि भाई हमें अभिव्यक्ति की आजादी, लोग अपने कुछ भी कमेंट करने लग जाते हैं, स्वतंत्रता है, डिजिटल जो निगरानी है आजकल, लोग अगर आप कोई चीज देख भी रहे ना गूगल पे तो उसकी भी कोई ना कोई डिजिटल उसको मॉनिटर कर रहा है।
0: एब्सोल्युटली 100%
2: इंटरनेट तक जैसे मुद्दों पर PIL नागरिक के अधिकारों की रक्षा का महत्वपूर्ण जो है माध्यम बन गया है, और इसके माध्यम से न्यायालय नई तकनीक से कई जो नई चीजें हैं उसको न्यायालय के माध्यम से हम लोगों ने देखा है कि उन जो चैलेंजेस आते हैं उसको भी PIL के माध्यम से कई बार गवर्नमेंट ने उसको कई मुद्दों को उठाया भी है और PIL भी दाखिल हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शंस दिए। जैसे आपने सुना होगा आजकल व्हाट्सएप वगैरह पे अगर गोपनीयता हमारी भंग हो जाती है, अगर हम कुछ भी लिख रहे हैं किसी को, चैट भी कर रहे हैं, तो वो चीज भी लीक आउट हो जाती है। तो इसको लेके भी कई PIL जो है दाखिल करी थी, और PIL दाखिल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी, आपने देखा होगा कि कभी फेसबुक को उन्होंने डायरेक्शन दिए या ट्विटर को डायरेक्शन दे रहे हैं या व्हाट्सएप जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके लिए डायरेक्शंस दे रहे हैं कि भी जो भी यूजर है एटलीस्ट उसका जो डाटा है वो लीक नहीं होना चाहिए।
0: तो
2: ये पब्लिक से रिलेटेड बात हो रही है, एक समूह से रिलेटेड बात हो रही है।
0: 100% राइट, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है सर आपने, थैंक यू वेरी मच। अच्छा मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, हाल ही वर्षों में PIL से जुड़े कौन से महत्वपूर्ण फैसले हैं जो सामने आए हैं, अगर इस पे थोड़ा सा आप बताना चाहें।
2: देखिए हाल ही जो अभी ज्यादातर मोस्टली जो हमने देखे हैं जो मुद्दे हैं उसमें निजता के अधिकारों को मौलिक अधिकार है हमारा, एनवायरनमेंट से रिलेटेड कई मुद्दे जैसे अभी मैंने आपको अरावली हिल्स के बारे में
0: हाँ
2: बताया, ठीक
0: हाँ
2: है, प्रदूषण नियंत्रण के कई मामले, अच्छा इलेक्शन से रिलेटेड भी कई एक PIL आपने देखी होगी अभी जैसे चुनाव पारदर्शिता,
0: तो सर मुझे लगता है कि पब्लिक के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है
2: भाई ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने, तो एटलीस्ट कम से हमारे इंडिया में तो मुद्दा है ही।
0: करेक्ट वही ना,
2: तो कहीं ना कहीं एलिगेशन
0: ये चीज तो फिर उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई फिर ना।
2: हाँ
0: इस पर हम बात कर रहे हैं अभी,
2: तो जनहित की जहाँ पे भी कोई बात होगी तो वहाँ PIL डेफिनेटली
0: रहती
2: है, बिल्कुल उसको हम लोग याचिका को फाइल कर सकते हैं।
1: चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि जनहित याचिका आम नागरिकों को न्याय दिलाने में किस टाइप से मदद करती है?
2: देखिए हमारे जो समाज में जो अभिन्न हिस्सा, समाज का अभिन्न हिस्सा होते हैं, हर तरीके के लोग रहते हैं उसमें, है ना, अमीर गरीब सब तरीके, लेकिन कई बार ऐसा होता है देखने में आता है कि बहुत से लोगों को जो उनके वर्क का जो लाभ है वो नहीं मिल पाता है, तो उसको लेके जो है कई एक NGOs हैं, कई एक जो न्याय से रिलेटेड जो भी न्याय प्रेमी होते हैं, NGOs है, एडवोकेट्स है, वो लोग अपनी PIL या जब उनको लगता है भाई एक बड़े समूह का लॉस हो रहा है और कहीं ना कहीं उनके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, तो उसके लेके अगर PIL दाखिल की जाती है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट अपना जो है सुमोटो भी ले लेता है, और PIL के अकॉर्डिंग अगर उसको लगता है कि हाँ भाई वास्तव में एक समूह का या पब्लिक का कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है, तो उसको लेके वो डायरेक्ट भी दे सकता है, डायरेक्शंस भी दे सकता है।
0: ऑल राइट, सर थैंक यू वेरी मच. लीगल टॉक्स टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा. मैंने तो फर्स्ट टाइम अटेंड किया और ये जो आपका PIL का फुल फॉर्म है ये मैं सीख के जा रहा हूँ, रट्टा मार के जा रहा हूँ. एंड आई रिपीट, ये था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, करेक्ट? तो मैंने सीख लिया है. आपका बहुत बहुत

0: स्टैटिस्टिक्स है,
1: जी
0: इसको
1: जी
0: सुनते रहिए और जो है नए नए टॉपिक्स पे हमारा डिस्कशन सुनते रहिए और जो है अपनी एजुकेशन भी बढ़ाइए, अपने घर वालों को
1: भी अपने ऐड कीजिए,
0: अपने घर वालों को भी सुनाइए एफएम।
1: करेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छा सर ने बोला। और गाइस बिल्कुल सर ने कम्युनिटी का जिक्र किया है, हम भी लगातार करते हैं, हमारी भी कोशिश होती है कि जो हमारा समुदाय है, जो आसपास
0: अच्छा,
1: के लोग हैं।
0: एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा मैं,
1: जी सर,
0: जैसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात हो रही है ना, तो वैसे आपका रेडियो भी कम्युनिटी की बात करता है।
1: हम अपने समुदाय की बात करते हैं,
0: तो वो कनेक्ट थोड़ा थोड़ा बनना है, जहाँ पब्लिक की बात हो रही है आप भी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी पब्लिक की बात कर रहे हैं, तो आप पब्लिक की आवाज बन रहे हैं।
1: गॉट इट सर, और रेडियो बेसिकली है ही पब्लिक की आवाज, और ये आम जनता की आवाज है, इसीलिए आपको लेकर आए क्योंकि आप उस पर थोड़ा हमें और जानकारी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग।
2: अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहती है, जिसके बारे में पता भी
1: मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, मैंने अभी सुना नहीं था आपका शो, बट मुझे अब सुनना पड़ेगा। आज का तो इतना अच्छा सेशन था जान के, मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आया। और हालांकि हम जब भी कभी वकील साहब से मिलते हैं, हमारे भी कुछ जानने वाले हैं, आपसे भी कभी मिलते हैं, लेकिन पता नहीं था कि अंदर से इतने धुरंधर होते हैं आप लोग। मतलब आज मेरे को पता लगा कि हाँ यार कुछ तो है, मतलब अगर बंदा इतनी सारी स्टडी करके आ रहा है, इतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, तो
2: इनकी स्टडी के बारे में बात करेंगे, मतलब इन्होंने
1: वो तो पर्सनली किसी दिन पॉडकास्ट कर लेंगे सर के साथ, डोंट वरी। लेकिन सर बहुत अच्छा लगा, और आपने सही कहा, हम एक कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, और जो टॉपिक था ये भी हमारी कम्युनिटी से रिलेटेड ही था। तो गाइज ऐसे आम जनता के जो टॉपिक्स हैं वो आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं, क्योंकि हम आपके दिल से जुड़ते हैं और ये कनेक्शन होता है दिल से दिल तक का। सर बहुत बहुत थैंक यू, आप आए, एंड आई एम रियली श्योर कि नेक्स्ट टाइम जब हम आपसे मिलेंगे तो कुछ और इंटरेस्टिंग मुद्दों पे हम बात करेंगे। तो गाइज आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए। नाना मैं ऐसे नहीं जाऊंगा जब तक रीना अपना पोटला ठोकला जो भी है वो उठाएगी नहीं, तब तक मैं नहीं जाऊंगा। सी तू अपना सायोनारा करेगी या नहीं है ये बता भी।
2: पोटला ढोकला नहीं है गाइस,
1: ढोकला गुजरात में मिलता है पता है ना।
2: नहीं हम घर पर भी बना सकते हैं,
1: वो मुझे नहीं पता, फिलहाल ये लीगल टॉक से यहाँ पे ये अनलीगल हो जाएगा, इसकी बात नहीं करेंगे अपन, इट्स नॉट रेसिपी शो।
2: हम यही से जाने की इजाजत लेते हैं, हम श्रोताओं आप सभी से फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय बाय, टाटा टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और अपनी जिंदगी में यूं ही आगे बढ़ते रहिए, रोक मचाते रहिए
1: और अपने अधिकारों को पहचानते रहिए। और अगर आपको अपने राइट्स नहीं पता है तो आप इस लीगल टॉक्स को सुनते जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको वो राइट्स और वो इन्फॉर्मेशन पता लगेंगी शायद आपको पहले ना पता हो। तो इसीलिए अभी के लिए हम लेते हैं दोनों इजाजत, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, नमस्कार।
3: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद,
4: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक,
3: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
4: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई,
3: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी,
4: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
3: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
2: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
1: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
2: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
1: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
2: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
3: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।

0: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
0: कॉल 7500153841।

0: नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका FM मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूं आपकी दोस्त प्राची और मेरे साथ हैं अखिल। और आज हम बात करेंगे हमारे विशेष कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, और हमारा स्पेशल टॉपिक रहेगा लखनऊ की मक्खन मलाई और चाट।
1: नमस्कार उत्तर प्रदेश, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां बात होती है विकास की, विरासत की और उस स्वाद की जो दिल में उतर जाए।
0: और आज हम पहुँचे हैं बाबू की शहर, तहजीब की शहर यानी लखनऊ में, जहाँ पहले आप सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि जिंदगी जीने का अंदाज है।
1: अब यही लखनऊ अपने शानदार स्वादों की वजह से भी दुनिया में नई पहचान बना रहा है।
0: योगी सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन यानी ODOC पहल ने लखनऊ के पारंपरिक व्यंजनों को लोकल से ग्लोबल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।
1: दोस्तों, लखनऊ सिर्फ बड़ा इमामबाड़ा, चिकनकारी और अदब के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि यहाँ का खाना भी शहर की रूह माना जाता है।
0: और भाई, लखनऊ का खाना सिर्फ पेट नहीं भरता बल्कि एहसास भी भर देता है।
1: यही वजह सरकार अब इन पारंपरिक स्वादों को ब्रांडिंग, पैकेजिंग और आधुनिक मार्केटिंग से जोड़ रही है, ताकि दुनिया लखनऊ को सिर्फ नवाबी शहर नहीं बल्कि स्वाद की राजधानी के रूप में भी पहचाने।
0: और अब बात करते हैं लखनऊ की सर्दियों की सबसे नाजुक मिठास, मक्खन मलाई की।
1: वाह, नाम सुनते ही जैसे मुंह में मिठास घुल गई। मक्खन मलाई, जिसे कुछ लोग निमिष भी कहते हैं, इतनी हल्की होती है कि मुंह में रखते ही पल भर में घुल जाती है, जैसे ठंडी सुबह धूप की पहली करण, बिल्कुल वैसा एहसास।
2: ये सबसे पहले अपना नाम हमें बता दें।
3: हमारा नाम पप्पू जी है।
2: पप्पू जी, पप्पू जी आपका ये प्रतिष्ठान कब से है?
3: 40-45 साल हो गया।
2: खासियत क्या है, क्योंकि भीड़ काफी कुछ का बहुत देखने
3: जैसे हम लोगों का यहाँ छोला समोसा मिलता है और यहाँ से व्यवहार भी बहुत अच्छा, हम लोग बहुत अच्छे से पेश आते हैं सबसे।
2: जी जी, इसकी खासियत क्या है?
3: खासियत हमारे यहाँ लहसुन पड़ता है, सोयाबीन पड़ता है और क्वालिटी भी अच्छा रहता है हमारे यहाँ।
2: मैंने सुना है लहसुन
3: प्लेट में पड़ता है।
2: उससे क्या स्वाद में?
3: स्वाद आप खाएंगे खुद जान जाएंगे, खाके देखिए।
2: बिल्कुल, ये भीड़ तो मुझे बता ही रही है कि उसमें जरूर कोई ना कोई खासियत है, तभी इतनी ज्यादा भीड़ आपके हमेशा बनी हुई। वैसे जैसे मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री हमारे जो है योगी जी, उनके एक प्रोजेक्ट के तहत एक जनपद एक व्यंजन हम यहाँ पे आपको चुने हैं। ये लहसुन वाला छोला आपका काफी प्रसिद्ध है, जिसकी वजह से हम आए और आपसे खास वार्ता हो रही है, तो योगी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे?
3: बहुत धन्यवाद है, हमारे उत्तर प्रदेश के राजा है, उनका क्या पूछा जाए।
2: हमारे शहर के राजा है,
3: हमारे शहर का क्या, हमारे पूरे देश के राजा है वो।
2: बिल्कुल बिल्कुल, हम भी उन्हें महाराज हैं।
4: धन्यवाद योगी जी।
0: और दोस्तों, इसकी सबसे खास बात ये है कि ये मिठाई सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि लखनऊ की पुरानी नवाबी परंपरा का भी हिस्सा है। कहा जाता है कि पुराने समय में नवाबों की रसोई में भी इसे बड़े अंदाज में तैयार किया जाता था,
1: और इसे बनाने की प्रक्रिया भी किसी कला से कम नहीं। सबसे पहले ताजे दूध को घंटों तक धीमी आँच पर पकाया जाता है, फिर उसमें मलाई तैयार की जाती है,
0: उसके बाद असली जादू शुरू होता है। पूरी रात उस दूध को खुले आसमान के नीचे रखा जाता है, ताकि सर्दियों की ओस और ठंडी हवा उसकी मिठास में घुल जाए।
1: यानी ये सिर्फ मिठाई नहीं है बल्कि मौसम और मेहनत का अनोखा संगम है।
0: बिल्कुल, और सुबह सुबह जब हलवाई उस दूध को बड़े प्यार से फेंटता है, तो धीरे धीरे उसमें हल्के हल्के झाग बनने लगते हैं।
1: उसमें डाली जाती है केसर की खुशबू, इलायची का स्वाद और ऊपर से पिस्ता बादाम की हल्की सजावट। उफ़, ये सुनकर ही दिल खुश हो जाए।
0: और खास बात ये भी है कि मक्खन मलाई सिर्फ सर्दियों में ही मिलती है, क्योंकि इसकी असली पहचान ही ठंडी हवा और ओस से जुड़ी हुई है।
1: इसलिए लखनऊ में लोग सुबह सुबह दूर दूर से इसे खाने निकल पड़ते हैं। कई लोग तो कहते हैं कि अगर आपने सर्दियों में चौक की मक्खन मलाई नहीं खाई तो समझिए लखनऊ को पूरी तरह महसूस ही नहीं किया।
0: और चौक, अमीनाबाद और पुराने लखनऊ की गलियों में सुबह के वक्त बड़े पीतल के बर्तनों में सजी मक्खन मलाई का नजारा अपने आप में एक अलग ही अनुभव होता है।
1: लखनऊ के चौक इलाके में मक्खन मलाई कॉर्नर पर सर्दियों में सुबह सुबह लोगों की भीड़ लग जाती है। कोई कुल्हड़ में खा रहा होता है, फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल रहा होता है।
0: यानी पारंपरिक स्वाद अब नई पीढ़ी को भी खूब पसंद आ रहा है।
1: और अब ODOC योजना के जरिए इस मिठाई को नई ब्रांडिंग और पहचान मिल रही है, जिससे छोटे दुकानदारों को भी बड़ा फायदा होगा। दोस्तों ODOC योजना सिर्फ लखनऊ के पारंपरिक स्वादों को पहचान दिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे जुड़े हलवाइयों, चाट विक्रेताओं, छोटे उद्यमियों और कारीगरों को आगे बढ़ाने का भी एक बड़ा माध्यम बन रही है।
0: बिल्कुल, सरकार इन पारंपरिक व्यंजनों से जुड़े लोगों को प्रशिक्षण, कौशल विकास और आधुनिक व्यावसायिक तकनीकों की जानकारी उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है।
1: भिन्न भिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से छोटे उद्यमियों को ऋण, वित्तीय सहायता और स्वरोजगार से जुड़ी सुविधाओं का लाभ भी दिलाया जा सकता है, ताकि वे अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकें।
0: स्वयं सहायता समूह, महिला उद्यमियों और युवाओं को भी इस पहल से जोड़कर नए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं।
1: सरकार की कोशिश है कि छोटे दुकानदारों और पारंपरिक व्यंजन बनाने वाले कारीगरों को बेहतर पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की सुविधाएं मिले, जिससे उनके उत्पाद बड़े बाजारों तक पहुंच सके।
0: डिजिटल प्लेटफॉर्म, फूड फेस्टिवल, रिटेन आयोजनों और विशेष प्रदर्शनियों के माध्यम से प्रचार प्रसार का अवसर दिया जा रहा है।
1: यानी ODOC योजना स्थानीय स्वादों को वैश्विक पहचान देने के साथ साथ हजारों परिवारों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का भी काम कर रही है।
0: और यही वजह है कि लखनऊ की मक्खन मलाई, चाट और रेवड़ी जैसी पारंपरिक स्वाद अब नए बाजारों और नए ग्राहकों तक भी पहुंच रहे हैं।
1: अब चलिए लखनऊ की गलियों में, जहां चाट की खुशबू देर से लोगों को अपनी ओर खींच रही है।
0: अरे भाई, लखनऊ की चाट मतलब स्वाद का धमाका। खस्ता, आलू टिक्की, मटर चाट, दही बड़े, हर चीज में नवाबी अंदाज।
1: और सबसे खास बात यह है कि लखनऊ की चाट सिर्फ तीखी या मसालेदार नहीं होती, बल्कि उसके स्वाद में एक संतुलन होता है। खट्टापन, मिठास, मसाले और कुरकुरापन, सब कुछ बिल्कुल सही मात्रा में।
0: सही कहा, यहाँ की चाट वाले खाने सिर्फ खाना नहीं, बल्कि हर प्लेट को बड़े प्यार और कला से सजाते हैं।
4: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आरजे राज, और कर रहा हूं आपसे बात। तो दोस्तों, आज फिर आप सभी का स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में जो आपको सतर्क कर रहा है। ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से। आज हम बात करेंगे आपके मोबाइल फोन और UPI से जुड़ी सुरक्षा के बारे में, क्योंकि आज आपका मोबाइल सिर्फ फोन नहीं बल्कि आपका बैंक है। तो दोस्तों, आखिर मोबाइल और UPI सुविधा भी आपके लिए खतरनाक हो सकती है, इस पर बात करेंगे। दोस्तों, आज हम मोबाइल से पैसे भेजते हैं, बिल जमा करते हैं, खरीदारी करते हैं और साथ में बैंकिंग भी करते हैं, लेकिन जरा सी लापरवाही आपका पूरा बैंक बैलेंस लीक कर सकती है। इसी लापरवाही का फायदा उठाते हैं साइबर ठग। तो चलिए आपको एक ड्रामे के जरिए मैं सारी बात समझाता हूँ। रमेश,
1: हेलो,
0: उधर से आवाज आती है। मैं आपके बैंक से बोल रहा हूँ सर, आपके बैंक अकाउंट में संदिग्ध निशान हुई है।
1: क्या,
0: मेरा पैसा सुरक्षित है ना?
1: हाँ सर, बस सुरक्षा के लिए आपके फोन पर जो OTP आएगा वह बता दीजिएगा।
0: OTP आया है, मैं बता देता हूँ। अरे, मेरा अकाउंट तो खाली हो गया और पैसे कट गए हैं।
1: और इस तरह रमेश UPI फ्रॉड का शिकार हो जाता है।
0: आखिर UPI और मोबाइल फ्रॉड कैसे होता है? दोस्तों, मोबाइल और UPI फ्रॉड आम तौर पर इन तरीकों से होता है। बैंक अधिकारी बनकर कॉल किया जाता है, OTP या UPI पिन मांगा जाता है, फर्जी ऐप इंस्टॉल करवाए जाते हैं, स्क्रीन शेयर करवाई जाती है, रिफंड या इनाम का लालच दिया जाता है। याद रखिए, OTP और UPI पिन सिर्फ आपके लिए ही है। खतरे के संकेत, अगर कभी ये बातें हो तो समझ जाइए खतरा है। कोई OTP या आपका पिन पूछे, जल्दी करने का दबाव डाले, कहे अकाउंट बंद हो जाएगा, अनजान ऐप डाउनलोड करवाए, तो असली बैंक कभी ऐसा नहीं करता है। मोबाइल और UPI को सुरक्षित कैसे रखें? दोस्तों, इन आसान नियमों को अपनाइए। OTP, UPI पिन किसी को ना बताएं। मोबाइल में लॉक और बायोमेट्रिक रखें। केवल ऑफिशियल ऐप स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। फोन और एप्स को अपडेट रखें। पब्लिक वाईफाई पर बैंकिंग ना करें। अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। खासकर मैं सलाह देना चाहूंगा बुजुर्गों और बच्चों को। श्रोताओं, UPI और मोबाइल फ्रॉड के शिकार ज्यादातर बुजुर्ग, बच्चे, नए स्मार्टफोन यूजर, कम तकनीकी जानकारी वाले लोग होते हैं। इसलिए कोई भी कॉल आए तो पहले परिवार से पूछें, OTP को चाबी समझें, किसी को बिल्कुल ना दें, शक हो तो कॉल तुरंत काट दें। अगर गलती से आपके साथ फ्रॉड हो जाए तो, पैसे कट गए हो, OTP शेयर हो गया हो, गलत ऐप इंस्टॉल हो गया हो, तो देर ना करें, कॉल करें 1930। हाँ जी, शिकायत दर्ज करें www.cybercrime.government.in पर। जितनी जल्दी शिकायत, उतनी ज्यादा रिकवरी की संभावना। साइबर सुरक्षा की जानकारी के लिए आप www.staysafeonline.com पर भी विजिट कर सकते हैं। मोबाइल और UPI सुरक्षा के लिए 5 सुनहरे नियम। OTP और पिन कभी साझा न करें। बैंक बनकर आने वाली कॉल पर भरोसा न करें। अनजान ऐप और लिंक से बचें। मोबाइल को हमेशा लॉक रखें। डर नहीं, समझदारी से काम लें। श्रोताओं, डिजिटल भुगतान आसान है लेकिन सावधानी के बिना खतरनाक। मोबाइल आपका साथी है, उसे सुरक्षित रखिए। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की ओर से। जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz, आपके शहर का पहला रेडियो स्टेशन जो आपको कर रहा है सतर्क फ्रॉड से, ताकि आप बच सकें। तो दोस्तों, जैसा कि इस कार्यक्रम में बात हुई कि आपका UPI, हां जी, उसकी वजह से भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। ये बात तो आप भी मानेंगे कि आपका ये जो स्मार्टफोन है सिर्फ एक स्मार्टफोन नहीं है, ये आपका बैंक है। आप कहीं भी जा रहे हैं तो ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर रहे हैं तो सावधान होकर करें, क्योंकि कभी कभी गलत QR कोड से भी आपका नुकसान हो सकता है और शायद आपका पैसा जा सकता है। हम सभी को पता है पैसा कमाने में जितनी मुश्किलें आती हैं ना, तो अगर वो गलती से कोई आपसे ले ले बिना आपकी परमिशन से, तो शायद सबसे ज्यादा नुकसान हम ही को होता है।
1: तो सतर्क रहें, सेफ रहें। ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी FM मुरादाबाद 89.6 MHz के माध्यम से। मैं हूँ आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आरजे राज। अभी के लिए लेता हूँ यहाँ से अलविदा। तो स्टे सेफ।

0: AG the Gangster.
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारी वादा।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का सामुदायिक रेडियो। आनंद के साथ हैं आप और प्रोग्राम का नाम है हेलो।

0: ओह वाओ लवली, कैसा लग रहा है? पहले तो मैं यही पूछूंगा.
1: इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. लाइक थोड़ा सा है कि नाउ आई कैन शेयर माई थॉट्स विद द पीपल. ठीक है, आपके चैनल से काफी लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा जो जो चीजें हैं जो मैं चाहता हूँ कि एवरी पेरेंट शुड नो.
0: क्या बात है.
1: तो पहले तो मैं बताता हूँ, मेरा नाम डॉक्टर आकाश सिंगल है, जैसे कि आपने सबको बताया है.
0: जी जी प्लीज.
1: मैंने MBBS किया है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से.
0: ब्यूटीफुल.
1: फिर MD पीडियाट्रिक्स किया है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से.
0: वाओ.
1: उसके बाद मैंने किया है DM नियोटोलॉजी एम्स न्यू दिल्ली से.
0: क्या बात है.
1: अब लोग सोचते हैं ये DM नियोटोलॉजी है क्या.
0: जी.
1: तो मैं बताना चाहूंगा कि DM नियोटोलॉजी बच्चों की सुपर स्पेशलिटी है.
0: हाँ जी.
1: इसमें हम बर्थ से 1 मंथ तक के बच्चों को देखते हैं. अब आजकल प्रीमेच्योरिटी, लो बर्थ वेट, मतलब समय से पहले बच्चे डिलीवर हो रहे हैं, कम वजन के साथ बच्चे डिलीवर होते हैं, तो इसकी एक सुपर स्पेशलिटी है. ऑल दो हम सारे ही पेडियाट्रिशियंस अपने ही कोर्स में न्यूबॉर्न बच्चे देखते हैं, बट सुपर स्पेशलिटी की जहां बात आती है तो वी आर एक्सक्लूसिवली लुकिंग आफ्टर न्यूबॉर्न फॉर द लास्ट 3 ईयर्स.
0: हाँ जी.
1: तो इसमें एक्सपर्टीज बढ़ता है और विद टाइम नॉलेज भी होती है. एंड रही बात मेरे बारे में, तो मैंने दिल्ली एम्स से किया है, तो वो एक हायर रेफरल सेंटर है, तो वहाँ पे हाई रिस्क केसेस ही मोस्टली होते हैं.
0: Alright.
1: तो हमारी एक्सपर्टीज उसी में ज्यादा होती है. समय से पहले डिलीवर हो गए हैं, खून बदलना पड़ा है किसी बच्चे का, बच्चा पैदा होने के बाद नहीं रोया है, ये सब केसेस.
0: बहुत ही अच्छा परिचय सर ने दिया है. तो ऑडियंस अब आप दिल थाम के बैठिए, आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेगी. आज हेलो डॉक्टर के प्रोग्राम में डॉक्टर आकाश सिंगल जी मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से अपने आप को जो है आपके साथ इंट्रोड्यूस किया. सो डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि जो नवजात शिशु है उसकी देखभाल में मतलब किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए हमें जब न्यू बॉर्न बेबी होता है.
1: जब बेबी डिलीवर होता है एक्चुअली कॉमन चीजें कुछ मिथ्स हैं जो अगर बेबी नॉर्मल है हेल्दी है तो क्या करते हैं फैमिलीज, कभी कभी कुछ बुट्टी पिलाने लगते हैं.
0: जी, जी.
1: कोई कोई अम्बिलिकल कॉर्ड जो बच्चे की नाल होती है उस पर पाउडर या तेल लगाने लगते
0: जी,
1: हैं.
0: जी, जी, जी.
1: एक बहुत बड़ा मिथ है कि धूप दिखाएंगे तो पीलिया कम हो जाएगा, जॉन्डिस कम हो जाएगा.
0: जी, जी, जी, जी.
1: ये कॉमन चीजें हैं. कुछ लोग गाय का दूध, भैंस का दूध, मतलब डिफरेंट ये सब चीजें ट्राई करते हैं, ये चीजें नहीं होती, होनी चाहिए. ये सब चीजें बच्चों में इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ाती है. तो कुछ जैसे कि जैसे अगर बेबी हेल्दी है, मदर के पास है, तो उसे हर से 2 से 3 घंटे में ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए. ठीक है, अच्छे से साफ सफाई रखनी चाहिए. ये नहीं कि कभी कभी मैं देखता हूँ हॉस्पिटल में कि एक बेबी डिलीवर हुआ है, साथ में 6-7 रिश्तेदार हैं उसके साथ, तो हमें नहीं पता कि किसको क्या बीमारी है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, कुछ है, तो वो बच्चे की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, तो वो बहुत जल्दी इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं और फिर बच्चों की उनकी दिक्कत बढ़ जाती है. तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर बेबी डिलीवर है तो पूरी साफ सफाई का ध्यान रखें, हाइजीन मेंटेन रखें, हाथ धो के ही बच्चे को टच करें, इन सब चीजों का ध्यान दें.
0: ओके. सो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से आपने बताया. और कई बार ऐसा होता है कि जन्म के तुरंत बाद जैसे कहते हैं कि बच्चे को माँ का दूध देना बहुत जरूरी होता है, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है, जन्म के तुरंत बाद बच्चे को माँ का दूध मिलना चाहिए?
1: हाँ, डेफिनेटली यस. अगर मदर हेल्दी है, मतलब नॉर्मली क्या होता है अगर नॉर्मल डिलीवरी है.
0: हाँ जी,
1: तो
0: हाँ
1: हम
0: जी.
1: प्रैक्टिस करते हैं स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट एंड अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ. इसका मतलब है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है उसे माँ के पेट के ऊपर रख देते हैं.
0: दिस इज कंगारू मदर केयर आई थिंक.
1: सॉर्ट ऑफ इट्स अ डिफरेंट थिंग.
0: ऑलराइट.
1: कंगारू मदर केयर मोस्टली प्रीटम बच्चों के लिए होती है जो कम वजन के बच्चे होते हैं.
0: हाँ जी, हाँ जी.
1: ठीक है. इन एवरी बेबी डिलीवरी के बाद क्या होता है, अंदर जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसका तापमान मेंटेन रहता है. बाहर आने के बाद ठंडा होने का रिस्क रहता है.
0: जी.
1: तो बच्चों के लिए ठंडा होना काफी हानिकारक होता है. तो यही कहा जाता है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ है तो उसको माँ के पेट के ऊपर रखें और वहीं पे ही इमीडिएटली ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करें. नॉर्मल डिलीवरी में ये पॉसिबल होता है. कुछ मुश्किलें आती हैं जब बच्चा ऑपरेशन से सीजरियन डिलीवरी से होता है, उसमें इमीडिएटली पॉसिबल नहीं हो पाता है कुछ कुछ जगह. अगर हम चाहें तो हम कोशिश कर सकते हैं. ठीक है. बट ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ फीडिंग फॉर द बेबी.
0: ओके. डॉक्टर साहब एक सवाल रहेगा, जो नवजात शिशु होते हैं उनको मतलब कितनी बार वो दूध पीते हैं या उन्हें कितनी बार दूध पिलाना चाहिए, इसके विषय में थोड़ा सा आप बताइए.
1: बेबी को 2-3 आवरली, इनिशियली 2-3 आवरली हम बोलते हैं. जैसे अगर बच्चे शुरू में कि दो से तीन घंटे में आप फीड कराएं। कुछ चीजें होती हैं जैसे मदर्स को नहीं, जो फर्स्ट टाइम मदर्स में,
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: उनको

0: नहीं पता नहीं होता पता है वो क्या है। करते हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है फोर मिल्क और हैंड मिल्क, मतलब शुरू का दूध और बाद का दूध
1: जी।
0: तो हम की कहते हैं कि एक बार अगर मदर फीड करा रही है तो वो सफिशिएंट टाइम के लिए फीड कराएं जिससे बच्चे को पूरे एक तरफ से पूरा दूध मिले।
1: ओके।
0: क्योंकि क्या होता है अगर बच्चा सिर्फ शुरू का दूध पीता है तो उसमें सिर्फ उसकी थर्स्ट मतलब कि उसकी प्यास बुझती है, उसका पेट नहीं भरता है ना ही वजन बढ़ता है। जो बाद का दूध होता है वो जो गाढ़ा होता है जिसको हम हैंड मिल्क बोलते हैं,
1: हाँ जी,
0: उसमें
1: हाँ
0: हमारे फैट्स होते हैं, बाकी चीजें होती हैं, तो जिससे उसका पेट भी भरता है और उसका वजन बढ़ता है। तो कुछ मदर्स अगर एक बार में दोनों तरफ से फीड करा रही हैं तो सिर्फ फोर मिल्क दे रही हैं तो बच्चे का वजन नहीं बढ़ेगा, पेट नहीं भरेगा, बच्चा क्रैंकी रहेगा। और जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो हम प्रैक्टिस करते हैं फीडिंग ऑन डिमांड, मतलब बच्चा जब मांग रहा है दूध हमें उसको फीड कराना है। फीड कराने के बाद हमें ध्यान रखना है कि हमें हर बार डकार दिलानी है। फीड कराने के बाद बर्फ कराना मतलब डकार दिलाना बेहद जरूरी होता है, तुरंत लेटाएं ना उसको, अच्छे से बर्फ करा के तभी लेटाएं।
1: बहुत ही बढ़िया। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेलो डॉक्टर, मेरा नाम आनंद है और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ श्री साई हॉस्पिटल से डॉक्टर आकाश सिंगल जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि जो नवजात शिशु होते हैं वो कई बार रोने लगते हैं तो ऐसे में जो समझ नहीं आता है, ना तो मम्मी को समझ आता है ना पापा को समझ आता है, तो बच्चा अगर ज्यादा रोता है तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए?
0: अगर बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है तो कुछ बच्चा तो उसके पास ओनली वे ऑफ एक्सप्रेशन इज रोना। अगर उसको कोई भी दिक्कत होगी वो सिर्फ रोएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: है ना,
1: बिल्कुल।
0: वो कॉमन कॉमन चीजें होती हैं, सबसे पहले
1: मतलब कोई रीजन कोई कारण मतलब जिससे पता,
0: तो हम थोड़ा सा सबसे पहले ट्राई करते हैं कि फीड करा के देखते हैं। मोस्टली बच्चों में क्या होता है वो भूखे होते हैं इस वजह से वो रो रहे होते हैं, हमने फीड करा के शांत हो जाते हैं, इट्स गुड। कुछ कुछ बच्चों में क्या होता है अगर वो फीड भी नहीं कर रहे होते हैं तो एक नोज ब्लॉक बहुत कॉमन चीज होती है, मतलब मैंने जितने भी मैं पेशेंट्स देखता हूँ तो वन ऑफ द नेक्स्ट पेशेंट सब में किसी न किसी को नोज ब्लॉक बहुत कॉमन होता है। सिंपल, अब बेबी की नोज गंदी है वो क्लीन तो कर पाएगा नहीं, तो उसके लिए है कि हम कुछ मेडिकेशन या फिर नॉर्मल सलाइन ड्रॉप्स होती हैं उसको हम डालते हैं, बेबी की नोज क्लियर हो जाती है तो वो इजिली फीड कर पाते हैं, शांत हो जाती है। ठीक है, कुछ बच्चे लाइक अगर हमें देखना है कि अगर एक्सेसिवली क्राई कर रहा है तो उसमें डायपर तो वेट नहीं है, कॉमन कॉमन चीजें हमें देखनी है। कभी कभी हम मिस कर देते हैं कि बच्चे का डायपर गीला है, वो उसको इरिटेट कर रहा होता है और बच्चा रो रहा होता है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छे से डॉक्टर साहब आपने बताया है। नवजात में जो बुखार है वो कितना खतरनाक होता है छोटे बच्चों में?
0: छोटे बच्चों में जी ज्यादा खतरनाक पहले कहें तो हमें उनके अंदर टेम्परेचर मेंटेन करने की इतनी कैपेसिटी नहीं होती है। तो इसलिए ही आप देखेंगे कि कहीं पे भी आपने अगर नर्सरी देखी होगी तो उसमें हर बच्चा यूजुअली वार्मर के नीचे लेटा होता है, मतलब कि उसको कॉन्स्टेंटली हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो इसलिए उनमें ठंडे होने का रिस्क ज्यादा होता है।
1: ठीक है, बहुत
0: उनमें ठंडे होने का रिस्क ज्यादा होता
1: जी,
0: है
1: जी, जी,
0: ठीक है। तो हमें, मैं यही बोलता हूँ सब पेरेंट्स को कि जितने आप कपड़े पहन रहे हैं उससे एक लेयर एक्स्ट्रा पहना के रखें, बच्चों को कवर करके रखें। पेरेंट्स का सवाल होता है कि सर एसी चला सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, अब इतनी गर्मी है। मैं यही बोलता हूँ कि ठीक है आप एसी चला सकते हैं, बट टेम्परेचर आप रूम का 25-27 डिग्री मेंटेन करके रखो, डायरेक्टली पंखे के नीचे नहीं लेटाओ बच्चों को, बच्चों को अपने से लेयर एक्स्ट्रा पहना के रखो। ठीक है, और दूसरा चीज आती है बच्चे का टेम्परेचर आप थर्मोमीटर से चेक करने की जरूरत नहीं है, हम अपने हाथ से भी छू के बच्चे के हाथ और पैर देख सकते हैं कि अगर वो ठंडे हैं तो हम एक्स्ट्रा कपड़े पहना रहे हैं। ठीक है, और अगर बच्चा बहुत ज्यादा पसीने आ रहे हैं कुछ है तो हमें कपड़े कम कर देने हैं।
1: बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, जो जन्म लेते हैं बच्चे उन्हें जन्म की कितनी देर बाद उनको नहलाना चाहिए और उनको कब नहलाना चाहिए? बेसिकली नहीं पता होता है जो न्यू पेरेंट्स होते हैं, तो आजकल लाइफस्टाइल इतना बिजी है, सुपर फास्ट है भाई, बहुत सारी चीजों से जो पेरेंट्स नहीं होते हैं रूबरू, तो मैं अगर आपसे ये पूछना चाहूँ तो डॉक्टर साहब,
0: अगर बेबी का वेट 2 kg से ज्यादा है
1: जी,
0: मतलब यूजुअली हमारा 2 kg से ज्यादा था मतलब ऑलमोस्ट पूरे समय पे पैदा हुआ है।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: ठीक है,
1: हाँ,
0: तो हम ये बोलते हैं कि जब बच्चे की जो कॉर्ड होती है अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसको हम आम भाषा में बच्चे की नाल बोलते हैं या नाभि बोलते हैं,
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: जब वो अलग हो जाती है उसके बाद ही बच्चे को नहलाना चाहिए। ठीक है, और अगर किसी बच्चा जो समय से पहले पैदा हुआ है, वजन कम है जिनका, जैसे 1.5 kg मतलब 1.5 किलो 1.25 किलो इस टाइप के वजन है जितना भी है, तो जब बच्चे का वजन 2 किलो या उससे ज्यादा हो जाए हमें उसके बाद नहलाना चाहिए बच्चे को।
1: छोटे बच्चों के लिए, जो छोटे न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनके लिए टीकाकरण कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट है? कई बार पेरेंट्स लगवाने से डरते हैं आज भी ग्रामीण इलाकों में कि बच्चे को बुखार आ जाएगा, बच्चा रोने लगेगा, तो ये बहुत सारे ना लोग एक्सक्यूजेस देते हैं, टीकाकरण नहीं करवाते हैं, तो ये कितना जरूरी है डॉक्टर साहब?
0: टीकाकरण बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों में, क्योंकि हम इससे कई बीमारियों से बचा सकते हैं, इसलिए हमारी गवर्नमेंट में भी काफी सारी वैक्सीन आती है। तो हर वैक्सीन के साथ साइड इफेक्ट होते हैं, बट वैक्सीन से होने वाले फायदे कई ज्यादा हैं उन साइड इफेक्ट से। तो मैं यही कहूंगा सारे पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को सारे ही टीके लगवाएं जितने अवेलेबल हैं, उनसे एटलीस्ट बीमारियां या तो नहीं होंगी, चांसेस कम हो जाएंगे या सीवियरिटी कम हो जाएगी बीमारी की।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं हेलो डॉक्टर प्रोग्राम, मेरा नाम आनंद है और ये है आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 FM पे। हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आज डॉक्टर आकाश सिंघल जी हमारे साथ मौजूद है श्री साई हॉस्पिटल से, और आज हम न्यू बॉर्न के ऊपर ढेर सारी बात करें, नवजात शिशुओं को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब एक और मेरा सवाल है, जो नवजात का वजन होता है वो कितना सामान्य माना जाता है?
0: नॉर्मली कहें तो हम 2.5 kg के अराउंड एक एवरेज बर्थ वेट होता है, ठीक है, उससे कम है अगर हम उनको लो बर्थ वेट बोलते हैं, मतलब जन्म का वजन कम है। बट जैसे जैसे वजन कम होने के कई कारण हो सकते हैं, या तो बच्चा पहले डिलीवर हो गया है, या फिर ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन है, मतलब उसका गर्भ के अंदर वजन ठीक से ही बढ़ा है, तो वो एक अलग चीज होती है। वजन अगर जैसे जैसे बच्चा समय से पहले होगा तो उसका स्वाभाविक है वजन भी कम होगा, तो इसके साथ सारी चीजें हमारे रिस्क बढ़ते हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं न्यूबॉर्न प्रीटर्म या फिर हमारे लो बर्थ या वेरी लो बर्थ 1500 ग्राम से कम वाले बच्चों में काफी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं, क्योंकि सारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स इमेच्योर हैं। मैं अपने पेशेंट्स को भी यही समझाता हूँ कि उसका अगर आप ब्रेन देखें तो ब्रेन की वेसल्स हैं वो कमजोर हैं, उनमें अगर कोई भी प्रेशर चेंज होगा तो उनमें रप्चर का रिस्क रहेगा, ब्रेन हेमरेज का रिस्क रहता है। बच्चे के लंग्स ठीक से डेवलप नहीं हुए हैं अगर, तो उनमें छोटी मशीनी, जैसे हम आम भाषा में छोटी मशीन कहते हैं, जो सीपैप होता है, या फिर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। और अगर बच्चे की गट भी हमारे अगर समय से पहले है तो वो भी कमजोर होती है, तो बच्चे कुछ बच्चे प्रीटम बच्चे या हमारे जो कम वजन वाले बच्चे हैं फीड यानी कि दूध पचाने में भी दिखते हैं, ठीक है, और उनमें इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति भी कम होती है। तो ये सारी कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं जो समय से पहले जन्म हुए बच्चे या फिर जो काफी मतलब हमारे 1500 ग्राम 1600 ग्राम वाले ये जो बच्चे होते हैं इनमें देखी जाती है। इन बच्चों को ICU की बेहद जरूरत होती है, यहाँ पे हम इनको मिनिमल हैंडलिंग करनी होती है, मतलब कम से कम डिस्टर्ब करें बच्चों को, सारा काम बच्चों का क्लस्टर केयर की सारा काम जो भी करना है, डायपर चेंज करना है, फीड देनी है, ये सब हम एक साथ करें। जितना कम हम इनको हैंडल करेंगे, जितनी पूरी कोशिश रहनी चाहिए कि हम इनको इन यूट्रो एनवायरनमेंट जो कि गर्भ के अंदर का वातावरण होता है वो हमें प्रोवाइड करने की, जिससे इनकी ग्रोथ अच्छी होती है।
1: डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आप आए हमारे स्टूडियो और आपने हमारे तमाम सुनने वालों को बहुत बेहतरीन जानकारी दी, और मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी कहीं ना कहीं जो न्यू पेरेंट्स बनने वाले हैं उनके लिए भी बहुत कमाल होगी, और जो लोग बन चुके हैं उनके लिए भी कमाल की होगी। सो थैंक यू सो मच, वेल आपने इतना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम आगे भी आपको आमंत्रित करते रहेंगे और आप प्लीज आते रहिएगा, श्योर। और मैं जाने से पहले आपसे एक संदेश लेना चाहूंगा, जो तमाम लोग आपको सुन रहे हैं स्पेशली मॉम डैड जो अभी न्यू बनने वाले हैं और जो बन गए उनके लिए आप क्या संदेश जाते जाते?
0: मैं बताना चाहूंगा कि बच्चों में हमें डेंजर साइंस का ध्यान रखना चाहिए। डेंजर साइंस मतलब खतरे के संकेत,
1: हाँ जी,
0: किस स्थिति में हमें बच्चों को तुरंत अस्पताल लेके जाना है। अगर बच्चा सुस्त है, मोस्टली बच्चे पूरे दिन सोते हैं, फीड करेंगे सो जाएंगे, फीड करेंगे थोड़ी बहुत एक्टिविटी करेंगे सो जाएंगे, बट आपके उठाने से भी नहीं उठ रहे हैं, वो बच्चा सुस्त है, आप उसको अस्पताल लेके जाएंगे। बच्चे को दौरे आ रहे हैं या फिर बच्चे को सांस लेने में तकलीफ है या बच्चा दूध नहीं पी रहा है या फिर बच्चा तापमान बच्चे का टेम्परेचर काफी कम है या उसको बुखार है,
1: हाँ जी हाँ,
0: ठीक है, या फिर बच्चे के हथेली या तलवे पीले हो गए हैं, ये सब हमारे डेंजर साइंस होते हैं, इनको बेहद ध्यान रखना है। और ऐसी अगर बच्चों में कोई भी चीजें देखने को मिलती हैं तो तुरंत अस्पताल में दिखाना है। और एक और एडवाइस पेरेंट्स के लिए कि मदर्स को अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है बच्चे की केयर करते टाइम, क्योंकि अगर मदर की हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो मदर का मिल्क आउटपुट कम होगा, वो बेबी का ठीक से ध्यान नहीं रख पाएंगी, तो वो ठीक नहीं है, तो मदर्स को भी अपना ध्यान रखना। और एडवाइस रहेगी पेरेंट्स के लिए क्योंकि आजकल इंटरनेट के जमाने में सिर्फ इंटरनेट पे ही भरोसा ना करें।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: अगर कोई भी दिक्कत लगती है आप अपने नजदीकी डॉक्टर से डिस्कस करें और अपनी उनके ओपिनियन को ही माने, क्योंकि नेट पे तो अगर खोलेंगे तो कुछ भी आ जाएगा, उसके बाद डरेंगे ही और कोई फायदा नहीं होगा। तो बेहतर रहेगा कि आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और उनकी एडवाइस को माने।
1: थैंक यू सो मच डॉक्टर आकाश जी, आप आए, बहुत बहुत थैंक यू। और एफएम मुरादाबाद आरजे आनंद आपका शुक्रिया करता है, उम्मीद करता हूँ आगे भी ऐसे मिलते रहेंगे। बहुत बहुत थैंक यू। सुनते रहिए आप एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। फिर मिलते हैं एक नई सीरीज में किसी और नए एक्सपर्ट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: कॉल 7500153841।
4: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीज एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: हेलो नमस्ते आदाब, मैं हूँ आपकी दोस्त व होस्ट आरजे छाया और आप सुन रहे हैं मुझे FM मुरादाबाद 89.6 MHz पर। रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो। मौजूद है आपके साथ लेकर अपना नया कार्यक्रम विशेष बातचीत, और आज के हमारे खास मेहमान हैं मनोज वर्मा मनुजी। आपको बता दे दोस्तों कि मनोज मनुजी एक कवि, गजल, गीत, नज्म और दोहे जैसी रचनाएं करते हैं, और आज के इस विशेष बातचीत में हम सुनेंगे मिस्टर मनोज वर्मा जी की कुछ रचनाओं को, और साहित्य जगत से जुड़े हुए होंगे कुछ सवाल जवाब। तो हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
1: धन्यवाद छाया जी।
0: जी, तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि अपने नाम के आगे जो आपने उपनाम दिया है मनोज वर्मा मनु, मनु नाम से क्या तात्पर्य है, मतलब क्या सोच के रखा था मनु?
1: जी छाया जी, ये जो मेरा उपनाम है ये मेरे दोस्तों की, मेरे घर में, मेरे परिवार की देन है, और इसके बारे में मैं कहूँ तो ये हमारे संस्कृति में आदि पुरुष जो मनु सत्रुपा के नाम से आपने सुना होगा, जो कि आदम के इक्विलेंट आते हैं, ये उसी नाम से संबंधित है, और मैं सोचता हूँ कि मानवता के लिए ये एक अच्छा नाम है, इसलिए मैंने इसे अपने नाम के साथ जोड़ा है।
0: हाँ जी जी जी। तो जैसा कि आप गजल, गीत, दोहे, नज्म वगैरह करते हैं, तो मेरा जो सबसे पहला सवाल है वो यही है कि गजल और शायरी लिखने में आपका कैसे रुझान विकसित हुआ, या कोई विशेष लम्हा या प्रभाव आपकी रुचि को प्रज्वलित किया?
1: बहुत अच्छा सवाल है। दरअसल जिस समय हम अपनी युवावस्था में थे, उस समय और जहाँ से हम बिलोंग करते हैं बेसिकली, वो जगह मुशायरों के लिए बड़ी प्रसिद्ध थी, जनपद रामपुर जो अदब का शहर कहलाता है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। तो अक्सर हम जो मुशायरे वगैरह में जाते थे और अपने साथियों के साथ इसको सुनते थे, वहाँ पर उसका एक क्रेज अलग था। तो जब वहाँ पर शायरों को सुना जाता था और उनका अंदाज देखते थे, तो इसी चीज ने धीरे धीरे रुझान पैदा कर दिया। और ये तो एक बात है ही कि किशोरावस्था में अगर आपको गजलों से निस्बत होने लगे, तो यकीनन ये इस बात का सबूत है कि दिल में किसी की चाहत के अंकुर फूट रहे हैं। तो और बंदा अपने दिल की बात बड़े अदब और शाइस्तगी के साथ अपने महबूब तक पहुंचाने की तमन्ना रखता है, तो धीरे धीरे शायरी को जानने और समझने का सलीका भी रुचि पैदा कर देता है। बस इस तरफ थोड़ा रुझान हो गया।
0: चलिए, क्या बात है, बहुत अच्छा आपका जवाब मिला हमें।
1: शुक्रिया
0: जी जी। तो गजल और शायरी लिखते समय आपकी रचनात्मक प्रकृति कैसी होती है, क्या आप कोई निश्चित रूटीन फॉलो करते हैं या कोई विशेष प्रेरणा के स्रोत है?
1: मकतवेश का अंदाज निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसको सबक याद हुआ। तो छाया जी, मैं कहना चाहूंगा कि रचना कर्म से जुड़ने के बाद भी बिल्कुल यही कैफियत लागू होती है। इसका कोई निश्चित रूटीन नहीं होता, ना ही संभव है। ये एक सतत प्रक्रिया होती है जो लगातार जहन को अपनी जद में बांधे रखती है, और नेचुरली आसपास के हालात या मन की कैफियत से प्रस्फुटित होकर अपने आप को सृजित करवा ही लेती है। हालांकि उसके शिल्प की तरतीब और उस विधा की बुनियादी जानकारी ये इस बात पर डिपेंड करती है कि हम उसमें कहाँ तक महारत हासिल कर पाते हैं। इसके बावजूद भी शेर कहना, पढ़ना, ये एक खुदादाद कैफियत होती है, ईश्वरीय प्रेरणा का स्रोत होती है। क्योंकि कहा गया है, अल्लाह अगर तौफीक न दे इंसान के बस की बात नहीं।
0: अल्लाह अगर तौफीक न दे इंसान के बस की बात नहीं, क्या बात है। अच्छा सर, हमें ये बताइए कि आपका कोई पसंदीदा गजल या शायरी जिसके बारे में आप हमें बता सकते हैं, और आपके लिए वो खास क्यों है?
1: दरअसल छाया जी, बात यह है कि कोई भी शेर, कोई भी गजल अपने आप में हमेशा जो हमारी याद होती है उनसे जुड़ी हुई होती है, या जो परिवेश होते हैं उनसे मिली हुई होती है, उनसे प्रेरित होती है। चलिए मैं आपको दो एक शेर के माध्यम से बात बताता हूँ। किसी को ख्वाब की ताबीर मिल गई होती, किसी को ख्वाब की ताबीर मिल गई होती, आप मिलते अगर तकदीर मिल गई होती। किसी को ख्वाब की ताबीर मिल गई होती, आप मिलते अगर तकदीर मिल गई होती, और रांझे ने भला कौन खुदा मांगा था, और रांझे ने भला कौन खुदा मांगा था, वही मिल जाता अगर हीर मिल गई होती, वही मिल जाता अगर हीर मिल गई होती। तो शायरी के कई पक्ष हैं, ये सामाजिकता को लिए भी होती है और अपने दिल के जज्बों को भी समेटे हुए होती है। तो जैसे जैसे हमारी बात आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे वर्क दर वर्क पन्ने खुलते चले जाएंगे।
0: वैसे ये जो मुक्तक था काफी अच्छा लगा हमें, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये मुक्तक आपको इतना पसंद क्यों है,
1: जैसा कि मैंने बताया, शायरी अपने आप में कई मकाम समेटे हुए होती है। ये कब कितनी आगे चली जाती है, कब कितनी पीछे चली जाती है, इसका कहना मुमकिन नहीं होता। तो ये सब उन्हीं जज्बों के छोटे छोटे अंश हैं जो हमारे सामने चलते रहेंगे। मैं और आपको रूबरू कराऊं अपने एक कते से कि हिफाजत से रखी हैं अब तलक यादें सभी दिल ने, हिफाजत से रखी हैं अब तलक यादें सभी दिल में, ये क्या रिश्ता है तुझसे, ये समंदर कितना गहरा है। हिफाजत से रखी हैं अब तलक यादें सभी दिल में, ये क्या रिश्ता है तुझसे, ये समंदर कितना गहरा है। नहीं भूला अभी भी मैं नहीं, तुम बदगुमा मत हो, नहीं भूला अभी भी मैं नहीं, तुम बदगुमा मत हो, कि मेरी रूह पे अब तक तुम्हारा लम्स ठहरा है, कि मेरी रूह पे अब तक तुम्हारा लम्स ठहरा है। तो ये सब यादों से जुड़ी हुई चीजें होती हैं जो यकायक आती हैं और फिर पन्नों में सिमट कर हमेशा के लिए अमर हो जाती हैं।
0: क्या बात है, क्या खूब कथा आपने सुनाई। और इसी के साथ अगर अगले सवाल की तरफ आगे बढ़े तो हमारा अगला सवाल आपसे होगा, कविता और शायरी आपके लिए क्या है, मतलब क्या मायने रखता है, आप इसे कैसे देखते हैं?
1: जी छाया जी, मेरे नजदीक शायरी या कविता में श्रृंगार के साथ सामाजिक और मानविक मूल्य, कुदरत के प्रति संवेदनशीलता, रिश्तों में आत्मीयता और ईश्वर के प्रति आभार, ये संदेश प्रवाहित होकर ही कविता को कालजयी श्रेणी में रखते हैं। और मेरे नजदीक ये केवल लफाजी का एक तरीका नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मात्र लफाजी तुकबंदी ये कुछ समय के लिए तो प्रभावित कर सकती है, लेकिन वो स्थायी नहीं होती। और जो कविता या गजल या शायरी अगर हमारे समाज को संदेश ना दे पाए तो वो व्यर्थ होती है।
0: क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने और बहुत अच्छा लगा। अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय भी हमारे पास कम है। सवाल अगला करेंगे लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे आपका कोई पसंदीदा गजल जो सुनना चाहेंगे हमारे आज के इस विशेष बातचीत में।
1: देखिए, छोटी छोटी बातों से मैं कविता को अपने नजदीक क्या समझता हूँ उसे बताने की कोशिश करता हूँ। हर हंसी भी खुशी का मज़ाहिर नहीं, हर हंसी भी खुशी का मज़ाहिर नहीं, गम तो ऐसे भी हैं जो के जाहिर नहीं, हर हंसी भी खुशी का मज़ाहिर नहीं, गम तो ऐसे भी हैं जो के जाहिर नहीं, जीस्त का मौत से फासला लम्हा भर, जीस्त का मौत से फासला लम्हा भर, इससे बचने में कोई भी माहिर नहीं, इससे बचने में कोई भी माहिर नहीं, हर हंसी भी खुशी का मज़ाहिर नहीं। और गजल में मैं दो तीन शेर आपके बीच रखता हूँ।
0: जरूर जरूर।
1: हाँ तेरी याद चली आई थी कल शाम के बाद, हाँ तेरी याद चली आई थी कल शाम के बाद, और फिर हो गई एक ताज़ा गजल शाम के बाद, हाँ तेरी याद चली आई थी कल शाम के बाद, और फिर हो गई एक ताज़ा गजल शाम के बाद, मेरी बेख्वाब निगाहों की अजियत मत पूछ, मेरी बेख्वाब निगाहों की अजियत मत पूछ, अपना पहलू मेरे पहलू से बदल शाम के बाद, हाँ तेरी याद चली आई थी कल शाम के बाद, और फिर हो गई एक ताज़ा गजल शाम के बाद। और अगला शेर है इसमें कि तू है मसरूफ तेरे दिन के शगल भी होंगे, तू है मसरूफ तेरे दिन के शगल भी होंगे, तू किसी रोज मेरे साथ निकल शाम के बाद, तू किसी रोज मेरे साथ निकल शाम के बाद, और हर नसीहत है बजा आपकी मगर ना से, हर नसीहत है बजा आपकी मगर ना से, हमसे हो पाएगा ना इस पे अमल शाम के बाद, हमसे हो पाएगा ना इस पे अमल शाम के बाद। और फिर गजल का शेर है कि तू नहीं है तो बहारों में कशिश क्या मानी, तू नहीं है तो बहारों में कशिश क्या मानी, कौन देखेगा ये रौनक बेमहल शाम के बाद, कौन देखेगा ये रौनक बेमहल शाम के बाद। और जो ताईद का शेर होता है कि मसाला मेज पे ये सोच के छोड़ आया हूँ, मसाला मेज पे ये सोच के छोड़ आया हूँ, अब ना निकला तो निकल आएगा हल शाम के बाद, अब ना निकला तो निकल आएगा हल शाम के बाद। और हो सियासत की रवायत या मोहब्बत के चलन, हो सियासत की रवायत या मोहब्बत के चलन, रिश्ता बेसाख्ता जाता है बदल शाम के बाद, हाँ तेरी याद चली आई।

0: कल शाम के बाद और फिर हो गई एक ताज़ा गजल शाम के बाद।
1: क्या बात है, आपकी जितनी भी रचनाएं हैं इसका मधुर सौंदर्य हमारे सभी श्रोताओं के हृदय को छू रहा होगा और साथ ही साहित्य जगत को भी प्रभावित कर रहा है। चलिए ये तो रही आपकी शायरी की बात, लेकिन कुछ गीत दोहे जो आप सुनाना चाहते हैं, हम चाहेंगे हमारे श्रोताओं को और मुझे कुछ गीत सुनाए।
0: जरूर, देखिए गजल और शायरी ये अपना शौक है, लेकिन कविता और गीत ये हमारा कल्चर है, तो मैं आपको एक अंचे के साथ, एक मुखड़े के साथ एक गीत के कुछ अंश रखता हूँ।

0: क्या बात है सर, जितनी प्यारी आपकी रचनाएं उतना ही प्यारा आपका गीत।
1: शुक्रिया, धन्यवाद।
0: वैसे हमारे श्रोताओं को भी बहुत पसंद आया होगा और इसका फीडबैक जरूर लेना चाहेंगे कल के शो में। हाँ जी, फिलहाल तो अपने शो की तरफ आगे बढ़ती हैं और अगला सवाल जानते हैं मनोज मनु जी से कि गजल और शायरी लिखते समय क्या आपने किसी प्रशिक्षण का सामना किया है? कैसे आप लिखने के भेद को समाप्त करते हैं या प्रेरणा प्राप्त करते हैं जब आप लिखने में अटक जाते हैं?
1: देखिए, शायरी की तरफ रुझान होना और शायरी कर पाना दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। हर विधा को निखारने के लिए प्रशिक्षण और सतत प्रयास की आवश्यकता होती ही है। और शायरी के बारे में तो ये कि शेर कह पाने की सोच एक ईश्वरीय वरदान का नतीजा माना जाता है। तो अगर आप में शेर कह पाने की खुदादाद सलाहियत नहीं है तो उसके समूचे व्याकरण आदि को जानने के बावजूद भी आपके शेर में वो बात हरगिज पैदा नहीं हो सकती जो उसको मकबूलियत या उसको प्रसिद्धि प्रदान कर सके। दो लाइनों से मैं अपनी बात रखूं कि अब इश्क हो कि शायरी जज्बाती अमल है, अब इश्क हो कि शायरी जज्बाती अमल है, खैरात सा नहीं ये इनायत सा नहीं है, जिसने लहू दिया है वही पाल सका है, ये शौक रईसों की रवायत सा नहीं है, ये शौक रईसों की रवायत सा नहीं है।
0: क्या बात है, क्या खूब आपकी रचनाएं और बोलने का अंदाज भी बहुत अच्छा है, बहुत पसंद आ रहा है हमें, हमारे सभी श्रोताओं को भी।
1: बहुत शुक्रिया।
0: जी जी, अगले सवाल की तरफ आगे बढ़े तो अगला सवाल हमारा आपसे होगा कि क्या कोई कवि या लेखक जो आपके काम पर प्रभाव डाले हों, उन्होंने आपकी रचना और लिखने की प्रकृति को कैसे प्रभावित किया है?
1: जी, मेरे विचार से किसी भी विधा के प्रति आकर्षित होने का ये सबसे पहला स्टेप होता है। जिन्हें हम सुनते हैं या पढ़ते हैं उनमें से बहुत से प्रभावित हो जाना एक सामान्य प्रक्रिया है और प्रभावित व्यक्तित्व से रचना कर्म में समानता ही एक सामान्य बात है। शायरी के इस फहरिस्त में जनाब श्री कृष्ण बिहारी नूर साहब, मजाज लखनवी साहब, नरेश कुमार साज साहब और वर्तमान में दादा निजाम हाफतिफ साहब जो मुरादाबाद से ही बिलोंग करते हैं, आदरणीय डॉक्टर कृष्ण कुमार नाथ साहब जो नूर साहब के ही शागिर्द हैं, इन नामों से मैं खासा प्रभावित रहा हूँ। इन्होंने मुझे, इनके रचना कर्म ने मुझे खासा प्रभावित किया है और वो झलक अगर मेरे रचना कर्म में झलकती हो तो इस बात को लेकर मैं अपने आप में गौरवान्वित महसूस करूंगा।
0: अगला सवाल जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। कैसे आप गजल और शायरी के पारंपरिक तत्वों को सच बोलते हुए अपने आप की आवाज और अंदाज को शामिल करते हैं?
1: बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये किसी भी रचना के शिल्प और उसकी अदायगी का प्रश्न है। परंपरागत तौर पर शायरी का अपना ही एक व्याकरण है, बाकी कंटेंट के रूप में सामाजिक और मानविक मूल्यों के उठाए गए सच्चे विषय जब इसमें शामिल हो जाते हैं तो ये बात अंदाजे बयां को एक पुख्तगी और एक स्टेबिलिटी देने के लिए बहुत होता है। मैं समझता हूँ कि इसी चीज से एक पुख्तगी आती है। जब हम सच कहेंगे तो सच के कहने में उस आवाज में जो जोर होता है उसका एक अपना अलग अंदाज हो जाता है।
0: क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। सच बोलने की ताकत सब में नहीं होती है, लेकिन जो सच बोलता है ना उसके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंट दिखाई देता है, हमें एक अलग ही ऊर्जा झलकती है। तो जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा था कि बड़ा अहम सवाल है ये और इसका जवाब बहुत ही अच्छा मिला हमें। अगले सवाल की तरफ आगे बढ़े, अगला सवाल हमारा आपसे होगा कि आपको लगता है कि आधुनिक लेखों के लिए गजल और शायरी जैसे क्लासिक काव्य के रूप में जोड़ना कितना महत्वपूर्ण है, आधुनिक दुनिया में उनका क्या महत्व है?
1: जी छाया जी, आधुनिक दौर में निसंदेह क्रांतिकारी बदलाव आ रहे हैं, परंतु साहित्य में शायरी से गजल के क्षेत्र में ये बात है कि ये विधा अपनी रवायत के साथ हमेशा से खड़ी रही है और भविष्य में भी इसकी शोहरत कम होने का कोई मतलब ही नहीं उठता है, क्योंकि जब तक इंसान में इंसानियत, रोमानियत और सामाजिकता का जज्बा रहेगा गजल और शायरी हमेशा जिंदा रहेगी।
0: क्या बात है, आपने बहुत अच्छी बात बताई हमें, हमारे श्रोताओं को। अगला सवाल तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे सभी सुनने वाले श्रोताओं के लिए और हमारे लिए भी। हम सभी एक्चुअली जानना चाहेंगे कि आप क्या मानते हैं गजल और शायरी समाज में क्या भूमिका निभाते हैं?
1: जहाँ तक शायरी और गजल की समाज में भूमिका का प्रश्न है तो मैं आपको बता दूं कि इस फन को अदब की संज्ञा दी गई है। यानी कि जब कोई बंदा गजल या शायरी या साहित्य से वावस्ता होता है तो वह अदब के क्षेत्र में आ रहा होता है, और जब अदब से रूबरू होना यानी समाज में सकारात्मक योगदान की भूमिका निभाना है तो पाठकों और सुनने वालों को आकर्षित करने का मादा शायरी में बिल्कुल इस तरह से है जैसे गर्म चाकू पर मक्खन पेवस्त कर दिया जाता हो। यानी आप देखें कि हम जो बात कहना चाहते हैं, शायर जो बात कहना चाहता है शायरी में, वो बात सीधे ही दिल तक उतरती है। तो ये इसकी अपनी खासियत है और इसको सामाजिकता में एक सकारात्मक सहयोग के रूप में, सकारात्मकता के रूप में ही हम देख सकते हैं।
0: क्या बात है। वैसे हमने पहले ही कहा था कि आपकी रचनाएं हमारे श्रोताओं और हमारे दिल को सीधा ही संपर्क कर रही हैं, और इसी के साथ
1: शुक्रिया।
0: लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये पथकों और सुनने वालों के साथ कितना संपर्क रखता है।
1: जी, मैंने बताया कि सुनने वालों को जो इंटरेक्ट करता है, जो संपर्क रखता है, वो अपने आप में विलक्षण होता है। जैसे हम कभी कोई भी बात अगर प्रोज में या गद्य में पढ़ते हैं तो एक निश्चित समय के बाद वो विस्मृत हो सकती है, लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ शेर जो आज से सदियों पहले कहे गए आज भी बिल्कुल वैसे ही और उसी ताजगी के साथ जिंदा हैं। इसलिए इसका इंट्रेक्शन और इसका जुड़ाव यकीनन बहुत अच्छा है।
0: जी जी, जरूर सही कहा आपने। वैसे हमें भी बहुत अच्छा लगता है शायरी और गजल, और इसीलिए आपकी और हमारी मुलाकात हुई है इस विशेष बातचीत में। अगला सवाल ये जानना चाहेंगे आपसे कि क्या आप अपने विचार में गजल और शायरी के भविष्य पर कुछ विचार देना चाहेंगे।
1: जी जी, गजल और शायरी के भविष्य हमेशा से उज्जवल रहा है और हमेशा से उज्जवल रहेगा। हाँ, अगर शायरी केवल बादशाहों के हरम तक ही महदूद रह जाती, वहीं दम तोड़ जाती, तब शायद इसका अस्तित्व कुछ और होता। लेकिन चूंकि अब ये सामाजिक और मानविक मूल्यों के चिंतन से भी जुड़ चुकी है, तो उसके बाद इसका श्रृंगारिक पक्ष और भी वसी और भी विशाल हो गया है। इसलिए इसका भविष्य सुरक्षित है और प्रकाशवान है। आने वाले वक्त में इसकी शोहरत, इसकी मकबूलियत हमेशा बढ़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है।
0: आप जैसे कवि और गजल की रचनाएं करने वाले लोग होंगे तो जरूर, और हमें भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। वैसे सर, जाते जाते, क्योंकि हमारे जाने का वक्त हो रहा है, तो जाते जाते हम चाहेंगे कि हमारे उन सभी दोस्तों को, उन सभी यूथ को जो कम उम्र से ही शेरो शायरी करने का शौक रखते हैं, गजल सुनते हैं, सुनाते भी हैं अपनी रचनाओं के तौर पर, तो उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे।
1: जी छाया जी, बहुत बड़ा विषय है। तो यूथ का जो मेरा संदेश है वो मैं अपने अशार के ही माध्यम से कहना चाहूँगा। किसी के जुल्म से तंग आके डर जाने की बातें क्यों, जमाने के चलन पे यूं असर जाने की बातें क्यों। किसी के जुल्म से तंग आके डर जाने की बातें क्यों, जमाने के चलन पे यूं असर जाने की बातें क्यों। अगर एहसास मर जाए तो बाकी कुछ नहीं रहता, जियो जिंदा दिली से घुटके मर जाने की बातें क्यों। जियो जिंदा दिली से घुटके मर जाने की बातें क्यों। और ये भी संदेश कि रवानी है तुम्हारे खून में थमने नहीं देना, रवानी है तुम्हारे खून में थमने नहीं देना। बुरे हालात से डर कर ठहर जाने की बातें क्यों, बुरे हालात से डर कर ठहर जाने की बातें क्यों। और अभी तो शम रोशन है, ये जलवा देखना यारो, जवां जब रात बाकी हो तो घर जाने की बातें क्यों। जहां चेहरों पे कायम हो चमक मेहनत कशी की, तो जहां चेहरों पे कायम हो चमक मेहनत कशी की, तो पराई रोशनी लेकर निखर जाने की बातें क्यों, पराई रोशनी लेकर निखर जाने की बातें क्यों। रवा के रुख के जानी भी पलट जाओ मगर सोचो, जिधर से आग भड़की हो उधर जाने की बातें क्यों। और मनु शीरी जुबा में गुफ्तगू करिए जमाने से, मनु शीरी जुबा में गुफ्तगू करिए जमाने से। किसी के दिल में नश्तर सी उतर जाने की बातें क्यों, किसी के दिल में नश्तर सी उतर जाने की बातें क्यों।
0: मनु शीरी जुबा में गुफ्तगू करिए जमाने से, किसी के दिल में नश्तर सी उतर जाने की बातें क्यों, किसी के दिल में नश्तर सी उतर जाने की बातें क्यों। क्या बात है, क्या बात है। एक बार फिर हम चाहेंगे कि आप इस लाइन को दोहराइए।
1: मनु शीरी जुबा में गुफ्तगू करिए जमाने से, मनु शीरी जुबा में गुफ्तगू करिए जमाने से। किसी के दिल में नश्तर सी उतर जाने की बातें क्यों, किसी के दिल में नश्तर सी उतर जाने की बातें की और एक गजल के दो मिसरे भी इसमें हैं कि हो आंखें झील सी आंखों में दरिया हो समंदर हो आंखें झील सी आंखों में दरिया हो समंदर हो मगर ये आंख के पानी के मर जाने की बातें क्यों, मगर ये आंख के पानी के मर जाने की बातें क्यों, जुबा दे दी अगर तो फिर मुकर जाने की बातें क्यों।
0: क्या बात है, जुबा दे दी अगर तो मुकर जाने की बातें क्यों, बहुत ही खूबसूरत सी आपकी ये रचना।
1: जी, जहाँ तक आपने मुझे बताया कि एक यूथ के लिए इस समय क्या संदेश है, तो मैं अपने चंद अशार के साथ ये बात यूथ तक पहुंचाना चाहूंगा आपके रेडियो के माध्यम से कि जमीन पे पांव फलक पे निगाह याद रखो, जमीन पे पांव फलक पे निगाह याद रखो, मियां बुजुर्गों की ये भी सलाह याद रखो, अगर हो गैर से तकरार बात दीगर है, अगर हो गैर से तकरार बात दीगर है, मगर हो भाई से तो बस निबाह याद रखो, मगर हो भाई से तो बस निबाह याद रखो, जमीन पे पांव फलक पे निगाह याद रखो, मियां बुजुर्गों की ये भी सलाह याद रखो, और करी जो नेकियां उनको भुला भी सकते हो, ये मेरा संदेश है, करी जो नेकियां उनको भुला भी सकते हो, मगर गुनाह से तौबा, मगर गुनाह से तौबा गुनाह याद रखो, और नवाजता है वही मत गुमान में डूबो, नवाजता है वही मत गुमान में डूबो, वही कर देगा कभी भी तबाह याद रखो, वही कर देगा कभी भी तबाह याद रखो, और रहम पसंद बनो ये पसंद है उसकी, रहम पसंद बनो ये पसंद है उसकी, मुआफियों में है रब की पनाह याद रखो, मुआफियों में है रब की पनाह याद रखो, और जमीन पे पांव फलक पे निगाह याद रखो, मियां बुजुर्गों की ये भी सलाह याद रखो।
0: क्या खूब, क्या खूब,
1: शुक्रिया।
0: वैसे जाते जाते मेरे जहन में एक और सवाल आ रहा है, सोच रही हूँ पूछ ही लूँ, किस उम्र से आपने लिखना शुरू कर दिया, किस उम्र में आपका इंटरेस्ट रचनाओं में होने लगा?
1: छाया जी, बात दरअसल ये है कि जो परिवेश मैंने जैसे बताया पहले, ये जो परिवेश था मुशायरों का, तो ये टीनेज से ही हमें शौक लग गया था, तो दोस्तों के साथ जब जाते थे, देखते थे, शेर को समझते थे और उस पर शायरों को दाद देते थे, तो वो एक अलग अनुभव महसूस होता था, इसी चीज ने जो रुझान पैदा किया, तो टीनेज से ही ये रोग हमारे साथ है।
0: जी जी, तो वैसे जाते जाते बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में आ रहे हैं, लेकिन वक्त तो हो गया हमारा जाने का, इसलिए एक आखिरी सवाल जो हम आपसे पूछना चाहेंगे, जिस शहर में आप रहते हैं उस शहर को समर्पित कोई गीत, कोई रचना आपकी जो आप अभी हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहें।
1: जी, क्या बात है, और वाकई जहाँ हम रहते हैं उसका कर संपर होता है, तो मैं जरूर बात रखूंगा, एक गीत के माध्यम से मैं अपने शहर को जो समर्पित करना चाहता हूँ पंक्तियाँ। शहर

लिए हुए ये पीतल लकड़ी कहलाता है, विश्वविख्यात है और नक्काशी यहाँ का मेन वर्क है। तो नक्काशी मीनाकारी अद्भुत है कितनी बतलाएं, हुक्का बर्तन आभूषण प्रतिमाएं क्या क्या दिखलाएं। नक्काशी मीनाकारी अद्भुत है कितनी बतलाएं, हुक्का बर्तन आभूषण प्रतिमा

0: अपने शहर मुरादाबाद को आपने बहुत ही प्यारे शब्दों में पिरोया है और इसका वर्णन किया है, बहुत अच्छा लगा हमें भी और हमारे सुनने वाले श्रोताओं को भी। इस एपिसोड का ये हमारा विशेष बातचीत का कार्यक्रम और इसका पहला एपिसोड आप लोग सुन रहे हैं और इसका पुनः प्रसारण आप कल सुनेंगे 9 बजे से सुबह 10 बजे तक। तो इसका फीडबैक मैं अपने शो यानी छाया गीत के शो में जरूर लेना चाहूंगी आप सभी श्रोताओं से। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये कार्यक्रम बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके और इतना कीमती समय आपने हमें दिया और हमारे सभी श्रोताओं के लिए इतना कीमती समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बहुत बहुत शुक्रिया छाया जी, आपका, रेडियो का और सुनने वाले हमारे सामईन यानी श्रोताओं का भी, आप सभी के तहे दिल से शुक्रिया। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना इतना कीमती समय दिया है।
2: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
3: यार, सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे, सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
1: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
0: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
1: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
0: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
2: मुरादाबाद
0: से संपर्क कीजिए।
1: नियम और शर्तें लागू।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: गया ना एक बार नहीं रहना तो नहीं रहना, ओके बाय, मर जाने।
1: नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूं प्राची और मेरे साथ है अखिल। जैसा कि दोस्तों हम बातें कर रहे हैं किसानों के बारे में, और दोस्तों आज की खेती पहली जैसी नहीं रही है, सही कहा मैंने अखिल?
2: बिल्कुल सही कहा प्राची जी आपने कि अब जो खेती है वो बहुत ही अपडेटेड, मतलब नई तकनीक और नई तरीके से ना स्मार्ट खेती हो गई है एक तरीके से। और अब ट्रैक्टर भी ना GPS से चल रहे हैं, मोबाइल से पानी ऑन हो रहा है, और किसान ड्रोन से खेत देख रहा है, ड्रोन से अपनी मतलब खेती, वो मतलब एक नया ही टेक्नोलॉजी है। और इसमें तो बहुत ही कहते हैं ना कि आपने स्मार्ट तरीके से उसको यूज किया, ये बहुत ही अच्छी बात है।
1: बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, आखिरकार हमारे किसान भी बहुत स्मार्ट हो गए समय के साथ, और होना भी क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि बदलते समय के साथ बदलना भी जरूरी है।
2: बिल्कुल सही कहा। मुझे एक शायरी याद आ गई, छोटी सी दो लाइनों वाली, सुनाऊं?
1: बिल्कुल सुनाइए हमारी श्रोताओं को।
2: वो मिट्टी में भी भविष्य देख लेता है, हर बीज में उम्मीद बो देता है।
1: अरे वाह, ये तो आपने बहुत अच्छी शायरी कही, और ये बहुत ज्यादा हमारे किसान भाई को कनेक्ट करेगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे साथ हमारे बहुत सारे किसान भाई भी जुड़े रहते हैं।
2: मुझे बिल्कुल याद आ रहा है, मैं बचपन में जब भी अपने दादाजी के यहाँ जाता था गाँव में, तो मैं देखता था कि वहाँ पे खेती जब होती थी, किसान कैसे लगा हुआ रहता था, मतलब अपने खेत में जुताई में लगा हुआ रहता था, और बैलों से चल रही होती थी जब वो अपने बीज बो रहा होता ना, तो वो अपने खेती कर रहा होता था। और उस समय की जो, उस समय ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, मोबाइल पे आप ये नहीं पता कर सकते थे कि भाई इस समय क्या करना चाहिए, कौन से हमारे पास फर्टिलाइजर्स अच्छे हैं जो कुछ जो है वहाँ पे हार्म ना होने दे, या कुछ हम ऐसे नए सीड्स उसमें बोएं कि जिससे जल्दी ज्यादा खेती वो हो। तो बहुत सारी चीजें थी, बहुत दिक्कतें थी उस समय, बिजली की भी बहुत अहम दिक्कत रहती थी। मगर अब जब से, अब मतलब जैसे समय बदलता गया, तो वैसी ही खेती भी थोड़ी थोड़ी उसमें भी चेंजेस आते रहे, उसमें भी स्मार्टनेस आती रही।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और मुझे लगता है कि समय के साथ ही जो बदलाव आए हैं, इसने हमारे किसान भाइयों की मेहनत को भी थोड़ा कम कर दिया है, और जो प्रोडक्शन है वो भी, उसका भी काफी मात्रा में बढ़ोतरी हुई है, जो कि एक अच्छी बात है। पर अभी भी हमारे किसान भाइयों के लिए मेहनत और मुश्किलें अभी भी कम नहीं है।

0: हैं या घर पे बैठ के सुन रहे हैं या शहर में जितने भी हमारे लिसनर्स हैं जो शहर की अपने अपने आपाधापी में बिजी हैं, उनका कहीं ना कहीं गांव से तो लिंक रहता है, ये कनेक्शन रहता है, ये किसी के अभी भी घर वाले गांव में हैं, किसी का बड़ा भाई, किसी का परिवार अभी भी गांव में है, यहां से ट्रेवल करते हैं, गांव जाते हैं, तो एकदम हर तरीके से कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में किसान से जुड़ा हुआ ही है। पहले जो किसान था वो आसमान में देखकर खेती करता था, मगर अब मोबाइल में देख के करता है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी इतनी हद तक आगे आ गई है ना प्राची?
1: ये तो है, और ये समय की आज ये समय की जरूरत भी बन चुका है। और आजकल हमारे बहुत सारे यूट्यूब किसान भाई भी हैं, यूट्यूबर्स किसान भाई, जो बहुत ज्यादा हमारे किसान भाइयों को मदद कर रहे हैं और जो समय समय पर कई सारी जानकारियां हमारे किसान भाइयों के साथ साझा करते रहते हैं, जिससे वो अपनी खेती को अपने काम को आसान बना पाए।
0: कहना चाहती हूँ कभी कभी जो है अपने यूट्यूब वाले अंकल को देख कर भी खेती की जाती है।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
0: सही है, बिल्कुल सही कही है, बहुत बढ़िया।
1: श्रोताओं, मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए आप सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, और आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं।
0: हम भी स्मार्ट हो गए हैं अब, हम भी स्मार्ट हैं, ऐसे खेती स्मार्ट होती जा रही है, ऐसे ही हमारा
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं
0: चैनल भी, रेडियो स्टेशन भी जो है स्मार्ट होता जा रहा है। तो उस स्मार्टनेस के लिए बताइए प्राची जी क्या करें।
1: हाँ बिल्कुल, आपको उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको प्ले स्टोर पर जाना है और सिंपली आपको टाइप करना है एफ एम मुरादाबाद 89.6 और आपको मिल जाएगा हमारा एफ एम मुरादाबाद 89.6 ऐप। उस पर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, हमारी बहुत सारी शो और बहुत सारी जानकारियां लेकर हम आपके लिए आते रहते हैं। और साथ ही साथ आप हमारा इंस्टाग्राम पेज पे भी आना ना भूले।
0: इंस्टाग्राम वाला पेज पे तो आजकल हर कोई है, मतलब भाई साहब जो भी ड्राइव कर रहे हैं ना, जो भी राइट लेके एमडी की तरफ जा रहे हैं, हाँ हाँ भाई साहब आप ही जरा आप भी कभी कभी इंस्टाग्राम पे हमें लाइक कर दीजिए।
1: और हम आपको मिलेंगे इंस्टाग्राम पे एफ एम मुरादाबाद 89.6 पर, और साथ ही साथ आप हमारे मैजिकल नंबर 9837896896 पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमसे बातें कर सकते हैं,
0: हमें मैसेजेस भेज सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आपका क्या सुझाव है किसान और खेती को लेके, या आपकी कोई भी आपका विचार हो जो आप कुछ कोई एक आध वर्ड आप जो किसान के लिए कहना चाहते हो, जरूर हमारे को मैसेज के जरिए हमें मैसेज के जरिए हमें बताएं, हम अपने इस शो में उसे शामिल करेंगे।
1: क्योंकि हम एफएम मुरादाबाद देता है आपको आपकी बातें रखने का एक प्लेटफॉर्म, तो जुड़े रहिए हमसे, तब तक के लिए रेडियो बजाते रहो
0: और गुनगुनाते रहो।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर। चार योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 rupees एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
3: तुम मजाक कर रही हो या लाइन मार रही हो?
4: लाइन मार रही हूँ।

0: तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिक करो, स्वच्छता की जिद करो।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर। चार योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अशोर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
2: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम। पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: कॉल 7500153841।
5: हाल कैसा है जनाब का,
6: क्या ख्याल है आपका?
7: हेलो जी, कैसे हालचाल है? नमस्कार, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। मेरा नाम आरजे आनंद है और इस वक्त फिर से हम एक खास मेहमान के साथ स्टूडियो में हमने जो है एंट्री दे दी है, यानी कि मेरी तो एंट्री हो गई और मेरे साथ ही साथ एक और बहुत ही कमाल की शख्स है, एक बहुत ही कमाल की पर्सनालिटी है जो यहाँ पर आ गई है हमारे बीच में, हमारे स्टूडियो में आपसे गुफ्तगू करने। और ढेर सारी वो अपने साथ पूरा एक पिटारा लेकर आई है, ढेर सारी डायरी लेकर आई है, बहुत सारी उनके पास एक पोर्टली है पूरी जिसके अंदर बहुत सारा खजाना है। तो आज कौन है जो खजाने से भरपूर हमारे स्टूडियो में हमारे बीच में आ चुकी हैं, दस्तक देंगी अपनी आवाज के माध्यम से, आपको आज करेंगी ढेर सारा यू नो एंटरटेनमेंट का जो डोज है वो लेकर आई है, बहुत सारी बातें आपको बताने वाली है, बहुत कुछ सुनाने वाली है। एंड शी इज अल्टीमेट, जिन्हें कह सकते हैं एक पैकेट आज आपको हम देने वाले हैं। इसके अंदर क्या क्या होने वाला है मुझे खुद को भी नहीं पता, आई एम वेरी सरप्राइज। बस इतना पता था कोई आने वाला है, लेकिन वो लेकर आने वाला है ये भी नहीं पता था। एंड यूजुअली कई बार ऐसा होता है कि जब हमें पता लगता है कोई गेस्ट को हमें इंटरव्यू करना है तो उसकी डिटेल्स हमारे पास होती है, लेकिन ये जो मैम आई है ना, इनकी कोई डिटेल है ही नहीं हमारे पास। अब जो भी होगा एक्सक्लूसिवली लाइव होगा। सो सबसे पहले तो वेलकम बैक है मैम, हाउ आर यू, कैसे हैं आप?
8: हेलो एवरीवन, मैं अच्छी हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आनंद आपके साथ आकर।
7: थैंक यू सो मच।
8: आप भी का जो मुझे सुन रहे हैं, मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आपसे कहती हूँ कि जुड़े रहिएगा, बहुत दिल पसंद नगमे सुनने को मिलेंगे, कुछ दिल को छू जाने वाली नज़में और बहुत सारी बातें दिल से दिल।
7: क्या बात है, ब्यूटीफुल। ऐसा लग रहा है कि आज एक नहीं दो दो एंकर आपको सुनाई दे रहे हैं, दो दो अनाउंसर आपको सुनाई दे रहे हैं, बिकॉज मुझे ऐसे लग रहा है क्योंकि मैम बहुत कम सिचुएशन में ऐसा होता है कि जब किसी की एक तो आवाज इतनी अच्छी, ऊपर से उनकी बात इतनी अच्छी, फिर उनका फ्लो इतना बढ़िया, तो वो पूरा एक माहौल बना हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम दो एंकर यहाँ पे बैठ के आज श्रोताओं को एंटरटेन करने वाले हैं।
8: सो प्रोग्राम का टाइम एक्सीड हो जाने वाला है।
7: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। मैम थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे, हमारे मुरादाबाद की जनता को हम जानना चाहती है, मुरादाबाद की ऑडियंस की, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, आपके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में थोड़ा बताएं।
8: मैं जो भी कहूंगी वो आप सब भूल जाएंगे, आपको याद क्या रहेगा, मेरी आवाज या जो कुछ मैं सुनाऊंगी। तो मुझे लगता है हमारी कविताएं, हमारी कहानियां, हमारी नज़में, ये जो हैं हमारे दिल से आती हैं और यही हमारी रूह का रिफ्लेक्शन है, आईना है।
7: एब्सोल्युटली।
8: तो बजाय इसके कि मैं कुछ और इधर उधर का इंट्रोडक्शन दूं जो आप भूलें और आगे बढ़ जाएं, आप कविताओं से शुरू करते हैं और उसके जरिए आप मुझे खुद ब खुद जान जाएंगे। और हाँ, अगर आप मुझे दोबारा सुनना चाहेंगे तो फिर मेरी ये आवाज ही मेरी पहचान होगी।
7: एब्सोल्युटली, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। तो ये बहुत अच्छे तरीके से जो है मैम ने कर दिया, एक आपको हिंट दे दिया, एक क्लू दे दिया है कि वो क्या करने वाली है, वो तो वही बताएंगी। तो मैम प्लीज, शालिनी मैम, मैं चाहूंगा कि इससे पहले मैं कुछ और बोलूं, कुछ आपसे ही शुरुआत हो जाए प्रोग्राम की।
8: बिल्कुल। तो एक छोटी सी बात है कि अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि आपने लिखना कैसे शुरू किया। तो उसी के बारे में कुछ लाइनें हैं, एक छोटी सी नज्म है, सुनिए। कि जब भी कोई एहसास मेरी रूह से सट कर बैठा।
7: वाह।
8: जब भी कोई एहसास मेरी रूह से सट कर बैठा, मैं तोड़ू उस खामोशी को, मुझसे ये हट कर बैठा। तब तब कोई नज्म किसी नन्हे पौधे सी मुस्काई, तब तब अल्फाजों ने धीरे से ली है अंगड़ाई। जब जब रूह खंगाली मैंने, जब जब रूह खंगाली मैंने, छन छन करके लफ्ज गिरे। जब जब रूह खंगाली मैंने, छन छन करके लफ्ज गिरे, मुंह पर उंगली रख कर उनको बिठा दिया खामोश परे। चुपके चुपके से, चुपके चुपके से वो सारे बन गए दोस्त हमराज मेरे। फिर नज्म ढली कविता पनपी, बन गए कहानी राज मेरे, बन गए कहानी राज मेरे।
7: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस मैम। आपने जो अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है अपनी पंक्तियों के साथ, जो आपने अपने आप को किया है लाजवाब, मतलब ब्यूटीफुल लुक, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि आप क्या स्पेशल करने वाले हो। कहते हैं ना, एक कलाकार की सबसे खूबसूरत बात होती है कि वो जब अपनी कलम से लिखता है तो उसकी लिखाई जो है उसके शब्दों में जब आ जाती है तो माहौल और भी खूबसूरत हो जाता है। वही आज आप कर रहे हो शालिनी जी, थैंक यू सो मच। जितने भी लोग रेडियो पे सुन रहे हैं, आई एम श्योर आपको मैम को सुन के डेफिनेटली मजा आने वाला है। ये तो अभी शुरुआत है, मतलब ये तो कह सकते हैं डेमो था, ट्रेलर था, पिक्चर तो भी बाकी है मेरे दोस्त। तो मैम सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगा, आपको हमारे स्टेशन में आके कैसा लग रहा है?
8: बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और स्टेशन में आने से पहले ही मुझसे पूछा जा चुका है, लोगों ने मुझसे पूछा आरजे आनंद के साथ रिकॉर्ड करने वाली हो।
7: क्या बात है, मतलब तो आपको उससे पहले नहीं पता था कि आरजे आनंद भी कोई एफएम पर है?
8: नहीं, मुझे पता था क्योंकि मैंने सुना था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतने फैंस भी हैं आपके।
7: मैम ये तो बस कह सकते हैं ना कि जब हम अच्छा काम करते हैं और जब हम मेहनत करते हैं तो लोगों को धीरे धीरे पसंद आने लगता है, जैसे कि अभी आपका काम हमारे लिसनर्स को और हमें पसंद आने वाला है। सो मैम मुझे सबसे पहले तो आप ये बताइए थोड़ा सा अपने बारे में कि आपको ये लिखने की क्यूरियोसिटी कैसे आई, कहाँ से आपको लगा कि मुझे ये करना चाहिए?
8: मुझे लगता है कि लिखना मेरे को जीन्स में मिला है। मेरे मम्मी डैडी भी लिटरेरी हैं, माँ मेरी लिखती हैं, बहुत खूबसूरत भजन लिखती हैं, तो लिखना शायद विरासत में मिला है मुझे, और शायद को हटा देते हैं, डेफिनेटली विरासत में ही मिला है मुझे। और धीरे धीरे वो, क्योंकि कहीं ना कहीं पढ़ने का शौक भी आपको लिखने की एक कुलाहट देने लगता है।
7: एब्सोल्युटली बिल्कुल मैम,
8: तो पढ़ने के शौक से ही ये शुरू हुआ है, किताबों की खुशबू से ही ये लिखना शुरू हुआ है। और मुझे लगता है कि जब मेरे, जो मैंने अपनी बात इसमें लिखी है कि जब जब कोई एहसास मेरी रूह से सट कर बैठा, एक्चुअली वही बात है कि जब भी मुझे कुछ ऐसा फील हुआ मैंने उसे लिखा, बस इस तरह लिखना शुरू हुआ है। मैं कोई ट्रेंड या प्रोफेशनल राइटर नहीं हूँ, मैं बस मन की बात को लिख पाती हूँ।
7: That's very nice. क्योंकि मैम लिखने के लिए भी आपको फील करना पड़ता है, आपको वो इमोशंस को यू नो कहीं ना कहीं अगर आप कागज पे उतार रहे हो तो उससे पहले आपको वो चीज को अपने जहन में लाना पड़ता है ना। जब तक आप उस फील को फील नहीं करोगी, उस मूवमेंट को फील नहीं करोगी, तब तक आप वो लिख ही नहीं पाओगे, है ना। तो इमोशन
8: शब्दों में जान नहीं आएगी,
7: जाएंगी नहीं। एग्जैक्टली, तो वो चीज तो कहीं ना कहीं हर कोई नहीं कर पाता है ना।
8: हाँ, तो ये ईश्वर की कृपा।
7: एग्जैक्टली,
8: कह सकते हैं आप।
7: ट्रू, नाइस। वैसे जो ब्यूटीफुल आपकी आवाज है, आप खुद भी इतने ब्यूटीफुल है, नो डाउट।
8: सो
7: थोड़ा सा मैं आपके बारे में ये और जानना चाहूंगा कि मतलब प्रोफेशनली आप क्या करती हैं?
8: एजुकेशन आपका? सच बताऊं तो वो सब करती हूँ जिसका डेजिग्नेशन होता है कुछ नहीं।
7: ओ माय गॉड,
8: कहते हैं ना कुछ नहीं करते हैं टाइप, लेकिन मैं बहुत कुछ करती हूँ। वैसे मैं होम मेकर हूँ, मैं काफी सालों तक फोटो एडिटिंग्स में काम करती रही हूँ, वीडियो एडिटिंग्स में भी काम किया है, और अब मैं होम मेकर हूँ, तो मैं 24 घंटे बाद 28 घंटे का काम करना चाहती हूँ। बहुत सारी किताबें पढ़ना चाहती हूँ, बहुत सारी किताबें पढ़ती हूँ, बुक रिव्यूज करती हूँ, पोएट्री करती हूँ, और ट्रैवल की शौकीन हूँ, जो आपको मेरी कविताओं में भी मिलेगा, पता चल जाएगा।
7: क्या बात है, बहुत ही
8: ट्रैवल करती हूँ,
7: बहुत ही बढ़िया। और जब आप नए नई जगह पे ट्रैवल करते हैं तो आपको नया नया कंटेंट भी मिलता है।
8: बिल्कुल,
7: है ना,
8: लिखने की प्रेरणा। और मैं नेचर लवर हूँ, तो हमेशा प्रकृति के करीब जाकर वो प्रेरणा लिखने का, जो अंदर से एक मन, अंदर से एक फील, वो सब अपने आप आ जाती है।
7: दैट्स वेरी नाइस। शालिनी जी हमारे साथ मौजूद हैं और एक स्पेशल सेशन में मैम आई हैं, बहुत सारी चीजें लेकर पूरी प्रिपरेशन के साथ आज वो आई हैं आपको खूब सारा एंटरटेनमेंट का डोज देने के लिए। मैम आगे बढ़ेंगे, क्या स्पेशल सुनाना चाहेंगी इसी बीच आप?
8: तो
7: आपने अपना तारुफ तो करा दिया। यस हाँ, बचपन। एग्जैक्टली, मतलब फ्लैश बैक में लेके जाएंगे आज आप।
8: तो बचपन सभी के दिल के करीब होता
7: Absolutely.
8: है, तो एक छोटी सी नज्म सुनाती हूँ जो आपको बचपन की याद दिला देगी,
7: मतलब फ्लैश बैक में ले जाएगी आज हम सभी को। श्योर मैम।
8: कि बारिश अब भी बचपन साथ लाती है, बारिश अब भी बचपन साथ लाती है, वो कागज की कश्तियां जो पानी में उतारते थे, वो भीगती थी, डगमगाती थी, डूब जाती थी, फिर दूसरी बनाते थे, ये सोचकर इस बार तो तैर ही जाएगी, वो भी डूब जाती थी, बनाते थे, कभी उससे बड़ी कभी छोटी, कभी कागज बदलते थे, पर वो कोशिशें कम नहीं होती थी कभी, वो कश्ती दूर तक जाएगी ये उम्मीद कायम रही जब तक बचपन रहा। वो कश्ती दूर तक जाएगी ये उम्मीद कायम रही जब तक बचपन रहा। बड़े क्या वो खूबसूरत कश्तियां जिंदगी से चली गई। बना तो भी सकते हैं, जाहिर है बना तो अब भी सकते हैं, पर वो जज्बा कहाँ से लाएंगे कि तैरेंगी।
7: ट्रू,
8: वो जज्बा ही तो था। खूबसूरत वो कश्तियां नहीं थी, वो जज्बा ही था जो बचपन में तैरता था और बड़े होकर डुबो दिया हमने।
7: अरे बाप रे, मतलब मैम ये मुझे लग रहा है कि आपने ना एकदम असलियत से रूबरू करा दिया है हमें।
8: याद आ गया ना बचपन की।
7: एग्जैक्टली मतलब एकदम सच्चाई का आईना दिखा दिया आपकी छोटी सी चार लाइनों ने। वेल टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ही धमाकेदार आपने सुनाया। अच्छा ये आप खुद से लिखते हैं?
8: जी ये सब मेरी खुद,
7: ये आपकी खुद की लिखी हुई है?
8: जी।
7: क्या बात है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लिखने के लिए सबसे बड़ा जज्बा तो आपका यही होना चाहिए कि भाई आप पहले उस चीज को जाओ, उस चीज को देखो, उस चीज में घुसो, उसके बाद फिर उसे पन्नों पे उतारो। एंड आई थिंक इट्स नॉट इजी।
8: नहीं तो पर जो आपने जिया है,
7: हाँ,
8: उसे जो आपने देखा है, जिया है, जो आप महसूस कर सकते हो वो आप पन्नों पे उतार सकते हो।
7: Absolutely.
8: अगर आपने जीते समय महसूस नहीं किया, हाँ, अगर आप डूबे नहीं ऊपर ऊपर से निकल गए, हाँ, तो फिर लिखना मुश्किल है।
7: करेक्ट वही। शालिनी जी के साथ ढेर सारी बातचीत जो है चल रही है आज इस प्रोग्राम में, और बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है सेशन चल रहा है। मैं सोच रहा हूँ मैम बातचीत के बीच बीच में एक अगर कुछ अच्छे गीत संगीत हो जाए तो प्रोग्राम और भी खूबसूरत हो जाएगा। तो कोई एक ऐसा गीत जो आप हमारे श्रोताओं को सुनवाना चाहती हैं जो आपके दिल के बहुत करीब है, कौन सा गीत है जो आपको सुनवा?
8: बारिश से मुझे वो याद आ गया, रिम झिम रिम झिम रुम झुम झुम झुम।
7: वाओ ब्यूटीफुल।
8: भीगी भीगी रुत में तुम हम तुम चलते हैं।
7: क्या बात है, बहुत ही ब्यूटीफुल मैम ने गाया, बहुत मजा आ रहा है। आप तो मुझे लग रहा है कि मल्टी टैलेंटेड है, अच्छा बोल भी रहे हैं, अच्छा लिख भी रहे हैं और अच्छा गा भी रहे हैं भाई साहब। बहुत मजा आ रहा है, नो डाउट कि आपको भी अच्छा लग रहा होगा एवरीबॉडी। फिलहाल गाने की बात चली तो पहले ही गाना सुनेंगे, उसके बाद वापस मिलेंगे। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 आनंद विद यू लेडीज एंड जेंटलमैन। इस गाने के बाद वी कम बैक, डोंट गो एनीवेयर।

0: वेलकम बैक है वंस अगेन, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 पे। आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या गाना था यार। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस गाने को सुन के ना मुझे तो एकदम वो बारिश वाला वेदर याद आ गया। इतना ब्यूटीफुल ट्रैक जिसको सुनते ही हम फ्लैश बैक में चले गए। वेल आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ शालिनी मैम मौजूद है हमारे स्टूडियो में, जो आपके साथ ढेर सारी बातचीत कर रही है और लिखकर लाई है अपने दिल के जज्बात, जो सीधा आप तक डिलीवर कर रही है हमारे स्टेशन के माध्यम से। आई एम सो ग्लैड मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतना मजा आ रहा है मुझे स्टेशन को एंजॉय करते हुए आपके साथ। मतलब मैं कैसे बताऊं, मुझे खुद को भी नहीं पता, बट बहुत अच्छा लग रहा है। एंड मैम, अच्छा मैं आपकी कविताओं के बीच में और आपकी शेरो शायरी जो आप रहे हो बहुत तो है ही अल्टीमेट, नो डाउट। इस बीच मैं, मेरी खुद की एक गुजारिश है आपसे, रिक्वेस्ट है कि आपने कई बार देखा होगा कि आजकल जेंजी को ना ऐसे एकदम से हम किसी को देखते हैं फर्स्ट टाइम में, हमें ऐसा लगता है कि भैया हमें तो प्यार ही हो गया। मतलब आई डोंट नो लव है या फिर अट्रैक्शन है, बट मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट टाइम में तो प्यार शायद, मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में तो नहीं है। जैसे वो अट्रैक्शन जिसे हम कह सकते हैं वो हो सकता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मतलब अट्रैक्ट होना। तो जैसे हम फर्स्ट टाइम में किसी को देखते हैं कॉलेज में, मार्केट में, कहीं पे भी, आजकल के जेंजी का है ही ये हाल। अगर वो अट्रैक्ट हो रहा है उसकी तरफ, उसको वाइट प्यार हो गया है, तो उसके लिए कुछ है आपके पास?
1: बिल्कुल, और ये जेंजी का नहीं है, ये तो हमेशा से लव एट फर्स्ट साइट तो शायद हमेशा से चलता आ रहा है। लेकिन मैं तो ओल्ड स्कूल हूँ,
0: अरे वाह,
1: तो अगर आप पहले देखें तो सॉरी, तो अक्सर ऐसा भी होता था कि हमने कुछ ऐसा देखा कि हमें अट्रैक्शन हो गया, या हमें ऐसा फील हो रहा है कि बस यही तो चाहिए था, और हमने उसकी शक्ल भी नहीं देखी है अभी।
0: ठीक है, तो बस हम इमेजिनेशन में खोए हुए हैं।
1: हाँ, तो अब आप सुनिए, आप इमेजिन करिए, आंख बंद करिए और मेरे लाइनों के साथ साथ चलिए।
0: ठीक है, ठीक है, ठीक है।
1: तो कहा है कि पहली बार देखा उसे नंगे पांव मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए, पहली बार देखा उसे नंगे पांव मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए, गुलाबी सी साड़ी शायद हाथ में थाम रखी थी, मखमली पांव झांक रहे थे, एक पांव में काले धागे में पिरोए काले मोती पड़े थे, नजर से बचाने के लिए होंगे शायद। बार बार भीड़ में गुम जाती थी वो, मैं उन्हीं पांव का पीछा करता फिर खोज लेता था उसे, उसके पांव मेरी आंखें, मेरी आंखें उसके पांव, लुका छिपी खेल रहे थे जैसे। गुम हो गई वो और मैं चेहरा ना देख पाया था, बस वो पांव आंखों में लिए घर लौट आया था। रात भर वो पांव जहन में चहलकदमी करते रहे, रात भर वो पांव जहन में चहलकदमी करते रहे, सुबह होते ही फिर वही मंदिर की सीढ़ियां और वही मैं, हर रोज सुबह शाम मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा हूं, दुआएं मांगने लगा हूं, बंदगी सीखने लगा हूं, इसे मोहब्बत कहते हैं या इबादत।
0: क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार मैम, क्या खूब आपने लिखा, मजा आ गया इसको सुनकर, मजा आ गया। आई एम श्योर दोस्तों आपको भी डेफिनेटली मजा आ ही रहा होगा, कॉन्वर्सेशन इतनी अमेजिंग चल रही है, बातें इतनी ब्यूटीफुल हो रही है, तो ऑफकोर्स मजा तो आना बनता है। वेल आगे बढ़ते हुए मैम आपका फिर से वेलकम बैक करेंगे, और बहुत अच्छे तरीके से जो है आप हमारे लिसनर्स को तमाम सारी अपनी लिखी हुई बातों से रूबरू करा रही है, वो ताजा तरीन बेहतरीन बातें जो है आप हमें वापस याद दिला रही है, जो छोड़ के आ चुके होंगे बहुत सारे ऐसे हमारे लोग हमें सुन रहे हैं रेडियो पे, जो आज अपनी उन यादों में वापस चले जाएंगे। बिल्कुल मैम, और मुझे लगता है कि यही एक खूबसूरत बात होती है इन कविताओं की, इन पोइट्रीज की, कि ये हमें फिर से जिंदा कर देती हैं। अगर हमारी कुछ चीज हमें खो भी गई है ना, मिस हो भी गई है, अगर हम इनको सुनते हैं तो लगता है कि वाह, हमारी सामने पूरी पिक्चर आ जाती है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: तो ये खूबसूरत एहसास है, और जो आज वो एहसास को आप जगाने के लिए यहाँ आ गई है,
1: तो
0: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड मुझे लगता है कि गाइस इस तरह का टैलेंट हर किसी में नहीं होता, और जिसमें होता है फिर तो बल्ले बल्ले। और यार मैम आपका गॉड गिफ्ट है आई थिंक।
1: हाँ बिल्कुल,
0: बस आपने इसको एनहांस कर दिया है,
1: इसको एनहांस कर दिया है। बिल्कुल, मैंने कहीं कुछ सीखा नहीं है, और बचपन से स्टेज पे मेरी मम्मी मुझे भेजती रही कुछ कुछ चीजें सिखा के, मुझे कविता पढ़ना सिखाया, मुझे बाकी चीजें डिबेट सिखाई, और उसके बाद वो चीज मैं शायद पॉलिश करती रही, उन चीजों को वक्त देती रही, और जिसमें आपका दिल लगता है ना, True. वो चीज अपने आप पॉलिश हो जाती
0: Absolutely.
1: है.
0: जिस चीज के लिए आप डेडिकेटेड होते हो, पैशनेट होते हो ना, तो फिर आपका पोटेंशियल, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस अपने आप बाहर आने लगता है. और आप फिर उसमें आपको ये भी नहीं लगेगा मैं इससे बोर हो रहा हूँ, आप इंजॉय करोगे, इंजॉय लॉट. आप जितना ज्यादा उसमें घुसोगे उतना आपको मजा आएगा. और जिस चीज में आपको मजा आता है ना, वही चीज अगर आपका प्रोफेशन बन जाए तो फिर भी मजा आता है.
1: बिल्कुल,
0: है ना.
1: और जैसे कि अभी आपने कहा था कि कविताएं जैसे पीछे ले जाती हैं कविताएं, तो मैंने भी ऐसे लिखा था कि कविताएं जब पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे सब चिट्ठियां हैं.
0: क्या बात है.
1: तो वो चिट्ठियां जो या तो अधूरी रह गई और या अपने पते तक पहुंच नहीं पाई.
0: करेक्ट.
1: तो प्रेम हो या नाराजगी हो, इजहार हो, मनोहार हो, समर्पण हो, दर्द हो या टीस हो, या आक्रोश हो, इन सबको किसी ना किसी पते पर पहुंचना था.
0: करेक्ट.
1: लेकिन ये रास्ते में खो गए. अगर ये सब अपने पते पर पहुंच जाते तो इनका सफर खत्म हो जाता.
0: खत्म हो जाता
1: और वजूद.
0: एब्सोल्युटली.
1: इन्हें कोई मोड़ मार के हवाई जहाज बना के उड़ा देता. कोई इसमें चना मुरमुरा खा लेता.
0: करेक्ट.
1: कहीं ये कूड़ेदान में जाती और कहीं अलाव में जल गई हो. हो सकता है कुछ वक्त के लिए इन चिट्ठियों को संभाल लिया होता किसी ने, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली इनका वजूद खत्म होना ही था.
0: होना ही था.
1: तो वो चिट्ठियां जो किसी पते पर पहुंच नहीं पाई वो कविताएं हो गई. और ये कविताएं आसमान में लटके सितारों की तरह टिमटिमा रही हैं, स्याह रात में लाखों जुगनुओं की तरह जगमगा रही हैं, महक रही हैं जैसे हिरन में कस्तूरी महकती है, चहक रही हैं जैसे भोर में चिड़ियां चहकती हैं, महफिलों की शान और तन्हाइयों की जान हो गई. ये कविताएं लाखों दिलों की मेहमान हो गई.
0: ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, क्या बात है. लाखों दिलों की मेहमान हो गई. क्या बात है, बहुत बढ़िया. और आज की हमारी जो मेहमान है वो शालिनी जी हैं, और जो हमारे साथ लगातार बहुत अच्छी अच्छी बातचीत कर रही हैं. और देखो ये जो सिलसिला है वो लगातार चलता रहेगा, पता नहीं कब तक चलेगा. आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता है. बहुत मजा आ रहा है. टू बी वेरी मैम, बहुत कम सिचुएशन में ऐसा होता है जब हम टाइम देख रहे होते हैं, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि 20 मिनट कैसे हो गए. अनबिलीवेबल. इस कॉन्वर्सेशन को चलते चलते प्रोग्राम ऐसे ही चलता रहेगा. थोड़े से कुछ और मैम के किस्से और कुछ और बढ़िया बढ़िया बातें भी सुनेंगे. उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा सा हम जो है पूछेंगे मैम. बट उससे पहले मैम हम सोच रहे हैं कि ये सब बीच में एक और एंटरटेनमेंट का अगर तड़का लग जाए तो मजा आ जाएगा. एक और खूबसूरत सा गीत जो आप चाहती हैं हमारे शो को एक बार तो ये सुनवा देना चाहिए. आनंद मजा आ जाएगा.
1: तो वो सुनाते हैं

0: वेलकम बैक हियर वंस अगेन। एक बहुत ही खूबसूरत ट्रैक अभी एंजॉय किया। आज का सेशन बहुत ही ब्यूटीफुल हो रहा है क्योंकि आज हमारे साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी मौजूद है हमारे स्टूडियो में। यस, आज हम उनसे ढेर सारी बातचीत कर रहे हैं। ऑफकोर्स उनकी बातें आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही होंगी। आई एम श्योर बहुत सारी उनकी कविताएं आपको फ्लैश बैक में भी लेकर चली गई होंगी। आज हमारे साथ शालिनी जी स्टूडियो में मौजूद है, ढेर सारी बातचीत वो कर रही है। लेकिन मैं एक चीज उनसे पूछना चाहूंगा, मैम आप मुरादाबाद में कहाँ से बिलोंग करती है, थोड़ा मैं भी तो जानू आपके बारे में, थोड़ा सा ये बताइए आप।
1: मैं ओरिजिनली बरेली से हूँ।
0: अच्छा, ओके।
1: और रह रही हूँ यहाँ लगभग 20 साल से,
0: मुरादाबाद
1: में ही हूँ और पैसिफिक स्टार होम में रहती हूँ।
0: अरे वाह, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। और आज फिलहाल वो रेडियो के स्टेशन में आ गई हैं, रेडियो की दुनिया में आ गई हैं, जहाँ पर अपनी लिखी हुई वो सारी बातें आज आप तक पहुँचा रही हूँ।
1: शायद
0: थैंक यू मैम, एंड आई डोंट नो कि इनकी सारी बातें हम आप तक पहुँचा पाएंगे या नहीं, बट मुझे लगता है कि कुछ चीजें ना बचा के रखनी चाहिए ताकि वो नेक्स्ट टाइम फिर वापस काम आ सके। दोबारा भी तो बुलाना है ना फिर उनको मुझे। सो वेल, अभी मैम आगे बढ़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि एक कोई एक ऐसी कविता या कोई चार पंक्तियां अगर आप हमारे नेचर के लिए, पहाड़ों के लिए करें तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, बिकॉज मुझे माउंटेन बहुत पसंद है। अगर मैं बात करूं ट्रैवलिंग की, तो अगर हम ट्रैवलिंग में जब भी कहीं ट्रैवल करने जाते हैं और वो अगर माउंटेन वाला एरिया मिल जाए तो मजा आ जाता है,
1: माइंड
0: ब्लोइंग। मतलब
1: एक नंबर की घुमक्कड़। अरे
0: क्या बात है,
1: आपको सुनाती हूँ जो मैंने अपनी पहाड़ की घुमक्कड़ी के दौरान महसूस किया है वो। और अब अगर सुनने वाले भी आंख बंद करेंगे तो मुरादाबाद में
0: जाएंगे,
1: पहाड़ पर
0: पहुंच जाएंगे। तो चलो हम लोग फील करते हैं,
1: बिल्कुल
0: पहुंचते हैं पहाड़ों की दुनिया में।
1: इन पहाड़ों में बंजारापन मेरे लिए सुकून की परिभाषा है। ये सूरज से पहले अरुणा का आना, जैसे प्रियतम के लिए रेड कार्पेट बिछाना, हवाओं में बहता चिड़ियों का संगीत और बादलों का मखमली शामियाना, टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियां और कदमों का खुद ब खुद सध के चलते जाना, सुबह जैसे अंगड़ाई लेकर जाग रही हो और मुझे अकेला पाकर कविता का मुझसे बतियाते हुए साथ चलते आना, घरों से उठते धुएं का सर्द मौसम के साथ मिलकर हवा में तस्वीर

0: तस्वीरें बनाना और मेरा इस सारे आलम में खुद के भीतर बेआवाज उतर जाना। सुबह का दोपहर को लांघ कर बेसब्र हो शाम से मिलने चले आना और शाम का खुद आसमान में रंग बनकर बिखर जाना। आसमां का सारे रंगों के साथ नदी में डुबकी लगाना और नदी का लहराते बलखाते सारी धरा को धानी ढंग जाना। कुदरत की गलबैयां डाले कविता का सारे रंगों के साथ मेरे मन समा जाना और मेरा दुआ करना। मेरा दुआ करना कि यूं ही फूले फले ये पहाड़ ये नजारे, कि बस होता रहे पहाड़ों में आना जाना।
1: क्या बात है, बस होता रहे पहाड़ों में आना जाना। बिल्कुल, और ये आना जाना तो बिल्कुल लगा रहेगा मेरे दोस्त। अगर आप पहाड़ों में जा रहे हैं तो बस आप मैम की चार पंक्तियां जरूर याद कर लीजिएगा। शायद आप जब जब जाएंगे तो आपको ये पंक्तियां याद आती रहेंगी। एंड मुझे लगता है कि इन पंक्तियों से तो सच में हम सब पहाड़ों में पहुंच ही गए मैम। आज बहुत मजा आ गया और आपकी इन लाइनों से मुझे लगता है कि वाकई में आप एक नंबर की घुमक्कड़ तो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। क्योंकि आपने जिस तरीके से लिखा है ना, वो बिल्कुल हमें ओरिजिनल फील दे रहा था, लग रहा था कि हम वहां पहुंच चुके हैं। सो थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत अच्छा लगा। इट वॉज रियली नाइस टॉकिंग टू यू एंड आई एम श्योर जितने लोग सुन रहे हैं उनको भी जरूर मजा आया होगा। सो मैम, अब चलते चलते कोई प्यारी सी चार पंक्तियों के माध्यम से कोई एक सोशल मैसेज, कुछ अच्छा विचार जो आप रखना चाहें हमारे लिसनर्स को, जो आप अपने कविताओं के कहानियों के माध्यम से बताना चाहें, कोई संदेश आप देना चाहें इस प्रोग्राम के माध्यम से।
0: बिल्कुल, तो एक छोटी सी बात कहूंगी और ये है ऑर्गन डोनेशन के बारे में।
1: ब्यूटीफुल,
0: सुनिए प्लीज। रूह जब आजाद हो, रूह जब आजाद हो जिस्म के इस पहरन से, ये बूटी ये झालर ये सलमा सितारे, ये मोती नगीने ये गोटा किनारे, ये सब हमारी आंखें हमारे दिल हमारी किडनी के बारे में है। ये बूटी ये झालर ये सलमा सितारे, ये मोती नगीने ये गोटा किनारे, जलने ना पाए छुटा लेना सारे, कि इनके लिए हैं लंबी कतारे। किसी का दिल इंतजार में दिल के हमारे, और किसी की नजर के इंतजार में खुद नजारे। क्यों मिट्टी मिलाएं, क्यों मिट्टी मिलाएं, लुटो ये सारे कि जीते रहेंगे तुम्हारे हमारे,
1: जीते रहेंगे तुम्हारे हमारे। सो नाइस मैम, थैंक यू सो मच, आपसे बातचीत करके सच में बहुत मजा आया। एंड आई एम श्योर ये जितने लोगों ने सुना होगा उनको भी बहुत अच्छा लगा होगा एंड आई एम श्योर आपको भी अच्छा लगा होगा डेफिनेटली।
0: थैंक यू सो मच,
1: बातें यहाँ रख के
0: yes, बहुत अच्छा
1: अपने लिसनर्स के साथ आपको भी बातचीत करके डेफिनेटली मजा आया होगा। क्योंकि आज वो लिसनर मेरे नहीं आपके भी हो गए, क्योंकि इतनी मनमोहक वाली आवाज है आपकी, इतनी अच्छी आप बोल रहे हैं, तो यू नो बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड एक कोई अपनी तरफ से कोई ऐसा थॉट या कुछ ऐसी बात जो आपको लगता है आप कहना चाहे मुरादाबादी से तमाम लोग आपको सुन रहे हैं।
0: मैं बस यही कहना चाहूंगी कि ये जितने भी क्रिएटिव आर्ट हैं, जैसे आप सुन रहे हैं, चाहे वो लिखना है चाहे वो गाने हैं या कुछ भी, जो भी क्रिएटिव आर्ट हैं, वो आपको एक जिंदगी को बेहतर तरीके से जीने का सलीका सिखाते हैं। तो लगे रहिए इसमें और एंजॉय करते रहिए।
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, बहुत अच्छा लगा। एंड जल्दी फिर आपसे दोबारा मिलेंगे कुछ और नई बेहतरीन बातों के साथ। तब तक के लिए आप रखिए अपना ढेर सारा ख्याल।
0: थैंक यू सो मच
1: एंड गाइज, आप सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए। छोड़ के जा रहा हूँ कुछ अमेजिंग ट्रैक के साथ, फिर होगी मेरी आपकी मुलाकात। तब तक के लिए कीप लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
2: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
4: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
5: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर, नियर चड्डा सिनेमा।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर, 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ लेले,
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है दीदी,
0: अरे हो रहना किसी के।

मजनू, शिरी और फरहा, इनका सच्चा इश्क जमाने को अब तक है यार। याद याद मुझे आया है एक ऐसे दिल पर का नाम, जिसने धोखा देकर नाम इश्क किया बदनाम। यही है साहिबान कहानी प्यार की, किसी ने जान ली